0: तेरा।
1: ओम शांति। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, आओ हम इसे सहज भाव से जिएं। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, सभी को एक सुंदर बुद्धि प्राप्त है, लेकिन किसी ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया, किसी ने दुरुपयोग, किसी ने बुद्धि में सद्विवेक भरा तो किसी ने अपनी बुद्धि को व्यर्थ से भरपूर कर लिया। कोई बुद्धिमान प्राणी अपने जीवन की यात्रा का बड़ा सुख ले रहा है तो कोई बिल्कुल सुख नहीं ले रहा है। कई लोगों के पास धन संपदा बहुत है परंतु वे सुखी नहीं हैं। वे भूले रहते हैं कि सुख शांति पवित्रता प्रेम संतोष ये सब भी बहुत बड़ी संपदा है। वो केवल स्थूल धन को ही सब कुछ मानकर उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, धन कमाने के लिए पाप करते रहते हैं, परंतु पाप का धन कभी भी मनुष्य के लिए फलीभूत नहीं होता। वो उसे सुखी नहीं कर सकता है, वो उसकी समस्याओं को बढ़ाएगा, उससे जिन बच्चों की वो पालना करेगा वो बच्चे चरित्रवान नहीं होंगे, कुव्यसनों में रत हो जाएंगे और माँ बाप के लिए चिंता और परेशानियों का कारण बन जाएंगे। आज यही हो रहा है, बहुत बच्चे अपने माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। और इसके जहाँ और कारण हैं, वहाँ एक प्रमुख कारण ये भी है कि उनकी पालना गलत ढंग से हुई है। तो हम जीवन की इस यात्रा को आनंद से भरपूर करें। हम सभी तो कितने भाग्यवान हैं कि जब 5000 वर्ष की हमारी यात्रा पूर्ण होने को आई तो स्वयं भगवान हमारा साथी बन गया, ऊपर से आया और हमें कहा, बच्चे हे आत्माओं, तुम बहुत थक चुके हो, तुमने अपने सिर पर बहुत सारे बोझ रख लिए हैं, अनेक बंधनों में तुम बंधे हुए हो, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें मुक्त करने के लिए, आओ मेरे साथ हो जाओ। और बाबा कहते हैं, बच्चे अपने मन के सारे बोझ मुझे देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो हम सब की बुद्धिमानी समझदारी इसी बात में है, जब भगवान आकर हमारा साथी बना है तो मन के सारे बोझ उसे दे दें। ये मैंपन मनुष्य को बोझिल करता रहता है, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी, मेरी चिंताएं, मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसा ना हो जाए, ये बोझ मन को भारी किए रखते हैं। ये सब अर्पित कर दें अपने उस खुदा दोस्त को जो हमारे सभी बोझ हरने आया है। आप सभी को ये श्रेष्ठ बात अवश्य स्वीकार्य होगी। तो हम जीवन की यात्रा को सुखों से भरपूर करें, सुख देते और लेते चलें, खुशियाँ बांटते चलें, एक दूसरे के दुख दर्द सुनकर उन्हें सहयोग देते चलें, एक दो की समस्याओं में उन्हें बहुत मदद करते चलें। हमें ये कभी नहीं भूलना है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वही व्यवहार हमें भी कहीं ना कहीं से प्राप्त अवश्य होगा। हम यदि खुशी देंगे तो खुशी डबल होकर हमारे पास आ जाएगी, और हम यदि दूसरों की खुशी छीनेंगे तो हमारी खुशी छीनने वाला भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस कर्मों की गति को जानते हुए ये स्वीकार कर लेना है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, मेरे कर्म हैं, मेरे संस्कार हैं या मेरे संकल्प हैं। जब तक हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे तब जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर नहीं कर पाएंगे। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छी तरह स्मृति में रखेंगे, भगवान हमारा साथी है, यात्रा के अंत में वो हमारा साथी बनकर आ गया है, खुदा दोस्त बनकर आया है, सिर पर छत्र छाया बनकर आया है और अब वापिस जाने का समय है। तो खेल पूरा हुआ, हमें ये अपना देह रूपी वस्त्र उतार कर अपने घर जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर ईश्वरीय खजानों से भरपूर होकर श्रेष्ठ भाग्य से संपन्न होकर अपने घर लौटना है। ये अभ्यास करते रहेंगे।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। हर सफलता के पीछे मानव की बुद्धि और परिश्रम का हाथ है। कामचोर लोग सदा रोते रहते हैं, मुफ्त खोरी की आदत उनका सब कुछ बिगाड़ कर रख देती है। चोर, डाकू और हेराफेरी के धंधे वाले लोग उन्हीं में से होते हैं जो काम से दिल चुराते हैं, मेहनत से दूर भागते हैं। जरा अतीत की ओर झांक कर देखो, इस संसार के जितने भी बड़े लोग आपको इतिहास के पन्नों पर नजर आ रहे हैं, क्या वे जन्म से ही बड़े पैदा हुए थे? क्या आविष्कारक लोग भगवान के पास से अपने आविष्कारों के फॉर्मूले लेकर आए थे? क्या ये सब धनवान लोग पैदा होते समय धन साथ लेकर पैदा हुए थे? क्या यह कोठियां, बड़े बड़े बंगले, जिंदगी के हर प्रकार के ऐशो आराम उन लोगों के साथ ही पैदा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा सोचना बेकार है। यह जो कुछ भी हुआ है, जो भी घटना घटी है, वह सब कुछ इसी संसार में ही हुआ है, यहीं पर हो रहा है। आखिर आप क्यों निराश होते हैं? आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष आपका उतना नहीं जितना इस समय का है, आपकी सूझबूझ का है? बच्चों के सबसे बड़े शत्रु तो उनके ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी संतान को बचपन से ही ऐसी शिक्षा नहीं देते जिससे बच्चे बड़े होकर अपने भविष्य को स्वयं बना सकें। यदि आप अपने बच्चों को बचपन से यह पाठ पढ़ाना शुरू कर दें कि यदि महान बनना है तो काम करने की आदत डालो, परिश्रम करो, काम चोरी की आदत छोड़ दो, ऐसे लोगों की सोसाइटी से दूर रहो जो काम चोरी की आदत डालने में मदद करते हैं, बचपन से ही उन्हें यह शिक्षा दें कि उन्हें परिश्रम करना है। बड़े घरों में बच्चों को काम करने की आदत ही नहीं होती, वे काम करने में शर्म महसूस करते हैं, इससे उनकी शान में फर्क पड़ता है। जब स्कूल तक जाने के लिए उन्हें कार मिलेगी तो वे काम क्यों करेंगे? ऐसे माँ बाप अपनी औलाद के स्वयं शत्रु बन जाते हैं। काश माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। जो लोग मध्यम श्रेणी के हैं उन्हें तो बचपन से ही काम की आदत पड़ जाती है, मगर कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो बच्चों को काम की आदत ही नहीं डालते, यह भी बुरी बात है। इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग काम के साथ साथ अपनी शिक्षा का क्रम जारी रख सकते हैं। प्रश्न तो परिश्रम करने का है।

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कुछ लोग हारना पसंद ही नहीं करते, ऐसे में आपको कोई नीचा गिराकर तो रख नहीं सकता। यदि आपके मन में आगे बढ़ने की भावना है तो आप एक ही स्थान पर टिककर कैसे बैठ सकते हैं? आपको तो वही काम करना चाहिए जिसमें उन्नति के आसार नजर आएं। एक स्थान पर जमे रहने से अनुभव नहीं होता। अनुभव के लिए यह जरूरी है कि आप नए नए परीक्षण करते रहें। कोई भी ज्ञान घर बैठकर नहीं मिलता, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। आपकी सफलता प्राप्त करने का रहस्य यह है कि आप पहले दृढ़ निश्चय के स्वामी बने। एक बार यदि आप निश्चय कर लेते हैं तो फिर आपकी मंजिल दूर नहीं है। कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, परंतु कुछ लोग सोचते रहते हैं लेकिन उनका निश्चय दृढ़ नहीं होता, बस डावाडोल से रहते हैं। बस यही सोचते रहते हैं कि यह करें तो वह होगा, वह करें तो यह होगा। ऐसी ही उलझने आपको अपने बंधनों में बांधे रखती हैं। आपका मन बुझा सा रहने लगता है, एक अनजाना सा डर उसमें आकर बैठ जाता है। यही डर, यही भय आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपके मार्ग की सबसे बड़ी अड़चन है। जो आदमी इन अड़चनों से मुक्ति नहीं पा सकते, वे आगे क्या बढ़ेंगे? यदि वे क्लर्क हैं तो क्लर्क ही रहेंगे, वे कभी भी कारोबारी और अफसर नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी सोच इतनी विस्तृत नहीं होती है। यदि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो रोना धोना बंद करो, गरीबी अमीरी के झगड़े छोड़ो, उन भावनाओं की बात करो आपके मन में पैदा हो रही है, उनके लिए यह सोच धारण कर लो कि हमें इनको पूरा करना है। कभी कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं जाता, बल्कि प्यासा ही कुएं की तलाश में निकलता है। उसकी प्यास उसे मजबूर कर देती है कि उसे पानी चाहिए, और हर हाल में चाहिए। जैसे प्यासा अपने लिए कहीं न कहीं से पानी पैदा कर लेता है, ऐसी ही भावना अपने मन में लेकर आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा अपने मन में करें, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न और कठोर संघर्ष करते रहें, तो फिर सफलता हमारे पास ठीक उसी प्राकृतिक नियम से आएगी जैसे ऊपर फेंका गया पत्थर पुनः धरती पर आ गिरता है। महत्वाकांक्षा, प्रखर इच्छा, लालसा, पिपासा, उद्देश्य के दिशा में उतरने का प्रयास, इन सब का समूह ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको मन चाहे।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107।

यदि आप यह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इसी में हमें सबसे ऊपर जाना है, इसी में सबसे अधिक उन्नति करनी है, तो फिर उस विषय के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, उस विषय की अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें और उसी विषय के ज्ञानियों से अपना मेल जोल बढ़ाते रहें। इसी में आपकी सफलता का रहस्य छुपा हुआ है जिसे आप नहीं जानते, क्योंकि आपका ज्ञान इस विषय में बहुत कम है। जब तक आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाते तब तक सफलता की आशा ही न रखें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी विशेषता आपके हर काम में झलकती नजर आए, यदि आपकी हर चेष्टा से आपकी प्रगतिशीलता टपकने लगे, तो अपने हर काम को वैज्ञानिक युग की दृष्टि से देखकर उसी गति से करना शुरू कर दें, तो फिर जीवन में सफलता ही सफलता है। सफलता का कोई मोल नहीं है, यह तो अमूल्य एवं अद्वितीय है, यह तो मानव विवेक की ही देन है, आपके साहस का कमाल है, यह देन है आपकी उस शिक्षा की जो आपको प्रगति के रास्तों पर ले जाती है। शिक्षा और अध्ययन से बड़ा खजाना इस संसार में और कोई नहीं। भले ही आप कोई छोटे से छोटा काम कर रहे हैं तो भी आपको शिक्षा और अध्ययन का लाभ तो मिलता ही है। अपने भाग्य के ऊपर शिक्षा रूपी छाया डाल दें ताकि वह आराम की नींद सो जाए। जब तक आप भाग्य के गीत गाते रहेंगे तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है। भाग्य का सहारा लेने वाले लोग वही होते हैं जो चारों ओर से निराश हो जाते हैं और कुछ करने के योग्य भी नहीं रहते। संसार में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन एक मजदूर से शुरू किया था, परंतु धीरे धीरे उन्होंने उन लोगों के पास बैठना शुरू किया जो कारोबारी थे और उनके यहाँ वे लोग मजदूरी किया करते थे। उन्हें इस बात का शौक पैदा हो गया कि उन्हें भी ऐसा ही कारोबार करके बड़ा आदमी बनना है। यही सोचकर उन लोगों ने उस धंधे के बारे में प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया और निरंतर अध्ययन करते चले गए। दिन रात उनके पास एक ही काम था, अध्ययन, और मन में यही भावना थी कि उन्हें सफल कारोबारी आदमी बनना है। और एक दिन ऐसा आ ही गया जब उन्हें सफलता मिल गई। कितने ही साधारण मजदूर ऐसे ही उद्योगपति बन गए। केवल उनका उत्साह, काम करने की भावना, परिश्रम ही उन्हें

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जो ज्ञान के दाम देना जरूरी नहीं समझते। क्या आप भविष्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना जरूरी नहीं समझते? क्या आप सफलता की खातिर कुछ त्याग करने को तैयार नहीं हैं? क्या आपने अपनी सफलता के लिए हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का खुलकर मुकाबला करने की बात भी कभी सोची है? यह बात मत भूलिए कि इस प्रकार के विचार सबसे पहले मन में ही पैदा होते हैं। यदि आप उस कल्पनाओं को झटक देते हैं तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? उन्नति के रास्ते में आने वाली बाधाओं की चिंता न करने वाले और हर कठिनाई के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के मन में हार की बात पैदा ही नहीं होती। ऐसे पुरुषों के लिए यह जरूरी है कि वे धैर्यवान, सहनशील, चुस्त, तेज किस्म के लोग हों। ऐसे लोगों को फल की कमी नहीं होती। कमी तो उन लोगों के लिए होती है जो परिश्रम तो करना नहीं चाहते, परंतु हर समय यह सोचते हैं कि हमारी हर आशा पूरी हो जाए। यह कैसे संभव हो सकता है कि आप हाथ पर हाथ रखकर घर बैठे रहें और आपकी हर आशा पूरी हो जाए? जैसे वीर बहादुर पुरुष अपने शत्रुओं पर टूट पड़े और उन सब की हत्या करके अपनी उन्नति के द्वार खुलने के लिए परिश्रम दृढ़ निश्चय की चाबी लगाकर उस ताले को खोल ले जो उस द्वार के अंदर जाने से रोकने के लिए लगा हुआ था। आपकी सफलता के लिए सोपान है दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, लगातार प्रयत्न करना। यही है आपकी सफलता के मूल मंत्र। ऐसे अवसरों से जो लोग लाभ नहीं उठाते, उन्हें हम पागल के सिवा कुछ नहीं कह सकते। उन्हें भाग्यहीन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाग्य मनुष्य स्वयं बनाता है। हाँ, उन्हें बुद्धिहीन जरूर कहा जा सकता है। जरा सोचिए, इस संसार में किस चीज की कमी है? लोग धन के पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मगर यह मनोवृत्ति भी गलत है। धन के पीछे पागल हो जाना कोई जीवन नहीं है, बल्कि एक भूल है। हाँ, कुछ ऐसा भी काम करते रहना चाहिए जो आपको महान बना दे। अगर कोई मानव अपनी पूरी चेतना को अपने में लगा देता है तो उसकी प्रगति को कौन रोक सकता है? समय उसे सब कुछ देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: मैं मधुबन कितना भाग्यशाली हूं जो मेरा आंगन इस कलयुग में भी एक पवित्र एवं वरदानी भूमि के रूप में पहचाना जाता है, जहां संसार जैसा कोलाहल नहीं। मधुबन निवासी कर्मयोगी बनकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, सेवा में सदा जुटे रहते हैं। तभी तो इस धरा पर पांव रखते ही तन मन में एक ऐसा स्पंदन होता है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वायुमंडल में इतनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है कि मन में व्यर्थ संकल्पों के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रहता। नियम अनुशासन का पालन करते हुए सभी आत्मिक प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं। यज्ञ रक्षक दादियां स्वयं एक उदाहरण बनकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय प्रति समय प्रेरित करती रहती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वर्तमान प्रमुख दादी रत्न मोहनी जी ने जीवन पर्यंत अनुशासन का पालन किया। आज 100 वर्ष की आयु में भी उनका अनुशासन यथावत बना हुआ है। शक्ति वंदन की आज की श्रृंखला में बीके सुप्रभा दीदी जी से जानेंगे कि दादी रत्न मोहनी जी ने किस प्रकार ब्रह्मा बाबा एवं परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार यज्ञ वत्सों की हर प्रकार से पालना की और निर्माणचित होकर उन्हें सदैव खुद से आगे कैसे रखा।
1: शक्तिवंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: आप इतने सालों में बहुत सारी दादियों से मिले हैं इस संस्था के, और हर एक दादी के आध्यात्मिक जीवन की जो सफर है वो बहुत ही स्ट्रांग है नियमों में, लेकिन ऐसे कौन सी यूनिकनेस आप देखते हैं रतन मोहिनी दादी जी के अंदर जो बाकी अन्य दादियों से हट के हैं?
3: दादी जी बहुत ही दिनचर्या में पक्के थे, एक्टिव बहुत है। दादियों को तो हमने देखा है, उनके संग में आए हैं, परंतु दादी रतन मोहिनी जी बहुत ही ज्यादा जो दिनचर्या है उसमें बहुत ही एक्यूरेट रहते थे। इतने उम्र होने के बावजूद भी अमृत वेला आना, सामूहिक रूप में हम सभी को ध्यान में बिठाना, योग कराना और साथ में फिर मुरली क्लास में तैयार होकर आना सवेरे, बहुत ही ज्यादा एक्टिव। उम्र के हिसाब से तो इंसान थोड़ा बहुत सुस्त हो ही जाता है। उनके चलना, उनका देखना, उनका बोलना, उनका ज्ञान सुनाना, उनका किसी से मिलना, तो ये बहुत ही अंदर में एक्टिवनेस थी। ऐसे नहीं कि वे बुजुर्ग होने, बुजुर्गपन का तो उनके जीवन में किसी भी एंगल से हम देखते ही नहीं थे, तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा हमें देती है। हम तो थोड़ा सा उम्र हो जाते सोचते हम इतने उम्र के हो गए, लेकिन दादी जी के अंदर में कभी हमने उम्र की निशानी नहीं देखे है। जब दादी जी 90 दशक के अंदर में एंटर हुए तो हम सभी बहनें एकत्रित होकर माउंट आबू में आते थे कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम में, तो दादी जी को 90 साल के ऊपर होते हुए भी हम देखते थे कि कितना हिम्मत है, कितने उमंग उत्साह है, कितने चुस्त है वो। और जब वो बोलते थे तो उनके बोल में इतना जो ताकत होती थी तो हम अपने उम्र को भूल जाते थे। दादी जी कभी कभी हमें चलाते थे, दादी जी हमें कभी सैर करने ले जाती थी तो वो इतने तेज चलते थे, हम उनके पीछे पीछे दौड़ते थे और फिर हमारे साथ में खेलते थे, चाहे बैडमिंटन हो चाहे बॉल हो, उसमें हम हार जाते थे और दादी जी बड़े उमंग उत्साह के साथ में खेलते हुए हमारी हिम्मत बढ़ाते थे वंस मोर। तो हम किसी भी प्रकार की हिम्मत ना हारे। और परिवार में देखो, जब एक वृद्धा 90 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आसपास में कितने लोगों को इनसिक्योरिटी फील करते हैं और उनको छोटे छोटे काम के लिए कोई ना कोई हेल्पर चाहिए तो वो हेल्प लेते हैं, माने जैसे कि हराश हो जाते हैं पल पल में। लेकिन दादी जी को हमने देखा, खुद जब कमरे में भी हम कभी जाते थे, पर्सनल भी जाते थे मिलने के लिए, खुद ही तैयार होते, इतने उम्र होने के बावजूद भी। ऐसे नहीं कि उम्र हो जाता है तो कैसे भी तैयार हो गए, ना, हमेशा ऑफिशियल देखा हमने दादी जी को, क्योंकि देश विदेश के जो महान हस्ती है, विभूति है, तो दादी जी से मिलने आते थे। तो ऐसे नहीं कि दादी जी को कोई तैयार कराते थे, खुद ही इतना सफाई के साथ में खुद ही अपने आप को तैयार करते थे, क्योंकि उनको ये नशा होता था कि मैं परमात्मा पिता की श्रेष्ठ संतान हूँ तो मुझे बहुत अच्छा पाठ बजाना है, मेरे जो अभिनय से हमें ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कराना है। तो उनके अंदर में जो इतनी बड़ी कला है कि एक्टिवनेस, वो बहुत ही प्रभावित करने वाली होती है। हम कई बार शहरों से VIPs को दादी जी के सामने मिलाने ले आते थे, बहुत बड़ी बात होती थी कि हमें भले उनके हिसाब से हम बहुत छोटे उम्र के थे लेकिन नाम के साथ में बहन शब्द, सुप्रभा बहन हमारी बहुत अच्छी है, आप उनके पास आना, ये ज्ञान सुनना। तो उनको भी हमारे महिमा करते हुए उनके सामने हमारे बहुत अच्छा आगे बढ़ाते थे। तो उनके अंदर में हमारे प्रति सम्मान की भावना जागृत करते थे और वो जो भी VIPs मिल के जाते तो दादी जी को जरूर याद करते हैं कि देखो दादी जी इतना उम्र होने के बावजूद भी कितना चुस्त रहते हैं और कितना सफाई के साथ में हर कार्य करते हैं। जब वो कोई प्रसाद देते हैं, जब कोई सौगात देते हैं तो वो बड़े सम्मान के साथ में कुछ ना कुछ बोल करके देते हैं कि देखो ये जो वरदान कार्ड है, ये अनुभव करना कि भगवान आपको ये विशेष वरदान दे रहे हैं, उसको पढ़ के सुनाना कितनी बड़ी बात होती है। उनके सामने तो लाखों देश विदेश के विभूतियां आते रहते हैं लेकिन उनको हरेक के साथ में फुर्सत से मिलने की कला थी। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग आते हैं कैसे करके जल्दीबाजी में मिल लेना, ऐसे नहीं कभी देखा। खुद के प्रति उनका ध्यान नहीं था, शायद उनकी परवरिश जो है स्वयं ईश्वर अपने हाथों से करते हुए, क्योंकि उनको अपने लिए समय निकालते हुए हमने नहीं देखा, क्योंकि हर पल उनको मिलने के लिए, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पावरफुल मैग्नेट बन चुके हैं तो उनके इर्द गिर्द हरेक को रहने के लिए, उनके सानिध्य पाने के लिए हरेक को तीव्र इच्छा होती है। तो उनको अपने लिए समय निकालने के लिए शायद ही उनको फुर्सत नहीं मिलता होगा, उनके ईश्वर के द्वारा पालना होती होगी, यही हम सोचते हैं।
2: सो दादी जब प्रोग्राम्स वगैरह करने आते थे सेंट्रम पे, मधुबन तो बेहद का घर है, इतना बड़ा दादी का कॉटेज ही सब चीज़ें, लेकिन सेंटर्स में जब जाते हैं सेवा केंद्र, हर जगह पे हर वो सुविधा नहीं रहती है, हर सेंटर इतना बड़ा नहीं होता है, तो दादी कैसे भरपूर फील कराती थी?
3: जब रतनगढ़ सेंटर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, सीढ़ी में रेलिंग भी नहीं लगी थी और दादी जी का आगमन हुआ, बड़े हैरान करने वाली बात है कि हॉल में भी इतने खास एसी कूलर भी नहीं थी लेकिन उस हॉल में खचाखच भाई बहने भरे हुए थे। दादी जी मई महीने में राजस्थान की गर्मी में भी इतने कंफर्टेबल सभी भाई बहनों से बड़े चैन से मिले, फुर्सत से मिले, और उस उम्र में भी, जबकि उस समय उनको 90 क्रॉस कर चुका था, और इतने उम्र में भी सेंटर के एक कोना को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था कि क्या क्या बनाई गई है। जैसे कि उनको ये रहता था हर बहनों को अंदर में ये खुशी हो कि दादी जी ने पूरे सेंटर को देखा। मैंने देखा कि ऐसे कई बार ट्रैवलिंग में आकर के हम कभी थक भी जाते हैं, कोई सेंटर में जाते हैं ऐसे लगता है बस हम नाश्ता करके रेस्ट कर ले, लेकिन दादी जी ने तो सीढ़ी में रेलिंग नहीं होने के बावजूद भी पूरे सेकंड फ्लोर तक चढ़ करके एक एक कमरा, एक एक बालकनी, एक एक रूम तक देखा। और उससे हमें बहुत ही खुशी हुई कि जब दादी जी के चरण पड़ी कोने कोने में तो जैसे लग रहा था कि पूरा एनर्जी भर रही है उस धरती पे, ऐसा हमें अनुभव हुआ। बड़े सादगी, जबकि सारे साधनों से दादी जी भरपूर थे। दादी जी को तो देने के लिए हर एक तैयार होते थे, हम कुछ दादी जी आपके लिए करे, हम कुछ दे। परंतु दादी जी के अंदर में इतना वैराग्य वृत्ति थी, अंदर से वैराग्य वृत्ति थी कि कोई भी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होता था उनको, माने किसी भी चीज से लगाव नहीं था। इतना निर्लिप्त स्थिति हमने देखा है। एक साधारण बर्तन में भी भोजन करना, जबकि हमारे पास अचानक प्रोग्राम होने के कारण कुछ स्पेशल कुछ भी हमारे पास ऐसे नहीं थी, परंतु ऐसा हमें महसूस ही होने नहीं दिया कि साधारण है। जबकि दादी जी तो महान विभूति है, उनके लिए राजा महाराजाओं के लिए जैसे तैयारी करते हैं उससे भी बढ़कर तैयारी करनी चाहिए। परंतु दादी जी को इन सारी चीजों में कोई भी रुचि नहीं थी और ना उन सारे चीजों के प्रति कोई ध्यान था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, निरासक्त होकर के, निर्लिप्त होकर के सब साधनों को यूज करना, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी विशेषता थी दादी जी के अंदर में।
2: जैसे राजस्थान की धरनी में सेवा करना बहुत मुश्किल है, ऐसे में दादी राजस्थान जोन की इंचार्ज बनी। कैसे सेवाएं की दादी ने, कैसे कुमारियों को निकाला यहाँ से, कैसे इस धरती को फलीभूत किया?
3: जब हम राजस्थान में सेवा में जाने के लिए तैयार हुए, दादी जी यही बताती थी कि निराश नहीं होना, और ये जो धरनी है भले थोड़ा कलराठी है परंतु यहाँ राजाएं छुपे हुए हैं। राजस्थान माना राजाओं का स्थान है। और कई बार हंसी में दादी जी कहते थे कि जब हम अपने ग्रुप को, अपने भाई बहनों को दादी जी से मिलाने ले आते थे तो दादी जी को इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि राजस्थान की थोड़ा संस्कार है कि थोड़ा राजा रूप में रहना। और उसको रमणीकता से दादी जी कहते थे कि मैं तो राजाओं से मिल रही हूँ। इतना सुनते ही भाई बहनों के अंदर में एक हंसी छूट जाती थी कि दादी जी हमें क्या कह रहे हैं, एक नशा चढ़ाते थे। भले कठिन जमीन है, कलराठी जमीन है, परंतु जो भी भाई बहने निकलते हैं बहुत ही मजबूत निकलते हैं। और हमने प्रैक्टिकल में दादी जी के मुँह से निकली हुई बातों को अनुभव भी किया। दादी जी यही कहते थे कि देखो राजाएं बहुत नहीं होते हैं, राजाएं लिमिटेड होते हैं, प्रजाएं बहुत होती हैं। तो ये धरनी में छिपे हुए राजाओं को तुम्हें निकालना है। तो एक राजा को जन्म देना, एक राजा की क्वालिटी किसी आत्मा के अंदर में है, उसको इस जीवन में लाना, एक आध्यात्मिक जीवन में लाना, उसके लिए थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये संघर्ष संघर्ष नहीं है, लेकिन ये एक श्रेष्ठ आत्मा को निकालने के लिए एक हमारी पुरुषार्थ है। तो ऐसे हिम्मत बढ़ाती थी दादी जी।
2: और कोई बात, क्या कोई विशेषता ऐसे आपको लगता है कि ये किसी को पता नहीं दादी के बारे में?
3: जब दादी जी से मिलने हम आते थे तो तपस्या का समय शाम के समय होता है, विशेष करके ब्रह्मा कुमारी संस्था में शाम को 6:30 से 7:30 बजे का समय, जिस समय में सभी जुड़े हुए भाई बहने, दादियां दीदियां तो परमात्मा पिता की स्मृति में बैठते हैं। उस समय ज्यादा करके यही कोशिश करते हैं किसी भी प्रकार के मीटिंग हम ना करें, किसी के साथ में हम ना मिले, सिर्फ ईश्वर के साथ में मीटिंग रखें। परंतु हमने देखा कि दादी जी वो समय जो एक पर्सनल स्व उन्नति के लिए जो रखा जाता है, तो वो स्व उन्नति के समय में भी औरों के उन्नति को भी ध्यान में रखते थे। एक बार की बात है कि ऐसे नुमाशान का समय था, नुमाशान का समय में 6:30 और 7:30 बजे के बीच का समय होता है, तो मुझे उसी दिन रात को निकलना था। तो मैंने जब आकर के दादी जी के सामने थोड़ा सा चेहरा दिखाया ताकि दादी जी मुझे इशारा करेंगे और तो मैं अंदर में जाऊं, तो दादी जी उस समय ध्यानमग्न थे। परंतु उस ध्यानमग्न में भी, जबकि मैं उनके सामने आई नहीं थी, उनके अंदर में इतनी जो ईश्वरीय शक्ति थी, मैं पीछे की तरफ होने के बावजूद भी दादी जी ने मुझे देखा, जबकि मेरे चेहरा उनके तरफ में कुछ ऐसा आता नहीं था, आओ आओ ऐसे करके हमें बुलाया, जबकि मैं हैरान हो गई मुझे दादी जी ने देखा कैसे। और मेरे हल्की सी आहट, जबकि कोई आवाज भी नहीं थी, सिर्फ एक आहट, और उसी आहट को उन्होंने कैच करके मुझे बुलाया और मुझे पास में बिठाया और बड़े प्यार से मिले, हाथ मिलाए, गले मिलाए और हमें प्रसाद दिए, हमें सौगात दिए, और हमारे जो भी सेंटर के भाई बहन है उनको भी साथ में याद किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, हमें प्यार देना, हमें कुछ देना वो तो ठीक है, परंतु हम जिस केंद्र से आते हैं उनके लिए भी सोचना बहुत बड़ा प्रसाद की पैकेट देकर के कहा, मेरे नाम से सभी को, नाम सहित सभी को याद देते हुए ये प्रसाद खिलाना। मुझे तो इतना अंदर से इतनी खुशी हुई, इतना मैं गदगद हो गई, आंखों में जैसे आंसू आ गया कि देखो हमें तो पालना देते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए केंद्र के भाई बहन, उनके प्रति भी दादी जी के प्रति इतने स्नेह है, इतना प्रेम है, इतना निस्वार्थ प्यार जिसको कहा जाता है, जबकि उनके लिए प्रसाद भेजना, उनको याद प्यार देना, वो दादी जी को क्या जरूरत है। लेकिन दादी जी के प्रति बेहद की परिवार की भावना थी कि भले हमारे बहनों के वो स्टूडेंट है, उनसे जुड़े हुए, लेकिन दादी जी हमारे द्वारा अपनी पालना हमारे जुड़े हुए स्टूडेंट्स को भी देती थी। फिर हम प्रसाद लेकर के वहाँ से प्रस्थान हुए और हम सभी भाई बहनों को बताने लगे, तो भाई बहने भी बहुत खुश हुए। और फिर फोन से हमने दादी जी से बात की कि सोचिए कि वैसे तो बहुत सारे दादियों से हम मिले, लेकिन दादी रतन मोहिनी जी तो हमारे केंद्र में जुड़े हुए जिज्ञासुओं के प्रति भी इतना ही स्नेह बरसते हैं जितना हमारे लिए भी स्नेह बरसते हैं। ये एक अलौकिक विशेषता, एक अनोखापन दादी जी के अंदर में कुट कुट के भरी हुई है।
2: अंत में दादी की 100 इयर्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे दादी को?
3: दादी जी के इस बढ़ती उम्र जो एक सेंचुरी पहुंचने जा रहे हैं, हमारी तो अंदर में यही शुभकामना है कि हमारे दादी जी हमारे साथ साथ ऐसे ही चलते रहे, और जहाँ तक हमारे शरीर में भी श्वास है, हम दादी जी को साथ साथ अनुभव करें, हमारी उम्र भी दादी जी को लग जाए, और हम ईश्वर के याद में रहकर यही शुभकामना रखते हैं कि दादी जी हमारे साथ में रह करके हमें भी आप समान संपूर्ण बना करके हमें भी साथ ले चले, क्योंकि दादी जी का ये जो बढ़ती उम्र है तो ये भी हमें बहुत ही अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देती है। तो इतने उम्र होने के बावजूद भी दादी जी जैसे ही सलौकिक जीवन में एक स्पिरिचुअल लीडर बन करके हम सभी जो राजयोगी राजयोगी भाई बहने हमें साथ लेके चल रहे हैं, तो हमारी यही शुभकामना है तो वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इस ईश्वरीय कार्य में व्यस्त रहे और हमारे सच्चे दोस्त बनकर रहे, यही हमारी शुभकामना है।
0: ब्रह्मा बाबा का परमात्मा शिव बाबा पर अटूट निश्चय था, कैसी भी चुनौती अथवा परिस्थिति आती थी, बाबा सदा निश्चिंत भाव में रहते थे। कहते थे, करावनहार शिव बाबा सारे कार्य कराता है, हमें करनहार बनकर उन्हें करते जाना है। ब्रह्मा बाबा जितना अपने छोटों को मान सम्मान देते थे, उनकी विशेषताओं को भांप उन्हें जिम्मेदारी सौंपते थे। मैं मधुबन उन सभी घटनाओं का साक्षी रहा हूं। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात भी जिस तरह से संस्था की सेवाएं निरंतर विस्तार को पाती गईं, उनमें दादी रत्न मोहिनी जी की अथक एवं निस्वार्थ सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। मान शान सुख सुविधाओं से उपराम रहते हुए दादी जी ने सेवा से कभी समझौता नहीं किया। उम्र के इस पड़ाव पर वे मौन रहकर भी अपने रूहानी नैनों से मनुष्य आत्माओं में अपार शक्ति का संचरण करती रहती हैं। धन्य हूं मैं मधुबन जो दादी की महिमा में कुछ कह पाया।

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। डिप्रेशन के ऊपर जब हम बात करते आ रहे हैं कि कई तरह के डिप्रेशन होते हैं, क्यों होता है डिप्रेशन, और एक खास बात जो हमें समझ में आई है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वीकारना खुद को और दूसरों को भी, जैसे हैं वैसे ही स्वीकारें, फिर सोचें कि अगर उनमें कोई बदलाव लाया जा सकता है या खुद में भी बदलाव लाया जा सकता है तो किस तरह से लाना है। ये कुछ बातें हैं जो अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो सचमुच एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ चल सकते हैं। डिप्रेशन से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे मिथ्स थी जो हमने दूर करने की कोशिश की है। आज डिप्रेशन की ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से जानते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका हार्दिक स्वागत।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सुश्री शिवानी। वेरी वार्म वेलकम।
5: ओम शांति।
3: ओम शांति। आज डॉक्टर पटेल, हम यही जानना चाहते हैं कि हमने ये बात कर ली, डिप्रेशंस के कारण जानने की कोशिश की, कहीं ये बात समझ में आई कि जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो सोच है, जो थॉट्स हैं, वो सबसे बड़ा कारण बनते हैं। और कई तरह के डिप्रेशंस थे, 3 डिप्रेशंस को हमने डिफ्रेंशिएट किया था। लाइफ स्टेट्स की बात की थी कि 6 लाइफ स्टेट्स में जहाँ खुशी और गम के बीच का जो ना थोड़ी थोड़ी दूरी हो जाती है तो वो स्टेट ऐसी है कि समझ लेना चाहिए कि डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट्स भी क्या अलग अलग होती हैं? अलग अलग तरह के डिप्रेशंस हैं तो क्या ट्रीटमेंट्स के तरीके भी अलग अलग हैं?
4: कई प्रकार की ट्रीटमेंट है, वह सभी ट्रीटमेंट अलग अलग तरह के डिप्रेशन में भी काम करेगी। मैं मूल रूप से तो आपको बताता हूँ कि जो ट्रीटमेंट कौन से प्रकार की है। वर्तमान समय हम देखेंगे तो जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में, कहें कि अधिकतर सभी 80-90% पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाती है, जिसको कहा साइकोफार्मेकोलॉजी, कि मन से संबंधित जो दवाइयाँ हैं वह दवाइयाँ भी बहुत बड़ी मदद करती है जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको डिप्रेशन से बाहर लाने में। और एक ट्रीटमेंट है जिसको कहेंगे साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के भी विभिन्न प्रकार हैं, तो वह साइकोथेरेपी भी पेशेंट्स को मदद कर सकती है। और जिसको कहा जाए कि भी कुछ फिजिकल थेरेपीज, नहीं बहुत प्रकार की पहले भी थी, कुछ ट्रीटमेंट एब्सोल्यूट हो गई है कि भी ब्रेन में कुछ पार्ट को मामूली सर्जरी भी करते थे कि जो अभी

0: 99.999% कोई नहीं करता
1: है। तो आपने कहा कि सबसे पहले ड्रग्स जो है या दवाइयां देकर,
0: और एक मैं ऐड कर दूं
1: जी,
0: और एक जो ट्रीटमेंट है लोग भी जानते हैं जिसका एक्चुअल नाम है ECT, वह है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रिकली कन्वल्जन्स प्रोड्यूस किए जाते आर्टिफिशियली और वह भी मदद करती।
2: वो जो शॉक देते जो एक्सट्रीम केसेस की बात जब होती थी तब
0: ये चर्चा करेंगे, शब्द ही गलत है, शॉक देना है, पहले शॉक व्यक्ति सुन के उसको शॉक लगता है, इट्स समथिंग नो गुड इवन, देयर आर बोथ द थिंग्स, लेकिन जो वर्तमान समय हम आगे चर्चा करेंगे इस बात।
1: सबसे पहले तो दवाइयों पे आते हैं, दवाइयों का नाम सुनते ही अगर हमें मानसिक परेशानी है या डिप्रेशन है और हमें ये कहा जाए कि भाई आपको तो दवाइयां लेनी पड़ेंगी, तो पहला विचार मैं, मुझे ही कोई कहे कि आपको तो दवाई खानी पड़ेगी तो दवाई से मैं वैसे ही भागती हूँ, क्योंकि आज के सिनेरियो में ऐसा लगता है कि दवाई खाना मतलब हम केमिकल्स को अपने अंदर डाल रहे हैं, हम नहीं चाहते। तो दवाई खाने के नाम से ही लगता है लोग की हैबिट फॉर्मिंग है, मतलब मुझे आदत ही पड़ जाएगी, दवाइयाँ मत खाना डिप्रेशन की, आप एंटी डिप्रेसेंट पिल्स नहीं लीजिएगा, ये इतने सारे मिथ्स हैं, कॉन्स्टेंट लोग आपको एडवाइस देते जाते हैं। तो क्या ये हैबिट फॉर्मिंग है, क्या ये ज़रूरी ही होती हैं, कितनी ज़रूरी होती हैं, अगर दवाई नहीं ली गई तो वो डिप्रेशन कहाँ तक लीड कर सकता है, ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं एक्चुअली।
0: हाँ, पहला इश्यू आपने बार बार कहा है तो उसका उत्तर देता हूँ कि भैया हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अगर उस ड्यूरेशन के लिए दिया जाए जो आपको ज़रूरत है, उतने ड्यूरेशन के लिए आप ठीक से रेगुलरली लो और फिर उसे धीरे धीरे कम करो, उसका एक सारा तरीका है, ये डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं, वह रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लो तो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। गलती कहाँ होती है कि पेशेंट अपनी मर्जी से लेता रहता है, कभी ज्यादा भी ले लिया, अपनी मर्जी से कम कर दी और तब फिर वो लंबा समय लेता रहे तो हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है।
1: तो इलाज कितना लंबा, ये भी एक मिथ बहुत लंबी है कि 2 साल तक इलाज चलता है, 5 साल तक डिप्रेशन का इलाज, ये नहीं होता कि बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे, लंबा इलाज चलता है, तो कितना लंबा होता है।
0: अब इसमें और एक बात बताऊं जो मूल रूप से इसको क्लेरिफाई करना जरूरी है कि भी मेडिसिन कब जरूरी है। कई ऐसे किस्से हैं, मैं कहूँगा डिप्रेशन में भी करीब करीब 30% पेशेंट्स जो है वह सिर्फ साइकोथेरेपी से भी इससे बाहर आ सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पेशेंट है कि जो अपने आप या साइकोथेरेपी से उनको मदद पूरी नहीं मिल रही है तो वहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है। चलो ये तो मानते हैं कि भी जो भी मेडिसिन है उसकी कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट है ही, बल बहुत कम है। जो वर्तमान समय एंटी डिप्रेशेंट है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसके भी कई जनरेशन हो गए, जो प्रेजेंट जनरेशन की एंटी डिप्रेशेंट है वह 3rd या 4th जनरेशन की एंटी डिप्रेशेंट में ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट्स है। तो अब डॉक्टर को भी ये जज करना है कि वो साइड इफेक्ट और इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट, कि पेशेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी।
1: तो ये किस वक्त जरूरी है, जैसे आपने कहा कि कई बार तो साइको एनालिसिस से ही ठीक हो जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा वक्त आ जाता है जब ड्रग्स आर अ मस्ट, अदरवाइज वेयर विल इट लीड टू। अगर दवाई नहीं खाई गई तो इट कैन एक्चुअली लीड टू समथिंग एल्स, तो वो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा मुकाम डिप्रेशन के उसमें है, मोड़ पर, जब ड्रग्स बहुत जरूरी हो जाती है।
0: एक तो उसकी स्थिति यह है कि जब व्यक्ति अपना जो सामान्य कार्य है नहीं, कि तैयार होना, ऑफिस जाना, अपना जो भी डे टू डे वर्क है वह करने में भी अगर उसे दिक्कत आने लगी है, वह करने की उसकी इच्छा मर गई है, उसका उत्साह खत्म हो गया है, तो उसे मेडिसिन की जरूरत है। दूसरा, नींद में अगर सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है, अपने आप कुछ कोशिश करके उसे अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो उस स्टेज पर कहेंगे कि अब मेडिसिन की शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा कि अगर वह दवाई नहीं ले तो वह कौन सी स्टेज की ओर जा सकता है। एक तो ये डिप्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, जो भी उसकी कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बची है वह भी कम होती जाएगी, और एक जो बहुत ही डेंजर है डिप्रेशन में है वह है सुइसाइड। कि पेशेंट आत्महत्या भी कर सकता है कि अगर वह स्टेज उसकी बढ़ती जाए।
1: डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी जो अभी सुसाइड की बात की कि इट कैन एक्चुअली दवाई नहीं ली जाए तो इट कैन लीड टू सुसाइड, तो अब भी हमने जो कुछ दिन पहले ही देखा है कि एक स्टूडेंट ने जो 10th क्लास में 96% मार्क्स लेकर वो लड़की इतनी मेरिटोरियस स्टूडेंट, हर स्कूल के प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सब किसी को पता तक नहीं चला एंड शी कमिटेड सुसाइड, हैंग कर लिया अपने आप को. ये सिम्टम भी नहीं थे, डिप्रेस्ड रही होगी ज़रूर वो, क्योंकि तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया. तो ये सिम्टम्स पता ही नहीं चल पाए ऐसे, मतलब क्या होता है कि कभी ऐसा पता ही नहीं चल पाता. जैसे आपने कहा कि जब वो बिल्कुल दिनचर्या के काम करने बंद कर दे, इसका मतलब ये होता है कि आपने दवाई आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए. लेकिन जब ये बात भी ना एहसास हो पाए तब क्या करें?
0: कुछ केसेस में मैं स्वीकार करता हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है, परंतु अधिकतर वह कोई ना कोई उसके सिग्नल्स मिलते हैं,
1: कोई ट्रिगर ऑफ है कुछ.
0: या तो पेशेंट सच में डिप्रेस न भी हो, जैसे भी ये जो लड़की का किस्सा है,
2: क्योंकि उन्होंने, ये बहन ने जिसने सुसाइड किया, उसने वो सुसाइड नोट में सिर्फ इतना ही लिखा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट आई एम अफ्रेड ऑफ लिविंग इन दिस डर्टी वर्ल्ड, यू नो. और कोई रीजन भी नहीं बताया, मतलब सुसाइड करने का, बस मुझे जीवन इस दुनिया से डर लग रहा है. तो जरूर कुछ ना कुछ तो सोच गई होगी उसके पीछे,
1: वही कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा
0: हो सकती है. कोई ऐसा इंसिडेंस जो हुआ उसने रिवील नहीं किया सचमुच कि औरों के साथ, कि जो इंसिडेंस से उसको लगा हो कि डर्टी वर्ल्ड है, इसमें जीना नहीं है,
1: एक्चुअली इंडिकेट्स कि ये कहीं मेजर, यू नो, लाइक डिसिल्यूजनमेंट है.
2: लेकिन वो खुद अपने आप को ही फेस नहीं कर पाई होगी,
0: और काफी लंबे का कदम उठा लिया.
1: बिल्कुल. तो ये कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन, कॉन्स्टेंट काउंसलिंग कैन हेल्प एक्चुअली, कि कहीं हमें, हमारे अंदर जो चल रहा है, हो सकता है हमें खुद भी ना एहसास हो रहा हो. कई बार हमें, या हमें खुद को पता होता है कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं.
0: कुछ तो पता होता ही है, यह संभव है कि भी औरों को इतना पता ना चले. व्यक्ति को स्वयं तो, क्योंकि उसके विचारों में परिवर्तन आ रहा है, उसे जो फीलिंग्स आती वह फीलिंग्स में परिवर्तन आ रहा है, तो व्यक्ति को स्वयं तो एहसास होता ही है. सिर्फ यह संभव है कि कुछ लोग थोड़ा ऊपर से अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाते हैं कि उनके चेहरे पे, उनके बिहेवियर में कोई भी ऐसी कमी नहीं आने देंगे कि आसपास के लोगों को पता चले कि वे डिप्रेस्ड हैं.
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि दवाई जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है कई केसेस जब ऐसे पहुंच जाते हैं. दवाई खाने से एग्जैक्टली होता क्या है, यू नो व्हाट एग्जैक्टली चेंजेस, जब हमने दवाई खाई तो क्या कुछ बदलाव आता है केमिकल या ऐसा फिजियोलॉजिकल? की
0: जो अच्छा प्रश्न है कि जो समझना भी चाहिए ठीक से, कि हमारे दिमाग में करीब 800 से ज्यादा केमिकल्स हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. ये जो विभिन्न बीमारियां हैं मानसिक, उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में बदलाव आता है, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ कम होते हैं. तो ये दवाइयां हैं वह इस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती है.
1: ओके.
0: डॉक्टर्स को भी जब आप पूछते हैं तब अधिकतर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई यह केमिकल इम्बैलेंस है, तो मेडिसिन जो है वह केमिकल्स का फिर से बैलेंस लाती है. तो इसके कारण मेडिसिन के अनेक फायदे भी हैं,
1: कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है वो वापस उस जगह पर पहुंच जाएगा. हाँ. जहां पर सही एक आपको मात्रा में पहुंचना चाहिए ताकि एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए. हाँ.
2: तो जब तक दवाई नहीं लेंगे इसका मतलब
1: यू दैट इम्बैलेंस विल रिमेन?
0: नॉट नेसेसरीली. अभी दोनों बातें हैं.
2: अच्छा, काउंसलिंग
0: आदि से भी और केमिकल का बैलेंस भी हो.
1: डॉक्टर साहब, काउंसलिंग पे आएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक मेजर इशू सिस्टर शिवानी इज ऑल्टरनेट लिविंग एंड ऑल्टरनेट थेरेपीज के बारे में बात होती है. कई तरह की थेरेपीज और आ गई हैं, जो ट्रेडिशनल थेरेपी है उसके कहते हैं कि उसके एवज में अगर वो किया जाए तो वो भी हेल्पफुल है. तो यहाँ हम चाहेंगे आप बताइए कि क्या वो हेल्पफुल होती हैं, और थेरेपी ना सही लेकिन ऑल्टरनेट लिविंग जिसमें कई सारी और चीज़ें शामिल हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल जो आ जाता है.
0: मैं ये कहूँगा मैं कि भी दो चीज़ें हेल्प कर सकती है, कि नहीं, योग आसन मदद कर सकते हैं, प्राणायाम कुछ हद तक मदद कर सकता है, क्योंकि वो एक प्रकार से एक्सरसाइज भी है और सही प्रकार से है. क्योंकि आप जब योग आसन करते हैं तब सही रूप से योग आसन करो तो क्या है, हर आसन के बाद रिलैक्सेशन करना है. तो उसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है ठीक से, ध्यान स्पिरिचुअलिटी से परिवर्तन हो रहा है, प्राणायाम से भी आपके रेस्पिरेशन में चेंजेस आ रहे हैं, कि जो ब्रेन के ऊपर भी उसकी इफेक्ट होगी. तो वह डेफिनेटली मदद करेगा। परंतु और जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है उसमें सिस्टमेटिक रिसर्च नहीं की गई, बल अलग अलग किससे कोई बता देगा।
1: डॉक्टर साहब ये बात तो हुई कि योग जो फिजिकल एस्पेक्ट है फिजिकल तरीके से वो भी हेल्प कर सकता है, हाउ अबाउट मेडिटेशन एक्चुअली वो उसकी मदद कितनी, वो कितनी मदद कर सकता है।
0: मेडिटेशन योग आसन से भी ज्यादा मदद करेगा क्योंकि ये बीमारी की शुरुआत ही मन में हुई है, तो मेडिटेशन वह मन को ठीक करेगा, हमारे विचारों को ठीक करेगा। और विशेष जो मेरा ब्रह्मा कुमार इसके साथ अनुभव है इतने वर्षों का, जिसमें देखा है कि राजयोग का अर्थ ही है विचारों में परिवर्तन लाना, और जब हम विचारों में परिवर्तन लाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी चेंजेस आते हैं, वह भी बैलेंस होने लगते हैं। तो इसके कारण मेडिटेशन सबसे अच्छा है। और एक जो मेडिटेशन का फायदा है कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है, और जब हम एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो भी डिप्रेशन से बाहर निकलना सहज है।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पूरी सारी चीज़ें यू नो इकट्ठे साथ साथ काम करके हमें एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकते हैं।
0: बहुत बड़ा फायदा देखा गया है मेडिटेशन का कि हमें लोगों का भी सपोर्ट मिलता है। आमतौर पर आप देखते
1: हैं कम्युनिटी सपोर्ट
0: कि भी राजयोग सेंटर पर जो जाने वाले भाई बहन हैं उनके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं।
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब मेडिटेशन कैंप्स में जाते हैं या सेंटर्स पे जाते हैं या लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जहाँ पॉजिटिव वाइब्स हमें हर कदम पर नजर आ रही है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट अगर कोई डिप्रेस्ड है तो कितना हो सकता है? एंड एक्चुअली इट रियली मैटर्स,
2: इट्स लाइक गिविंग ऑक्सीजन, यू नो आप बिल्कुल जैसे एकदम अनकॉन्शियस है आपको ऑक्सीजन दे दो तो चलने लग जाते हैं, तो वो सेंटर पर आने से एक वायुमंडल वैसा बना होता है पॉजिटिव एनर्जी का, तो यू गेट वेरी यू नो चार्ज्ड। दूसरा है जब हम सेंटर पर जाते हैं हम और लोगों से मिलते हैं जो हमारी ही तरह प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लाइफ के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, वो सेंटर पर रह नहीं रहे हैं, वो एक आश्रम लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं। नो घर बैठ के लगता है जो आश्रम में रह रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है घर में रह कर देखें, लेकिन वहाँ जब हम जाते हैं तो हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं जो घरों में रह रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन देयर लाइफ। वो मेडिटेशन को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करके क्या परिवर्तन आया है, दैट इंस्पिरेशन ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज। जब आप किसी को देख लेते हो ना कि किसी ने कर लिया, तो देन आई स्टार्ट फीलिंग अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इतने लोग कर सकते हैं, देन इवन आई कैन डू।
1: बिल्कुल, बहुत प्रेरणा
2: एक्सचेंज भी होता है ना, हर एक का अच्छा आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम था कैसे ओवरकम किया, देन आई गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम यू। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द जर्नी अलोन I'm on the journey with a lot of people. So yatra interesting ho jati
1: hai. And a lot of people who are actually in the same scenario, positive vibes dete hue.
2: Aur jaisa sang waisa rang. Ye to hume pata hi hai. To abhi hum bahut zyada agar chinta aur is tarah ke logon ke sang mein rehte hain jo hame rehna hi padega, we can't. To uska bhi hum par asar to padta hi hai. Lekin fir thoda samay nikal kar agar hum 15-20 minute ke liye bhi aise sang mein chale jaye to wo bhi apna impact hamare upar chhod deta
1: hai. To wo pure din ke liye aapko taiyar kar dete hai. बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर से दवाइयों पे आते हैं क्योंकि दवाइयों से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं, खासकर ये कि जब साइकैट्रिक प्रॉब्लम है या एक डिप्रेशन है, और डिप्रेशन जैसा कि आपने एक बार पहले भी कहा था कॉमन कोल्ड की तरह है आज के वक्त में, लेकिन डिप्रेशन को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जैसे ही ये कहा जाए कि आप डिप्रेस्ड हैं या आपको डिप्रेशन है, आप दवाई लेने भी जाएँ, डॉक्टर कहते हैं आप दवाई लीजिए, केमिस्ट्री कह देगा कि एंटी डिप्रेसेंट मत खाइए, एंटी डिप्रेसेंट हैबिट फॉर्मिंग है, आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या है ऐसी चीज़ उनके अंदर जो हमें मना किया जाता है कि भाई आप ये मत खाइए?
0: पहले तो बाद में बताऊँगा कि भाई ये जो अप्रोच है ना वही गलत है, कि भाई केमिस्ट डॉक्टर तो नहीं है, उसको थोड़ा भी मालूम नहीं कई बार तो, उसने तो सिर्फ एक दो किस्से देखे हैं। और सारी साइकेट्री में मैंने जो अनुभव किया है कि करीब 80-85% पेशेंट ठीक हो जाते हैं,
1: लेकिन कहते
0: अच्छे
1: कि
0: अच्छे लोगों को भी।
1: अच्छा एक और मिथ, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स जो हैं उनसे नींद आती है, वो सुला देती है,
2: ये सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि आप फील करते हैं कि आप पहले से भी ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं।
1: तो इज इट लाइक दैट?
0: मैं भी नहीं, कनोप्रिया जी हम एक एक चीज को ले, ये 3-4 इश्यूज है, एक एक इश्यू को ले तो वो क्लैरिफाई भी होगा। सबसे पहले जो इश्यू है कि भी केमिस्ट को नॉलेज नहीं है। हुआ क्या है जनरली कि जिनको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, अच्छे अच्छे लोगों को होती है, मैंने देखा है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी डिप्रेशन आया है, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी डिप्रेशन आया है, और फर्स्ट टाइम ही उन्हें तकलीफ हुई, उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट ली, 5-6 मास में वो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे जो 80-85% लोग हैं वो किसी को बताते नहीं है कि मुझे तकलीफ, एक व्यक्ति को भी, पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था। परंतु दूसरे जो 15-20% लोग कि जिनको वो ठीक नहीं हुआ है, उसके कई कारण हैं जिसकी भी चर्चा करनी चाहिए, कि जिन्हें वो रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट्स बन रहे हैं, वो दुनिया भर में उसकी पब्लिसिटी होती है, भले वो न भी कहे, परंतु जो लोग देखने वाले सबका, अरे ये डिप्रेस्ड है, 5 साल से डिप्रेस्ड है, 15 साल से डिप्रेस्ड है, ये दवाइयाँ ले रहा है, कितने डॉक्टरों के पास जा रहा है, वो और वह पब्लिसिटी दुनिया भर में होती है, तो इसलिए इस प्रकार की नेगेटिव मान्यता है। तो और जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, आदमी केमिस्ट को तो नॉलेज है ही नहीं। और ये आपकी बात सच, अभी थोड़े दिन पहले की ये पेशेंट की बात है, जब मैंने मेडिसिन दी वो केमिस्ट, तो कहने नहीं तुम बिल्कुल खाओ नहीं, ये तो एंटी, हालांकि वो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन।
1: अच्छा, नींद आती है क्या बहुत ज्यादा खाने से?
0: ये भी बात की भी, ये नींद की दवाइयां नहीं है। नहीं, कुछ एक स्पेशल है कि भी जो नींद के लिए ही वह मेडिसिन बनाई गई है, कि भी जिनको नींद नहीं आती है, एंटी डिप्रेशन नींद की दवाइयां नहीं है, परंतु जो साइकियाट्री की पुरानी दवाइयां है, अब ऐसे अगर हम सिंपल वे में उसको डिवाइड करना हो सभी को समझ में आ जाए, इसलिए एक तो है कि भी पहले 1957 में पहली बार एंटी डिप्रेशन मार्केट में आई, उसके बाद कहेंगे कि भी 80s तक की जो दवाइयां है, और उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की मेडिसिन भी आई, तो जो पुरानी दवाइयां है उसमें थोड़ी नींद की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उसमें कुछ कॉन्स्टिपेशन होने की भी संभावना है, मुँह सूखता है, इस प्रकार के उनके सिम्टम्स है। जो प्रेजेंट सेकंड थर्ड जनरेशन एंटी डिप्रेशन है उसमें करीब करीब कोई भी नींद की प्रॉपर्टी नहीं,
1: इवॉल्व होती
0: गई ना, आपको हाँ डे टाइम में ही लेनी है। कुछ दवाई ऐसी है कि जो आपको सवेरे नाश्ते के बाद तुरंत लेनी है।
1: एक्चुअली अगर हम उसके अंडरलाइन जो एरिया है वो ये समझ लें कि इट इज द केमिकल बैलेंस जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उसे बैलेंस करने की कोशिश है। हम बाकी दवाइयां भी तो लेते हैं, बीमार जब होते हैं हम, कोई हमें बुखार हो जाता है, वायरल फीवर में कितने वायरल जब होता है तो कितनी कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने हम बीमार, कितना उठा ही नहीं जाता, तब भी तो हम कितनी दवाइयां खाते हैं।
2: बेनाड्रिल पी लो तो स्लीपी लगता है,
1: एंटीबायोटिक्स तो इतना आपका स्टमक इतना अपसेट कर देते हैं कितने टाइम तक,
0: बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।
1: तो वो जब हम वो ले सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं
0: ले सकते हैं? और थोड़ा टाइम लेना है इसमें ना, कुछ बातें जो एडवाइस प्रॉपरली देनी हो तो मैं एक तो ये कहूंगा कि भाई एक ही साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लो, क्योंकि साइकियाट्री एक है ना छोटी सी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड नहीं है। जो छोटी सी फील्ड है तो अच्छा साइकियाट्रिस्ट सब मेडिसिन को जानता है, भल उनको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रही है, नहीं आप इसको भले चेंज करो, ऐसा भी आप कहे तो वह ट्राई करेगा, और सफिशिएंट समय के बाद आप समझते हैं कि भी इफेक्ट नहीं हो रही है तब भले चेंज करो। कई बार पेशेंट एक के पास गया बस 10 दिन में दूसरे के पास जाता है।
1: यहाँ पे एक मैंने, आपने कहा कि एक ही साइकियाट्रिस्ट रखे, तो एक ये बात भी बहुत है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातें बना के आपका पैसा बनाते, अपना पैसा बनाते हैं, ये बहुत बड़ी मिथ अपने दिमाग में हम सब लोग लिए घूमते हैं कि फिजिक, मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हम किसी MD के पास जाते हैं या किसी जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं तो वो तो हमारा मीटर लगाएंगे, कई नब्स देखेंगे, काफी सारी और चीजें देखेंगे, जैसे कैट्रिस्ट है वो एक घंटा हमसे बात करेंगे, हमसे पैसे ले लेंगे और उसके बाद सिर्फ इसी बात का, और बार बार बुलाएंगे। ये मिथ भी मैं चाहती हूँ कि क्लियर आज आप करें कि
0: एक तो जो आपने कहा कि भी साइकियाट्रिस्ट को जैसे भी और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगा करके या तो कुछ और फिजिकल चेकिंग करके पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, साइकियाट्रिस्ट को आप जो सिम्टम्स बताएंगे, जो आपको प्रश्न पूछेगा, आपके उत्तर देंगे, उसके आधार से उसको निर्णय करना है कि कौन सी बीमारी है। बल्कि कुछ चेकअप की जरूरत है, ब्लड प्रेशर चेक करना है और कुछ चीजें वो चेक करने की जरूरत है, अन्यथा आपकी बातों से उसे परफेक्ट डायग्नोसिस करना है, तो इसलिए वह जरूरी है। और अच्छा साइकियाट्रिस्ट अगर एक घंटा आपको देता है और ठीक से साइकोथेरेपी दे रहा है तो वह फिजिशियन से बहुत बड़ा है। आपका MD फिजिशियन तो 2 मिनट में आपको उसने चेक किया, आपसे फीस ले ली, ना इसका भी इतना ही क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं.
1: That's what I'm saying, you know, this is a mindset which we all have. ये माइंडसेट तोड़ना बहुत जरूरी है कि थेरेपिस्ट जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजी या साइकोथेरेपिस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं.
0: तो वो जो कर रहे हुए वर्धर ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं. एक

0: तो जैसे मैंने कहा ना कि ये ना खरीदारी करना, जैसे शॉपिंग होता है ना, कि भी एक दुकान में गए, आपने भाव ताल किया, आपको पसंद नहीं आया, दूसरे दुकान में गए, ऐसा नहीं करिए। एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और सफिशिएंट टाइम दीजिए। ये मैं मानता हूँ कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट आपको टाइम नहीं देता है, कहीं बहुत बिजी, आपको 1-2 मिनट भी नहीं देते हैं, और आप समझते हैं कि भी मेरी बात कोई ठीक से समझ नहीं रहे हैं, तो आप भले चेंज भी करना चाहे तो करें, परंतु एक सफिशियंट टाइम देना जरूरी। दूसरी बात कि उसकी राय के अनुसार नियमित दवाई लो, आप अपना चेंजेस नहीं करो। आज एकदम लोग परिवर्तन कर देते हैं कि भी 2 दिन ली, फिर अभी तो मैंने दवाई आधी कर दी है कहते, तो उसकी इफेक्ट ही नहीं होनी। स्पेशली जो एंटी डिप्रेशेंट है उनका एक लेवल है, पर उल्टा उस लेवल में साइकियाट्रिस्ट धीरे धीरे आते, 2-3 सप्ताह में वो जो फुल क्लिनिकल डोज होना चाहिए वहां तक पहुंचते हैं, और वह क्लिनिकल डोज करीब आप 2 मास, कम से कम 2 से 2.5 मास लो, तब वह केमिकल्स का बैलेंस फिर से आता है और आपको जो सही इफेक्ट होने लगेगी वह इफेक्ट होगी
1: 2 महीने के बाद मिनिमम,
0: 2-2.5 महीने के बाद, और वो भी क्लिनिकल डोज पे।
1: बिल्कुल।
0: उल्टा लोगों में मिथ यह भी है कि भी हर बार जाते हैं ना मेडिसिन को थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता है, पहले कहा था 1 लो, 2 सप्ताह के बाद गए कहते 2 लो, अभी कहता है 3 लो, परंतु उसको तो पता था कि भी कम से कम 3 टेबलेट की जरूरत है, वो जो क्लिनिकल डोज है वहां तक, फर्स्ट डे नहीं दे सकता। फर्स्ट डे देता तो आप शायद उसको टॉलरेट नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब बहुत सारी और भी बातें हैं, आपने कहा था ECT वाली जो एक थेरेपी है, और सबसे बड़ी बात साइकोथेरेपी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स जिसको अभी हमने नहीं छुआ है। अपनी अगली कड़ी में हम और इसके बारे में जानेंगे, और ये जो ड्रग्स के साथ जो ट्रीटमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त हो चुका है, तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिल्कुल, अगर प्रॉब्लम है, अगर डिप्रेशन है, उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है। हमने इतनी सारी बातें की थी कि डिप्रेशन क्यों होता है, लेकिन ये जानना कि ट्रीटमेंट कितनी ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात जो आज डॉक्टर साहब ने हमें ये बताई कि सही साइकियाट्रिस्ट और पूरा फेथ रख के, पूरी डोज लेकर, अगर बीमारी है तो उसकी पूरी दवाई लेनी भी ज़रूरी है। ये बात आज अगर हम गांठ बांध लें तो कहीं ना कहीं हमारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपके पास कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो आपको बता दें कि अगली कड़ी में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बाकी तरीके और खासकर साइकोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है और किस तरह बहुत मदद कर सकती है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, इस पर खास चर्चा करेंगे। आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें इतना ही, अगली कड़ी में होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे हैं? ओए कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन्ड एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इन साइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं। तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2000

0: 26 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
5: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है। कैंसर के टीके से AI तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और AI के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए

जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आज हमारे साथ विशेष राजस्थानी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वरूप खान और उनकी टीम हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग लोकल राजस्थानी फ्लेवर को सुनते हैं। उनके गीत अगर आप सुनेंगे और उनके साथ जैसे ही आप सुनते हैं तो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। पूरा राजस्थान को आप फील कर सकते हैं, राजस्थान का एक यूनिक संगीत को आप फील करते हैं। लोकल वोकल और राजस्थानी ये जो भाषा है उसकी फ्लेवर एक आपको मिल जाती है, तो एक मिठास है उस। और स्वरूप खान जब भी गाते हैं तो वो एक अलग रंगत में आ जाते हैं और एक अलग दुनिया में आपको ले चलते हैं। और आप स्वरूप खान जी जो है बाड़मेर राजस्थान और जयपुर के आइडियल है, और बहुत सारे अलग अलग मंचों पर टीवी पर इन्होंने कार्यक्रम किए हैं। और आज हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो मधुबन का तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के इस मंच पर बातें मुलाकातें प्रोग्राम में आप है हमारे साथ। तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे मित्रों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने, और जहां भी आपको अच्छा लगे तबज्जो दे, मैसेज के जरिए आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं, और आप स्वरूप खान से जुड़ भी सकते हैं। और लास्ट में मैं उनका नंबर भी आपको दूंगा ताकि आप अपने यहाँ प्रोग्राम के लिए उन्हें बुला सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में आप उनको बुला सकते हैं, ये हमेशा आपके लिए तैयार है। तो स्वरूप खान बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: मेरी खम्मा गणी, नमस्कार।
1: गणी खम्मा हुकुम
2: जी,
1: अपने बारे में थोड़ा बताइए आप।
2: जी, मैं अभी वर्तमान में जोधपुर में हूँ और मेरा जो रेजिडेंस है वो गांव हड़वा है, तहसील सिव जिला बाड़मेर है। और मेरे साथ में बरकत खान जी, गांव कोटड़ा है इनका, तहसील सिव जिला बाड़मेर। और साथ में मोती खान है, इनका गांव हड़वा है, तहसील सिव जिला बाड़मेर। ढोलक प्लेयर है बरकत खान जी, करताल प्ले करते हैं, मैं गाता हूँ। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं उनको मेरी खमागणी नमस्कार, और जितना हो सके ज्यादा जुड़े आप और संगीत का आनंद ले। राजस्थानी हिंदी गजलें वगैरह जो भी आपकी फरमाइश होगी, जो भी आपको पसंद है, जो मेरे को जितना संगीत आता है आपको जरूर सुनाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप एक गीत अपना पसंदीदा अभी सुनाई दीजिए।
2: मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा राजस्थानी वेलकम सॉन्ग, जो बेस्ट पदार्थ है उनके वेलकम में गाया जाता है वो सॉन्ग से।

0: भागने को।
1: बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप खान। स्वरूप खान जी, मैं चाहूंगा कि संगीत के साथ आपका जुड़ना कैसे हुआ?
0: जी सर, हमारा बचपन में फैमिली में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारा संगीत का ही काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जजमानों के यहाँ जाते गाना बजाना करते, वही हमारा मतलब
1: पेशा,
0: जो काम पैसा वही है।
1: अच्छा अच्छा।
0: आज भी संगीत करते हैं और हमारे जो पुराने संगीत है उसको आज भी हम जिंदा रखना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने पूर्वजों के बारे में, अपने पिताजी या फिर दादाजी जो संगीत से जुड़े हुए हैं, उनकी कुछ बातें याद कराइए, वो कैसे काम करते थे, उनको कैसे आपने देखा?
0: जी हाँ, मेरे फादर साहब भी एक सिंगर है, राजस्थानी फोक सिंगर है। मेरे बड़े पापा, फादर साहब का नाम नजीर खान जी है, वो भी राजस्थान के एक अच्छे सिंगर है, और बड़े पापा का नाम हकीम खान है, वो भी एक हमारा जो राजस्थान इंस्ट्रूमेंट है कमायचा, स्पेशल मंगनियार का है हमारा।
1: अच्छा अच्छा।
0: कमायचे के अच्छे प्लेयर है और काफी देशों में यात्रा कर चुके हैं, लगभग पूरे वर्ल्ड में यात्रा कर चुके हैं, बहुत लीजेंड आर्टिस्ट है हकीम खान जी। और बाकी हमारे पूरे फैमिली है जो सब आर्टिस्ट।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, हकीम खान जी को भी याद करते हैं हम लोग, वो जहाँ भी है सुखी रहे, और उन्होंने पूरा देश भ्रमण करके राजस्थान का जो संगीत है उसे प्रचार किया, उसका प्रेजेंटेशन दिया, और उसी पद चिन्हों पर आप स्वरूप खान, उनके बेटे, आप भी चल रहे हैं और आज हमारे साथ भी है। और मैं चाहूंगा कि स्वरूप खान को आप सुनिए, और जहाँ पर आपको लगता है घर में आप कुछ करना चाहते हैं तो जरूर इन्हें बुलाइए। स्वरूप खान जी, स्वागत है फिर से, और एक मैं चाहूंगा कि खूबसूरत गजल सुनाइए, आप गजल भी सुनाते हैं तो।
0: मैं आपको कुछ हिंदी में सुनाता हूँ गजल।

0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और सुभाष जी गांव से लिखते हैं, बहुत समय के बाद इंतजार था जिसका राजस्थानी गीतों का, वो हम लोग अभी सुन पा रहे हैं। स्वरूप खान और पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुभाष जी ने लिख के भेजा है मैसेज। धन्यवाद सुभाष जी, जलगांव से आपने याद किया है और वेंकटेश जी ने भी याद किया है, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से आपने याद भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी नमस्कार सुभाष जी को,
1: और मैं चाहूंगा कि अभी और सुनाइए एक और गीत।
3: राजस्थान सुनाए।

0: वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। और ये दया जी भी लिखते हैं बहुत ही सुंदर जो है संगीत का कार्यक्रम मारवाड़ी भाषा में, बहुत बहुत शुभकामनाएं लिख के भेजा है दया सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स आपने किए हैं तो थोड़ा सा बड़े प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा सा अपनी अनुभव की यात्राओं को सुनाइए, कौन कौन सी जगह पे आपने कार्यक्रम किए हैं और जयपुर आइडियल आपको मिला है उसके बारे में भी बताइए।
1: मेरा जोधपुर के अंदर एंट्री हुआ था, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, फिर मेरे को जयपुर बुलाया, जयपुर के अंदर मैंने परफॉर्मेंस की, फाइनल में फिर आगे का बहुत अच्छा सफर। पहले तो राजस्थानी ट्रेडिशनल सॉन्ग सुने मेरे से, फिर हिंदी भी गाने सुने, फिर गजलें भी सुनी, तो सब जजों ने तारीफ की और मेरे को आगे सिलेक्ट किया और फाइनल तक मैं गया और सब मेरा बहुत अच्छा रहा।
0: जी जी, एक और गीत की तरफ चलते हैं और अभी बाबूलाल प्रजापति जी ने याद किया है आपको और ये स्कूल के प्रिंसिपल है, यहाँ पर निचलागढ़ में ही बच्चों को पढ़ाते हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं, राजस्थान की शान स्वरूप खान लिख के भेजा है, क्या बात। तो चलिए एक और खूबसूरत
2: जी सर कोई फरमाइश हो तो।
0: हाँ बाबूलाल जी, अगर कोई फरमाइश है आपकी तो बताइए, अदरवाइज हम लोग गाना सुनेंगे। और वेंकटेश जी और सुभाष जी, आपको कौन सा गीत सुनना है, फरमाइश कर सके तो स्वरूप खान सर वो ले कर सकते हैं। आइए तब तक हम लोग एक राजस्थानी
2: गीत। जी सर, हिंदी की फरमाइश, राजस्थानी की हो तो बताइए।
0: राजस्थानी गीत,
2: राजस्थानी नींबूड़ा सुना रहे हैं।

0: बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी सोनावने जी जलगांव से लिखते हैं, खम्मा गणी गाना सुनाइए।
2: पता रहे हमारे देश सुना रहे आप की रिक्वेस्ट
1: बिल्कुल।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पधारो मारो देश राजस्थान का ये खूबसूरत गीत आपने सुनाया। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपने गाया हो, बहुत सुंदर।
1: सरकारी प्रोग्राम पहले 92.7 FM में भी गया हूँ मैं, और गवर्नमेंट के काफी कार्यक्रम किए मैंने, बड़े बड़े लेवल पे किए।
0: एक दो याद कराइए ताकि हमें याद आ जाए कुछ चीजें।
1: कई काफी कार्यक्रम किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी किए,
2: सीसीआरटी के भी,
1: सीसीआरटी के भी किए जब छोटा था, और इनकम टैक्स के भी किए।
0: अरे वाह, चलिए बाबूलाल जी ने एक फरमाइश भेजी है अभी, मेवाती गीत सुनाइए।
2: बाबूलाल जी बोले मेवाती सॉन्ग जी सुना रहे हैं।
0: स्वागत स्वागत।

0: वाह बहुत बढ़िया, बाबूलाल जी ने मैसेज किया है, बहुत सुंदर, आभार करके मैसेज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल। चलिए दोस्तों, अब धीरे धीरे हम लोग समय की और बढ़ते जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा स्वरूप खान जी, जाते जाते आप अपना नंबर वगैरह बताइए लोगों को, ताकि आपसे जुड़ सके, और आपका एड्रेस बताइए, ताकि कुछ प्रोग्राम हो तो आपको इन्वाइट कर सके।
1: मेरा कार्यक्रम करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर है 9571928410। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9571928410। शादी पार्टी, बर्थडे और स्टेज शो किसी भी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वरूप खान का नंबर आपको मिल गया है, 9571928410 ये नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं स्वरूप खान जी से किसी भी कार्यक्रम के लिए। जादे तादे एक छोटा सा गीत आप अपनी पसंदीदा सुनाइए
2: जी,
0: आप अपनी पसंद का सुनाइए स्वरूप खान जी।
2: जी जी सर।

बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपके लिए ये चंद तालियां, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया। कामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान का जो फ्लेवर है, लोकल जो फ्लेवर होता है या राज्य का जो फ्लेवर है, वो आपने अभी यहाँ पर सुना। मेवाड़ की जो भाषा है, वहाँ का जो महाराणा प्रताप का गीत सुना, राजस्थान का पधारो हमारा देश, ये आपने सुना, कुछ गजल आपने सुने। तो सुरूपकांत जी जो है हिंदी और गजले और राजस्थानी और मेवाड़ी गीत प्रस्तुत करते हैं, तो आप इन्हें बुला सकते हो। फिर से एक बार इनके पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आप जयपुर आइडल बने हैं, वैसे पूरे राजस्थान के आइडल बने, इंडिया के आइडल बने और बहुत नाम कमाए, ऐसी शुभकामना के साथ। तो दोस्तों, हम सभी फिर चाहेंगे, वापस मिलेंगे कुछ नए कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

आप सुनने जा रहे हो प्रभा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का विचार इस प्रकार है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि मनुष्य के कदम डगमगाने लगते हैं, परंतु समय भी यही होता है संभलने का। आज के विचार को मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। संघर्ष का नाम ही जीवन है। कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि मनुष्य के कदम डगमगाने लगते हैं, परंतु समय भी यही होता है संभलने का। आइए डिटेल में चलते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई करते रहे और परीक्षा नहीं आए तो कैसे पता चलेगा कि कौन होशियार है और कौन कमजोर? फिर कोई कोई अपने कमजोर रिजल्ट यानी कि परिणाम को देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने जीवन से हार मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन एक रस चलता रहे तो कैसे पता चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं? अर्थात हम विपरीत परिस्थितियों में भी एक रस रह सकते हैं या नहीं। परिस्थितियां आती हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कितने ही बंदे विपरीत परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाते और अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि रात के बाद दिन और अंधकार के बाद उजाला आता ही है। ठीक इसी प्रकार दुख के बाद सुख आता ही है। अतः कभी भी विपरीत परिस्थितियां देखकर जीवन से घबराना नहीं है, डगमगाना नहीं है। हर परिस्थिति में संभल कर चलना ही समझदार व्यक्ति का काम होता है। और अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी उषा का नमस्कार। आइए अब मैं आपको घरेलू नुस्खे देती हूँ, और आज जो घरेलू नुस्खे देने जा रही हूँ वो आयुर्वेदिक पर है। आयुर्वेदिक में आप कहते हैं कि आयुर्वेदिक ऐसा इलाज है जिसमें नो साइड इफेक्ट और असरकारक भी होता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस तरह का चूर्ण बनाना सिखाऊंगी जिस चूर्ण से आपकी अनेक बीमारियां खत्म हो सकती है। तो सबसे पहले सिखा रही हूँ आपको पेचिस नाशक चूर्ण, ठीक है। अब पेचिस नाशक चूर्ण कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप सोंठ, नागरमोथा, सिकी हुई हींग, चित्ता की जड़, अतीस तथा कुंडा की छाल सबको कूट पीस करके कपड़े में छान करके इसका चूर्ण बना लीजिए, ठीक है। चूर्ण बन गया ना, सभी का अच्छी तरह बारीक पीस कर कपड़े से छान लिया तो ये चूर्ण तैयार हो गया। पुनः दोहरा रही हूँ पेचिस नाशक चूर्ण बनाने की विधि को, आप ध्यान से सुनेंगे। सोंठ, नागरमोथा, सिकी हुई हींग, चित्ता की जड़, अतीस तथा कुंडा की छाल सबको कूट पीस करके कपड़ छान करके चूर्ण बना लीजिए। अब आप आधा आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ रोज सुबह और शाम को लीजिए। ये चूर्ण आव, पेचिस, दस्त इन सभी रोगों को शांत करता है। जितनी भी शरीर की तकलीफें हो रही होती है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है पेचिस, आव, दस्त, इन सभी रोगों को शांत करता है। आधा आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ रोज सुबह नन्हे कोटे और शाम को सोते वक्त लेना है तो आपको इन बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। अब चित्रकादी भट्टी का चूर्ण कैसे बनाया जाता है और इससे कौन सी बीमारी खत्म होती है वो जानेंगे। पीपरा मूल, जवाखार, सज्जीखार, चित्र का मूल, नमक, त्रिकुट, सिकी हुई हींग, अजमोद तथा चक, इन सभी का चूर्ण 20-20 ग्राम लेकर के अनार के रस में घोट करके मटर के दाने के बरोबर गोलियां बना लीजिए। चित्रकादी भट्टी चूर्ण का मैं पुनः विधि दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पीपरा मूल, जवाखार, सज्जीखार, चित्र का मूल, नमक, त्रिकुट, सिकी हुई हींग, अजमोद तथा चक, सभी का आप चूर्ण 20-20 ग्राम लेकर के अनार के रस में घोट करके मटर के दाने के बरोबर गोलियां बना लीजिए, और फिर 2-4 गोली प्रतिदिन आपको सुबह शाम खाने के बाद पानी से सेवन करना है। ये वट्टी आव को खत्म करती है, गैस को शांत करती है तथा पेट हल्का करती है ना उपयोगी, बहुत ही अच्छी है। पुनः दोहरा रही हूँ, इसकी मात्रा आप 2-4 गोली प्रतिदिन सुबह और शाम को खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए। यह वटी आव को खत्म करती है, गैस को शांत करती है तथा पेट को हल्का रखती है। अब मैं आपको सेंधवादी चूर्ण सिखा रही हूँ। सेंधवादी चूर्ण के लिए सेंधा नमक, काली मिर्च एवं फिटकरी फूली हुई 10-10 ग्राम तथा कपूर व अफीम 2-2 ग्राम सबको कूट पीस करके चूर्ण बना लीजिए। पुनः दोहरा रही हूँ, सेंधवादी चूर्ण के विधि को सेंधा नमक, काली मिर्च एवं फिटकरी फूली हुई 10-10 ग्राम तथा कपूर व अफीम 2-2 ग्राम, इन सबको कूट पीस करके चूर्ण बना लीजिए। फिर यह चूर्ण दाढ़ एवं दांत के रोगों में लाभकारी है, अतः सुबह शाम जरा सा चूर्ण धीरे धीरे मसूड़ों पर मलिए। इस चूर्ण को मसूड़ों पर मलने से दांतों से खून आना, दांतों का टीसना तथा दांतों में दर्द होना बंद हो जाएगा। तो बहुत ही लाभदायक है सेंधवादी चूर्ण। यह चूर्ण दाढ़ एवं दांत के रोगों में लाभकारी है, अतः सुबह शाम जरा सा चूर्ण धीरे धीरे मसूड़ों पर मलिए। इस चूर्ण को मसूड़ों पर मलने से दांतों से खून आना, दांतों का टीसना तथा दांतों में दर्द होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह आप आयुर्वेदिक नुस्खा को अपना करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम, बने रहेंगे आप आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पछताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
1: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं कि अगर चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो कुछ अच्छी आदतों को जीवन में जरूर अपनाएं। तो किन आदतों को अपनाएंगे जिससे हम जीवन में सदैव खुश रहेंगे, चलिए दो पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। राह के पत्थरों से कुछ सीख ले ले, राह के पत्थरों से कुछ सीख ले ले, जिंदगी में काम आएंगे अनुभव के मेले। राह के पत्थरों से कुछ सीख ले ले, जिंदगी में काम आएंगे अनुभव के मेले। ठोकर खाकर भी खामोश दृढ़ है ये, ठोकर खाकर भी खामोश दृढ़ है ये, हसरत है इनकी दल दल से सभी को निकाले, हसरत है इनकी दल दल से सभी को निकाले। अच्छी आदतें जीवन में जरूर डालें, अच्छी आदतें जीवन में जरूर डालें। चरित्र निर्माण के लिए पांच घटक जरूरी है, आदत, शिष्टाचार, सद्गुण, जीवन मूल्य और संस्कार। चरित्र निर्माण तभी संभव है जब इन सभी घटकों को हम भली भांति पहचानेंगे और उनके समुचित विकास का प्रयत्न करेंगे। अतः चरित्र निर्माण के सभी घटकों पर मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। पहली है आदत। आदत चरित्र निर्माण का प्रथम घटक है मेरे प्यारे श्रोताओं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अच्छी आदतें जहाँ श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण में सहायक है, वही बुरी आदतें व्यक्ति को दुष्चरित्र भी बना सकती है। ऐसी स्थिति में हमें अच्छी आदतों को अपनाने तथा बुरी आदतों को त्यागने की आवश्यकता होती है। जो आदतें अच्छी है और जिन्हें हमें अपने आचरण का अंग बनाना चाहिए, उन आदतों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि समय पर जागना, शौच और हाथ मुंह धोना, स्नान और प्रार्थना, नाखून समय पर काटना, व्यायाम करना, समय सारिणी बनाना और उस पर अमल करना, स्वाध्याय अपना सामान निर्धारित समय पर व्यवस्थित ढंग से रखना, कचरा कूड़ेदान में डालना, प्रवेश द्वार से भीतर जाने और बाहर आने पर द्वार बंद करना, यातायात के नियमों का पालन करना, किए गए खर्च का विधिवत हिसाब रखना, खेल कूद में भाग लेना, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना, स्काउटिंग, एनसीसी, एनएसएस जैसी गतिविधियों में भाग लेना, कोई एक ललित कला सीखना, पुष्पों ध्यान लगाना, डायरी लिखना, प्रतिदिन के कार्यों की समीक्षा करना, वस्तु संग्रह, स्टैंप टिकट संग्रह, मुद्रा संग्रह वगैरह वगैरह, इस तरह 20 हस्तकला और 21 अभिनय कला वगैरह वगैरह। इन सभी आदतों की ये सूची सुझावात्मक है, संपूर्ण नहीं। ऐसे नहीं कि यही आदतें हैं, बहुत सारी आदतें हैं जिनको हम अपने जीवन में समावेश कर सकते हैं, लेकिन इन आदतों को जो मुझे याद आई वो मैंने आपको बता दिया कि इन आदतों को जीवन में डालना बहुत जरूरी है अगर हमें संपूर्ण स्वस्थ और संपूर्ण खुश रहना हो तो। अब समय पर जागना, हमें सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। भारत में ब्रह्म मुहूर्त में जागना उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2.5 घंटे पूर्व के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जागने के उत्तम समय के लिए कहा जाता है कि प्रातः 3 बजे के पहले नहीं और 4 बजे के बाद नहीं। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत पवित्र और शांत होता है। वायु शुद्ध रहती है, अच्छे विचार मन में आते हैं, पाठ जल्दी भी याद होता है और भूलता नहीं। तात्पर्य यही है।

मिला करके कि यदि सुबह जल्दी उठने की आदत डल गई तो बस पूरे दिन का हमारी जीवनचर्या अच्छी जाएगी, पूरे दिन हम खुश रहेंगे और जो भी पढ़ाई करेंगे वो अच्छी तरह याद भी रहेगी और सुबह सुबह श्रेष्ठ विचार भी चलते हैं। सुबह सुबह अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अच्छे विचार डालेंगे तो वो विचार पूरे दिन काम आएंगे, एनर्जी बनी रहेगी और हमारा मन उमंग उत्साह से बीतेगा। तो इस तरह समय पर अगर हम जागेंगे तब तो ठीक है, बाकी कहते हैं ना, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। जागने वाला, मेहनत करने वाला हमेशा ही प्राप्त करता रहता है अपनी मंजिल को, और सोने वाला सब कुछ खो देता है। तो अब किस तरह क्या करना है, सोने वाला बनना है या जागने वाला, ये आपके ऊपर छोड़ा। अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, अल्प विराम के बाद और भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की आदतें अगर हमारे जीवन में अच्छी बनी रहेगी तो जीवन में खुशियाँ आएगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप अभी सभी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हो और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि किस तरह अच्छी आदतें अगर हमारे जीवन में बनी रहेगी तो खुशियाँ आएगी और बुरी आदतों का नतीजा तो आप सभी जानते ही हो। चलिए दो पंक्तियों से आगे बढ़ते हैं। ज्वाला जलती है तो दाह निकलती है, ज्वाला जलती है तो दाह निकलती है, दिल जलता है तो आह निकलती है। ज्वाला जलती है तो दाह निकलती है, दिल जलता है तो आह निकलती है। बुरी आदतों के जल जाने पर, बुरी आदतों के जल जाने पर हर श्वास वाह वाह बनकर निकलती है, हर श्वास वाह वाह बनकर निकलती है। आदतों की बातें हो रही थी कि अच्छी आदतें अगर हम जीवन में डालेंगे तो जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। अच्छी आदतों की बातें चल रही थी तो एक मैं आपको छोटे से उदाहरण देना चाहूँगी कि एक बार किसान को तो आप सभी जानते ही हो कि सुबह सुबह भले वो सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो या पतझड़ हो, कोई भी मौसम हो, किसान कभी नहीं रुकता, हमेशा कर्म करता रहता है, मेहनत करता रहता है। तो इसी तरह एक किसान भाई से बातचीत हुई एक सेठ जी की। तो सेठ जी ने कहा, जब इतनी ठंड के दिन, बहुत ठंड पड़ रही थी और किसान का तो वही डेली की आदत, वो जल्दी से उठ करके खेत पे जाने लगा और इधर सेठ जी टहल के मॉर्निंग वॉक, जिसको टहलना कहते हैं, टहल करके आ रहे थे। तो दोनों का आमना सामना हो गया। सेठ जी वैसे किसान को रोज आते जाते देखते थे तो सेठ जी सोचते थे कि ये किसान हमेशा इतने सुबह सुबह जल्दी जा करके पता नहीं खेत पर क्या करता होगा, इतनी ठंड में भी ये ऐसे नहीं कि घर पे आराम करे। तो उससे रहा नहीं गया सेठ जी से और सेठ जी ने कहा, अरे किसान भाई कहाँ जा रहे हो? किसान ने कहा कि अरे सेठ जी मैं तो अपने खेत में जा रहा हूँ, और मैं कहाँ जाऊँगा। तो सेठ जी बोले कि किसान भाई तुम्हें ठंड नहीं लगती? इतनी सुबह सुबह अभी तो झाड़े का मौसम चल रहा है, इतनी सर्दी, सब तरफ ठंडी ठंडी हवा, और ऐसे मौसम में तुम खेत में जाते हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ऐसे नहीं कि थोड़ा आराम करके आराम से 11-12 बजे दोपहर को जाओ। तो किसान भाई क्या बोले पता है? किसान भाई बोले, ठंड ठंड ठंड क्या करते, ठंड क्या तुमको खाती, लकड़ बनकर पड़े रहो तो ऊपर होकर जाती। तो किसान ने एक अच्छा सा कॉमेंट सुबह सुबह मार दिया और बोले कि सेठ जी मैं तो अगर सो जाऊंगा तो दुनिया भूखी मरेगी, क्योंकि किसान का कर्म ही है निरंतर मेहनत करना। अपने खेत खलिहानों का ध्यान नहीं रखेगा, समय पर बीज नहीं बोएंगे तो दुनिया वाले क्या खाएंगे। तो सेठ जी, फिर किसान ने कहा कि सेठ जी आप कहाँ गए सुबह सुबह, आप मुझे तो बोल रहे हो लेकिन ऐसी ठंड में आप कहाँ गए? तो सेठ जी ने बोला कि देखो किसान भाई, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, थोड़ा शरीर फूल रहा है, मेरी बॉडी बन रही है, मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ, तो सोचा कि थोड़ा सा मैं मॉर्निंग वॉक करूँ तो ठीक हो जाऊंगा, यानी कि मैं थोड़ा सा टहल के आऊंगा, रोज टहलने की आदत डालूंगा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो किसान भाई ने कहा कि सेठ जी, चाहे अपने बारे में सोचो या देश के बारे में सोचो, सोच तो आप भी रहे हो ना, आप भी तो ठंड की परवाह नहीं करके कर्म कर रहे हो, भले अपने लिए सही लेकिन अपने लिए भी जागरूक तो होना कि मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आप अपने बारे में सोचते हो लेकिन मुझे तो पूरे देश के बारे में सोचना है, तो भला मैं कैसे सो सकता हूँ, मुझे नींद कैसे आ सकती है? तो प्यारे श्रोताओं, बिल्कुल सही कहा किसान ने कि अगर किसान सो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश की क्या हालत हो सकती है। इसलिए किसान कभी नहीं सोता, निरंतर मेहनत करता रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी आदत हुई ना, अगर ये आदत नहीं होती तो आप कल्पना कीजिए। इसलिए ज्यादा नकारात्मक नहीं सोचते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि अच्छी आदतों का जीवन में समावेश जरूर करें। कहता तो हर कोई है कि आप ये आदत डालिए, वो आदत डालिए, लेकिन करता कोई में से कोई ही है, कहते कोटों में से कोई और कोई में से कोई, बाकी कहने में क्या है, कहना और करना एक हो जाए तो फिर जीवन सार्थक हो जाए। और फिर समय पर हमको शौच, हाथ मुंह ये सभी धोना चाहिए ना, सुबह जागने के बाद सोच और हाथ मुंह धोने की आदत डालनी चाहिए। मुंह धोते समय दांत आंख नाक की सफाई भी की जानी चाहिए। यदि जागने के बाद ऐसा नहीं किया जाए तो आलस्य और सुस्ती बनी रहेगी। कोई काम प्रसन्न मन से नहीं हो पाएगा। शरीर में फुर्ती नहीं आएगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य का विस्मरण भी हो सकता है। और फिर अब आप सोच रहे होंगे कि उषा दीदी को क्या हो गया, बच्चों को समझाते ऐसे हमको समझा रहे हैं, क्या हम नहीं करते हैं? अरे प्यारे श्रोताओं, नाराज मत होइएगा। मैं जानती हूँ कि आप सभी बहुत एक्टिव है और सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि जितने जितने हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो कुछ आलसी होते जाते हैं। फिर हम अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते हैं कि बेटी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सोच वोच से निवृत्त होकर के स्नान आदि करना चाहिए। हम अपने बच्चों से कहते हैं, लेकिन बच्चे किन से सीखेंगे? वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को देखेंगे ना, कि हमारे माता पिता जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो अमल कर रहे हैं या नहीं। इसलिए प्यारे श्रोताओं, मैं आपसे इसी वजह से कह रही हूँ कि पहले आप अपने आप में परिवर्तन। अगर आप सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, इन सभी बातों को अमल करते हो, तब तो बच्चों को इजी वे में शिक्षा दे सकते हो और बच्चे भी आपको ही फॉलो करेंगे। लेकिन हम सिर्फ अपने बच्चों को कह रहे हैं और अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ही सोचिए कि बच्चे कैसे फॉलो करेंगे। और फिर हम अपने बच्चों को डांटते कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। अरे वो बात कैसे सुनेगा जब वो घर में देख ही नहीं रहा है वो वातावरण। सिर्फ कहने से थोड़े ना वातावरण चेंज हो जाता है। वातावरण को चेंज करने के लिए माता पिता को, जो घर में मुखिया है, उनको चेंज होना पड़ता है। एक अच्छी सी बात मुझे याद आ रही है कि मैं मंदिर जाती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि एक दादी के साथ छोटा सा पोता आता है और वो जैसे दादी दंडवत करती है ना भगवान को, ऐसे वो बच्चा हूबहू प्रैक्टिकल उनको अमल करके बिल्कुल पूरे लेट जाना और पैर के ऊपर पैर चढ़ाना, दोनों हाथ लंबे करके, हाथ को जोड़ के, सिर को नीचे करके बिल्कुल दंडवत करता है। राम स्नेहियों में आप सभी को पता होगा कि इस तरह दंडवत किया जाता है भगवान को, गुरु जी को। तो इस तरह दादी दंडवत करती थी। तो छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 4 साल की है, बस दादी को देख करके वो भी रोज, उसकी भी आदत हो गई, भले दादी करे नहीं करे, फिर वो बच्चा करने लग गया। तो मैं सोचती थी कि अरे पहले तो ये दादी को देख देख के करता था, अब तो दादी से पहले ही वो दंडवत करना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा, अरे बेटे आपको ये दंडवत करना किसने सिखाया? तो बोले कि दादी जी से सीखा, दादी जी रोज दंडवत करते हैं तो मैंने भी सीख लिया। तो प्यारे श्रोताओं, उस छोटे से बच्चे से मुझे ये शिक्षा मिली कि बच्चे बड़ों से ही शिक्षा धारण करते हैं। भले आप बाद में अपनी थोड़ी दिनचर्या को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बच्चों ने जब आपको देख लिया है कि जो शिक्षा आप दे रहे हो उस पर आप अमल कर रहे हो, तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। और जब बच्चों की डेली की आदत हो जाएगी, फिर अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए तो भी बच्चों की आदतें अच्छी ही बनी रहेगी। इसलिए प्यारे श्रोताओं, आदतों को हमेशा अच्छी बनानी है, जीवन में हमेशा खुश रहना है। अच्छी आदतों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा ही हमारा जीवन चरित्रवान बन सकता है और परिवार में खुशियां बनी रह सकती है। तो अब लेंगे यहाँ पर एक अल्प विराम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
2: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी।

0: आशिया।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आइए, अब समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज आशियाना के किचन में बनने जा रही है खट्टी मीठी चूरन गोली। चूरन गोली तो बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, और चूरन गोली खाने से पेट अच्छा साफ रहता है, कोई गड़बड़ नहीं होती। तो आइए, खट्टी मीठी चूरन गोली के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। पेन और डायरी तो आप अपने हाथ में ले ही लीजिएगा, और जो मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ लिखिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। बाहर से हम खरीदते हैं, लेकिन घर पे बना करके खाने का मजा ही अलग है। तो सामग्री लीजिएगा, अनारदाना आधा कप, ठीक है, फिर अजवाइन 2 छोटा चम्मच लेना है, 2 छोटा चम्मच जीरा भी ले लीजिएगा, काली मिर्च भी लेनी है 2 छोटे चम्मच, फिर आपको 1 छोटा टुकड़ा लेना है सौंठ का, ठीक है, फिर आमचूर 2 बड़े चम्मच लीजिएगा, काला नमक 1 छोटा चम्मच लेना है, और 2 तार की चाशनी 2-3 बड़े चम्मच, ठीक है, फिर चुटकी भर हींग लीजिएगा, और पीसा हुआ जायफल 1/4 छोटा चम्मच। तो ये हो गई चूरन गोली की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपका कहीं बाकी रह गया हो तो एक नजर डाल दीजिएगा। अनारदाना आधा कप, अजवाइन 2 छोटे चम्मच, 2 छोटे चम्मच जीरा लीजिएगा, फिर आप मिर्च भी, काली मिर्च भी लीजिएगा आप 2 छोटे चम्मच, सौंठ लेनी है 1 छोटा टुकड़ा, आमचूर 2 बड़े चम्मच लीजिएगा, काला नमक 1 छोटा चम्मच लीजिएगा, फिर 2 तार की चाशनी लेनी है 2-3 बड़े चम्मच, चुटकी भर लेना है आपको पिसी हुई हींग, और जायफल 1/4 छोटा चम्मच पिसा हुआ। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहेंगे आप आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: आशियाना के किचन में आप सभी का पुनः स्वागत है। अल्प विराम के पहले मैं आपको खट्टी मीठी चूरन गोली की सामग्री लिखवा रही थी, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। एक नजर डाल दीजिएगा, फिर खट्टी मीठी चूरन गोली कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। अनारदाना, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, सौंठ, आमचूर, काला नमक, चाशनी, हींग, जायफल, ये सारी सामग्री तो है खट्टी मीठी चूरन गोली के लिए। और आइए अब ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले अनारदाना, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, सौंठ, इन सबको आप हल्का सा सेक लीजिए और बारीक फिर इसको पीस लेना है, ठीक है। फिर अब आप कढ़ाई में तैयार चाशनी, पिसा हुआ अनारदाने वाला मिश्रण और आमचूर, काला नमक, हींग और पिसा हुआ जायफल डालिए और सभी को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। फिर इसे धीमी आंच पर लगातार आप हिलाते हुए पकाइए। लगातार आपको धीमी आंच पर हिलाना है, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो चिपक जाएगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा, इसलिए लगातार आप हिलाते रहिए। फिर जब मिश्रण एक जगह इकट्ठा होने लगे ना, तो बस गैस बंद कर दीजिए और तैयार मिश्रण से छोटी छोटी गोली बना करके इसे सूखे आमचूर में लपेटिए। फिर तैयार खट्टी मीठी चूरन गोली को स्टोर करें। तो ये बन गई हमारे खट्टी मीठी चूरन की गोली। पुनः मैं इसकी विधि को दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अनारदाना, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, सौंठ को इन सभी को हल्का सा सेक लीजिए और सेक करके बारीक पीस लेना है। अब आप कढ़ाई में तैयार चाशनी, पिसा हुआ अनारदाने वाला मिश्रण जो हमने अभी तैयार किया है ना, इन सभी को अंदर आमचूर, काला नमक, हींग, पिसा हुआ जायफल डाल दीजिए और इसे धीमी आंच पर लगाते हुए पकाइए, ठीक है। जब मिश्रण एक जगह इकट्ठा होने लगे ना, तो बस गैस बंद कर दीजिए। तैयार मिश्रण से छोटी छोटी गोली बनाकर इसे सूखे आमचूर में लपेटिए। तैयार खट्टी मीठी चूरन गोली को स्टोर करें। इस तरह आप अच्छी तरह गोलियां बना करके फिर इस तरह गोलियां तैयार हो जाए तो आप कांच की बोतल में भर दीजिएगा। तो इस तरह खट्टी मीठी चूरन गोली बनाई जाती है। घर पर बना करके आप अपने बच्चों को खिला सकते हो, लेकिन रुकिए, खिलाएंगे तो जरूर लेकिन भोग तो लगाएंगे ही, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें बनाते हैं उनका भोग एक बार इष्ट देव को लगाना, परमात्मा को लगाना बहुत जरूरी है। तो निकालेगा आप एक छोटी सी डिश में ये चूरन गोली और तुलसी पत्र रखिएगा अंदर, ऊपर से स्वच्छ कपड़ा ढक के आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप बच्चों को खिलाइएगा खट्टी मीठी चूरन गोली। साथ ही साथ लेंगे एक छोटा सा विराम, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।
2: समय रसागे उदय सिंगी मोटियार होवणदा के वारी रजपूती मरोड़ और सांगारी शक्ति उदयरे बाजुओं में देखणदा के उठी ने मेवाड़ री प्रजा सामंत और जागीरदार बनवीर रे आतंक सु घणी धापियोड़ी ही दुखी हुई। छेवट मेवाड़ और मारवाड़ रा कई मानिता सरदार भेड़ा होयर गुप्त मंत्रणा करता हा। उन समय उन्होंने ठा पड़ी कि मेवाड़ी सूरज उदय सिंह जिंदा है। पन्ना रे बलिदान री बातां घर घर होवण लागी। जद मेवाड़ रा सरदार ने पतो लागो कि उदय सिंह आशा शाहरे घरे है, तद सरदार चूंडावत, सरदार महीदास, केलवारा सामंत जग सिंह, बागोर सरदार सांगा, सोनगढ़रा अखय सिंह और सांचोरा सरदार पृथ्वीराज भेड़ा होयर कुंभल मेर गया। सगड़ा मिलुर उदय सिंह रो राज तिलक करियो। एण अवसर माथे सोनगढ़रा शासक अखय सिंह आपरी बेटी रो ब्याह उदय सिंह जी साथे करियो।

गौरवशाली गुजरी उदय सिंह रखवाल माँ ममतारी मूर्ति तू शक्ति प्रण पाल तू शक्ति प्रण पाल बलिदानी मायड़ थारो जीवन गीता सार पन्ना धाय पड़के है सूरज रे उणियार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में आज जानेंगे कि डेंगू के मरीज को खाने को क्या क्या देना चाहिए। आज इस बारे में जानकारी देंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। आपके घर में कोई डेंगू का मरीज है, या फिर आप डेंगू से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। डेंगू में तेज बुखार, जोड़ों और सिर में दर्द, त्वचा पर लाल चकते जैसी समस्याएं हो जाती है। खान पान की कुछ चीजों से इस बीमारी से उबरने में काफी मदद मिल सकती है, इसलिए मैं आपको खाने पीने की चीजें बता रही हूँ कि किस तरह की चीजें आप डेंगू के मरीज को देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको संतरा के बारे में बता रही हूँ कि संतरे में भरपूर मात्रा में जरूरी पोषक तत्व और विटामिन होते हैं। संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। संतरे में मौजूद फाइबर इस बीमारी की वजह से हुई अपच से लड़ने में मदद करता है। इसका जूस या फिर फाके मरीज को खाने को दीजिएगा। पपीते में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। बहुत सारे शोध ये साबित कर चुके हैं कि पपीते का बीज एडिस मच्छर के लिए जहर का काम करता है। डेंगू के मरीजों में पपीते के सेवन से प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। मरीज को पपीते की ताजी पत्तियां पीसकर उसका रस दिन में दो बार देना चाहिए। दलिया पूरी दुनिया में नाश्ते के तौर पर खाया जाता है। इसमें फाइबर और पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और इस बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। दलिया आसानी से निगला जा सकता है और पच भी अच्छी तरह जाता है, इसलिए डेंगू के मरीज को दलिया खाने को दीजिएगा। नारियल पानी। डेंगू से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी में भरपूर मात्रा में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसे लेने से शरीर में तरल पदार्थ का स्तर बना रहता है, इसलिए नारियल पानी को मरीज के डाइट में जरूर शामिल करिएगा। फलों का रस। विटामिन सी काफी असरकारी एंटीऑक्सीडेंट है। यह कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। संतरा, अनानास, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और कीवी खून में लिम्फोसाइट्स के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जो कि वायरल संक्रमण से लड़ते हैं। हर्बल टी। हर्बल चाय से भी डेंगू बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। इलायची, पुदीना या अदरक वाली हर्बल चाय पीजिए। अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स लिए होती है। हर्बल चाय को यूफोरिया हिरता या अस्थमा प्लांट के साथ बनाकर पिलाइएगा। सब्जियों का रस। डेंगू के मरीज को सब्जियों का ताजा रस निकालकर दीजिए, जैसे कि गाजर, खीरा और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां डेंगू के लक्षणों से लड़ने में सहायक होती है। इन सब्जियों में जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां औषधि गुण के लिए जानी जाती है। ये डेंगू वायरस टाइप 2 को बढ़ने और फैलने से रोकती है, इसलिए ये डेंगू की बहुत ही अच्छी प्राकृतिक दवा है। इसलिए नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर रोगी को दीजिएगा। घर में नीम की पत्तियां जलाए ताकि मच्छर न हो पाए। तो प्यारे श्रोताओं, ये हुई डेंगू के मरीज को अगर डेंगू के शिकार हो चुके हैं तो उनको क्या क्या खाने को देंगे, ये सारी जानकारी मिली है। अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं हूँ माया कालसी और आप सुन रही हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए।
1: प्यारे श्रोताओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो आज के महावाक्य इस प्रकार है, बुरे के साथ बुरा मत बनिए, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है क्षमा मुक्ति का द्वार। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, क्षमा गणी सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। क्षमा मुक्ति का द्वार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है, यही रास्ता है शांति का, यही मंत्र है क्रांति का। क्षमा किनारा है बदला मझधार, क्षमा किनारा है बदला मझधार, क्षमा मुक्ति का द्वार है। अभिमान से ऊंचा है जिसका सर, अभिमान से ऊंचा है जिसका सर, उसे भी दोस्त क्षमा कर। अभिमान से ऊंचा है जिसका सर, उसे भी दोस्त क्षमा कर। तेरा क्षमा से ही सरोकार, तेरा क्षमा से ही सरोकार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। मन की बातें कह दो भगवान को, मन की बातें कह दो भगवान को, उसी क्षण वो बदल देगा तेरे जहान को। यह अमृत की धार है, यह अमृत की धार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। न दोष देना किसी को कभी, न दोष देना किसी को कभी, अपने हालात तुम बदलो अभी। न दोष देना किसी को कभी, अपने हालात तुम बदलो अभी, ये परिवर्तन का आधार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। अपने दर्द को जानो, कार्य करो, अपने दर्द को जानो, कार्य करो, स्वयं में परिवर्तन कर आर्य बनो, स्वयं में परिवर्तन कर आर्य बनो, इसमें जहर का उतार है, इसमें जहर का उतार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। क्षमा करते ही अच्छा महसूस करो, इसी से अपना जीवन महफूज करो। क्षमा करते ही अच्छा महसूस करो, इसी से अपना जीवन महफूज करो। ये सुखों का संसार है, ये सुखों का संसार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। ये बड़े फायदे का सौदा है, क्षमा बड़ा ऊंचा ओहदा है, ये बड़े फायदे का सौदा है, क्षमा बड़ा ऊंचा ओहदा है, ये बड़ा सुंदर श्रृंगार है, ये बड़ा सुंदर श्रृंगार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है।
2: एक बैरबानी आपका गरगदड़ी ने कहवा लागी, बोला जी आजकल डिगी पति महाराज को मेलो भर रो छे, बोले मन मेला में ले चलो। तो बोला के चल, तो काई में बैठ चला, बोला जीप में चला, बस में चला, काई में चला। बेरबानी बोली के मैं तो जीप में कौन बैठू साहब, आजकल भीड़ बहुत चल रही है। तो काई में बैठे के मैं तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल पे बैठू। तो देखो कहीं करीजे, आ गया तैयार जावा भी डिग्गी के।

को तेल बीत को गेला में देखो कहीं बात बने बेरबानी केबल लगी केबला तेल तो गला ले होंडा में तो क्या गलावे देखो अरे नतड़ी बेची मारी पायल बेच दे अरे डोला तेल

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या है ऐसी बातें जिसे हम कहे जीना इसी का नाम है। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं और उसको हम कैसे सामना करते हैं उसे हम आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं और उनका जीवन एक आदर्श बन जाता है। चलिए कुछ ऐसे ही अनुभवों से और उदाहरणों से आज हमारे बीच में है आदरणीय गंगाधर बाई जी। आप पिछले 5 दशकों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 4 दशकों से अधिक समय से अब अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में गंगाधर बाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन का भी बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत।
1: शुक्रिया भाई जी। हम सबसे पहले आपकी वो जर्नी जानना चाहेंगे जो आपका बचपन है, कहाँ पे बीता, आपकी मात पिता क्या कर रहे थे, आपकी जो लौकिक जीवन है और फिर वहाँ से अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे आई।
2: मेरा जन्म एक छोटे से गांव गुजरात में भुज कच्छ में नखत्राणा में हुआ और बचपन में हमारे जो घर में एक स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे हम सभी। हम गीता पाठी थे और हमारे घर में हमारे पिताजी और हम सभी कुटुंब में बहुत अच्छा एक नियम था कि गीता का पाठ पठन करना है और पाठ पठन करने के बाद ही भोजन मिलता था। तो हमें भी वो नेचुरली वो संस्कार, हमें वर्षे के रूप में भगवान को याद करना और उसके बाद ये भोजन करना, ये बचपन से ही संस्कार। और फिर हमारी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के बाद मैं एसएससी तक, एसएससी मैंने टॉपर किया गुजरात में ही। गुजरात से फिर मैं वहाँ से जाना हुआ, हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में फिर अहमदाबाद के पास में एक धनसुरा करके गांव है आज मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट के बाद में, तो वहाँ हम रहे और वहाँ टॉपर करके फिर अचानक हम व्यवसाय हमारा नागपुर में था, परिणाम स्वरूप मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और पहले मेरा कॉमर्स साइंस था, फिर मैंने कॉमर्स किया क्योंकि व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय का भी काम संभालते थे और पढ़ाई भी पढ़ते थे। ऐसे में भक्ति मार्ग का जो संस्कार था कि हम वहाँ पर एक केंद्र चलता था स्वाध्याय परिवार का, जो पांडुरंग आठ वाले जो बॉम्बे में उसका मेन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर जब हमारे घर में कोई ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन हमारे गांव में ही पूरे ऐसी शिक्षा नहीं थी, जो अपने जो भी खेती बाड़ी का वो सारा व्यवसाय करते थे, लेकिन मैं ही एक ऐसे, मेरे को बहुत रुचि थी पढ़ाई में तो मैं फिर वहाँ जाके पढ़ाई भी किया और साथ साथ धंधा।
1: उस दौरान घर में आप अकेले थे या आपके और भाई बहने भी थे?
2: हाँ, घर में हम 4 भाई और 3 बहने हमारे पिता के संतान थे और मैं सबसे छोटा था। और हाल ही में हमारे कोरोना काल के दरमियान हमारे 2 साल में 3 भाइयों ने शरीर छोड़ा। माता पिताजी ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया और व्यवसाय भी चल रहा था तो, और मैं तो यहाँ आ गया था और सभी अच्छे व्यवसायी घराने के, अभी एक उसके बच्चे हैं, सभी व्यवसाय करते हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई व्यवसाय किसी का नागपुर में और कोई एक में फार्म हाउस है जहाँ गुजरात में,
1: मतलब सभी बिजनेस करते।
2: हाँ, सभी बिजनेस करते हैं। और हम गीता पाठी होने के कारण हम वहाँ फैक्ट्रियों में जहाँ हमारा व्यवसाय था तो बुधवार की छुट्टी रहती थी और वो छुट्टी रहने के कारण हम लोग गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक घर में जाते। हमारे एक उसको भाई कहते, जो हमारा बड़ा लीडर था तो वो भाई कहते थे उसको, स्वाध्याय परिवार में भाई कहते। तो बहुत अच्छा था और हम लोग प्रचार प्रसार के लिए

ये हर बुधवार को वहां जाके गीता के बारे में प्रसार प्रसार करना, बताना, ये सब करते थे। लेकिन ऐसे में भक्तिभाव तो थी और हमें समाज में हमारा बहुत नामाचार भी था, क्योंकि हम पढ़ाई भी पढ़ते थे और भगवान का नाम लेते थे, तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि ये तो बहुत अच्छे लड़के हैं, देखो भगवान का नाम लेते हैं, गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे में फिर एक समय ये हुआ, अच्छा लगता था, लेकिन जब एक दिन में शाम को करीब 6-7 के बजाय होगा, मैं एक ऐसे जा रहा था तो वहाँ एक छोटा सा एक जिसको ब्रह्मा कुमारी इसकी पाठशाला कहते हैं, पाठशाला के रूप में वहाँ था, जहाँ हम रहते थे उससे दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। तो वहाँ लिखा था कि अभी दुनिया का परिवर्तन होगा और सत्ययुग आएगा, और ऐसे स्वस्तिक का चित्र बना हुआ बाहर में ऐसे बड़ा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ ज्योतिषी वगैरह होंगे, तो मैं 7 बजा था तो जा रहा था, अंदर कुछ लोग बैठे थे, लाल लाइट लगी हुई थी और अंदर 30-40 भाई बहने होंगे और वो योग कर रहे लाल लाइट में, और बड़ा अच्छा। पहले ही जैसे मैं प्रवेश कर, और बहुत पुराना घर था, जैसे जर्जरी भूत के अवस्था में, लेकिन अंदर क्लास अच्छा चल रहा था, तो मैं भी पीछे बैठ गया। बैठ जाने के बाद थोड़ा टाइम हुआ, 2-3 मिनट ही हुआ होगा, और लाल लाइट में से वाइट लाइट हो गई, और सामने एक भाई था जो बैठा था संदली पर, तो उन्होंने उठा तो सब जाने लगे, तो मैं भी जाने लगा। तो संदली पर जो भाई था, जिसका नाम गजानन भाई थे, अभी भी है वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे आप कहाँ से आए हो, जैसे नए कोई आते हैं तो पूछते हैं ना, तो मुझे भी पूछा कि आप क्या करते हो, किस लिए आए हो, क्या है, जो भी है। और मेरे को बोले आपको 5 मिनट थोड़ा हमें टाइम दीजिए, मैं ये हमारा ये चित्र लगा है वो, मैं क्योंकि दीवारों में चित्र लगे थे जिसको ब्रह्मा कुमारी का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम में वो चित्र है वो सारा लगे हुए थे, तो बड़े व्यवस्थित लगा हुआ था, एक आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, फिर सर्व आत्माओं का पिता, उसके बाद झाड़, उसके बाद सीढ़ी, और इस तरह से लगा हुआ। तो मुझे वो समझाने लगे, तो पहला तो आत्मा, चलो आत्मा ठीक है, फिर परमात्मा का परिचय दिया, वो भी ठीक है, क्योंकि चित्र में स्पष्ट दिखता भी था और हम भी गीता पाठी होने के कारण वो सारी हमें समझ में आती थी बात। फिर आगे जाके ऐसे चलते चलते झाड़ का, ये सृष्टि का उत्थान पतन की कहानी, सीढ़ी में जो भारत कैसे ऊंचा था, बनता है, नीचा होता है, ये सारी बातें आई। फिर एक बहुत सुंदर चित्र हमारे मेरे मनपसंद का आया, जिसमें एक गीता के बारे में लिखा, मनपसंद का आया जिसमें एक गीता के बारे में लिखा था, उसमें लिखा था गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। तो जब ये बात आई तो हम गीता पाठी होने का मेरा ध्यान वहाँ गया, और उसमें बहुत सुंदर चित्र बताया हुआ कि एक परमात्मा की किरणें आ रही है, नीचे एक शक्ति दल खड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ है, और ऐसे सामने में राक्षस जा रहे हैं इस तरह से। तो वो बड़े चाव से बताने लगा कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कोई युद्ध नहीं है, ये तो हिंसक है। भगवान अगर हिंसक का ज्ञान देता है या समझ देता है तो फिर हिंसा करने वाले को तो कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बात मुझे अपील की, भाई अहिंसक युद्ध। फिर उन्होंने सारी बातें कही कि जो हम मन से जो सोचते हैं, देखते हैं और जो करते हैं, जो विकृत मानसिकता को लिए हुए चलते हैं, इसको भी हिंसा कहते हैं। ये बात मुझे ज्यादा अपील करी, और मुझे तुरंत याद आया कि हम तो गीता पाठी है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हम एक घर चॉइस करते थे और वहाँ गीता ज्ञान करने जाते थे, तो एक तरह से हंसी की बात तो ये हुई कि समझ में आई कि मुख मेरा बगल में छुरी वाला काम हम करते थे, कि मन में हमारी कुछ विकृत भावना, क्योंकि हम यंग थे तो विकृत मानसिकता लेकर भगवान का मुखोटा लेकर हम ज्ञान देने जाते, ताकि लोग समाज में हमारा अच्छा नाम था। ओके, उसके बाद ये बात जैसे ही पकड़ में आई तो फिर मैंने फिर सारा समझा के 5 मिनट में बोले आप आओ 7 दिन का कोर्स करिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो बोले कि आप आधा आधा घंटा भी आइए, ये हम सारा समझा देंगे। फिर मेरे को एक किताब

0: उसने, उसमें उस टाइम वो 3-4 रुपए की वो किताब थी, पथ प्रदर्शन, जो ब्रह्मा कुमारी का बेसिक कोर्स की समझानी है उसमें, तो वो मुझे दिया। तो मैं फिर लेके गया घर, कि पढ़ाई तो करते थे, तो रात को जैसे ही उस किताब को मैंने लेके पढ़ने लगा तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बात तो सही है। अब भूल कहाँ हो रही है, ये बात मन में गूंजती रही, अरे यार ये तो मेरा मन में अंदर एक है, बाहर एक है, ये बात बहुत खटकती रही। भगवान के नाम से मेरा पाप हो, भगवान के नाम से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे श्रापित करेंगे, तो ये बात रात को।
1: ये क्यों लगा आपको?
0: मुझे इसलिए लगा क्योंकि भक्ति मार्ग में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में हम स्थूल रूप में सब करते हैं, और स्थूल रूप में जैसे तिलक लगाया, थोड़ा सा अच्छे मीठा बोल बोला, तो लोगों को लगता है कि भक्ति भाव वाला आदमी है, तो लोगों की श्रद्धा होती है, तो हमें आदर सत्कार से देखते हैं। लेकिन ये जैसे ही फिर मैंने ये बात आई कि भाई ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, तो फिर मैंने 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया, लेकिन ये सारा अच्छे से फिर से पढ़ा, ऐसे 2-3 दिन पढ़ा, और पढ़ने में ये बात समझ निष्कर्ष तक पहुंचा कि नहीं, आज के बाद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: मतलब इनसाइड आउट होना चाहिए, हाँ, जो अंदर है वही बाहर।
0: अभी
1: एक मुखौटा पहन करके नहीं,
0: मुखौटा पहन कर देने से तो खुद को भी धोखा है और समाज को भी धोखा है, और एक अच्छा कर्तव्य नहीं मानेंगे। तो ये जो बातें आई सामने, उसके बाद मैंने स्टडी करके, कोर्स तो करने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारा व्यवसाय था, तो सुबह सुबह फैक्ट्री खोलनी है और फिर शाम को लेट होते थे, तो इस तरह से, और दिन में कॉलेज जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ये करना चाहिए, ये ठीक नहीं। ये मन में अंदर ही से विचार आया और अंदर दृढ़ किया, नहीं अभी मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये जीना चाहिए। संस्कार थे भक्ति भाव के, तो फिर ये ज्ञान मिला, और ज्ञान को फिर उसको श्रवण करने लगे और समझ में आया, तो अब बड़ा एक ये ज्ञान ऐसा रियल में जीना जीवन तो बड़ा चमत्कारिक है, जैसे जीवन एक मृदुभाषी जैसा हो जाता है, बहुत साइलेंटली चलना, अनावश्यक चीजों को अपने आप ही दरकिनार हो जाती है।
1: सो जिस तरीके से आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से वही गीता पाठी भक्ति मार्ग में करते हुए भी आपको दोनों में अंतर समझ में आया, और प्रैक्टिकली लाइफ क्या है, प्रैक्टिकली गीता क्या है, वो आपको समझ में, तो गए तो आप अकेले, और वो स्वस्तिक ने आपको अट्रैक्ट किया और ज्योतिष समझ करके गए, फिर जब आपकी घर में ये पता चला कि आप आश्रम में जाते हैं, तो फिर आपके भाई बहने, आपके परिवार वाले इसको स्वीकृति दी या फिर?
0: ये बड़ी कहानी है, बहुत मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं कहा न कि जैसे उसमें चलते थे तो समाज में हमारा बड़ा नाम और आदर थे, और लोग हमें बड़े चाव से बड़े प्यार भी करते थे, सम्मान भी मिलता था। कहते हैं ना, जब दुनिया की जिस हवा चलती है उस तरफ चलते हो तो जमाना आपको साथ देता है, लेकिन जब खुद को जानने के खुद से चलने लगे तो जमाना सारा विरोध हो जाता है। बस वैसा ही मेरे जीवन के साथ घटा, तो हम चलते थे, लेकिन अब उस समय काल में ब्रह्मा कुमारी के सेवाएं इतनी ना होने के कारण मिस भ्रांतियां बहुत थी, तो और हम ये चलने लगे, रेगुलर मुरली सुनने लग गए, तो बाबा की जो मुरलियों बड़ी जादुई है, जादुई इन द सेंस बड़ी स्पष्ट है, जैसे कि दर्पण है, तो वो बहुत खिंचाव होता था बाबा का क्लास और योग ना करे, वो जैसे कि अंदर से जैसे बेचैनी होती थी, मतलब तो
1: परमात्मा को याद करना
0: महावाक्य सुने बिना मना बेचैनी। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें या तो शाम को क्लास होता है या तो सवेरे अर्ली अर्ली होता है, योग भी अर्ली अर्ली होता है, और हमारा भी समय था, वो भी कारखाना खोलना जो भी है व्यवसाय का, लेकिन बाबा की खींच ऐसी होती थी कि हम मुरली सुने बिना तो रह नहीं सकते थे, तो अब क्या करें। तो और ये जीवन में जब ऐसा धारणा हुई और चलते रह गए और पढ़ाई करते थे, तो मेरे जो दोस्त साथी थे तो उसके साथ भी बैठना उठना होता था, लेकिन वो लोग होटल में खाना फिर वो करना, मैं बोला मुझे भूख नहीं, मेरे पेट में ऐसे मैं अवॉइड करता था, मन में ये था कि नहीं मुझे नहीं, क्योंकि परमात्मा मुरली में ये बताते थे कि अन्न वैसा मन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये बहुत स्पष्ट आता था। और करी करी इसी टॉपिक पर 10-10, 15-15 दिन वही मुरली की धारा चलती। इसलिए आप भगवान की सुने, निश्चय हो गया तो फिर
1: जी। तो अभी भी वो लोग आपको विरोध करते हैं या फिर वो सहयोगी है आपके?
0: विरोध तो बहुत हुआ, ये बात थोड़ी मैं अगर जी तो मैं बता दूं, तो ये जब प्रत्यक्ष हुआ तो अभी ये ज्ञान में चलने से ये सारी नकारात्मक जो प्रवृत्ति है जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो कहीं कहीं घर वालों को ऐसा लगा, अरे ये तो पढ़ा लिखा बच्चा हमारा, किसी ने कुछ जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया ऐसे करके। तो हमारा बड़ा भाई के साथ, हाँ हमारे एक पिताजी तो गुजरात में रहते थे, फिर कभी आते थे कभी जाते, तो बड़े भाई ने हमारे पीछे CID लगाई थी।
1: अच्छा।
0: तो CID ये लगा दी कि उनको थोड़ा लगा कि थोड़ा ये हमारे अनुसार तो इनका जीवन नहीं दिख रहा है, बड़ा साइलेंट रहता है और अपने में मस्त रहता है। तो कहते हैं ना कि इसका स्क्रू ढीला हो गया। तो उसी तरह से एक मान्यता होने के कारण उसका भी अच्छा स्नेह था। स्नेह इसीलिए कि कोई भी बड़ा है जो जहाँ हम गार्डियन है, वो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे का इस तरह से कुछ हो जाना। तो उसने तहकीकात करने के लिए ऐसे लगा दिया 4-6 लोगों को और फिर ये सब चीज़ें। लेकिन वो सुबह सुबह मैं जाता था तो पता तो चल जाता था सुबह कहीं जा रहा है, तो पीछे पीछे पता है, वो तो सोए रहते थे, मैं निकल जाता था। 6:30 से 7:30 मुरली चलती, तो 6:30 के पहले 6 बजे योग में जाना होता, आधा घंटा बैठना है। तो मना मैं 4:30-5 बजे स्नान पानी आदि करके, तो ये लोगों को अलग लगता था, वो लोग सोए और मैं तैयार होकर चला जाता, तो वो बदलाव उसको पता चला। तो बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया कि उनको पता चल गया कि ये तो ब्रह्मा कुमारी। तो ये कहते कि ब्रह्मा कुमारी ये कौन सा धर्म है, ये तुम, हम तो लक्ष्मीनारायण के वंशज है, हम लक्ष्मीनारायण की पूजा करते हैं। हमारे घर में अगर आप यहाँ से कच्छ के साइड में जाओगे तो वहाँ हर गांव में लक्ष्मीनारायण के बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, तो लक्ष्मीनारायण का ही हम वंशज है, तो लक्ष्मीनारायण की पूजा करना चाहिए देवी देवताओं। तो उस तरह से चलता था। तो फिर ये तो बदलाव आ गया, तो उन्होंने फिर मेरे को बाधित करने की कोशिश की। लेकिन बाबा की ये बात मैंने, वो जो हमें मुरली सुनाते थे, उस भाई को बताई कि हमें ऐसा विरोध करते हैं और इस तरह से बात है, और यहाँ तक भी नहीं रुके, मारपीट भी करते, छोटा थे और वो उसका हाथ, तो हमें जब वो मारते थे हमें बाबा की महावाक्य याद आते कि किसी का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पिताजी आपको बंधन है, तो उनका चश्मा जिस परंपरा से जिए उससे थोड़ा अलग दिखते हैं, तो उनको वो भाव से कि भाई इनका कल्याण ना हो, बड़ा हो कि भाई इनका जीवन खराब ना हो, तो उस भाव से करते। तो हमारे मन में मारते थे थोड़ा बहुत, तो हमें बुरा नहीं लगता था, कुछ बोल दिया थोड़ा अपशब्द कह दिया वो कर दिया, तो मतलब वो तकलीफ नहीं होती थी। तो हमें वो बाबा कहते वो राम की भावना रखो, इनको पता नहीं हमें कौन मिला है, वो ज्ञान ऐसा जैसे कि हमें तो भगवान मिला है, हम भगवान को जान गए, ये तो अभी तक ये भक्ति मार, इस तरह से मन में आ जाता था और गुस्सा रिएक्ट नहीं करते। परिणाम स्वरूप ये बढ़ता गया। फिर हम जो हमारी समाज है जो पटेल कास्ट, तो वहाँ क्या हुआ कि हम लोग पढ़ाई करते थे, तो अब घर में उठ के तो विघन बढ़ते गए, बहुत मारपीट तक आ गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे सारे समाज में हमारी वॉच रखने की कि भाई ये तीनों को मिलने नहीं देना। तीन भाई थे, तो आपको मेरे पूर्व में आपको आप जानते होंगे कि हम वसंत भाई करके थे जो संगम भवन में, वो भी नागपुर से थे, और ऐसे एक रामजी भाई करके थे, हम तीन कुमार निकले, और बड़ा नशा था बाबा के ज्ञान के लिए। तो अब क्या करें, तो हमारे बीच में सबको एक अनाउंसमेंट कर दिया कि ये तीनों अगर मिलते हैं पढ़ाई के नाम से, हम घर में नहीं सोने के बदले हम बाहर सोने लगे, मना फैक्ट्रियों में एक रूम होता था, तो हम वहाँ सोते थे, क्योंकि हमने बहाना बनाया कि हमें पढ़ाई करना है, तो हम रात को पढ़ाई करते हैं तो हम वहाँ सोएंगे, फिर सुबह आएंगे नाश्ता पानी। लेकिन हुआ क्या, बहुत वंडरफुल बात ये हुई कि हम पढ़ाई के नाम से जो भाई ने हमें गाइडेंस दिया था, तो कि जो अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो आपको 2 से 5 योग करना, तो तो तुम्हारे विघ्न सारे भगवान खत्म कर देंगे। ये भाई हमने गीता पाठशाला जो चलाते थे उन्होंने बताया। अब 2 से 5 योग करना है तो हमने ये बहाना बनाया कि हम घर में नहीं रहेंगे, पढ़ाई के अर्थ वो उनकी फैक्ट्री में रहता था, वो उनकी फैक्ट्री में ना मैं मेरी फैक्ट्री, ऐसे करके सुबह 2 से 5 योग स्टार्ट किया। और कहाँ करते थे? गीता पाठशाला। हम करीब 25 कुमार थे तो ऐसा उन्होंने अनाउंस किया 25 हाँ इसका विघ्न है तो योग करें, तो हम करते थे। हमने लगातार 3 साल विदाउट फेल 2 से 5 योग। उस दौरान की बहुत अच्छी एक घटना घटी प्रत्यक्षता की कि तो फैक्ट्री में जहाँ हमारा माल आता है जो वुड प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्री थी, तो रात को गाड़ियाँ आती थी तो उसका कागज लेना होता है और सारा, और वहाँ चौकीदार भी होते हैं। तो मैं 2 बजे गाड़ी आई होंगी, 2-3 बजे हम तो चले गए योग करने, तो पीछे से जो गाड़ी आई तो मैंने कागज लिए नहीं। तो सुबह जब हमारा बड़ा भाई जब ऑफिस में पहुंचे फैक्ट्री में, तो कह के भी वो कहाँ थे जो मेरा छोटा भाई यहाँ रहता है, तो वो तो रात में पढ़ाई करने जाता है, हम जाते थे योग करने। तो तीनों भाई अपने फैक्ट्री में वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे। तो ऐसे करके फिर ये प्रत्यक्षता हुई और फिर जो हमारी सारे विरोधाभास और खलबली मच गई सारे, ये ऐसा है वैसा है, तो फिर भी बाबा की जो आकर्षण थी कि मुरली मिस नहीं करना, मुरली के बिना खाना नहीं खाना, योग करना, इसी से तो मूछ बनेंगे और भगवान तुम्हें प्यार करेगा, ये सारी बातें मन में गूंजती रहती थी। तो उसके कारण हम जाते थे। फिर एक दिन सुबह क्लास कर रहे तो मेरा पिता भाई आया, बड़े भाई, और बड़ी लकड़ी एक लेके आया और मैं पीछे थोड़ा लेट गया था, मैं हमेशा फर्स्ट जाता था लेकिन उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था तो पीछे बैठा था, और 35-40 भाई बहन और मुरली चल रही थी, उन्होंने आते आते ही पहले मैं बस बैठा था पीछे से थोड़ी सी लकड़ी लगाई और सामने भाई मुरली चला रहा था, वो चौकन हो गया तो सभी शांत हो गए, मुरली चलाना बंद हो गया, मेरे को मार रहा है और फिर घसीटते लेके जा रहा है, घसीटते खून निकल रहा है हाथ में से, मैंने थोड़ा सा उनको कि भाई ये चंगुल में फंस गया है, उनका ये प्यार उनको तो ये पता नहीं ना, तो फिर भी मतलब ठीक है। फिर हम
1: उन्होंने कभी आपसे ज्ञान सुनने समझने की कोशिश
0: उस टाइम नहीं की क्योंकि उनको तो वही परंपरा से जिए थे तो वो उसे। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, फिर मैं चला गया लेकिन फिर से हमें योग मिस नहीं करना, ये विघ्न अभी जाएगा क्योंकि भगवान ने बोला 2 से 5 योग करते तो विघ्न चला। तो वो जो क्लास में जो भाई बहने थे वो कुछ नहीं बोले, योग में बैठ गए सब, वो मार रहे कर रहे छुड़ा रहे, कोई छुड़ा नहीं, और जैसे कि मुझे ठीक है नहीं आओ। तो इस तरह से मेरा आना हुआ और फिर बाबा से योग लगा के हम ऊंच पद पाएंगे ये मन में नशा रहता था। तो 3 साल हमने योग किया, उसका परिणाम ये हुआ करीब हम 81 से 83-84 तक हमने ये योग किया। फिर ये सब प्रत्यक्षता होने लगी समाज में, फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, बाबा के बिना तो हम रह नहीं सकते, बाबा की पड़ी खींचे शाम को 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे तो कशिश होती थी कि नहीं सेंटर पे जाना चाहिए, सेंटर एक ही था नागपुर में और हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर हम एक सीट पूर्व में रहते थे, सेंटर पश्चिम में था तो पूरी सिटी क्रॉस करके जाना होता था, तो गुरुवार को जाते थे एनी हाउ। तो हम कहते हैं ना यहाँ ब्रह्मा कुमारी की भाषा में ये कहते हैं कि बंधेले कुमार मना इसको विघ्न है तो माँ बाप से छुट्टी नहीं है।
1: दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कहानी बीच में क्यों रुक गई है, आगे क्या हुआ है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे सवाल है मन में जानने को लिए लेकिन समय की सीमा है कि यहीं पर हम रुकना होगा और आगे की कड़ी में हम सुनेंगे कि ऐसा क्या जिद था और क्यों उन्होंने इसी जीवन को जीने का ठान लिया है। जो जीवन आमतौर पर सोचते हैं कि बहुत ही कठिन रास्ता है, सांसारिक जीवन को त्यागना, सुख सुविधाओं को त्यागना और सिर्फ एक परमात्मा के प्यार में लीन होना, देश के लिए जीना या मानवता के लिए जीना कितना कठिन काम है, लेकिन इनके लिए बहुत ही आसान लग रहा था और उसके लिए किसी भी हद तक किसी भी चीज को सहन करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। जो अभी तक आपने सुना है गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन की कहानी को, कहाँ से उनको वो प्रेरणा मिली समर्पित होने का और जब उन्होंने वो संकल्प लिया और वो ज्ञान मार्ग में चलने लगे किस प्रकार की बाधाएं उनको सामना करना पड़ा, तो दोस्तों अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है।

0: इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

माइनस 20 डिग्री और खून जमा देने वाली सर्दी में भी एक फौजी 24 घंटे हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। हम राष्ट्रगान चल रहे उन 52 सेकंड्स तक अपने राष्ट्रगान के सम्मान में तो खड़े ही रह सकते हैं ना।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। कार्यक्रम का वक्त है जीवन रोशनी का, और हर बार की तरह आज हमारे मध्य एक एक्सपर्ट है जो सीनियर राजू का टीचर है। प्रीति दीदी जी, आप हो से हैं, आप एक शिक्षक रह चुके हैं, बचपन से आप आध्यात्म से जुड़े हैं। 2007 से आप सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनेक कन्याओं के जीवन आपने परिवर्तन किया है, बहुत सारे यूथ को आपने मोटिवेट किया है, और अनेक परिवारों की जिंदगी आपने बेहतर किया है अपनी आध्यात्म के माध्यम से। तो आज बहुत ही भाग्य की बात है, दीदी हमारे साथ है, प्रीति दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे गाने के बारे में। इस प्रोग्राम में हम गानों के बारे में चर्चा करते हैं, जो गाने हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली से समझने की कोशिश करेंगे। कवि प्रदीप जी की एक रचना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इस गाने के बारे में जानेंगे। जैसे पंक्तियों में लिखा हुआ है कि सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हम देखते हैं कि सूरज चांद भी बदल चुके हैं, तो प्रदूषण की मात्राएं भी बढ़ गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इंसान के साथ साथ ये प्रकृति में बदलाव क्यों?
1: एक्चुअल में जब ये गीत बना था, मे बी 1958 में, ये प्रदीप कुमार जी का गाया हुआ और रचा हुआ गीत है। उन्होंने 1947 के बाद, 1947 के बाद जो भारत की हालत थी, उसी को देखते हुए ये गीत बनाया था
0: जी।
1: लेकिन आज धीरे धीरे उससे भी बदतर हालत हो गई है।
0: हाँ जी।
1: क्योंकि गीत के बोल तो हैं, ना बदला सूर्य, ना बदला चंदा, है ना, चांद भी नहीं बदला, आसमान भी नहीं बदला, सिर्फ इंसान बदला है। लेकिन वास्तव में आज तो वायुमंडल भी बदल गया
0: जी।
1: अनचाही बरसात, अनचाहा जो है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा, फ्लड, ये सब चल रहा है। ये कहीं ना कहीं इसका दोष जो है ना, वो मनुष्यों पर है। बढ़ती हुई संख्या और उसके साथ लोभ
0: जी,
1: लोभ वृत्ति के कारण, कारखानों की बढ़ती संख्या या जंगलों की कटाई, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे पोल्यूशन तो बढ़ा, जिसका प्रभाव पड़ा प्रकृति पर। और इंसान भी प्रकृति का ही बना हुआ है, एक मनुष्य का शरीर भी पांच तत्वों से बना है, तो उसी पांच तत्वों का प्रभाव जो है उसके मन पर भी प्रभावित कर रहा है
0: जी।
1: आज मन जो है ना, वो सब का ही नेगेटिव दूषित हो गया है, क्योंकि इंसान में अगर बदली है तो उसकी सोच बदली है, और वो सोच बदलने के कारण ही ये सब चल रहा है।
0: तो हमारे सोच का असर ये प्रकृति पर पड़ता ही है।
1: जी जी जी, पड़ता ही है। जैसे एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं
0: जी।
1: कहते एक बार कहीं गेहूं का ट्रक जा रहा था, तो ड्राइवर को पता नहीं चला, तो उसमें से गेहूं का एक बोरा नीचे गिर गया, सड़क पे गिरा, तो वो तो चला गया, ट्रक वाला तो चला गया। तो कहते वो बोरा नीचे गिरा, उसका मुंह खुल गया, उसमें से गेहूं बाहर बिखर गई। बिखरी गेहूं को देखकर एक गाय आई, थोड़ी देर तक उसने उस जो है गेहूं को खाया, जब उसका पेट भर गया वो चली गई
0: जी।
1: फिर थोड़ी देर में कबूतरों का झुंड आया, उन्होंने भी थोड़ी देर अपना दाना चुगा, जब उनका भी पेट भरा वो भी चले गए। लेकिन तीसरी बार एक इंसान आया
0: जी,
1: और इंसान ने आते ही क्या किया होगा, आप सोच सकते हो,
0: कि
1: उन्होंने उसी बोरे को अपने कंधे पे डाला और अपने घर में ले गया
0: जी।
1: आज जीव जंतु, पशु पक्षी, उनको चिंता नहीं है कल क्या होगा, क्या खाएंगे, लेकिन आज इंसान की वृत्ति ऐसी हो गई है, जो लोभ है, लालच है, उसका प्रभाव जो है वो सब जगह दिखाई दे रहा है
0: जी। बिल्कुल। तो इसका असर प्रकृति पर भी पड़ रहा है। और इसके बाद कुछ लाइंस इस प्रकार से है कि समय जो है वो बड़ा बेढंगा सा है, और आदमी जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसको कवि जी ने कहा है लफंगा, और कहीं पे हम झगड़ा देख रहे हैं, और कहीं पे हम पोस्टर्स पर भी देख रहे हैं कि हम अश्लील तस्वीरें देख रहे हैं, और कहते हैं कि तस्वीर अश्लील है उस बिना कपड़े के, और उस पोस्टर के नीचे जो आदमी सो रहा होता है वो भी बिना कपड़े के भी आजकल हम देख रहे हैं। तो ये जो दौर है, और कहते हैं कवि जी यहाँ पर कि छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान है, कितना बदल गया इंसान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है?
1: वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी दिख रहा है। वास्तव में हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार ये बोला गया कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया।
0: जी,
1: ये हमारा एक बहुत बड़ा स्लोगन है, लेकिन आज इसके ऑपोजिट हो गया।
0: जी,
1: आज बोलते हैं कि धन गया तो सब कुछ गया, हेल्थ गई तो थोड़ा ही कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया।
0: जी,
1: आज चरित्र का पतन हो गया, क्योंकि मोरालिटी चाहे यूथ है आज, वो शायद वो फिल्मी दुनिया का असर है या शायद वो ये कलयुग का प्रभाव है कि उनकी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि उनको लगता ही नहीं कि वो रॉन्ग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो ऐसी वृत्ति का कारण ये है, कुछ तो मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, या जो खुलापन आ गया ना, उस करके आज इंसान जो है वो अपनी कथनी करनी को भी बराबर नहीं कर रहा, और उसकी सोच भी, उसके कर्म भी, उसका व्यवहार भी सब चेंज हो गया है। इस करके कवि ने शायद उस टाइम लिखा था कि इंसान लफंगे की तरह हो गया है, लेकिन मोस्टली मेरे को तो ये लगता है कि आज हर इंसान जो है वो वैल्यूलेस होकर, बाहरी रूप से तो वो सुंदर दिखता है, पर्सनैलिटी का ध्यान रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुणों की कमी, कहीं ना कहीं मोरालिटी की कमी, कहीं ना कहीं उसके अंदर ना मानवता खो गई है, स्वार्थी हो गया है, जिस करके दुनिया की ऐसी हालत होती जा रही है।
0: जी, तो वास्तविक में खुलेपन का अर्थ क्या है?
1: खुलेपन का अर्थ है कि आज जो शिक्षा भी दी जा रही है उसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज तो है ही। पहले बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जिसको पर्दे में रखा जाता था, जिसको कहा जाता था कि ये बातें तो अंदर करने वाली है।
0: जी,
1: लेकिन आज उसी को ही जो है आज का यूथ है, आज के बड़े है, उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर का प्रभाव आ रहा है।
0: जी,
1: उस चीज का प्रभाव, कहां हम सोचते थे कि जब बच्चा 14-15 साल का होता था तब उसको अपनी फिजिकल चेंज के बारे में नॉलेज होती थी।
0: जी,
1: लेकिन आज एक छोटे बच्चे को भी, 5 साल 6 साल के बच्चे को भी फिजिकल की नॉलेज, अपनी बॉडी की नॉलेज और हर बात को वो समझता है।
0: जी,
1: कहीं ना कहीं कारण उसकी मानसिकता को बदलने का या तो टीवी रहा है,
0: right,
1: या फिल्में रही है, या मोबाइल का रोल रहा है, या जो आज रोल मॉडल है वो हमारे सामने कोई नहीं है, जो रोल मॉडल देख रहे हैं उसी को ही वो फॉलो कर रहे हैं।
0: जी, जो बच्चों को हम अगर सेक्स एजुकेशन की भी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये होना जरूरी है, आपको क्या लगता है आज के मंजर को देखते हुए छोटे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को?
1: जो गर्ल्स हैं उनको जानकारी के लिए बताना जरूरी है, वो भी बैड टच और गुड टच के बारे में।
0: जी,
1: बाकी उनको इतना विस्तार में जाने की या पहले से एडवांस नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो यही लगता है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक वे से देखें तो 12 साल के बाद ही हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं।
0: जी,
1: उसका इफेक्ट बॉडी पे दिखाई देता है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो हमारे लड़के हैं, दोनों पे दिखाई देता है, लेकिन उसकी नॉलेज देना एक पेरेंट्स का, एक टीचर का, वो तो उसकी ड्यूटी है।
0: जी,
1: लेकिन उसको डीप नॉलेज देना, उससे उसके माइंड को डाइवर्ट करना, उसके मन को दूषित करना, ये रॉन्ग हो जाता है। कहीं ना कहीं खुली सोच ने भारत को बहुत ज्यादा पतन की ओर ले जाना शुरू कर दिया है।
0: जी बिल्कुल, तो दीदी ने जैसे कहा गुड टच और बैड टच के बारे में ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना देना जरूरी है उतना ही देना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम छल कपट वाले इंसानों को देखते हैं हमारे इर्द गिर्द भी, जिनकी जीत होती हुई हम देखते हैं, तो हम खुद घबरा जाते हैं या फिर हम खुद लो फील करते हैं, तो उस समय हम अपने मन को कैसे समझाएं?
1: एक्चुअल में हम तो कहेंगे इस समय झूठ फरेब का राज चल रहा है।
0: जी,
1: तो जिसका राज होता है वो फलीभूत तो होएगा ही होएगा,
0: राइट।
1: तो इसलिए अगर छल कपट फलीभूत हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पास्ट कर्मों का खाता भी तो है।
0: हाँ,
1: कर्म गति ये कहती है कि अगर मैंने पिछले जन्म में खूब अच्छे कर्म किए और जब मृत्यु हुई तो मैं निश्चिंत होकर इस दुनिया में आई कि मेरे तो अच्छे कर्म जमा है। अब मेरे अच्छे जमा है इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, आते या धड़ल्ले से पाप छल कपट सब करना शुरू कर दिया, क्योंकि पीछे स्मृति थी मेरे तो फुल जमा है। लेकिन जिसने बैड किए, बहुत बुरे हुए, वो लास्ट में कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे आगे भुगतना पड़े, वो नाना करते आता है। इसलिए यहाँ वो हमें सीधा साधा सरल दिखता है, लेकिन पास्ट में वो अपने बहुत बुरे कर्म करके आया है, नाना करके आया, तौबा करके आया है।
0: जी,
1: जिस करके आज वो हमें बिल्कुल सरल साधारण दिख रहा है, लेकिन पीछे जो अच्छे करके आया है वो निश्चिंत होके आया है, इसीलिए वो आज छल कपट कर रहा है, क्योंकि उन्हीं कर्मों के आधार पर, जैसे सपोज करो किसी का बैंक बैलेंस जो है बहुत ज्यादा है, तो वो सोचता है मेरे बैंक बैलेंस में तो बहुत पैसा है, चाहे मैं कहीं भी खर्च करूं। लेकिन किसी के कम होते हैं तो वो सोच विचार के करता है। तो कहीं ना कहीं ये कर्म गति का भी कारण है। बाकी ये नहीं है कि जो छल वाला है वो बढ़ रहा है और जो सत्य वाला है वो डूब रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो है पास्ट गति का कहीं ना कहीं प्रभाव जो हमें फलीभूत होते हुए दिखाई देता है।
0: जी बिल्कुल, तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि जो अभी बुरे कर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें पास्ट में उन्होंने अच्छा कर्म किया है,
1: वो बुरे कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जीवन एक चेन है, पिछला बोया खा रहे हैं
0: जी,
1: अब का बोया हुआ आगे मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, उसका जो है प्रमाण मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि जैसे धरती बीज नहीं खाती, ऐसे हमारे कर्मों का जो है वो भी खाता कभी वेस्ट नहीं जाता, छोटे से छोटे कर्म का भी खाता जरूर बनता है।
0: जी, तो अपने कर्म के ऊपर गौर करें जो भी हम कर्म कर रहे हैं। और कवि ने इस गाने में बहुत बार कहा है कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, तो इंसानों के बदलने का कारण आपको क्या लगता है, गहराई क्या है इसमें?
1: इंसानों के बदलने का अगर हम मोटे रूप में देखें तो इंसान तो वही है जिसकी दो आंखें थी, दो कान थे
0: जी,
1: वही नाक थी, सब कुछ वही है
0: जी।
1: लेकिन आज वो बदली है तो उसकी सोच बदली है। जो शुरू में बोलती थी कि तेरे भाने सर्बत का भला, कि सबका भला हो, आज वो सबका भला में सिर्फ मेरा अच्छा हो जाए, मुझे किसी से नहीं लेना देना, ये भावना जो है ना वो फलीभूत ज्यादा हो गई है। इंसान में बदली है उसकी सोच, क्योंकि सोच जो है ना वो एक बीज है
0: जी।
1: सोच से ही बनता है हमारा व्यवहार और व्यवहार से बनते हैं हमारे कर्म।
0: राइट,
1: तो सबसे ज्यादा जो बेस बदला ना उसकी सोच बदली, और उसमें भी ज्यादा स्वार्थपन आ गया, लालच आ गया, कहीं ना कहीं अपनी लालसा पूरी करने के लिए ना बाय हुक बाय क्रूक कुछ भी करने की जो वृत्ति है ना उसने इंसान को बदल दिया है। बाकी इंसान तो वही है, पहले भी गेहूं की ज्वार की रोटी खाता था, पहले भी वही वस्त्र पहनता था, पहले भी घरों में रहते थे, आप भी हम वही कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोच में विचारों में अंतर आ गया है, पहले के मुकाबले अब के विचार जो है ना उसमें ज्यादा जो है पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी या वेस्ट ज्यादा आ गया, जिस करके इंसान जो है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है
0: जी। दीदी, कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को फिर से चेंज करें, अपने वृत्तियों को बदले, विचारों को बदले, लेकिन नहीं हो पाता। हम जब आध्यात्मिक संस्थाओं में आते हैं, हम भाषण भी सुनते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते?
1: पहली बात तो ये होती है कि दृढ़ता की कहीं ना कहीं कमी होती है
0: जी।
1: हमारे अंदर जब तक किसी काम को करने की दृढ़ता नहीं आएगी तब तक हम उस कार्य को कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये होती है, कई बार हम टारगेट बड़ा रख लेते हैं लेकिन उस टारगेट को 2-4-10 दिनों में रेगुलर नहीं कर पाते, और फिर धीरे धीरे वो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाता है
0: जी।
1: क्योंकि आज जो समझ है ना वो सबको फुली नॉलेज है
0: जी,
1: ज्ञान की कोई कमी नहीं है किसी के पास। इसीलिए आध्यात्मिकता में यही बताते हैं कि रावण के 10 सिर थे। 10 सिर का प्रतीक यही है कि आज के इंसान के पास एक दिमाग है
0: जी।
1: तो उसके पास 10 गुना दिमाग था लेकिन वो किस तरफ जा रहा था? बुराई की तरफ जा रहा था। तो इसी तरह आज इंसान के पास दिमाग फुल है, नॉलेज फुल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो दृढ़ता नहीं है, वो फिसल जाता है। जो कर्म इंद्रियां वो कहीं ना कहीं उसको धोखा देती है, जिस करके वो दृढ़ता की कमी के कारण अपने जो असूलों को, अपनी जो मान्यताओं को, अपनी जो उसने धारणा बनाई है ना उस पे खरा नहीं उतर पाता और अपने आप का परिवर्तन नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें अभ्यास की, खुद को एक लक्ष्य देने की जरूरत है। जब हम बार बार उस चीज का अभ्यास करते हैं या मन में एक लक्ष्य देते हैं तो जल्दी उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। आज एक बच्चा कमजोर होता है तो भी उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं नहीं नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। अगर उसको फोर्स किया जाता है
0: जी
1: और वो ट्यूशन भी लेता है, लगन से पढ़ता भी है, तो एक दिन वो डॉक्टर जरूर बनता है।
0: राइट,
1: इसका उदाहरण है हमारे वैज्ञानिकों में भी, उसका उदाहरण है
0: जी,
1: कि वो बिल्कुल ही जो जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन की है
0: जी,
1: तो उनका दिमाग बिल्कुल ही मेंटली वो क्या थे, डिसऑर्डर थे। जब टीचर ने लिख के दिया कि आपके स्कूल में जो हमारे स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाने का जो है कोई सोर्स ही नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग बहुत ही वीक है, आप किसी और स्कूल में इंतजाम करो, तो उसकी मदर ने उसको एक चैलेंज रूप में स्वीकार किया
0: जी,
1: कि मेरे को ये बोला है कि स्कूल में नहीं है लेकिन मैं घर में तो करा सकती हूँ। लेकिन बच्चे को शो नहीं होने दिया, उसको सिर्फ यही कहा कि वो वहां तेरे को पढ़ाने के लायक टीचर नहीं है, तेरे को मैं घर में पढ़ाऊंगी
0: जी,
1: तेरे को मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। तो माना एक विल पावर जब होती है या जब हम एक लगन में लग जाते हैं, एक लक्ष्य रखते हैं ना, तो वहाँ जरूर उसकी प्राप्ति होती है, वहाँ उस ध्येय को हम प्राप्त करके ही रहते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अलबेलापन या कहीं ना कहीं बात में हम ही दृढ़ता की कमी के कारण उस बात को चेंज नहीं कर पाते, इसलिए दृढ़ता चाहिए
0: जी। आजकल की मोबाइल युग में हम चाहते हैं कि हम दृढ़ता पूर्वक, जैसे हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, आज हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही हम बेड पे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं वो बात, फिर हम मोबाइल देखने लगते हैं, वो एडिक्शंस इतने दिनों के इतने सालों से है हमारे में
1: जी।
0: तो कैसे फिर करें उसको?
1: उसके लिए तो वही है, बस वो प्लानिंग है, माना मन को हमको साधना पड़ेगा, मन को पक्का करना पड़ेगा। जैसे मैंने संकल्प किया कि मुझे रात को फोन नहीं देखना, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय भी करना पड़ेगा कि नहीं देखना तो फिर कहाँ रखना है। अगर उसको अपने सिराने पे ही रखा, अगर उनको पास ही रखा, तो फिर तो नेचुरली, क्योंकि हमें जो हैबिट पड़ी हुई है वो हैबिट जल्दी नहीं जाती, वो हैबिट्स को छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम इस बात को पक्का कर ले कि पहले उसका इंतजाम भी तो करें, कोई आदत छोड़नी है, तो उसमें मन में एक दृढ़ता लेके आए और प्लस अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, जिससे मेरी विल पावर जो है वो पूरी मजबूत होगी, पावरफुल होगी, फिर मैं उस कोई भी अपनी कमी कमजोरी को निकाल सकूंगा। अदरवाइज वो कमी जो है वो हमारे ऊपर ही हैवी हो जाती है। तो उसके लिए मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, उसके लिए सुबह उठते ही हमने क्या अपने आप को संकल्प दिया बार बार रिमाइंड करना चाहिए। अभी आप ये मान के चलो हमने 10-12 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक लेक्चर दिया था, तो वहाँ बड़े भाई साहब गए हुए थे, मैं उनके साथ ही गई थी
0: जी।
1: तो उन्होंने वहाँ एक बच्चे ने कहा कि मैं हर बार मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है मैं फर्स्ट नंबर पे आऊँ
0: जी।
1: तो वो एमए कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा मेरा लास्ट ईयर है, तो मेरी इच्छा है कि मैं जो है फर्स्ट आऊँ और गोल्ड मेडल मुझे मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा
0: जी।
1: तो तब बड़े भाई साहब जो थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनको बताया कि आप अपने रूम में ना, वही बात की भूल जाते हैं, थॉट भी देना होता है तो भूल जाते हैं, उन्होंने अपने रूम में एक लाइन लिख के लगा दी, मैं फर्स्ट जो है आऊंगा ही आऊंगा और मुझे जो है रिवार्ड मिल रहा है।

0: काम मिल रहा है, डिग्री मिल रही है, गोल्ड मेडल मिल रहा है
1: जी,
0: उसने अपने रूम में पूरे पेज पे पेपर पे लगा के रख दिया। मॉर्निंग में उठते ही उन्होंने जब देखा, रोज उसको देखा, पक्का कराया कि नहीं, एक दो मार्क्स के लिए मुझे सेकेंड नंबर पे नहीं रहना, मुझे तो फर्स्ट पे ही आना है
1: जी।
0: तो 4 मंथ आफ्टर जब उसका ईमेल आया तो उसने बताया कि सच में वो फर्स्ट नंबर पर आया है। वो उसका रिजल्ट क्या था कि जो उसने बार बार देखा, जो बार बार सोचा, जो बार बार किया, उसका उसको रिजल्ट मिला ना। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कमी कमजोरी संस्कार को त्यागने के लिए। आज हम सब रेडीमेड चाहते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए
1: जी।
0: लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, दृढ़ता लेके आए, तो परिवर्तन हो सकता है
1: जी
0: ना। क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम अ पॉसिबल
1: जी।
0: अगर उसको भी अलग करेंगे ना, इम्पॉसिबल को भी, वो भी कहता है आई एम अ पॉसिबल, है ना। तो इसलिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन उसके लिए अपने को एक विजन देने की, एक लक्ष्य देने की, वो आवश्यक।
1: वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है।
0: हाँ, हर दिन थोड़ी थोड़ी जो है कोशिश करनी चाहिए
1: जी। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट प्रीति दीदी जी हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम जीवन रोशनी में। आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट सीनियर राजयोगा टीचर प्रीति दीदी जी है सिरसा से, और आप शिक्षक भी रह चुके हैं। 2007 से समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए दीदी का फिर से स्वागत करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी। ओम शांति।
0: ओम शांति। दीदी जैसे ब्रेक से पहले भी बहुत सारी बातों के बारे में आपने हमें गाइड किया कि हम क्यों बदल गए हैं, और अगर अपने आदतों को हमें फिर से चेंज करना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, तो कैसे हम दृढ़तापूर्वक आदतों को बदल सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। कर्मों की गुह्य गति के बारे में भी आपने बताया।
1: जी जी।
0: अभी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ लाइन्स इस प्रकार से हैं कि राम के भक्त और रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दुनिया में हर धर्म के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ चल रही है।
1: जी जी।
0: तो आप क्या सोचते हैं कि धर्म क्या है?
1: धर्म का मूल अर्थ है धारणा।
0: जी।
1: धर्म जो है वो कोई देह से नहीं जुड़ा।
0: जी।
1: आज फसाद की जड़ जो बन गया ना, वो दैहिक धर्मों से बन गया कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, फलाना हूँ। ये जो धर्म है ना, ये आपस में मतभेद पैदा करता है। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ है कि हमारे अंदर प्रेम की, सद्गुणों की, शांति की, सद्भावना की धारणा होना। इसीलिए जो हमारा एक प्रसिद्ध गीत भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना।
0: जी।
1: कोई भी मजहब कभी भी वैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर द्वेष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो धर्म के नाम पे हो रहा है।
0: जी।
1: क्योंकि वास्तव में सबने दैहिक धर्म को ही मूल मान लिया है, पर वास्तव में हमारा जो धर्म है, मूल धर्म है, हमारी आत्मा का जो धर्म है, वो है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये उसका धर्म है। और अगर सब यही चाहें कि मुझे प्रेम से, शांति से, प्यार से, पवित्रता से एक दूसरे के साथ चलना है, बात करनी है, रहना है, व्यवहार करना है, तो कोई झगड़े की बात ही नहीं।
0: राइट।
1: विभाजन से पहले हम सब ने देखा, सब एक होकर रहते थे, कोई पता ही नहीं चलता था कौन बच्चा मुसलमान का है, कौन बच्चा हिंदू का है, कौन बच्चा किस जो है समुदाय से बिलोंग करता है, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन ये बाद में ही, ये सारे जैसे ही अलग अलग टाइटल मिलते गए, दैहिक धर्म बनते गए, ये सारा विवाद फसाद तब पड़ा।
0: जी।
1: इसलिए हमारी मूल धारणा जो है प्रेम की, शांति की, आनंद की, उस धारणा पर अगर हम चलते हैं तो फसाद हो ही नहीं सकता।
0: जी।
1: क्योंकि हम भगवान के घर से आए, हम सब मानते हैं, जब वहां से आए तो वहां से कोई स्पेशल थोड़ी था कि ये हिंदू धर्म क्या है, ये मुसलमान धर्म क्या है, वो तो जिस कुल में, जिस घर में, जिस बिरादरी में जन्म लिया वहां का टैग लग गया।
0: जी।
1: पर वास्तव में तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, एक पिता की संतान है, हम सब रूहें आपस में भाई भाई हैं, तभी हम सब बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो धर्म यही सिखाता है कि प्यार से रहना, धर्म सिखाता है मिलजुल के, बांट के खाना, एक दूसरे को सद्भावना देना, सहयोग देना, ये मूल धारणा है धर्म की।
0: ये हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। और एक साथी कहते हैं कि इतना बदलाव इंसान में क्यों आया, पुराने जमाने से अब तक सब नीचे क्यों आते जा रहे हैं? इसकी जवाब आपने दिया है, इतने एनजीओज हैं अभी, इतने टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी हम नीचे क्यों गिरते आ रहे हैं?
1: क्योंकि बाहरी जो है ना, बाहरी उठाव तो हुआ, बाहरी जो है वहां से तो हमने खूब तरक्की कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो अंदरूनी ताकत थी, शक्तियां थी, वो गुम होती चली गई।
0: जी।
1: जिस करके भारत पतन की ओर जा रहा है, जिस भारत के लिए हम कहते थे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, आज उस गीत का ओपोजिट हो गया कि देख तेरे संसार की हालत।
0: जी।
1: ओपोजिट हो गया ना उसका, माना कहने का भाव कि जहाँ सशक्त भारत था, जिनकी मानसिकता, जिनके अंदर सशक्त मन था, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति सहयोग था, आज वहां धीरे धीरे धीरे धीरे कटुता ने रूप धारण ले लिया, क्योंकि बाहरी शोशेबाजी, बाहरी शो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक गतिविधियों की ओर कहीं ध्यान नहीं है। आज एक माँ अगर बच्चे को हॉस्टल में भेज दिया, उसको समझा के भेजेगी

0: टेक्निक्स भी है, वो आगे जानेंगे। वो साथी पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार कैसा बदलाव अभी आना चाहिए मनुष्य में?
1: मनुष्य में बदलाव जो आज स्वार्थपना है ना, अगर वो समाप्त हो जाए, आपस में प्यार की, आपस में जो लेन देन है वो निस्वार्थ भाव से हो, जो धन को प्रेफरेंस दे रहे ना वो धन की बजाय अगर उसके गुणों को प्रेफरेंस दी जाए, अगर मानवता को प्रेफरेंस दी जाए, तो बहुत बड़ा सुधार जो है वो आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं गिरावट का कारण है कि हम बाहरी रूप को देख कर ही उसको प्रेफरेंस देते हैं। आज इतना बड़ा व्यक्ति होता है उसके साथ उतनी अच्छी ही उसको VIP सब चीजें मिलती हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसके अंदर गुण है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि हम बाहरी रूप से ही प्रभावित होते हैं, अंदर की मानसिकता कोई देख नहीं सकता, इसीलिए उस व्यक्ति को भी हम ऐसे समझते हैं कि ये तो छोटा है। बाहरी ड्रेस का जैसे लुकमान का उदाहरण आता है ना, कि एक बार किसी जगह वो गए तो उनको किसी ने बोला कि वो कपड़े ऐसे डालते थे साधारण, तो बोला वहाँ राजा के यहाँ भोग है तो आप अच्छे कपड़े डाल के जाओ ना, तो उसने सेठ ने अपने कपड़े दे दिए। तो जब वो कपड़े डाल के उस भोज में पहुंचे तो वहाँ सारे खा रहे थे, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे थे, वो उठा उठा के अपने कपड़ों को खिला रहे थे, ले ले ले आइसक्रीम खा ले ले ये दाल खा ले ये खा ले। सारे कहते भी इतना हकीम है, इतना समझदार है, आज ये ऐसे काम क्यों कर रहा। तो उनको जब जाके पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा आपने मेरे आउटर रूप को देख के तो मुझे एंट्री दी है
0: जी,
1: मेरी इनर ब्यूटी को तो आपने देखा ही नहीं, इसलिए आउटर को ही खिला रहा हूँ, क्योंकि इनवाइटेड तो ये है, मैं थोड़ी इनवाइटेड हूँ। है ना, तो बाहरी जो रूप है ना वो आज ज्यादा प्रत्यक्ष है, लेकिन इनर ब्यूटी की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं है
0: जी। क्योंकि जैसे पहले भी आपने कहा था कि आजकल जो बाहरी रूप देखकर ही लोग आपको पसंद कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यूथ भी यही चाह रहा है कि ठीक है यही सही हम यही कर लेते हैं, इनर ब्यूटी को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आउटर ब्यूटी से ही लोगों को एक्सेप्टेंस मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज का यूथ का रोल मॉडल भी यही है, या तो हीरो हीरोइन है या क्रिकेटर है, किसी का रोल मॉडल नहीं है कि हमारे श्री लक्ष्मी नारायण, हमारे श्री कृष्ण, श्री राधा जी, श्री राम, श्री सीता, रामायण पढ़ना पसंद करते हैं, भागवत सुनना पसंद करते हैं, लेकिन राम जी बनना पसंद नहीं करते, श्री कृष्ण जैसा बनना पसंद नहीं करते। हम तो ऐसे भारत में रह रहे हैं कि यहाँ अगर हमें कोई दो मूर्तियां दिखाए राम जी की, बोले कि एक मूर्ति जो है वो पत्थर की है, एक मूर्ति सोने की है, जो राम जी की मूर्ति है वो पत्थर की है और रावण की जो मूर्ति है वो सोने की है, तो कौन सी लेना चाहोगे
0: जी?
1: तो आप सोच सकते हो कि लोग किसको प्रेफर करेंगे
0: जी।
1: वो खाली उसके स्वरूप को नहीं देखेंगे, उनके वो सिर्फ जाएगी, उनकी वृत्ति कहाँ जाएगी, सिर्फ आउटर पर। वो मिट्टी की मूर्ति श्री राम की वो नहीं उनको प्रभावित करेगी, लेकिन वो सोने की मूर्ति रावण की है वो अपनी तरफ जरूर खींचेगी। कहीं ना कहीं अभी तक जो हमारी दोहरी मानसिकता है वही इस गिरावट का मूल कारण बन गई
0: जी। जैसे मानसिकता के बारे में आप कह रहे हैं, और आप कह रहे थे कि जो माताएं हैं वो गाइड नहीं करते कि हमारे मन में विचार कैसे आना चाहिए, तो शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम कसरत करते हैं, तो मन की सुंदरता के लिए क्या कसरत करना चाहिए?
1: मन की सुंदरता के लिए सबसे जरूरी कसरत है कि हम अपने मन को कम से कम 10-15 मिनट तक देखें वो कहाँ जाता है, रोज सारे दिन में
0: जी
1: कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, विचार शक्ति है। आज हम उस पे एनालिसिस नहीं करते, बाहरी रूप में करेंगे, इतना आज खर्चा हो गया, इतना टाइम वहां लग गया, लेकिन माइंड मेरा कहाँ कहाँ लगा वो कभी नहीं देखा, क्योंकि जिस चीज को हमने देखा नहीं वो चीज ही हमसे दूर हो गई। एक बच्चा बाहर खेलने गया, शाम हो गई, वापिस नहीं आया, मदर देखने जाएगी कहाँ गया, लेकिन मेरा मन सुबह से लेके शाम तक भटक रहा है
0: जी,
1: हमने कभी नहीं देखा वो कहाँ जा रहा है,
0: राइट।
1: इसलिए मन को थोड़ी सी देर के लिए अपने पास बिठाने की, बात करने की जरूरत है, जिससे मानसिकता बदलेगी। क्योंकि जब हम सेल्फ को देखते हैं, माइंड को देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे भागते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे के पीछे हम भागेंगे
0: राइट,
1: तो वो रुक जाता है, लेकिन हम बैठे होते हैं तो हमें हाथ लगा के कहते हैं मुझे पकड़ो। तो कहीं ना कहीं मन की भी यही दशा है, हम पीछे भागते हैं तो वो रुका हुआ है,

0: लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो बैठी हूँ, मन ही भाग रहा है, तो वो फिर वो भागेगा, वो हमें भी भगाएगा। तो इसलिए मन को थोड़े से टाइम के लिए टाइम देने की जरूरत है। अपने आप से ही पूछें, अपने आप को ही ये एक जो है जरूरी इन्फॉर्मेशन दे कि मेरे साथ क्या जाने वाला है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म कर रही हूँ, क्या ये मेरे जो कर्म है, ये पूंजी जो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ या वेस्ट इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए इस जीवन में आया, मेरा लक्ष्य क्या है। जब हम मन से 2-4-5 बार क्वेरी करते हैं, जैसे काउंसलर काउंसलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, अंदर की बातें ही तो निकलवाते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे मन से अगर हम अंदर की बातें निकलवाएंगे तो मन हमारा अपने आप ही बस में आएगा, क्योंकि हम मन की पीठ नहीं करते। मन को तो बोल दिया, मन तो घोड़ा है, मन तो फलाना है, मन तो किसी के काबू में आया ही नहीं। तो मानसिकता तब बदलेगी जब हमारे मन में सुधार होगा, जब मन में अच्छे विचार आएंगे, और जब अच्छे विचारों के लिए हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक संस्था से जुड़ना पड़ेगा। और वो आध्यात्मिक संस्थाएं हमारे यहाँ बहुत है, ब्रह्मा कुमारी संस्था भी ऐसा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो मन के बदलाव की ओर सबसे ज्यादा तीव्र गति की ओर उसका अटेंशन है, जिसके बहुत सारे कोर्सेज हैं माइंड को मैनेज करने के, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। अगर हम वो काउंसलिंग भी लेते हैं उनसे या वो टॉपिक भी सुनते हैं, तो भी हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आप रेडियो मधुबन पर भी समय प्रति समय ब्रह्मा कुमारीज के जो फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रहे हैं दादियाँ, उनकी बातें भी सुनते हैं और मन के बारे में भी चीज़ें सुनते हैं, तो इसे प्रैक्टिस करें आप, जैसे दीदी ने भी कहा। तो ये इस हफ्ते के लिए आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप प्रैक्टिस करें, अपने मन के साथ समय बिताएं, फिर हमें आप फीडबैक देंगे। और इन सारे गानों को देखते हुए, इन पंक्तियों को देखते हुए, लाइंस को देखते हुए, एक सवाल उठ रहा है मन में कि क्या फिर से ये जग सुधरेगा। हम कहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, तो आपको क्या लग रहा है?
0: ज़रूर सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो सर्कल में है
1: जी।
0: जो सर्कल है उसका ना स्टार्टिंग होता है ना एंड होता है, वो साइकिलिंग ही करता है, पूरा चक्र ही चलता है। तो इसी दुनिया में सत्युग था, और वो सत्युग जो है बीत के अभी कलयुग एंड तक पहुंच गए, तो फिर दोबारा सत्युग जरूर आएगा। जैसे सुबह दोपहर शाम रात, जैसे मानव जीवन की अवस्था, बच्चा है, फिर किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, फिर मृत्यु, फिर बच्चा, तो ये सारी चीजें एक साइकिल में बंधी हुई है
1: जी।
0: ऐसे इस विश्व को भी जरूर परिवर्तन होना है, तो वो होगा भी जरूर। वो परिवर्तन जो है हम सबके प्रयास से होगा, और अगर हम अपनी गारंटी ले लें हम सब कि हम ही उसको परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे, तो ये भारत जो है शीघ्र ही विश्व गुरु, शीघ्र ही स्वर्ग बन जाएगा, ऐसी हमारी शुभ भावना भी है और ऐसा हमारा पक्का विश्वास भी है कि भारत जो है फिर से विश्व गुरु बनेगा और फिर से भरपूर बनेगा
1: जी। तो इसमें अध्यात्म का क्या रोल है?
0: अध्यात्म का रोल ये है कि अध्यात्म माना अपने आत्मा का अध्ययन, इसमें हम सेल्फ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आज अगर हमें कोई कहे कि फलाने की 2 कमजोरी बताओ, तो हम 2 की बजाय 4 बताएंगे
1: जी।
0: लेकिन कोई कहे अपनी 2 कमजोरी बताओ, तो वो 2 कमजोरी हमें ढूंढनी पड़ती है
1: राइट,
0: क्योंकि हम उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं नहीं मेरा भाव नहीं होता, मेरे मन में कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे सीधी सीधी बोल देती हूँ, मैं तो ऊंचा बोल लेती हूँ, उसके लिए हम एक्सक्यूज देते हैं
1: जी।
0: क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, लेकिन आध्यात्मिकता दिखाती है आत्मा का अध्ययन, खुद को बदलते हैं, खुद को देखते हैं, तो वहीं से ही परिवर्तन शुरू होता है, और आध्यात्मिकता के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है स्वयं को परिवर्तन करने का, क्योंकि आध्यात्मिकता एक मार्गदर्शना है सबके लिए, इसमें बच्चे बूढ़े जवान यूथ सब जुड़ सकते हैं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी टफ नहीं होता, सिर्फ अपने आप को चेंज करने की बात है, अपने आप को परिवर्तन करने की बात है, और इस बात को हम स्वीकारते भी हैं। आज पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बुजुर्ग कहते हैं हमारे कुलीग हमारे साथ का साथ नहीं देते
1: जी।
0: तो जब एक दूसरे का हम साथ नहीं देते, तो खुद का तो कर ही सकते हैं ना, सेल्फ को चेंज करना तो इजी है ना। तो इसलिए आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा रोल है इस जग को सुधारने में और स्वयं को सुधारने में
1: जी। तो आध्यात्मिकता को अपनाएं और जैसे दीदी ने कहा अपने आप के बारे में जानना, अपने आत्मा के ज्ञान के बारे में जानना, इसे ही हम आध्यात्म कहते हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश आप करें। अगर आपको मुश्किलें आए तो आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं सवाल 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हम, दीदी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी समय परिवर्तन हो रहा है, तो समय परिवर्तन से पहले पहले हमें सुजाग होना है, जागृत होना है, अवेयरनेस चाहिए। बाहरी अवेयरनेस बहुत है, बाहरी चीजों का बदलाव हम चाहते हैं। घर पुराना हो गया, हम उसको कहेंगे इसको नया करें, थोड़ा रेनोवेट करें थोड़ा। अगर हमारा कपड़ा पुराना हो गया तब भी हम उसको नया बनाना चाहते हैं। हर चीज में हमें नवीनता चाहिए, लेकिन अभी संस्कारों में भी नवीनता चाहिए, अभी सोच में भी नवीनता चाहिए। इसीलिए अपने ऊपर थोड़ा सा समय सब जरूर दें, अपने संस्कारों के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर। अगर ये हम बदलाव करेंगे, नवीनता लेके आएंगे, तो ये हमारा परिवर्तन ही हमें जीवन जीने की कला और एक सुखद परिवार की रचना में और सुखद भारत की रचना में, एक सुखद समाज की रचना के रूप में दिखाई देगा।
1: जी बहुत खूब, एंड थैंक यू सो मच हमारे मध्य आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप शांतिवन परिसर में आए तो आप रेडियो के श्रोताओं के साथ जरूर बातचीत करें।
0: जी जी जी, जरूर जरूर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। आज का कार्यक्रम कैसा रहा आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, मैसेज या फिर व्हाट्सएप करके। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चटपटी मजेदार गर्मा गर्म पानी पूरी, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ।
2: क्या बात है भाई, तुमने तो तरक्की कर ली, बढ़िया ठेला ले लिया।
3: जी जी, उसके नाम से ही जीवन धन्य है।
2: लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चटपटी तो ठीक है, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या होता है? गर्मा गर्म पानी पूरी मैंने तो पहले कभी नहीं सुना।
3: भाई साहब, पहले मैं सिर्फ पानी पूरी बेचता था, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर मैंने सोचा कुछ अलग करके देखूं।
2: और वैसे भी पानी पूरी के अंदर का रगड़ा जो भरते हो वह तो गर्म ही होता है ना। बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है।
3: जी जी, वो तो है।
2: भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
3: जी पूछिए ना।
2: कुछ दिन पहले तुम्हारा जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तब मैं कुछ काम कर रहा था।
3: कुछ दिन? हाँ हाँ हाँ, याद आया। उस दिन दो लड़के मेरे से पानी पूरी लिए और बिना पैसे देकर भाग गए, और मैं गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा।
2: लेकिन मैं जब खिड़की से झांक करके देखा तो कोई एक सफेद साड़ी वाली बहन थी और तुम्हारी उनके साथ कुछ बहस हो रही थी।
3: भाई साहब, बात कुछ और थी। उस दिन जो मैं उन लड़कों पर चिल्ला रहा था, उसी वक्त वो ओम शांति वाली दीदी यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने रुक कर मुझे समझाया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहले तो मुझे उनकी बातें अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया।
2: ओम शांति वाली दीदी, अब ये कौन है भाई? मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल की नर्स होंगी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने?
3: भाई वो पास में ही ओम शांति सेंटर है ना, वहीं से आई थी। मैं उनके वहाँ एक दो बार कुछ कार्यक्रम में गया था।
2: भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लोग उधार लेके चले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं लौटाते। इससे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता क्या करें।
3: भाई एक बात पूछें?
2: हाँ हाँ बोलो ना।
3: आपके पास अगर समय है तो कल वो दीदी के सेंटर पर चलें, पास में ही है, बस एक दो गली छोड़कर। क्या पता आपके समस्या का भी कुछ हल मिल जाए।
2: ठीक है, देखते हैं।
3: ओम शांति दीदी।
4: अरे आप, ओम शांति, आइए ना आइए।
3: ये भाई साहब, मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ ना, उसी के सामने ही रहते हैं। उस दिन आपसे बात करते हुए उन्होंने देखा तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें भी यहाँ पर ले आया।
4: अच्छा, आइए आइए बैठिए। वैसे क्या करते हैं आप?
2: मेरा बिजनेस है छोटा सा।
4: अच्छा।
2: लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं।
4: क्या बात है, बोलिए ना।
2: उसमें कई लोग उधार में कई चीज मेरे से ले जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर समय पर पैसे ही नहीं लौटाते।
4: वैसे उधार देते हैं तो पैसे लौटाने की याद दिलाना गलत नहीं है,
2: लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद से बिना पूछे पैसे लौटा देना चाहिए ना। बार बार मांगने में भी शर्म आती है, कभी कभी तो लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तंग आ गया हूँ।
4: ये आपकी अच्छाई है कि आप मदद करते हैं, लेकिन बिजनेस में भावना से ज्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए।
2: हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता। लगता है किसी के जरूरत पर मदद की तो अपना भी अच्छा कर्म बनेगा।
4: आपकी भावना तो बहुत ऊंची थी, मदद करो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि आज के समय में कई लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे समय में परखने की शक्ति बहुत जरूरी है।
2: परखने की शक्ति?
4: जी, परखने की शक्ति, किसे उधार देना है या किसे नहीं। पहले उन्हें देखो, समझ लो और आगे से एक नियम बनाओ। उधार देने से पहले तय कर लो कि कब तक पैसा वापस आना चाहिए, और प्रेम से याद दिलाओ।
2: लेकिन हम कैसे किसी को जाने, हमें पहले से थोड़ी पता होता है कि ये धोखा देगा।
4: कई बार आपने देखा होगा किसी को उधार देते वक्त आपके मन में अंदर से आवाज आती होगी, ये शायद समय पर पैसे नहीं देगा, और वो सच में वैसे ही होता।
3: जी जी दीदी बिल्कुल, मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि वो लड़के भाग जाएंगे, और वैसे ही हुआ।
4: जी बिल्कुल, ये आपकी अंदर की आवाज आपको बता रही होती है, ये हमारी परख शक्ति है।
2: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, हमें अपने अंतरात्मा कुछ चीज करने से रोक रही होती है,
4: लेकिन हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं।
2: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ तो है,
4: लेकिन फिर भी हम निर्णय गलत लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर निर्णय शक्ति की भी कमी है, और आने वाले परिणाम देख दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति की भी कमी है।
2: लेकिन दीदी, अब तक के अनुभव के हिसाब से अब ना परखने की शक्ति की जरूरत है, ना निर्णय शक्ति की। मैंने तो ठान लिया, अब किसी को उधार देना ही नहीं जो बाद में सहन करना पड़े।
4: इसका मतलब अगर कोई सच में मजबूर है और हम उसे सहयोग करें, ये भावना भी अब कमजोर हो गई, अर्थात सहयोग की शक्ति की भी कमी हो गई।
2: आपकी बातों में गहराई तो है, लेकिन दीदी करें तो करें क्या, रातों में भी नींद नहीं आती, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं।
4: क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी कमी है, ये भी एक शक्ति है जो हम बातों को लगाम नहीं लगा पाते।
2: आपसे बातों में जीतना मुश्किल है दीदी, लेकिन उसका क्या जिनको पहले से उधार दे रखा है, और वह है भी अपने ही मित्र संबंधी, उनसे ना तो झगड़ सकते हैं ना उनके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
4: जिन्हें पहले से उधार दे रखा है, हो सकता है उनके जीवन में सच में ऐसी कोई समस्या है जो पैसे लौटा नहीं रहे, और वो उनके पास आने पर दे भी देंगे, बस उनके प्रति शुभ भावना रखे।
2: हाँ लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए बोला तो बोलते हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे।
4: ऐसे समय पर सामना करने की शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत को सहन नहीं कर सकते, उन्हें गुस्से से नहीं लेकिन धैर्यवत गंभीरता पूर्वक कड़े शब्दों में याद भी दिलाना चाहिए।
2: और अगर फिर भी ना दे तो?
4: हमारा उनके साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था जो हमने इस जन्म में चुका दिया, ऐसे सोचकर आगे बढ़ो। अच्छे बुरे को समंदर जैसा बड़ा दिल रख सब कुछ अंदर संभालो, समाने की शक्ति धारण करो।
2: ये बहुत बड़ी बातें हैं, समा तो लेते लेकिन दिल में और बातें फिर भी रह जाती हैं।
4: हाँ, क्योंकि समेटने की शक्ति की कमी है, व्यर्थ बातों को छोड़कर सिर्फ अच्छी बातों को समेट करके आगे बढ़ो तो मन पर बोझ नहीं रहेगा।
2: दीदी आखिर ये कितनी शक्तियां हैं, इन मन की शक्तियों को तो अच्छे से समझना होगा।
4: जी जरूर, सिर्फ इसे जानना ही नहीं, इसे बढ़ाना भी होगा। ये हमारी 8 शक्तियां हैं जो रोज राजयोग मेडिटेशन करने से बढ़ती है, और जीवन की हर समस्या में ये 8 शक्तियां हमें मदद करती हैं।
2: दीदी ये मन की शक्तियों को कैसे जानें, और ये मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्या आप हमें सिखा सकते हैं? मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है।
4: आपको इन मन की शक्तियों को जानने के लिए सेंटर पर रोज आना होगा। यहाँ पर 7 का कोर्स होता है जिसमें आपको इन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा।
2: ओ, दीदी इसकी कोई फीस?
4: नहीं भाई बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है।
3: जी दीदी हम जरूर आएंगे, पूरा 7 का कोर्स करेंगे।
4: ये भगवान का घर है, माना आपका अपना घर है।
2: जी दीदी सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांति देने वाला है, हम जरूर आएंगे।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति।

0: आज किस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे बातें मुलाकातें कार्यक्रम के विशेष मेहमान डॉक्टर रूपिंद्र जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप प्रिंसिपल हैं शिवालिक पब्लिक स्कूल में मोहाली में, जो खास है। तो आज हम लोग विशेष, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग विषय को लेकर बात करते हैं, तो कई बार हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें जो है कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आती रहती हैं। तो वो मुश्किलों को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, और किसी के उपस्थिति से आपके जीवन में जो चेंज आता है, बदलाव आता है, वो कैसे होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रुपिंद्र जी से। बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी हूँ मैं और बहुत बढ़िया मजे में हूँ।
0: जी, वर्तमान में आप कहाँ पर है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। जी,
1: अभी वर्तमान में मैं शिवालिक पब्लिक स्कूल सेक्टर 78 में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हूँ। और पहले मैं कॉलेज में थी, तो उसके बाद मैं पिछले 1.5 साल से अभी प्रिंसिपल हूँ स्कूल में।
0: तो आइए बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग का आज का विषय है, इस विषय को जो आपने चुना है, तो वो विषय को डिफाइन कीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो विषय आज खास हमें दिया है, और द पावर ऑफ लेटिंग गो एंड द वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंस इन समवन्स लाइफ, में किसी के जीवन में आपका उपस्थिति कितना इम्पोर्टेंट है वो भी एक काम करता है, और कैसे हम अपने अंदर एक पावर जनरेट करें जो चीजों को भूलते जाएं, छोड़ दें, पकड़ के नहीं रखे। क्योंकि कोई भी चीज पकड़ के रखते हैं तो आपको मालूम है क्या हो जाता है, किसी चीज को आप पकड़ सकते हैं तो कितना देर तक होल्ड करेंगे ना। तो आइए बात करते हैं इस विषय को, क्यों चुना, क्या इसके पीछे राज है। जी,
1: मेरी छोटी सी जो जिंदगी है उसमें मैंने दो चीजें सीखी हैं, बहुत दो बड़े बड़े लाइफ लेसन मैंने सीखे हैं। एक लाइफ लेसन जो है वो ये है कि हमें लेट गो कैसे करना चाहिए, और दूसरा लाइफ लेसन ये है कि प्रेजेंट उसी की लगती है जिसकी किसी की लाइफ में एब्सेंट उसी की लगती है जिसकी किसी की लाइफ में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम स्कूल की बात करें तो बच्चे स्कूल आते हैं, रजिस्टर में रोज उनका नाम चढ़ता है, तो अगर उनकी प्रेजेंट लग रही है तो ही उनकी एब्सेंट लगती है। हम कई बार ये बात करते हैं कि उसको मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो रिश्तेदार है चाहे कोई दोस्त है, लेकिन अगर हम उसकी लाइफ में वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर पाए, हम अपनी प्रेजेंट ही नहीं लगवा पाए उसकी लाइफ में, तो फिर हमारी एब्सेंट का भी कोई मतलब नहीं है। तो एक तो ये मैंने एक सबक सीखा है जिंदगी से, और दूसरा पावर ऑफ लेटिंग गो। बहुत बार बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अरे एक दुख आया मेरी लाइफ में, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और क्या मेरे ऊपर ही भगवान की दुखों की कृपा छाई हुई है? तो उस केस में मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी दुख को लेट गो कर देते हैं तो ही उस दुख से हमें छुटकारा मिल सकता है। अगर हम लेट गो नहीं करते तो उस एक छोटे दुख को खाने के लिए बड़ा दुख आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेंगे कि मान लो कोई छोटा दुख आ गया हमारी लाइफ में, दुख तो दुख है, छोटा या बड़ा तो क्या, तो हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में, छोड़ते नहीं है, दिन रात उसी में खोए रहते हैं, और फिर अचानक उस दुख को छोड़ने के लिए हम सुख में भी दुख को नहीं भूलते। सुख भी आता है तो भी हम कहते हैं कि अरे पर वो मेरा दुख है। तो क्या होता है, अचानक से एक बड़ा दुख आ जाता है जिंदगी में, और फिर वो छोटा दुख अपने आप छूट जाता है, क्योंकि बड़े दुख के सामने छोटे दुख की कीमत ही नहीं रहती। हम जिंदगी को इंजॉय नहीं करते, लेट गो नहीं करते, सुखों को इंजॉय नहीं करते, दुख को पकड़े रखते हैं। तो ये दो लाइफ लेसन्स मुझे जिंदगी से मिले हैं, तो मुझे लगा इसको दुनिया के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि दूसरे की लाइफ में अपनी प्रेजेंस लगवाइए, तभी आपकी एब्सेंस की कीमत आपको पता चलेगी, और दूसरा है कि किसी भी चीज को लेट गो करना सीखिए। किसी के प्रति कोई गुस्सा है, मन में कोई अशांति है, कोई दुख है, उसे लेट गो करना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना सीखिए। तो ये मेरे दो विषय जो आज मैंने चुने हैं वो है।
0: जी, डॉक्टर रुपिंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि जिंदगी में इस तरह के लेसन हमें जो है काफी मदद करते हैं, और दुख से राहत देने में भी काफी हेल्प करता है। तो आइए हमारे साथ विशेष कुलार जी, राकेश कुलार जी याद कर रहे हैं, और उसके बाद मानसी जी याद कर रही हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत याद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कुसुम जी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, और मैं चाहूंगा कुसुम एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो आपके पटल पर अभी है,
1: शांति।
0: तो मैं चाहूंगा डॉक्टर उपेंद्र जी को डेडिकेट करें। ओम शांति।
1: जैसे आपने एक बताया कि लेट गो करना चाहिए, उसमें मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहूंगी थोड़ी देर के बाद, कुछ मुझे भी स्पेशल होंगे। एक अच्छा सा गीत है जो मेरे एकदम दिल में, दिमाग में बैठे, तो मैं वही चाहती हूँ आपके भी।

0: बहुत बढ़िया।
1: कसुम जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर
0: हाँ
1: जी। कुछ पूछना चाहते हैं आप रुपेंद्र जी से?
0: जी,
1: पूछिएगा।
0: आपने जैसे बताया कि लेट गो करना चाहिए, इज इट सो इजी? बिकॉज क्या होता है, हम बोल सकते हैं लेट गो कीजिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इट्स नॉट सो इजी टू डू इट। हम आप जैसे कह रहे हैं कि हम जिसकी लाइफ में प्रेजेंटली लगा देते हैं तो वो प्रेजेंटली कायम रह जाती है, क्योंकि हम अपने आप को उसमें प्रेजेंट करते हैं, राइट? अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सामने वाला भी उस प्रेजेंटी को महसूस करता होगा, होगी, जो भी है। चाहिए मैं ये ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ, फ्रेंड्स, एवरीवन। तो जब प्रेजेंटी लग गई है, सामने वाले को एहसास हो गया है, तो इस बात की गहराई या वैल्यू होनी चाहिए आइदर साइड। सी द रिलेशनशिप, आई कम टू द पॉइंट कि इट्स अबाउट द रिलेशनशिप, राइट? रिलेशनशिप कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकती। अगर वन साइडेड है तो फिर प्रेजेंटी शुरू से ही नहीं लगी, ठीक है? अब लग गई है तो मतलब सामने वाले ने इसे एक्सेप्ट किया है, तभी हम उनकी लाइफ में हैं। बट वेन यू आर आउट ऑफ दैट लाइफ, हाउ कम वी कैन कंट्रोल दैट कि उस लाइफ में हम इजी हो जाएं या लेट गो कर लें? क्योंकि इतना आसान नहीं होता। ये मैं इसलिए लिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, लोगों से बातें होती हैं, बहुत इजी हो जाता है। मुझे उनको भी, आप जैसे मुझे समझा रहे हैं, मैं भी उनको ऐसे समझाती हूँ कि अरे
1: बिल्कुल
0: छोड़ दो, माफ कर दो, बट इट्स नॉट सो इजी, नॉट इजी। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे कुछ टिप्स या ऐसे कुछ बातें आप बताएं कि मैं भी कन्विंस हो जाऊं और इजीली किसी और को कन्विंस हो, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे दिमाग में होते हैं बातें, तो मैं चाहूंगी आपसे सुनना।
1: देखिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि इतना आसान नहीं है, इस बात को प्रैक्टिस करना पड़ता है। इट इज नॉट दैट इजी कि आपने एक बार में सोचा तो आपने लेट गो करना शुरू कर दिया। दोनों बातों को आपकी मैं कनेक्ट करूंगी यहाँ पर, कि आपने पहले बोला कि अगर ऑब्वियसली हमने कोई वैल्यू एडिशन की है किसी की लाइफ में, रिलेशनशिप दो तरफा ही होता है, हमारी प्रेजेंट उसकी लाइफ में लग गई है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इंसान वैसे ही बिछड़ जाता है भगवान की मर्जी से, यानी कि कोई दुनिया से चला जाता है। तो हमारे अगर हमारा कोई बहुत नियर या डियर वन जिसने हमारी लाइफ में अपनी प्रेजेंट लगवाई हुई है और वो इस दुनिया से चला जाता है, तो हमें उसकी एब्सेंस फील होती है। तो एब्सेंस उसी की फील होती है जिसकी प्रेजेंट लगी हुई है। अगर प्रेजेंट ही नहीं रहेगी तो एब्सेंस फील होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन हम क्या कर बैठते हैं, लेट गो नहीं करते उस दुख को, उस दुख को जाने नहीं देते हैं। तो ये सब आसान नहीं है कि किसी का नियर वन डियर का चले जाना, दुनिया से चले जाना या जिंदगी से चले जाना आसान नहीं है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमें बार बार अपने आप को ये रोज कहना पड़ता है कि ओके, आई विल लेट गो, मुझे इसको छोड़ना है, मुझे इससे निकलना है। अपने आप को बिजी करना पड़ता है, अपनी किसी हॉबी को हम परस्यू कर सकते हैं, अपने नए दोस्त बना सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं, रोज की रोज खुद से बात कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर हम रोज अपने आप से एक बात करेंगे, रोज अपने आप को वो ताकत देंगे, अपने आप को वो हिम्मत देंगे, तो हमारे जो एनवायरमेंट है वो भी हमारे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना शुरू करती है और हम उस चीज के प्रति अपने आप में एक ताकत फील करते हैं। और ये ताकत धीरे धीरे आती है। मैं नहीं कहूंगी कि वो एक दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, कई बार महीनों लग जाते हैं उस बात को प्रैक्टिस करने में। लेकिन मैं साथ में ये भी दोबारा से कनेक्ट करूंगी कि मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो उसको छुड़ाने के लिए आपके ऊपर नई कोई बला आएगी ही आएगी, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे हिसाब से ही एक्ट करने लग जाता है। अगर हम नेगेटिविटी सोचते रहेंगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और अगर हम पॉजिटिविटी सोचेंगे तो हम पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। जैसे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव दोस्त मिलने शुरू हो जाएंगे, हम अंदर से नेगेटिव हैं तो नेगेटिव लोग मिलने शुरू हो जाएंगे हमें। तो इस बात को आपको बस एक्सेप्ट करना है, मानना है और आगे बढ़ना है। आपको इसके लिए इफ्स एंड बट्स, अगर आप अपने मन में शक पैदा करोगे तो वो आपके लिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो नेगेटिव बात है, गलत बात है, ये एक पॉजिटिव बात है। और अगर हम इसके ऊपर अफर्मेशन से चलेंगे कि यस मुझे इसके साथ ही चलना है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। मानसी,
0: करेक्ट
1: मानसी जी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट गो एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस और लेट गो में एक बहुत ही थिन लाइन है। कई बार हम फॉरगिव नहीं करते किसी को और इसीलिए लेट गो नहीं हो पाता, तो बहुत ही थिन डिफरेंस है। और कई बार हम माफ नहीं भी कर पाते तो हम जाने देते हैं बात को, उसे हम लेट गो कहते हैं। कि हमें हमें पता है हम उस बात के लिए किसी को माफ नहीं कर पा रहे, हमारे मन में जा नहीं रही वो बात, मुझे लगता है कि मैं, मेरे मन से ये बात नहीं जा रही, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ सोचते हैं कि चलो जाने दो, माफ करो या ना करो, इस बात को भूल जाओ, इस बात को छोड़ दो। तो धीरे धीरे हम माफी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं जब हम लेट गो करते हैं। एक दिन हम लेट गो के लिए सोचेंगे, दूसरे दिन सोचेंगे, तीसरे दिन सोचेंगे, धीरे धीरे जब वो नेगेटिविटी हमारे मन से चली जाएगी तो हम उस इंसान को माफ भी कर देंगे, अगर हम शुरू में माफ नहीं भी कर पा रहे तो।
0: इनफैक्ट इन शॉर्ट आई विल से लेट गो इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो या थैंक
1: यस
0: यू सो मच।
2: चलिए, अच्छी कन्वर्सेशन हो रही थी। मानसी जी ने भी काफी अच्छा सवाल पूछा है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके पीछे जैसे कि हम लोग इन चीजों को समझने में और प्रैक्टिस करने में, एक बार नॉलेज मिल जाता है वो हमारा पहला स्टेप है, फिर उसे अप्लाइड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या हो जाता है, नॉलेज ले लेते हैं, यस यस भी करते हैं, लेकिन उनका अप्लाइड साइंस में वीकनेस आ जाता है, माना अप्लाई नहीं करते। तो
1: बिल्कुल
2: इसीलिए ये
1: बिल्कुल
2: चीजें जो है, फिर उनके अलग अलग फिर सवाल भी आ जाते हैं। अरे मेरे को तो समझ है, बोलने समझ है, लेकिन समझ और एप्लीकेशन के अंदर बहुत
1: बिल्कुल
2: ज्यादा डिफरेंस है। तो समझ आना गुड साइन है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना ये और अच्छी बात है। माना ये बार ऑन द डेस्टिनेशन, माना आप उस चीज को समझ लिया और कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो वो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है समझने में और करने में। दैट्स वो इम्पोर्टेंट है कि उसे कैसे हम लोग अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं या उसको अप्लाई में लाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि प्रेजेंस की बात भी हुई और फिर लेट गो की बात हो गई है, तो जीवन में इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग हर बार जो जैसे ही जीवन मिलता है हमें, तो ये चीजें कंटिन्यू ट्रायल एंड एरर के रूप में रहता है और हमें करना ही चाहिए इनमें। और ऐसा नहीं कि भाई एक बार समझ लिया फिर हो गया, ऐसा नहीं होता, ना ही वो बंद होता है, ये कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। तो ये भी कंटिन्यू आपको देखना है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने जो बताया है लेट गो का, या कुछ एग्जाम्पल दे के हमें अगर कुछ बता देंगे तो और अच्छा होगा, कि एक विद्यार्थी के जीवन में, जैसे कि आप एजुकेशनिस्ट हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों के जीवन में भी ये चीजें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपसे ज्यादा और कोई नहीं बता सकता। तो मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को लेट गो क्यों करना चाहिए, बताइए।
1: देखिए स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये जो बेसिक वैल्यूज हैं लेट गो की, ये छोटे होते से ही हमें बच्चों में डालनी चाहिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, आप देखते हैं स्कूल में, मान लो छोटी सी स्पोर्ट्स मीट है या कोई कंपटीशन है छोटा सा, तो आजकल क्या करते हैं पेरेंट्स की फर्स्ट आना है हमारे बच्चे को, उनके अंदर यही वैल्यू डाली जाती है कि फर्स्ट आना है हमारे बच्चे को, बेटा तुमने जीत के आना है, तुमने जीत के आना है। तो बेसिकली हम मैं भी कोशिश करती हूँ, हमारे स्कूल में तो हम ये हमेशा ही कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये बताया जाए कि जीतना जरूरी नहीं है, जीतना नहीं जरूरी, एक्सपीरियंस जरूरी है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है किसी चीज में जाने से, वो ही आपको एक स्मार्ट इंडिविजुअल बना रहा है। और अगर आप हार गए तो आप अपने आप को कम भावना में मत समझो, आप ये मत समझो कि मैं किसी से कम हूं, आपने हिम्मत दिखाई उसमें पार्टिसिपेट करने की और बहुत कुछ सीखा, तो आपको वो भावना को लेट गो करना है कि नहीं मैं कम नहीं हूं किसी से, अगर मैं मुझे हार, और पेरेंट्स को भी साथ के साथ उस भावना को लेट गो करना है। और अगर हम ऐसे ही छोटी छोटी भावनाओं को लेट गो करते जाएंगे तो जिंदगी में हार और जीत का जो डिफरेंस है उसको हम खत्म कर देंगे और सीखने की तरफ ध्यान देंगे कि मुझे कुछ किसी चीज में जाना है तो मुझे जीतने के लिए नहीं जाना, मुझे सीखने के लिए जाना है। विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर चीज को अगर इसी तरह से सोचने लगेंगे तो हम हार और जीत को एक तरफ छोड़ के लेट गो करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये तो छोटी स्टेज है, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं और आगे जाके उनको कॉम्पिटिशन्स लड़ने हैं, हमने बहुत सुना है कि बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे अपने आप को अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी हार को अपने अपने अस्तित्व को उसमें से निकाल नहीं पाते हैं। उनके माँ बाप ने उनको वो सिखाया ही नहीं है कि आपने किसी दुख को, किसी इस तरह की परिस्थिति को कैसे आपने छोड़ना है। तो
2: जी
1: स्टूडेंट लाइफ में आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू से ही प्रैक्टिस इसको की जानी चाहिए।
2: जी रुपेंद्र जी, काफी अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि कई बार होता है कि ज्ञान की बातें सिर्फ बड़ों के लिए है, ऐसा नहीं है, बच्चों के लाइफ में भी ये बहुत बड़ा काम करता है। और आज जो आपने बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बच्चों का हो सकता है कि समझने में उनकी क्षमता कम हो, लेकिन क्या होता है कि किसी एक चीज पे ज्यादा फोकसिंग करने के बाद अगर वो हारने लगता है या फेल होने लगता है तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि उसने इतना उस चीज को सामने रखा है कि उसके आगे की लाइफ उसको मालूम नहीं पड़ता और वही जिंदगी है, ऐसा लग जाता है फिर उसको। जीतना ही मेरा जिंदगी था या फर्स्ट आना ही मेरा जिंदगी था, स्पोर्ट्स में नंबर लेना ही मेरा जिंदगी था, ऐसा उनको फील हो जाता है। तो इतना एम्ब्रेस भी नहीं करना चाहिए हमारे पास, बच्चे फर्स्ट आना चाहिए, उसके लिए हमें उसको प्रमोट करना है या उसको बताते रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब उसको ये पूरा फिक्स कर दिया उसके दिलो दिमाग में तो उसके बाद उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहता। अगर वो फर्स्ट नहीं आ रहा तो वो फिर हो सकता है कि इस दौड़े, तो ये बहुत जरूरी है कि हमेशा हम लोग का एक मानव जीवन का यही है कि परफेक्शन को हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन देखा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, वो चीजें कंटिन्यूएशन में, लाइफ इज नॉट द एंड, वो एक जर्नी है, चलता रहता है, गलतियां होगी, सुधारेंगे, समझ आएगा, यही लाइफ है। इसको अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं एकदम स्ट्रेट पाउडर तो वो चीजें शायद मुश्किल होंगी। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग बड़े लोगों में भी, जैसे कि कई बार फैमिली में ये चीजें आ जाती हैं, फैमिली में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो हो सकता है कि बड़ी गलती हो गई लेकिन फिर उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करके या उसके बाद भी उसको समझा के वापस उसको रिवाइव करने की बात आती नहीं है फैमिली में। फिर वो फैमिली या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद फिर बहुत समय के बाद कभी समझ आए तो फिर मिलते हैं। हो सकता है कि छोटी बात के लिए भी हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बताना चाहेंगे? जी
1: मैं एक ना एक बहुत बार एक बात बोलती हूँ कि छोटों को जरूरी नहीं है कि सब कुछ सिखाया जाए, कुछ बातें बड़ों को भी सीखने की जरूरत होती है। तो बड़ों को मतलब बहुत सारी फैमिलीज में आपने ये देखा होगा कि भाई बहन में कोई झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बच्चों और माता पिता में झगड़ा हो जाता है। वहां पर क्वेश्चन किया जाता है बच्चे को कि आजकल के बच्चों की वैल्यूज कहाँ चली गई, आजकल के बच्चों में वैल्यूज नहीं है, वो किसी की इज्जत नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो कौन से बच्चे को आप पूछ के देखो कि क्या आप अपनी मम्मी को प्यार नहीं करते, क्या आप अपने पापा को प्यार नहीं करते, वो करते हैं, और लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं। फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, तो लोग कहते हैं कि डॉटर इन लॉ ने प्यार नहीं किया या सन इन लॉ ने प्यार नहीं किया। वो सब प्यार करते हैं लेकिन फैमिली का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है और कई बार बड़े गलतियां कर जाते हैं जो छोटों की लाइफ को खराब कर देती हैं। बड़े बैलेंस नहीं बना पाते जिसकी वजह से घर के जो बच्चे हैं वो उनका तालमेल आपस में बिगड़ जाता है। तो आई थिंक इस तालमेल को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बड़ों का थोड़ा समझदार होना। और ये जरूरी नहीं कि हर कोई बड़ा है तो वो समझदार हो गया ऑटोमेटिकली। हमने देखा है बहुत सारे लोग, कई बार हम किसी से सलाह लेने जाते हैं तो वो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, हमारी एज का भी हो सकता है, और हम कहते हैं कि अरे ये इंसान बहुत समझदार है, और कई बार हम किसी बुजुर्ग से भी सलाह नहीं लेते, हम कहते हैं कि नहीं इनको इतना पता नहीं है, इनको इतना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उम्र के साथ लाइफ एक्सपीरियंस आना जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंसेस के साथ ही लाइफ एक्सपीरियंस आते हैं, कि आपकी लाइफ के छोटी उम्र में भी ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं तो उसको आप ज्यादा सीख जाते हो। तो इसी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि माँ बाप ऑटोमेटिकली, माँ बाप नहीं, और क्या माँ बाप बनने का कोई कोर्स कराया जाता है हमारी सोसाइटी में? नहीं, वो भी हिट एंड ट्रायल से माँ बाप बने हैं, तो वो भी गलतियां कर सकते हैं। तो जहां ये एक्सेप्ट होगा कि माँ बाप भी कुछ गलती कर सकते हैं और वो बच्चों में रॉन्ग वैल्यूज डालेंगे डाल रहे हैं, वहीं पर शायद हमारी सोसाइटी इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाएगी।
2: बिल्कुल,
1: एक जयप्रकाश जी ने क्वेश्चन पूछा है।
2: जयप्रकाश जी ने सवाल पूछा है बड़े प्यार से। उन्होंने लिखा है, ये भी रिटायर ऑफिसर हैं बैंक के, SBI में थे और अभी रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और खास बात है कि खुद ही खाना बनाते हैं उन्होंने
1: उन्होंने क्वेश्चन
2: पूछा है
1: पूछा
2: व्हाट
1: है
2: इज
1: कि
2: द
1: क्या,
2: बेस्ट,
1: हाँ
2: उनका सवाल है व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच इन फैमिली फॉरगिवनेस और लेट गो, व्हिच वन इज फर्स्ट?
1: देखिए, वैसे तो ये इंडिविजुअल अपना अपना सोचना है, बट मेरा सोचना यही है कि लेट गो पहले आता है और फॉरगिवनेस बाद में आती है, क्योंकि हमें माफी तक पहुंचने से पहले प्रैक्टिस लेट गो की करनी पड़ती है, कि चलो छोड़ते हैं, चलो इसको जाने देते हैं। जब हम ये बार बार कहते हैं, अपने आप को, अपने दिमाग को ये बात बताना शुरू करते हैं कि इसने गलती की, मैंने गलती की, या उसने गलती की, जाने देते हैं, छोड़ते हैं, अपनी बेसिकली ईगो ही होती है ना, लेट गो करना मतलब अपनी ईगो को छोड़ देना। तो अपनी ईगो को जब हम छोड़ते जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली डेस्टिनेशन क्या है? माफी। फिर हम माफी तक पहुंच ही जाते हैं कि चलो माफ किया इस बात के लिए। और वैसे तो हम माफ करने वाले होते कौन हैं, क्योंकि गलती अगर दूसरे की तरफ से देखी जाए तो उनको हमारी लगती है, और हमारी तरफ से देखी जाए तो उनकी लगती है। तो दोनों तरफ से अगर लेट गो करेंगे तो एक दूसरे को माफ करने लायक पहुंच ही जाएंगे।
2: बिल्कुल। चलिए जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे सवाल पूछने के लिए। मानसी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अभी किसी के और सवाल हो तो जरूर कमेंट सेशन में डाल सकते हैं अपने नाम के साथ में। और आइए, जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से हम उस पावर को, लेट गो करना इतना आसान नहीं है जैसे कुमसुम जी ने भी बताया, तो उस एनर्जी को या उस समझ को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने तक कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव करें, वो वहां पर क्या मैकेनिज्म काम करता है, किस तरह से वो हम काम करें वहां पर? क्योंकि बोलना आसान है, सुनना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन समझ के बाद एप्लीकेशंस की जो गैप है उसको कैसे फुलफिल करें, वो चीज थोड़ा सा बताइए। क्या उधर मैकेनिज्म कोई काम करता है या कुछ वर्कआउट करने की जरूरत है या हो जाएगा?
1: देखिए, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि अपने दिमाग के थोड़े सवाल बंद करने पड़ते हैं। पहले तो बहुत बार ये आता है दिमाग में, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है या हमें लगता है कि मुझे लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं, इसने दिए हैं, उसने दिए हैं, तो हमें लगता है कि अरे मैं क्यों माफ करूं, ये तो बहुत बड़ी बात उसने मेरे साथ कर दी, तो मैं क्यों करूं माफ, अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, है ना? लेकिन अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस करें कि माफी नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं आज ये सोचती हूँ कि जो कुछ बुरा हुआ उसे मैं आज जाने देती हूँ अपने दिमाग से। आपने एक कहानी सुनाती हूँ आपको, छोटी सी, इस बात
2: जी
1: को
2: जी जी
1: लेकर के। एक इंसान था, उसको भगवान ने बोला कि जितने लोगों ने तुम्हारा बुरा किया है उनके नाम का एक एक आलू तुम एक बोरा ले लो और उसमें डालकर अपने साथ चलते रहो। तो उसने उसकी मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। अब शुरू में तो उसको ये फील नहीं हुआ कि ये मेरे को टास्क जो है वो मिल गया है। तो उसने क्या किया, मिले उसको जैसे जैसे बंदे कि अरे इसने मेरे साथ एक ये बुरा किया, एक आलू डाला, इसने मेरे साथ दूसरा, इसने भी बुरा किया, दूसरा आलू डाला, तीसरा आलू डाला, चौथा आलू डाला। अब हुआ क्या कि वो धीरे धीरे चलता गया और आलू भरते गए बोरे में, और बोरा उठाना मुश्किल हो गया। और उसके बाद भगवान ने कहा कि नहीं, रखना नहीं है, अब तुम्हें इसको लेके चलना है कुछ दिन तक। और आलू सड़ने लगे, गलने लगे, बदबू आने लगी उसमें से, भार का तो भार रह ही गया, आलुओं की जो बदबू थी वो भी साथ में रही, और वो बंदा खुद ही बीमार पड़ने लगा, कंधे दुखने लगे, सांस की परेशानी हो गई, बदबू आदार, कोई उसके पास आने से हिचकिचाने लगे लोग कि अरे ये तो बहुत गंदा इंसान है, देखो तो सही इसके पास से कितनी बदबू आती है। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा उसको, वो बोरा उतार कर फेंक देना पड़ा। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारा वही है, उसको हम चाहे आज समझ लें और चाहे कल समझ लें। आज से अगर हम शुरू करेंगे, एक दिन लेट गो करेंगे, एक दिन सोचेंगे कि आज इसको छोड़ देते हैं, कल

0: एक महीना लगा, हो सकता है आपको 2 महीने लग जाए लटकू करते करते। एवरी डे उठ के सोचना है कि आज सबको माफ किया, आज सबको माफ किया, जो हुआ जिंदगी में उनको सबको माफ किया आज से मैंने। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो ही ये एक रास्ता है इसका।
1: जी, जयप्रकाश जी ने धन्यवाद व्यक्त किया है, नाइस रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई, थैंक यू सो मच जयप्रकाश जी। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसमें, जैसे कि हम लोग एक शीतल जी ने भी याद भेजा है, शीतल पांचल, इफ वी कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन तो क्या होगा जिनका सवाल ये है।
0: हाँ शीतल जी, मैंने पहले भी कहा है, इससे हमें खुद से स्टार्ट करना है। हम हर इंसान को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपका जो सवाल है वो ये भी है कि अगर दूसरा बंदा जो है वो हमारे लिए कोई हार्मफुल इंसान बनता जा रहा है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हार्मफुल बनता जा रहा है, तो हमें उस इंसान को ही लेट गो करना पड़ेगा। हम उसकी उसकी जो हमारे लिए बिहेवियर है उसको लेट गो करने से पहले हमें उस इंसान को लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंसान हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हार्मफुल है, और हमें ये बात समझ में आ रही है कि वो इंसान कोई गैस लाइटिंग कर रहा है हमारे लिए, हमारे हमारी पर्सनैलिटी के लिए वो नहीं है, या मेरी पर्सनैलिटी उसके साथ दब रही है, वो मेरे विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहा। बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आप उस इंसान के साथ रहकर ग्रो कर रहे हो तो वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, अगर वो इंसान के साथ रहकर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो वो पॉजिटिव नहीं है। ग्रो करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी नौकरी पर लग गए या बाहर चले गए या कहीं, ग्रो करने का मतलब है कि क्या एक आप बेहतर इंसान बन पा रहे हो, क्या आप कोई नई चीजें अपने में डेवलप कर पा रहे हो। तो अगर वो आप अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हो, दूसरे इंसान के साथ रहकर कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया एवरी डे लर्न कर रहे हो, कुछ कुछ और नहीं तो कुछ सुंदर बन के बाहर जाने के लिए ही आप प्रयास कर रहे हो, तो अगर उस इंसान के साथ रहकर कुछ इस तरह का कोई भी एक एफर्ट आपकी लाइफ में अच्छापन ला रहा है तो आप उसकी बातों को लेट गो कर सकते हो अगर कभी आपको बुरा लगता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने कहा है वो आपकी लाइफ में प्रेजेंट ही नहीं लगवा पा रहा, तो फिर उसका एब्सेंट होना आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर आप उसी इंसान को ही लेट गो करना पड़ता है।
1: जी, डॉक्टर रुपिंद्र जी, बहुत ही अच्छी आपने बताया। एक और सवाल बना डिस्क्रिप्शन लिखा है शीतल जी ने आपके लिए कहा, लिखते हैं कि हाउ फेथ इन गुरु गॉड एंड प्रे पॉजिटिवली फॉर दैट पर्सन, देर इज अ चांस फॉर चेंज, एटलीस्ट वी विल गेट आउट वे ऑफ गेट आउट वे टू हैंडल और टू बाईपास।
0: हाँ मतलब हमें हमें या तो हैंडल करने का तरीका या फिर बाईपास करने का तरीका। तो मैंने आपको ये जवाब पहले ही दे दिया कि अगर तो वैल्यू एडिशन हो रहा है आपकी लाइफ में किसी भी तरह का तो आप उसको हैंडल करिए, अदरवाइज आप बाईपास ही ढूंढना पड़ेगा, क्यों इस इंसान को ही लेट गो करना पड़ेगा, उसके साथ जुड़े हुए थॉट्स को लेट गो करने की बजाय आप उस इंसान को ही लेट गो करिए। और ये बहुत जरूरी है। कई बारी हमारे सोसाइटी में ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है इंसानों को लेट गो करना, लेकिन आई थिंक जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े ये शब्द हैं कि अगर कोई सेपरेट हो जाता है अपने स्पाउस से तो उसको बहुत अच्छी नजर से कई बार नहीं देखा जाता, तो आई थिंक यही मान्यता हमें बदलनी है अपनी सोसाइटी की, कि हमें जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हम हमेशा राइट ट्रैक पर ही जा रहे हैं। अपने दिमाग को हमें समझाना पड़ेगा कि ये ट्रैक मेरे लिए ठीक नहीं है, अब इस रास्ते को लेट गो करना, छोड़ देना ही मेरी भलाई है।
1: चलिए, शीतल पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल पूछने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको फिर से डॉक्टर रुपिंद्र जी से जोड़ना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तब तक आप सोचिए, आप थोड़ा एप्लीकेशन पे काम कीजिए। और मुझे लगता है कि अर्चना जी का कुछ आया है डिस्क्रिप्शन, मैं जरूर अर्चना जी को सुनूंगा। और मैं चाहूंगा तब तक एक छोटी सी जो है लाइन, मैं चाहूंगा कुसुम जी आप सुनाइए एक अच्छा सा गीत का, कोई भी पहली कड़िया सुनाइए जो हमें पॉजिटिव सोचने पे।
2: मुझे ये गाना काफी अपीलिंग लगता है तो एक
1: जी
2: फिल्म का गाना, लेकिन राधा और कृष्ण का और मीरा का, इनके जो

0: ये गाने में ही अपने आप में काफी कुछ बता देते हैं, तो गाना चाहूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है।

0: मॉर्निंग।
1: जी जी जी चलिए कुसुम जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने
0: बहुत
1: सुनाया
0: अच्छा,
1: है,
0: बहुत अच्छा। मैं
1: बढ़िया सा, और मुझे लगता है कि
0: एक हार जीत की बात की थी तो मुझे लोगों को ये भी बताना है कि यहाँ पे भी ये गाने में कई बार ऐसे बातें होती है कि कहीं पे भी हार जीत ये ना सोच करके लाइफ को उतना पॉजिटिवली ट्राई
1: बिल्कुल
0: करता है।
1: पॉजिटिव वे में,
0: देखिए, इस
1: यही है
0: गाने से भी
1: यहाँ।
0: आपके ये निकल के आता है कि जिंदगी को देखने के दो नजरिए हैं। एक, जैसे बोला कि प्रेम दीवानी और एक दर्श दीवानी, तो एक ही मतलब जो कृष्णा है वो जिंदगी है, तो जिंदगी को देखने के ही दो नजरिए सामने आ रहे हैं कि एक को प्यार चाहिए और एक को सिर्फ दर्शन चाहिए। तो
1: दर्शन
0: दैट
1: चाहिए,
0: मीन्स
1: ये बात है,
0: जो जिस तरह से सोचता है तो उसका अपना पर्सपेक्टिव बन जाता है।
1: बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर उपेंद्र जी, अर्चना जी ने कुछ लिख के भेजा, बढ़िया सा लिखते हैं, बहुत अच्छा शो है, मैं डेली देखती हूँ आप लोगों को, मुझे भी आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। वेल सेड मैम, वैल्यू एडिक्शन करना करने से ही इनर प्रोग्रेस होगी। दिस इज अर्चना सिंह। अर्चना जी बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया, और इसके साथ शीतल पांचा जी ग्रेट रिस्पांस करके लिखा है उन्होंने, और फिर हमारे जयप्रकाश जी ने भी याद करके लिखा है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अपीयर्स टू बी द ओनली सॉल्यूशन। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके साथ हमारे सी जी लिखते हैं, इकोनॉमिकल स्टेबलमेंट इज इफेक्ट ऑन योर फॉरगिवनेस एंड लेट गो, क्या ये सवाल है उनका। चलिए अर्चना जी एंड जयप्रकाश जी, सीधे बहुत मानसिकी
0: इससे
1: का
0: पहले
1: सवाल है।
0: जो सवाल था कि क्या जो लेट गो है दैट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट या दैट इज द ओनली सोल्यूशन, बिल्कुल ऐसा तो नहीं मैं
1: सेल्फ
0: कहूंगी।
1: ट्रांसफॉर्मेशन अपीयर्स टू बी द ओनली सोल्यूशन,
0: सोल्यूशन
1: ये जय
0: सेल्फ
1: प्रकाश।
0: ट्रांसफॉर्मेशन, यस। देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं और एक लेवल तक आके हमारी आदतें पक जाती हैं तो हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो बदलाव पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बेटर है कि खुद बदलें और वो इंसान खुद बदले जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं। लेकिन जैसे मैं स्कूल में हूँ तो हम बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं, वही तो वैल्यू एडिशन है। हम उनमें वैल्यूज डालने की कोशिश करते हैं, वो पॉजिटिव वैल्यूज जो उनको लाइफ में काम आएंगी, और वो पॉजिटिव वैल्यूज हर स्टेप में उनको दी जाती हैं, वही उनकी लर्निंग है और वही हम उनको सिखाना चाहते हैं। लेकिन वो वैल्यूज घर से और स्कूल से दोनों तरफ से आएंगी तो नेचुरली वो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स बन के ही ग्रो करेंगे। और दूसरा, इकोनॉमिकल स्टेबलमेंट इज इफेक्ट ऑन योर फॉरगिवनेस एंड लेट गो। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है। यस, अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हैं तो आप वाकई में ही पॉजिटिव सोच सकते हैं ज्यादा, क्योंकि आपकी लाइफ का एक पार्ट सेट है। अब इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी में मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि लड़कियों को भी लड़कों के समान अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। जो ओल्ड लोग होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, उनको भी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वर्क करना चाहिए। हर किसी को अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी चाहिए। तो एज ए एजुकेशनिस्ट मैं तो इसके फेवर में हूँ, और मैं तो कहूंगी भी कि गर्ल्स को भी शुरू से ही पेरेंट्स को इस तरह से गाइड करना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल रहें। और दूसरी बात है, जो ओल्ड हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी अपना सब कुछ अपने बच्चों पे ना लुटाएं, उनको भी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। उनको भी इस तरह से अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी चाहिए कि उनके पास वो सफिशिएंट फंड्स रहें कि कल को कोई इस तरह की विपदा उनके ऊपर आ पड़ती है तो वो अपनी लाइफ को प्लान कर सके। और अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हैं और अपनी लाइफ को प्लान करके चलते हैं तो नेचुरली बाकी चीजें सब बाद में ही आती हैं आपके पास। फॉरगिवनेस और लेट गो जो है, ये फीलिंग्स ऑब्वियसली आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। एक कहीं एक लेवल आप अचीव कर लेते हो उसके बाद ये चीजें थोड़ी आसान लगती हैं, अदरवाइज ये मुश्किल तो खैर किसी भी लेवल पर नहीं है।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा मानसी जी एंड जयप्रकाश जी आपकी बातों से संतोष प्राप्त कर रहे होंगे। आइए एक और हमारे दोस्त हैं, कर्ण कर्नल साहब ने लिखा है, सोलंकी सर, ओम शांति ब्रह्म कुमार रमेश भाई जी, डॉक्टर रुपेंद्र जी और कुमारी कुसुम बहन जी और शांति शिव, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जा रही है। धन्यवाद, थैंक यू सोलंकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी जी ने भी धन्यवाद लिख के भेजा है और हमारे राकेश जी ने भी याद भेजा है, ओम शांति लिख के भेजा है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो अब हम लोग धीरे धीरे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक एक मैसेज के साथ हम लोग पूरा करेंगे, और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर डालिए, हम लोग आगे जो एपिसोड होंगे उसमें जरूर आपके सवाल हमको लेंगे। रुपेंद्र जी, मैं चाहूंगा जाते जाते सम अप करते हुए एक मैसेज क्या देना चाहिए।
0: मैसेज जो सोसाइटी के लिए मैसेज है वो है पॉजिटिव थिंकिंग का। बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रिलेटेड हैं, पॉजिटिविटी के साथ रिलेटेड हैं। हमें अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मोटिवेट करना है, हमें अच्छा सोचना है। अगर हम अच्छे विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो हमारे, जैसे वो कहते हैं ना कि मैंने जो अच्छा सोचा तो पूरी कायनात ने मेरे लिए अच्छा सोचना शुरू कर दिया। तो बेसिकली अपने आप को, अपने मन को स्ट्रांग हो जाता है जब हम पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, और पॉजिटिव चीजें सोचने से पॉजिटिविटी हमारे पास, हमारे आसपास रहने लग जाती है, पॉजिटिव लोग भी हमारे आसपास आने लग जाते हैं। सो मेरा सोसाइटी के लिए यही मैसेज है कि हमें अपने मन को, अपने मन के विचारों को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मानसी जी और एक सवाल लिख रही है, हाउ यू कैन सी मेल
0: मेल डोमिनेटेड
1: डोमिनेटेड
0: सोसाइटी,
1: सिचुएशन इन गोवा, कैसे करेंगे इसको, है ना।
0: देखिए मानसी जी, आपका सवाल जो है बेसिकली, अभी अभी हमने एक सवाल का जवाब दिया था कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें शुरू से ही इस तरह की विचारधारा रही है कि भी हम लड़के हैं या हम मेल हैं तो हम डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, और इसीलिए हमें जरूरत नहीं है कि हमें इन सब चीजों में पढ़ने की, फॉरगिवनेस में, लेट गो में। लेकिन आप विश्वास रखिए, जमाना बदल रहा है। दैट इज वेयर आई एम सेइंग, जरूरत है उन बच्चों को जो ग्रोइंग अप स्टेज में है उनमें ये बदलाव लाने की कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। लड़कियां बल्कि सोसाइटी का ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्तंभ है, उनके बिना हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। एक लड़का, जैसे कहते हैं ना, एक लड़का एडुकेट होता है तो वो खुद को एडुकेट करता है और आगे बढ़ता है, पढ़ता है, लिखता है। लेकिन एक लड़की जब पढ़ाई करती है तो वो अपने साथ पूरे परिवार को पढ़ा देती है, पूरे परिवार को बदल देती है। तो इसलिए मेल डोमिनेट सोसाइटी जो है उसको बदलने का वक्त आ गया है, और आपको और हमें ही उसको मिलकर के बदलना है। और अगर हम अपने आप को ये मान ले, ये पॉजिटिव थॉट्स कर ले कि जो चीजें हमें सोसाइटी में अच्छी नहीं लगती हमने वो सारी चीजें अपने बच्चों में नहीं डालनी है, हमने सोसाइटी में जो बच्चे हमारे साथ कहीं मिलते जुलते हैं उनमें हमने वो बदलाव लेकर आना है, तो यकीन मानिए ये बदलाव बहुत जल्द हमारी सोसाइटी में नजर आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए रुपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपने सम अप किया। और कई बार होता है ना ये चीजें, जैसे कोई नई लड़की शादी करके गई है, कुछ साल उनके साथ बिताती हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, वो सेपरेशन होने के बाद फिर इनके पास तो कुछ इकोनॉमिकल ऐसी स्टेबिलिटी रहती नहीं, घर वाले भी इतना वो नहीं करते, फिर उधर से तो सपोर्ट मिलना ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो चलिए, जयप्रकाश जी ने भी कुछ और लिख के भेजा है। लिखते हैं, आई एम गेटिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रॉम द स्टार स्पीकर विथ प्लीजिंग पर्सनैलिटी।
0: धन्यवाद,
1: चलिए, बहुत
0: बहुत
1: अच्छी
0: बहुत
1: बात
0: धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: है। तो मैं चाहूंगा कि एक मैसेज के साथ सम अप करते हैं हम लोग। जी
0: मैसेज जो है, मैंने अभी पॉजिटिविटी का मैसेज दिया था, आपने लेकिन एक और नई बात कही कि जो लड़कियां हैं वो अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं अपनी फैमिली के लिए, और कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है। उसके
1: जी जी जी
0: लिए बस यही है कि माँ बाप के लिए, हर माँ बाप के लिए, कि अपनी बेटी को स्किलफुल बनाइए, अगर आप पढ़ाई नहीं भी करवा पाते तो एटलीस्ट उनमें एक ऐसी स्किल, एक ऐसी कला उनके अंदर डालिए ताकि वो इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो अपनी उस कला को, अपनी स्किल को यूज करते हुए वो लाइफ में उन चैलेंजेस के पार उतर जाए। वैसे तो पढ़ाई करवाइए, कोशिश करिए कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाई कराइए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में ही कराइए लेकिन पढ़ाई कराने की कोशिश करिए। और अगर नहीं तो उनमें वो कोई स्किल डालिए ताकि वो स्किल के साथ वो उस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाए जो लाइफ में उनको पॉजिटिविटी चाहिए। और उन्हें मजबूर मत करिए किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती निभाने के लिए, उनका साथ दीजिए। अगर मैंने कहा है लाइफ में जरूरी नहीं कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, रास्ता बदलना हर किसी का हक है, तो उनको रास्ता बदलने के लिए प्रेरित करिए, उन्हें जबरदस्ती उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर मत करिए। तो
1: मजबूर
0: ये सारे पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है।
1: चलिए डॉक्टर रुपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स हमारे साथ शेयर किया और टू द पॉइंट आपने शेयर किया। मुझे लगता है कि ये एपिसोड अगर बार बार भी सुनेंगे, मुझे लगता है जो गैप है वो, जिस गैप को हम लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगी। राकेश जी ने भी धन्यवाद लिख के भेजा है, थैंक यू सो मच सभी को। और कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर दो गीत सुनाए और अच्छा लगा हमें। और डॉक्टर रुपेंद्र जी, फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चाहूंगा कि मैं अगली बार कुछ एक नए विषय को लेकर आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तो
0: बिल्कुल
1: चलिए मित्रों, आज
0: शुक्रिया,
1: के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
0: ओम शांति।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई मैंने बचपन में एक राजा की कहानी पढ़ी थी जो बात बात में कहता था, असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, है ना? भाई मीना की सहेली रोशनी के पिताजी भी तो बात बात में यही कहते हैं, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। चलो आज आपको रोशनी के पिताजी से मिलवाता हूँ। क्या कहा? मीना से मिलना है? अरे भाई मीना रोशनी के घर ही तो है, वो देखो। मगर ये मीना और रोशनी बार बार साबुन से अपने हाथ क्यों धोए जा रही हैं? आओ जरा देखे तो।
1: ओफो रोशनी, ये हल्दी का रंग तो नाखूनों से उतर ही नहीं रहा।
2: रोशनी, रोशनी बेटी।
1: नमस्ते चाचा जी।
2: अरे मीना तुम खुश रहो बेटी, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह।
1: चाचा जी, माँ ने चाची के लिए कुछ मसाले भेजे थे, वही देने आई थी।
3: वही देने आई थी, जीरा हल्दी लाई थी।
2: भाई तुम्हारी चाची तो एक दो दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ रहने गई हुई है।
1: जी रोशनी ने बताया अभी।
2: अरे तुम दोनों के नाखूनों पे ये पीला रंग कैसे लग गया?
4: पिताजी वो थोड़ी सी हल्दी जमीन पर गिर गई थी, मीना और मैंने उसे उठाया, लेकिन अब उसके पीले दाग हम दोनों के नाखूनों से उतर ही नहीं रहे। अब हम क्या करें पिताजी?
2: उदास क्यों होते हो बच्चों? सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। इन पीले दागों को भगाएगा ये नींबू।
1: नींबू?
2: ये मैंने नींबू को काटा। हाँ ये लो बच्चों, दोनों अपने अपने नाखूनों पे ये नींबू रगड़ लो, फिर देखना।
4: अरे वाह मीना, दाग तो निकल गए।
1: हाँ रोशनी मेरे भी।
2: देखा मैंने कहा था ना, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं।
3: कुछ मुश्किल नहीं, चाचा जी कहते हैं सही।
4: पिताजी लेकिन अभी एक और मुश्किल काम है।
2: वो क्या रोशनी?
4: अपनी घड़ी देखिए।
2: हाँ हाँ 7:45 ही तो हुए। घड़ी देख के वक्त बताना भी कोई मुश्किल काम है।
4: पिताजी आज स्कूल में पीटीएम है और आपको हमारी टीचर बहन जी से मिलना है।
2: ओहो मैं तो भूल ही गया था।
4: अब हम 15 मिनट में स्कूल कैसे पहुँचेंगे? हाथ धोने में भी इतना वक्त लग गया।
2: चिंता क्यों करते हो बच्चों, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। चलो हम तीनों जल्दी जल्दी स्कूल चलते हैं।
0: मीना रोशनी और रोशनी के पिताजी तेजी से स्कूल की तरफ भागे।
2: मीना तुम्हारे माता पिता नहीं जाएंगे टीचर बहन जी से मिलने?
1: चाचा जी माँ और बाबा बाद में आएंगे।
2: क्यों भाई बाद में क्यों?
1: क्योंकि बहन जी ने उनको 8:30 आने के लिए कहा था।
4: पिताजी अभी 8 बजने में कितना समय है?
2: अभी पूरे 10 मिनट है रोशनी। एक काम करते हैं, उस छोटे वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। पुलिया पार करते ही सामने स्कूल।
0: लो भाई आखिर मीना रोशनी और रोशनी के बाबा ठीक 8 बजे स्कूल पहुँच ही गए।
2: नमस्ते बहन जी।
5: नमस्ते भाई साहब।
2: बहन जी आज तो सब बच्चों के माता पिता ने आपसे मिलने आना था ना?
5: जी हाँ भाई साहब।
2: लेकिन यहाँ तो थोड़े से ही बच्चे हैं और किसी के माता पिता भी नजर नहीं आ रहे हैं।
5: अब क्या बताऊं भाई साहब, पिछले कुछ महीनों से बहुत कम बच्चे ही स्कूल में आ रहे हैं और जो आते हैं उनके माता पिता को स्कूल में कोई रुचि ही नहीं है। ना तो वो लोग टीचर से मिलने ही आते हैं और ना ही स्कूल के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं।
2: ये तो बहुत बुरी बात है बहन जी। टीचर से मिलने उनसे बातचीत करने तो हर बच्चे के माता पिता को जरूर आना चाहिए, वरना उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई खेल कूद में कैसा कर रहे हैं। और जब उन्हें ये बात पता ही नहीं होगी तो वो अपने बच्चों के विकास में अपना योगदान भी नहीं दे पाएंगे। इस बारे में तो कुछ करना होगा।
1: बहन जी मेरे बाबा भी कल माँ को यही बता रहे थे कि आजकल बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे।
5: लेकिन कुछ तो करना होगा। अगर मेरे पास समय होता तो मैं घर घर जाके हर बच्चे के माता पिता से ये प्रार्थना करती कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें और खुद भी स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लें।
2: सब हो सकता है बहन जी, कुछ मुश्किल नहीं।
1: माँ बाबा।
5: नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, अभी मीना आप ही के बारे में बात कर रही थी।
6: अच्छा क्या कह रही थी मीना बेटी?
0: बहन जी ने मीना के माँ और बाबा को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मीना के बाबा बोले,
6: बहन जी बहुत से लोगों को तो अपने कामकाज से ही फुर्सत नहीं मिलती।
7: बच्चों के भविष्य से बढ़कर और कौन सा काम है जी?
6: तुम ठीक कह रही हो मीना की माँ। माँ बाप के स्कूल में आने से उनकी टीचर जी से बातचीत करने के कई फायदे हैं।
2: सही कहा मीना के बाबा। इससे न सिर्फ उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पता लगता है, बल्कि बच्चे का भी मनोबल बढ़ता है।
7: जी भाई साहब, स्कूल की गतिविधियों में योगदान करने से सबका फायदा है, स्कूल का, गांव का और बच्चों का।
6: हम सबको मिलके गांव के लोगों को इस बारे में बताना पड़ेगा।
0: मीना के माता पिता और रोशनी के पिताजी ने यह फैसला किया कि वो तीनों पूरे गांव में जाकर हर बच्चे के माता पिता को बच्चों के स्कूल जाने के फायदे बताएंगे। पूरे एक महीने तक उन तीनों ने सभी बच्चों के माता पिता से बात की और उन्हें स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के फायदों के बारे में समझाया। और अगले महीने जब बहन जी ने सब बच्चों के माता पिता को मिलने के लिए स्कूल बुलाया।
8: जी बहन जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आज से मैं भी खेत से आने के बाद अपने पप्पू को पढ़ाया करूँगा। अच्छा बहन जी नमस्ते।
5: नमस्ते जी।
2: नमस्ते बहन जी, अब हमारा नंबर है ना?
5: नहीं भाई साहब, बहुत से बच्चों के माता पिता आपसे काफी पहले आ गए थे, पहले उनसे मिल लूं। अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा।
2: कोई बात नहीं बहन जी, हम आपसे मिलकर ही जाएंगे। देखा मीना के बाबा, हमारी मेहनत रंग ले ही आई।
1: चाचा जी, बाबा, बहन जी ने आपको धन्यवाद कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप दोनों ने एक बहुत मुश्किल काम कर दिखाया है।
2: देखा मीना, मैं ना कहता था, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं।
0: भाई वाह, रोशनी के पिताजी की बात बिल्कुल ठीक है, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू क्या नया कर रहे हैं।
1: कोई कार्यक्रम हो या फिर जब भी टीचर बुलाएं,
3: हर बच्चे के माता पिता स्कूल जरूर आएं।
0: भाई वाह, क्या कविता बनाई है अपनी मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया।
1: अब कहाँ चले?
0: सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल ठीक, अब हम चलेंगे खेलने मीना की क्लास में।
2: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार नाम बताऊंगी, सबके अंत में महल है। उन चारों में से एक नाम ऐसा है जो किसी खास वजह से बाकी तीन से अलग है। तुम्हें मुझे वही अलग नाम बताना है। तो शुरू करें आज का खेल।
3: जी बहन जी।
2: तो वो चार नाम हैं ताजमहल, हवा महल, जल महल और मुमताज महल। फिर से बोलती हूँ, ताजमहल, हवा महल, जल महल और मुमताज महल। अब बताओ कौन बैठा है बीच में छुपकर?
4: हवा महल।
2: वो कैसे दीपू?
4: वो तो बहन जी पता नहीं।
2: चलो चलो जल्दी से सोचो, ताजमहल, हवा महल, जल महल और मुमताज महल।
5: मैं समझ गई बहन जी।
2: हाँ हाँ मीना बताओ।
5: मुमताज महल।
2: सही जवाब। लेकिन मीना ये तो बताओ कि मुमताज महल ताजमहल, हवा महल और जल महल से अलग कैसे है?
5: बहन जी आगरा में स्थित ताजमहल और जयपुर में स्थित हवा महल और जल महल इमारतों के नाम है, जबकि मुमताज महल एक रानी का नाम है।
2: बिल्कुल ठीक। बच्चों पता है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक बहुत सुंदर महल बनवाया था जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और उस महल का नाम है
3: ताजमहल।
2: शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
3: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, दूसरा पाठ, लंबा और छोटा, पृष्ठ 13। कितनी दूर है बिंदु? यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दो बच्चे दिखाए गए हैं और साथ ही हिंदी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है? एक स्केल से इसे नाप कर देखो। क्या तुम्हारा अंदाजा सही था? कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं? अपने उत्तर की जांच करो। कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास हैं? अपने उत्तर की जांच करो। शिक्षकों के लिए निर्देश, बिंदुओं को सफेद कागज पर बनाकर बच्चे इस खेल को दो दो करके खेल सकते हैं और बच्चे अपने साथियों से दूरी को बताने के लिए कह सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हुए बच्चे फर्श पर खेलते हुए अधिक दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस पाठ में लगी किनारी का उपयोग भी स्केल के रूप में किया जाना चाहिए। पृष्ठ 14। कौन सी छोटी रेखा? अकबर एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। राजा बोला,
2: बीरबल, यहां एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो।
1: बीरबल ने कहा,
3: देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई।
1: यहां पर बीरबल और अकबर का चित्र है। अकबर की बनाई रेखा भी बनी है और साथ ही उसके नीचे बीरबल अपनी रेखा बना रहा है। इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? अब तुम कोशिश करके देखो। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। यहां पर एक बच्चे को सीधा हाथ करके दिखाया गया है। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। यहां पर एक कप का चित्र है। इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ। यहां पर एक झाड़ू का चित्र है। इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल और बनाओ। यहां पर एक चेहरे का चित्र है जिसके सिर पर एक बाल दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 15। तुम कितने लंबे हो गए हो? क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? कितने लंबे? रिक्त स्थान सेंटीमीटर। क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं? पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले में लिखा है मित्र का नाम, दूसरे में पिछले वर्ष की लंबाई सेंटीमीटर, तीसरे में इस वर्ष की लंबाई सेंटीमीटर, और चौथे में लिखा है पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं। अब यहां दी गई तालिका में तुम अपने मित्रों का नाम लिखो और उनके पिछले वर्ष की लंबाई और इस वर्ष की लंबाई के साथ ये भी लिखो कि वो पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं। यहां पर सबसे नीचे बाईं तरफ एक बच्चे का चित्र बना है और दाईं तरफ एक छोटी लड़की का चित्र है। झुंपा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झुंपा की लंबाई से 2 गुना था। झुंपा कितनी लंबी है? रिक्त स्थान सेंटीमीटर। झुंपा ने कहा,
4: अरे इसकी लंबाई मेरी लंबाई से एकदम दुगनी है।
1: सोचो, क्या ये व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? अगर ये सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? रिक्त स्थान, उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 16। अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता दौड़। ये लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वो उससे लगभग 6 मीटर दूर है। उसके पीछे रेहाना है। कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। चित्र को देखो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। इस पृष्ठ पर अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता का चित्र है, जिसमें सबसे आगे अरुंधति को दिखाया गया है, जो समाप्ति रेखा से केवल 6 मीटर की दूरी पर है। उसके पीछे रेहाना दौड़ती दिखाई दे रही है और उन दोनों के पीछे कोंकणा और उमा दिखाई दे रही हैं। क, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? रिक्त स्थान मीटर। ख, कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे है? रिक्त स्थान मीटर। ग, कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर हैं? रिक्त स्थान मीटर। क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है? इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दौड़ के लिए रिक्त स्थान किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 3000 मीटर की दौड़ के लिए रिक्त स्थान किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। पृष्ठ 17। क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। स्टेडियम के 10 चक्कर बराबर रिक्त स्थान किलोमीटर। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के रिक्त स्थान चक्कर लगाने पड़ेंगे। लंबी कूद, ये लड़कों की लंबी कूद है। यहां पर एक चित्र है जिसमें बच्चों को कूदते हुए दिखाया गया है। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। अब तुम स्वयं बताओ, गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी? रिक्त स्थान। कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो? रिक्त स्थान मीटर। फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। रिक्त स्थान। पृष्ठ 18। नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। यहां पर एक तालिका है जिसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में लिखा है खेल, दूसरे हिस्से में विश्व कीर्तिमान और तीसरे में भारतीय कीर्तिमान लिखा हुआ है। खेल, ऊंची कूद पुरुष, विश्व कीर्तिमान जेवियर एस, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। भारतीय कीर्तिमान चंद्रपाल, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। खेल, लंबी कूद पुरुष, विश्व कीर्तिमान माइक पी, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। भारतीय कीर्तिमान अमृतपाल, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। खेल, ऊंची कूद महिला, विश्व कीर्तिमान स्टेफका के, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। भारतीय कीर्तिमान बॉबी ए, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। खेल, लंबी कूद, महिला, विश्व कीर्तिमान, गालिना सी, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। और भारतीय कीर्तिमान अंजू जॉर्ज, 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। दी गई तालिका से पता करो। 1, चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? 2, बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? याद रहे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आधा मीटर बराबर रिक्त स्थान। 3, गालिना की लंबी कूद लगभग क 7 मीटर है, ख 7.5 मीटर है और ग 8 मीटर है। 4, महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है? रिक्त स्थान। 5, यदि माइक पी रिक्त स्थान सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। 6, किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है? क स्टेफका के, ख चंद्रपाल, ग

इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। यहां पर एक गोलाकार बगीचे का चित्र है जिसकी परिधि 400 मीटर है। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वो रिक्त स्थान किलोमीटर और रिक्त स्थान मीटर दौड़ा। कितने कमरे ऊंचा। यहां पर कुतुब मीनार का एक चित्र बना है। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है? अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे। रिक्त स्थान। बताओ कि तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया। पृष्ठ 20। कोझीकोड से थैलसरी तक। सुबोध इस स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझीकोड जा रहा है। मंजनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थैलसरी जा रही है। कोझीकोड थैलसरी से कितनी दूरी पर है? रिक्त स्थान। यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सुबोध और मंजनी को दिखाया गया है, साथ ही उन दोनों को विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाया गया है। तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है? मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वो तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वो चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वो 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में वो स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। यहां पर एक स्कूल का चित्र, एक ताल का चित्र, एक सड़क का चित्र और साथ ही मोमन और उसके स्कूल का चित्र बना है। स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है? रिक्त स्थान। क्या ये 1 किलोमीटर से अधिक है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 21। पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। यहां पर एक तालिका बनी है जिसके 2 भाग हैं। पहले में लिखा है दोस्त और दूसरे में घर से स्कूल तक की दूरी। इस तालिका को तुमने स्वयं पूरा करना है। तुम सब में से कौन स्कूल के सबसे पास रहता है? रिक्त स्थान। कौन स्कूल में सबसे दूर रहता है? रिक्त स्थान। कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? रिक्त स्थान। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर रहता है? वो स्कूल किस प्रकार आता है? रिक्त स्थान। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम इस तालिका को देखकर पूरा करो। अनुमान लगाओ और पता करो। 1. एक रील में कितना लंबा धागा होता है? रिक्त स्थान। 2. पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है? क्या वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है? रिक्त स्थान। 3. अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को 1 किलोमीटर की सैर पर ले जाएं, जिससे कि उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी का अनुमान हो। यह अच्छा रहेगा कि यदि रास्ता बिल्कुल सीधा हो। पृष्ठ 22। काश ऐसा हो पाता। यहां पर एक चित्र बना है जिसमें हवाई जहाज, एक पक्षी और एक घर का चित्र है, साथ में एक बच्चे को पतंग के साथ दर्शाया गया है। यहां पर एक कविता भी लिखी है जो इस प्रकार है। काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उठ पाता, इस इमारत से भी ऊपर। काश मैं एक चिड़िया होता
ताकि मैं

उड़ पाता इस पतंग से भी ऊपर। काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता इन चिड़ियों से भी ऊपर। काश मैं एक हवाई जहाज होता ताकि मैं बहुत ऊपर उठ पाता बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। इस चित्र में एक बच्चे को पतंग उड़ाते हुए भी दिखाया गया है। पता लगाओ। एक, तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है? वो कितने कमरे ऊंची है? रिक्त स्थान। दो, एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है? क्या वो कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है? रिक्त स्थान। तीन, एक हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ सकता है? क्या वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है? और चार, क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बहुत अच्छा रहेगा यदि बच्चों के अनुभवों की चर्चा की जाए, विशेष रूप से जब वो बादलों और उनकी ऊंचाई की बातें कर रहे हों। तो संबंधित ऊंचाई का अनुभव मन से करें और लंबी दूरियों का अनुमान लगाना शुरू करें। इसी के साथ दूसरा पाठ लंबा और छोटा यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: शांति, मैं खुशदान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रूहानी, तुम्हें पता है कल मैंने सपने में क्या देखा?
2: क्या देखा?
1: हम दोनों तो कश्मीर घूमने गए थे।
2: कौन दोनों?
1: अरे तुम और मैं, और कौन दोनों?
2: वाह, कश्मीर! वैसे मैं तो हिमाचल गई हुई हूँ।
1: कोई बात नहीं, मेरे साथ कश्मीर भी चल पड़ना।
2: अच्छा,
3: कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो भाई आप लोग?
4: कहाँ घूमने की बातें हो रही है भाई?
1: दीदी कश्मीर।
4: कश्मीर जा रहे हो? और कहाँ, हिमाचल भी सुना था मैंने तो।
2: अरे दीदी, सपने में जा रहे हैं।
4: अच्छा, हाँ
1: असली में तो जा नहीं सकते, इसलिए सपनों में ही जा रहे हैं।
4: सपनों में तो कहीं भी घूम सकते हैं ना।
2: अरे दीदी, असली में तो मैं भी गई हूँ हिमाचल।
4: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, असली में घूमने की बातें भी करेंगे, लेकिन आज आपके सपनों के बारे में बात करते हैं बच्चों की दुनिया में। सब लोग तैयार है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बच्चों की दुनिया, क्योंकि बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही अमेजिंग। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ा है?
5: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
8: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती
9: हूँ। मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ।
10: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
4: ओके, तो हमारे साथ है बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे और इनके बहुत सारे सपने, है ना? सपने तो सब देखते हैं।
11: हाँ।
4: कोई ऐसा है जो सपने बिल्कुल नहीं देखते?
11: नहीं।
4: खुली आंखों से देखते हो कि बंद आंखों से?
11: दोनों से।
4: तो दोनों से देखते हो। तो चलो पहले बात करते हैं बंद आंखों वाले सपनों की, यानी रात को आने वाले सपनों की। तो आप लोग को सबको सपने आते हैं क्या?
11: हाँ।
4: रोज?
11: हाँ।
4: अच्छा ऐसा?
11: हाँ।
4: ओके,
2: कभी
4: कभी कभी आते हैं। रोज किसको आते हैं?
1: दीदी मेरे को।
2: मेरे को।
4: ओके, और ठीक है, किसी किसी को रोज आते हैं, किसी किसी को कभी कभी आते हैं। तो एक एक करके अपने सपने शेयर करेंगे सब लोग, क्या क्या क्या सपने आते हैं, कौन बताएगा पहले?
2: दीदी मेरे को तो ऐसा होता है कि कभी कभी लगातार आ जाते हैं और बीच बीच में गैप हो जाता है, और बहुत बार तो डरावने सपने भी आते हैं, भले ही मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी हो तब भी। और कभी कभी ऐसा लगता है मैं बिल्डिंग से गिर रही हूँ नीचे, अपने बेड पर बैठे बैठे ही।
4: और डरावने सपने कैसे आते हैं?
2: जैसे मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया, ऐसे मैं इधर उधर भागती हूँ, चिल्लाती हूँ, फिर मेरी आँख खुलती है तब मैं सच में रो रही होती हूँ।
4: रोना जाता है?
2: हाँ।
4: फिर क्या करते हो जब उठते हो तब?
2: कुछ नहीं, आंसू पोंछ के फिर सो जाती हूँ।
4: अच्छा ठीक है, और किसको क्या सपने आते हैं भाई?
5: दीदी एक बार ऐसे आया कि मैं पलंग पे सो रही हूँ, पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं नीचे गिर रही हूँ, पर फिर उठ के देखा तो मैं पलंग पे ही थी।
4: ऐसा लगता है ना हम गिर रहे हैं, और सच में वो लगने लगता है बॉडी को भी कि हम नीचे गिर रहे हैं, मगर नहीं गिर रहे होते हैं।
2: एकदम बॉडी ऐसी लगती है जैसे नीचे की तरफ वेट जा रहा है सारा।
4: लेकिन असल में तो वो बस एक सपना होता है। ओके, और कौन बताएगा अपने सपनों के बारे में?
1: दीदी एक बार तो मैंने सपनों में मूवी बनाई थी खुद।
4: अच्छा,
1: कभी उसमें डोरेमोन आ रहा था, कभी एलियंस आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी भूत आ रहे थे, पता नहीं सब मिक्सचर होके आ रहा था।
4: ओके, मतलब कार्टून्स भी आ गए उसमें, एलियंस भी आ गए उसमें,
1: सब कुछ।
4: एलियंस वाली कोई मूवी देखी थी क्या आपने?
1: नहीं, वैसे मन में आ गया।
4: ओके ठीक है, ऐसा भी होता है भाई, मूवी बन जाती है सपनों में, कभी कभी मिक्स हो जाता है ना सब कुछ।
9: दीदी मेरे सपनों एलियन आए धरती पर, मेरे से हाथ मिला के वापस चले गए।
4: एलियन धरती पर आके आपसे
9: हाथ मिलाए, मेरे परिचय लिया, चले गए वापस, बोलते आपसे दोबारा मिलने आएंगे।
4: अच्छा, ये बोल के गए कि दोबारा मिलने आएंगे?
9: हाँ, पर पता नहीं दीदी कौन सी भाषा में बोल के गए,
4: लेकिन आपको समझ में आ गया।
9: हाँ।
4: वाह, यानी आपने एलियन वाली भाषा सीख ली है।
9: हाँ।
4: ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग सपना था काफी। आपको कोई सपना आया शिक्षा?
7: मुझे कभी कभी सपने आते हैं, और सपनों में ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स आते हैं, कभी वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैं भाग रही होती हूँ, और फिर मैं ना कभी कमरे में बंद हो जाती हूँ, कुंडी लगा लेती हूँ कि कहीं वो आ ना जाए, मुझे डर लगता है, और मैं सपने में ये ना उठ जाती हूँ, और उठती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है हाँ अभी भी यहाँ कहीं है, पर ऐसा होता नहीं है, डरती हूँ, फिर उठती हूँ, थोड़ा आंसू वगैरह निकल रहे होते हैं, पोंछती हूँ, थोड़ी देर जगती हूँ, उसके बाद लाइट ऑन करके थोड़ी देर बैठती हूँ, जब लगता है कि हाँ अब नहीं आएगा सपना, तब लाइट ऑफ करके सो जाती हूँ।
4: तो मतलब आप पहले खुद को पहले अश्योर कर लेते हो कि ये सपना था
7: हाँ.
4: और मैं ठीक हूँ और यहाँ कोई भी नहीं आसपास, फिर वापस सोते हो.
7: हाँ.
4: ओके ठीक है. ऐसा होता है, डरावने सपने भी आते हैं कभी कभी, किसी के में तो एलियंस आ जाते हैं, किसी के में जानवर भी आ जाते हैं. बिल्कुल.
7: ज्यादा सपने कभी कभी तो बादलों पे चले जाते हैं.
4: बादलों पे चले जाते हो?
7: हाँ.
4: क्या करते हो बादलों पे?
7: मैं एक बार सपने में एक से दो बार ही गई हूँ बादलों पे. तब गई थी मैं तो उड़ने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे.
4: अरे वाह, तब तो बड़ा अच्छा लगा होगा.
7: हाँ, वो सपना मेरा सबसे बेस्ट सपना था.
4: बादलों में उड़ने में तो मजा हाँ. आता है ना.
7: हाँ.
4: पर रियल में पंख होते तो कितना अच्छा लगता ना.
9: ये आपसे एक बात पूछो, यदि आपको कभी सपने आए हैं?
4: बताऊंगी मैं भी बताऊंगी, पहले आप लोग तो कंप्लीट कर लो.
12: मेरे को तो बहुत डरावना सपना आया था, मैं पूरे 5 बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गई.
4: अरे बाप रे, फिर आपको तो डर,
12: बहुत डर लगा.
4: फिर नींद खुली आपकी? फिर क्या किया? नींद खोला
12: फिर मुंह धोया, फिर बाद में तो नींद ही नहीं आ रही थी.
4: ओहो,
12: थोड़ी देर बाद नींद आई.
4: फिर दे बात नहीं, क्योंकि डर गए होते हैं ना तो एकदम से कभी कभी नींद नहीं आती. रूहानी कुछ बोलना चाह रहे हैं हम?
6: हाँ दीदी, मेरे को ना सबसे अजीबो गरीब सपना आया था.
4: क्या?
6: मैंने समाधि ले ली.
4: हाँ? अच्छा, ओके.
6: चिता पर बैठ रही थी मैं खुद मरने के लिए.
4: अच्छा.
6: हाँ, वो भी रो के.
4: रो रहे थे आप?
6: हाँ.
4: ओके, उसके बाद नींद खुली या नहीं?
6: खुली थी, तब भी रो रही थी मैं, फिर आंसू पोंछ के सो गई.
4: तो घर में किसी को बताते हो आप लोग जब आपको? हाँ, ऐसे सपने आते
6: हैं? ऐसा सपना आया था ना, तब मेरे घर वाले सब साइड में खड़े थे, देख रहे थे मेरे को. फिर मेरे को पता चला कि उसमें ना मेरे को कैंसर हो गया था, इसलिए मैं खुद ही मर रही थी.
4: अच्छा. हाँ. बाप रे. तो आपके घर वालों को जब आप उठे तब बताया आपने कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना आया?
9: नहीं, तब तो सब सो रहे थे. अगले दिन बताया.
4: तो क्या बोला सपने?
6: ऐसा कैसा सपना है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था.
4: किसने थोड़ी ऐसा सोचा, पता नहीं कैसे आ गया ना.
6: हाँ.
4: तो आप लोग क्या करते हो जब सपना आता है? तो सो तो जाते हो, अगले दिन फिर बताते हो सबको घर में?
12: हाँ, बताते हैं.
6: कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपना ही मन से चला जाता है, थोड़ा थोड़ा याद आता है,
4: भूल जाते हैं सपने.
6: हाँ.
4: हाँ. ओके, और आप लोग जब बताते हो तो फिर क्या बोलते हैं घर वाले?
7: मैं तो सपना ही भूल जाती हूँ अपना.
4: सपना
7: थोड़ा बहुत याद रहता है, वो बता देती हूँ,
4: फिर भूल जाते हैं ना.
7: हाँ.
4: पूरा तो नहीं याद रहता, कभी कभी भूल जाता है, वो तो है.
12: तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तुझे पूरा याद क्यों नहीं रहता? मैं बोलती हूँ कि मैं तो वो डरावना था इसलिए आधा भूल गई.
4: डरावना था तो भूल जाता है कभी कभी, उस समय डर लगता है लेकिन बहुत है ना?
9: दीदी, जब मैंने एलियन वाली बात मेरे घर में बताई ना, मम्मी बोली नाश्ता पानी करवा देती हूँ उनको, वो
4: कुछ खिला पिला के भेजना चाहिए था.
9: मेहमान यार खाली हाथ चलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वापस बुलाओ उनको.
4: वापस बुलाओ, दूसरे प्लैनेट पे चले गए, इतना दूर सफर किया बिना कुछ खाए पिए.
9: हाँ,
4: गलत बात है, बुरा मान जा.
9: दीदी उनको पता नहीं 2 दिन लगे थे आने में, अब 2 दिन जाने में लगेंगे.
4: सपने में अलग भाषा थी कुछ.
9: सपने में तो पता नहीं, मैं जैपनीज.
4: अच्छा. हाँ भाई, हो सकता
9: है पहाड़ों में.
4: अच्छा, ओके. कुछ भी हो सकता है सपनों में, कुछ भी भाषा हो सकती है, कोई भी एथनिसिटी हो सकती है. क्योंकि देखो, एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा कौन सा होता है?
6: अनकॉन्शियस.
4: सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड पता है सबको? किसने पढ़ा है? सच्ची बताओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो. नहीं जानते? बोलो.
12: नहीं जानते.
9: नहीं जानती.
4: कोई भी नहीं जानता?
6: नहीं.
4: नहीं जानते. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, एक तो कॉन्शियस माइंड है जो एकदम अलर्ट है, एक्टिव है. आप जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जो एक दूसरे से बात कर रहे हो, हम एक दूसरे के चेहरे याद रखते हैं ना, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है. वो आपसे मैं बात कर रही हूँ तो अमीक्षा का मुझे याद है कि नाम क्या है, कैसी दिखती है, और बाकी लोगों का भी जिनका मुझे, जिनसे मैं बात कर रही हूँ. हमारा सबकॉन्शियस बहुत सारी चीज़ें पिक करता है, आसपास क्या रखा हुआ है. मेरा कॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बट मेरे सबकॉन्शियस ने काफ़ी चीज़ें आसपास की रखी हुई भी पिक कर ली और अपने अंदर रख ली. और जो बचपन की भी मेमोरीज होती हैं बहुत, जब आप छोटे थे या आपने कभी तो कुछ चलते फिरते ऐसे ही देख लिया, कॉन्शियस माइंड भूल गया. कॉन्शियस माइंड तो दूसरी चीज़ें देखने लगा और एब्जॉर्व करने लगा, पर सबकॉन्शियस में सब कुछ स्टोर हो जाता है. तो जब हम सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उसमें जो कुछ सेव हुआ होता है ना, बहुत सारी फाइल्स, पुरानी पुरानी पुरानी पुरानी मूवीज देखी थी, टीवी देखा था, किसी से मिले थे, किसी के बारे में पढ़ा था, वो सब उसके अंदर है. तो जब हम सो रहे होते हैं ना तो कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, और 2-3 फाइल एक साथ खुल गई तो वो मिक्स होकर कुछ और ही बन जाता है. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है. इसीलिए कहा जाता है जब आप सोते हैं ना तो उससे पहले कुछ अच्छे अफर्मेशंस लिख के सोएं या बोल के सोएं, क्योंकि जैसे हम सोए हुए होते हैं ना फिर वही वाली फाइल्स ऊपर रहती हैं फिर हमारे, तो हमें स्लीप में मदद करती हैं वो वाली जो ऊपर खुली वाली फाइल्स हैं, है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने के समय और उठने के समय बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो जो आप उसको दोगे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सोचो उसके अंदर क्या क्या खजाना भरा पड़ा होगा जो हमको याद भी नहीं है, वो भी जो आपने कहीं ऐसे ही निकल गए होते किसी दुकान से, आपको नहीं याद होगा वहाँ क्या क्या रखा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफी कुछ रहता है उसमें। कमाल की चीज है ये, इसके बारे में पढ़ना कभी, है ना। आप तो पढ़ते हो, गूगल यूज करते हो ना आप लोग, है ना, यूट्यूब भी देखते हो, तो कभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ के देखना कितना इंटरेस्टिंग है।
2: ठीक है,
4: ठीक है। अच्छा, ये तो हुए बंद आंखों से देखे हुए सपने, चलो खुली आंखों से देखे हुए सपनों के बारे में भी एक अलग से एपिसोड करेंगे। या तो ये बताओ, अच्छे सपने आए हैं किसी को बंद आंखों से? मतलब सपने तो देखे, डरावने भी देखे, ये भी देखे, अच्छे सपने देखे कोई, जैसे उन्हें बताया बादलों के ऊपर थे, वैसे कोई अच्छा सपना आया है कभी, या सब कुछ डरावने ही सपने आते हैं?
9: दीदी आपको पता है, एक बार मुझे आसमान में उड़ना था, घूमना था, है ना, तो क्या हुआ, मैं सोचने लगी, सामने आया डोरेमोन, उसने निकाला अपने वो पॉकेट में से गैजेट और मुझे ऊपर भेज दिया घूमने के लिए।
4: वाह, उड़ने वाला सपना दो लोगों को आ गया।
9: हाँ दीदी, वो उसने पता नहीं मेरे सर पे क्या पहना है, चक्री।
4: अच्छा, तो वो आप उड़ गए उसको चक्री को लगा।
9: हाँ दीदी, पूरा आसमान 2-3 दिन में घूम के आई थी मैं।
4: वाह क्या बात है, 2-3 दिन तक ऊपर घूम रहे थे।
9: और वो खाना आगे दे रहा, तो पर खाना खा लेना, पानी पी लेना।
4: ओके ठीक है। हाँ मीक्षा।
12: और दीदी एक बार है ना, मुझे एक फेरी मिली थी सपने में, वो बोल रही थी आपको मेरे घर देखना है, मैंने कहा हाँ आपका मुझे घर देखना है, तो मुझे वो लेके गई थी, मैं 4-5 दिन बाद वापस आई थी।
4: अच्छा,
12: उसका घर इतना बड़ा था।
4: कैसा था उसका घर?
12: बहुत अच्छा था,
4: बहुत सुंदर था। हाँ। क्या क्या था वहाँ पे?
12: वहाँ पे खेलने के लिए बहुत कुछ था, और बुक्स का मतलब पूरा शेल्फ था, उसमें बहुत सारी स्टोरीज बुक रखी हुई थी।
4: अरे वाह,
12: बहुत कुछ था। और
4: ओके, अच्छा लगा होगा ना आपको।
12: हाँ
2: दीदी, मेरी तो अच्छे सपने की स्टार्टिंग भी बुराई से ही हुई है।
4: कैसे?
2: अरे एक जलपरी ने मेरे को काट लिया, फिर मैं जलपरी बन गई। Okay. फिर मैं समुद्र के अंदर जाके समुद्र एक्सप्लोर किया था।
4: कैसा लगा था समुद्र अंदर?
2: बहुत मस्त था, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा था अंदर जाके।
4: तो सुंदर क्या लगा वहाँ पे?
2: वो रोशनी आ रही थी ना, उसमें बबल्स बहुत अच्छे दिख रहे थे।
4: तो बबल्स अच्छे लग रहे थे,
2: और बहुत सारी फिशेज भी बहुत झुंड बना के ऐसे गोल गोल घूम रही थी, वर्लपूल जैसे।
4: फिशेज कितनी कलरफुल होती है ना, कितनी सुंदर होती है ना।
2: क्लोन फिश भी थी।
4: वो तो काफी फनी होते हैं, वो भी एक टाइप है फिश का। बिल्कुल, और फिशेस तो देख सकते हैं हम, प्रकृति ने क्या क्या कलर्स दिए हैं ना, कमाल के।
9: दीदी मैं एक बात बताऊं?
4: बोलिए।
9: मैं खुद भी जलपरी से मिल के आई हूँ।
4: अच्छा,
9: उसने अपना घर बनाया था मोतियों से, वो भी देख के आई थी, उसमें कम से कम 4-5 दिन लग गए थे देखने में।
4: 4-5 दिन लग गए थे? तो आपको सपने में पता चल गया था कि इतने दिन लग गए अभी। अभी घर जाना
9: है, क्योंकि गिन रही थी मैं।
4: अच्छा, आप गिन रहे थे?
9: हाँ, एक दिन कम्प्लीट हुआ, दूसरा दिन कम्प्लीट हुआ, तीसरा दिन कम्प्लीट हुआ, और जा रही थी ना मैं अपने 5वें दिन, वो जलपरी उल्टा रोक के मेरे को चाय पिला रही थी।
4: वाह, समुद्र में चाय?
9: हाँ।
4: बात है। वाह, तो उसमें पानी नहीं चला गया फिर चाय में सारा?
9: नहीं, मैंने घर के अंदर बैठ के पिया।
4: घर के अंदर बैठ के पिया? ओके।
9: और वो मैंने जो मतलब जहाँ कोने में बैठी थी ना, वहाँ से पानी हटाया था मैंने।
4: अच्छा, पानी हटा के फिर बैठी साइड में। कैसा घर था जलपरी का?
9: उसमें सोचोगे नहीं, तो मतलब ऐसे बनाया था ना, मोती मोती मोती मोती जोड़ के ऐसे ही पूरा वो महल खड़ा कर दिया
4: था। मोतियों का महल था?
9: हाँ।
4: और अंदर क्या क्या था?
9: अंदर वहाँ पे कुर्सी थी मोती वाली।
4: अच्छा।
9: उनका पूरा मतलब वो क्या बोलते, किचन का सेट
4: सब मोतियों वाला।
9: हाँ, मोतियों वाला बेड भी था, मोतियों वाला। उनकी ड्रेसेस रखी थी वहाँ पे मोतियों वाली,
4: वो भी मोतियों वाली, कितना सुंदर होगा।
9: और दीदी वहाँ पे एक मतलब बड़ा सा वो रखा था, जिसके अंदर वो मोती निकाल के वहाँ पे जोड़ दी थी बार बार।
4: अच्छा, मतलब स्टॉक था उनके पास पूरा।
9: वो थोड़ी थोड़ी देर में मोती बनाए जा रहा था, वो जोड़ती जा रही थी, जोड़ती जा रही, जोड़ती जा रही। मैंने भी जुड़वा उनके साथ।
4: वाह, मतलब जहाँ गए वहाँ मदद भी करके आए। वाह। हाँ मीक्षा।
12: और दीदी मैंने वो फेरी के घर में गई थी ना, तो वहाँ पे फेरी के खेलने के लिए ना एक बादलों का घर बनाया था उसने।
4: अच्छा,
12: बहुत सुंदर था वो भी, उसके घर के जैसा ही था, बस बादलों से बना हुआ,
4: बादलों से बना हुआ था।
12: हाँ, उसको वो पेंट कर रही थी, तो मैंने बोला मैं भी करूँ, तो बोला हाँ।
4: आपने पेंट कराया?
12: हाँ।
4: कौन से कलर के कर दिया आपने बादल? फिर
12: बादल मैंने ब्लू कलर के किए।
4: ब्लू कलर के किए, पहले व्हाइट थे।
12: हाँ,
4: कितना अच्छा लगा होगा ना। और अनुष्का ने कोई अच्छा सपना देखा कि नहीं?
2: हाँ।
4: क्या?
2: वहाँ पर मैं तो परी बन गई थी, मेरे तो पंख आ गए थे ऐसे। पूरे 2 दिन घूम के आए आसमान में।
4: अच्छा, बस आप परी बन के उड़ गए थे। कौन से कलर की परी थे आप?
13: मेरे पिंक कलर के पंख आए थे।
4: पिंक कलर के पंख आए थे?
13: मेरे को वो भी नहीं पता पिंक कलर के कहाँ से आ गए।
4: अच्छा, ओके। तो कैसे लग रही थी ऊपर से दुनिया?
13: बहुत अच्छी लग रही थी।
4: बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मजा आया। और आपको कोई सपना आया ऐसा?
14: मेरे को तो बस एक ही बार सपना आया था, बादल वाला। तब मैंने तो बस बादल पे चल के उसको घूम रही थी पूरा अच्छे से। वहाँ पे बहुत ज्यादा

0: लाइट थी, बहुत सुंदर व्यू था वहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था. उसके अलावा बस मुझे हॉरर सपने ही आए हैं.
1: हॉरर सपने? हाँ. कैसे हॉरर सपने?
0: मैं सपने में ना डायनासोर वगैरह, मेरे को ज्यादा ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं सपने में.
1: अच्छा, तो डायनासोर भी मिलते हैं आपको?
0: हाँ.
1: अरे बाप रे.
0: डायनासोर, मैं बेड के नीचे छुपी हूँ, वो घूम रहा है आसपास, ढूंढ रहा है. मैं ना कवर्ड में बंद हो गई, ऐसे मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे ढूंढ रहा था. ऐसे मेरे को सपने बहुत डरावने आते हैं. डायनासोर कभी है ना, डीमंस वगैरह आ जाते हैं सपने में, जॉम्बीज वगैरह, ऐसा सपना भी आ जाता है.
1: आ सकता है. आपने कभी वो जुरासिक पार्क या जॉम्बीज वाली मूवी देखी?
0: हाँ.
1: तो हमारा सबकॉन्शियस ना वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है. जैसे पहले बात हुई थी ना, कॉन्शियस माइंड तो शिफ्ट हो गया, वो मूवी देख के आगे बढ़ गया, अब कुछ और देखने लगा, पर सबकॉन्शियस में वो चीज़ें अंदर तक चप गई और वो चीज़ों ने आपको बहुत इम्पैक्ट किया था उस समय. तो बहुत पावरफुल है सबकॉन्शियस में, तो वो निकल निकल के बाहर आती है ना. इसलिए हम जो चीज़ें देखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है. और लग रहा है हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है अभी.
2: दीदी, हमें तो कभी अच्छे सपने आए ही नहीं, हमेशा एक्शन या हॉरर ही आते हैं.
1: एक्शन सपने आते हैं?
2: कभी आप किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं, किसी को किसी से बचा रहे होते हैं, या फिर कभी भूत आ जाते हैं.
1: किससे लड़ाई कर रहे होते हो?
2: याद भी नहीं रहता किससे लड़ रहे हैं. बस वो रियलिटी में जब बेड पे होते हैं तो भाई बहन को ही मारते हैं.
1: अच्छा.
2: बेड पे भाई बहन को, सपने में किसी और को.
1: मतलब लेकिन चल रही होती है मार पिटाई?
2: हाँ जी.
1: ओके, ठीक है. हाँ मीक्षा.
3: और दीदी, हम लोग कोई भी सपना देखते हैं ना, उसमें मजा आता है, बस थोड़ा डर लगता है.
1: डर तो लगता है. पता है, एक बार किसी ने अपने सपने की स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनको शेर दिखाई देता था सपने में, और शेर के पीछे भाग रहा होता था और वो डर के उससे भाग रहे होते थे. तो फिर उनको किसी ने हेल्प करी और उनसे कहा कि अगली बार जब सपने में वो शेर आए ना, तो उससे दोस्ती कर लेना, उससे बातें करना कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, मेरे फ्रेंड बनोगे, और ये याद रखना, फ्रेंडशिप कर लेना, उससे बातें करना, और ये याद रखना सपने में कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, एकदम शेर से तो डबल ट्रिपल 100 times पावरफुल हो. तो अगर ऐसा लगता है कि वो शेर तुम पे हमला कर रहा है, तो उसकी तुम पिटाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम.
4: दीदी, ऐसा करने का मन करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सपने में हम खुद ही कंट्रोल हो रहे हैं.
1: हाँ, तो इसीलिए क्या करना है, जब रात को सोना है ना, तो खुद को बोल के सोना है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी पावरफुल. इसको बहुत बार लिखो, या तो लिखते हो ना, तो वो भी माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है. आपको बहुत सारी अच्छी फाइल्स देनी है सबकॉन्शियस में. अभी ये सब डरावनी फाइल्स दी हुई हैं आपने, तो आप अच्छी अच्छी पावरफुल फाइल्स दे दोगे ना, तो वो उसको ओवर पावर कर लेंगी. लेकिन अभी बहुत सारी नेगेटिव ये वाली फाइल्स जमा है, क्योंकि हमने ऐसी मूवीज देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं ना, कभी पहले भी देखी हो सकती हैं, हो सकता है अब हमने छोड़ भी दी हो, तो पर वो जमा तो हो जाती है फाइल. तो अब उसको पावरफुल पॉजिटिव फाइल्स आपको खोल के देनी पड़ेंगी. आई एम वेरी पावरफुल सोल, आई एम वेरी पावरफुल, ये लिखना है आपको बहुत बार, है ना. और भी ऐसे स्वमान आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अफर्मेशंस ले सकते हो, है ना. आई कैन डू एनी थिंग, आई यू नो, सबसे ऐसा कुछ लिख के भेजो, आई एम गॉड्स चाइल्ड, मेरे अंदर सारे ताकत है, मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ. इसको आप एटलीस्ट 50 times 100 times लिखोगे ना, तो वो सबकॉन्शियस फिर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अगली बार वो वाली फाइल भी खोल देगा वो, है ना. तो आप अपने सपने में हैंडल कर लोगे सारे सिचुएशंस.
2: दीदी, कई कई बार तो पता ही नहीं लगता कि रियल लाइफ में है या सपनों की लाइफ में है.
1: हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है ना.
2: कई बार अगर कहीं से गिरते होते ना, तो एकदम ऐसे आँख खुलती है, जैसे हम गिर गए
1: हैं, ऐसा होता है, होता है.
3: और दीदी, एक बार तो क्या हुआ, मैं सपनों में लड़ाई कर रही थी, तो मैंने एक बार है ना अपनी नानी को एक गुस्सा मार दिया.
1: सपने में लड़ाई करते करते ना, असली में तो नहीं किया ना.
2: दीदी, मैंने तो सपने में मम्मी की बहुत बार चाय गिरवाई है. मम्मी जैसे पैर के आगे बैठते हैं ना, तो ना ऐसे पता लग जाता है आगे कोई बैठा है, पर सपने में जब लड़ रहे होते हैं ना, तो पैर एकदम ऐसे आगे जाते हैं, मम्मी की चाय गिर जाती है.
1: असल में तो नहीं गिराई ना.
2: असल में ही तो गिराई है.
1: अच्छा, असल में गिरा दी.
2: बहुत बार गिरवाई है.
1: अच्छा, ओके.
5: दीदी,
1: हाँ
5: चलो मैं आपको अपना हॉरर सपना बताती हूँ.
1: बताओ.
5: एक बार क्या हुआ, मैं घूम रही थी जंगल में, एक हवेली दिखी, मैं उसमें गई. वहाँ पे गई, अपने आप गेट बंद हो गए. मैं बैठ के वहाँ पे भजन करने लगी, पता नहीं क्या दिमाग चला, भजन करने लगी. पास में से आई एक आत्मा, बोली तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम पल्ला. के मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोलती है भूतनाथ. मैंने बोला अच्छा भूतनाथ और कैसे बनूं, उससे मैंने बातचीत की। फिर बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने बोला मार दो। हमने खूब मस्ती की दीदी, सोचा कि नहीं। दो दिन तक मैं उस हवेली में थी। और मैं भूत को बाय बोल के जा रही थी। बोलता है नहीं तुम भी मेरे साथ भूतनाथ नहीं बन जाओ। मैंने बोला नहीं बनना मुझे।
1: नहीं नहीं जाने तो बाद में आके बातें करूंगी मैं। ओके
2: दीदी इनको तो पता भी लग रहा है कितने दिन लगा के आ रहे। मेरे को तो पता भी नहीं लगता मैं कितने दिन लगा के हूं, क्या करके आ रहे।
1: हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे अनुष्का?
3: हाँ दीदी हमने तो बहुत सपने देखे। आपने कौन से सपने देखे?
1: मैंने कौन से सपने देखे?
3: दीदी आप भी बताओ ना।
1: मैं अभी तो मुझे बहुत समय से कोई सपना नहीं आया, लेकिन पहले जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि गिर रहे हैं, ऐसा वाला सपना आता था मुझे भी कि आप किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो अचानक से। और ना एक सपना आता था कि एग्ज़ाम में लिख रही हूँ और ना पेन की रिफिल ख़त्म हो गई और फिर लिख ही नहीं पा रही हूँ मैं एग्ज़ाम, ऐसा सपना आता था मुझे।
2: दीदी इतना खतरनाक सपना।
3: फिर दीदी आपने क्या किया?
5: फिर मैम से पेन मांग लिया होगा।
1: हाँ नहीं उस समय मेरा पेपर ही छूट जाता था एग्ज़ाम में।
4: सबसे बड़ा डर
5: रिजल्ट आता
3: था। असलियत में तो नहीं छूटा ना।
1: असलियत में एक बार छूट गया था मेरा, वो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। दोबारा सपना तो नहीं है कि दोबारा देख सके, है ना? जो हो जाता है वो हो जाता है, तो उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना?
3: दीदी मेरी भी मम्मी सपना देखती है अभी भी।
1: आते हैं सपने, बड़ों को भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को आते हैं।
3: पर आपको तो नहीं आते अभी इस टाइम?
1: हाँ इस टाइम नहीं आते, क्योंकि पहले जब मुझे सपने आते थे ना तो बहुत ऐसे डर जाती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरी मम्मी को भी डर लगता था कि भाई बाहर पढ़ने जाओगे तो कैसे रहोगे, क्योंकि बहुत डर जाते थे।
2: अभी कई कई बार ऐसा होता है मैं सपने में उठ के बेड पे से मतलब खड़ी हो जाऊंगी फिर दूसरी तरफ सिर करके सो जाऊंगी। मैं खुद को पता नहीं होता मैं कब उठी कब उधर सिर रखा कब सोगी।
1: सपने में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन सपनों की दुनिया अपनी अलग है और रियल दुनिया अलग है। अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम बातें करेंगे लेकिन बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए हम लेते हैं इजाज़त और अपने दोस्तों को कहते हैं बाय बाय।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 20वां पाठ किसके जंगल, पृष्ठ संख्या 182। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक महिला के साथ कुछ बच्चे पोटली लेकर जंगल में जा रहे हैं। जंगल की बेटी, सोच सकते हो कि ये बच्चे पोटलियां लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे? जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती हैं इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती हैं। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती हैं। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है। जंगल को पढ़ना, किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है, कहती हैं सूर्यमणि। वह कहती हैं, हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पृष्ठ 183। चर्चा करो, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्यों होते हैं? कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? पता करो और लिखो। पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? सूर्यमणि कहती हैं, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? सूर्यमणि का बचपन। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी, पर जब से शंभू ठेकेदार आया जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गाँव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा सांझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी जरूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। पृष्ठ 184। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था, पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखों क्यों, यह जंगल है ना, सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। सोचो और लिखो। तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों? क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए, पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, ना तेरा ना मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। सूर्यमणि का सफर। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी वजीफा लेकर बीए पास किया। पृष्ठ 185। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थीं। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है, वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता, ची ची। सोचो और लिखो। क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की जिंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चित्र बनाओ। क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? सूर्यमणि का तोरांग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। पृष्ठ 186। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला भी बच्चे सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये भी हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी जमीन हड़प ली जाएगी, कोई रोजगार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती वह सूर्यमणि की मदद लेता। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं, उन्हें विदेश भी बुलाते हैं उनके अनुभवों से सीखने के लिए। जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहां लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। पृष्ठ 187। सोचो, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगल के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? तुम्हारा अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या? तो रंग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन नृत्य संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? तुम किस चीज को बचाए रखना चाहोगे? पढ़ो और बताओ। ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उसका एक हिस्सा सुनो। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे? अगर जंगल ना रहे, खानों में से एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दें, तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। यह था सिकिया का पत्र मुख्यमंत्री के नाम। अब बताओ, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है? क्या कोई फैक्ट्री है? उसमें किस तरह का काम होता है? फैक्ट्री की वजह से जमीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वहां के लोगों ने भी इस बात को उठाया है? पृष्ठ 188। इस पृष्ठ पर भारत का नक्शा दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि भारत में कहां कहां जंगल हैं और कहां नहीं। पृष्ठ 189। पता करो और लिखो कि नक्शा किस बारे में है। तुमने सिकिया की चिट्ठी सुनी। नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है? समुद्र कैसे पहचाना? नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र है? नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है? नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है कैसे पहचानोगे? ये कैसे पहचाना कहाँ ज्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल हैं? नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा घने जंगल हैं? अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे? उन राज्यों के नाम लिखो। मिजोरम में खेती की लॉटरी। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, इसके बारे में पढ़ो। टन टन टन टन, स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लॉमटे आ, डिंगा, डिंकी माँ, इन्होंने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने पानी पिया वहीं पर रखे बांस के बने कप में। आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके साइमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में हैं। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वाह, साइमा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज्यादा जमीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज्यादा जमीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के

साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। सायरा सर ने तीन टीन जमीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, तीन टीन जमीन? चामुई ने समझाया, एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई। पता करो, नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ो। तुमने जमीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा। जमीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं? स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है, जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों? जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है? झूम खेती। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। पृष्ठ 191। बस उस परिवार को उन्हें खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो हैं ही नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। पीठ पर ही लादकर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चराव नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे मस्ती से पत्तों से सीटी बजा रहे हैं। ऐसी कई सीटियां तुमने भी तो बनाई हैं। हम क्या समझे, भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फर्क है? सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। अपने शब्दों में समझाओ क्यों। झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी? किसके जंगल। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 20वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और हमेशा की तरह बाल संसार इस कार्यक्रम में हम लोग पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर आपको दिखाएं बताएं तो हम लोग पिछली बार विशेष बच्चों की मनोभावनाओं को कैसे समझा जाए इस पर बातें चल रही थी। आज भावनात्मक अभिव्यक्ति में सहज सहमति की स्थिति कैसे बना रखें, बच्चों के स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना, इस विधि को समझने की कोशिश करेंगे आज। और हमारे आज के विशेष मेहमान जो हमें विशेष बाल मनोवैज्ञानिक है, बिहेवियरल साइंटिस्ट है, तो उनसे हम लोग बातें करते हैं और वो अपनी मनोस्थिति के साथ साथ बच्चों के बाल मन की बातें हमें सुना रहे हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय भाई जी।
0: जी कैसे हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी आप?
1: बहुत अच्छे से, बहुत आनंद में, ब्लेसिंग्स आपके हैं
0: जी। तो अभी हम लोग आज कोशिश करेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य भावनात्मक हेल्दी इमोशंस के विकास के लिए क्या करना है, किस तरह से इस पे काम करना है।
1: बहुत सामूहिक प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इमोशंस को लेके

0: पिता कहीं आहत तो नहीं होंगे, माने वहाँ वो स्वयं के साथ साथ में अपने गार्जियंस का प्रोटेक्शंस भी कर रहे हैं या टीचर से कोई इमोशंस वो शेयर करते हैं, तो ये सब बातों का वो ध्यान रखते हैं। लेकिन बड़ों को कई बार लगता है कि जो इमोशनल बैकग्राउंड है इनका वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि वो बालमन है। तो क्या हम बड़े उस स्थिति में स्वयं को स्थित रख पाते हैं कि वो जो मनोभाव उनका आ रहा है उसको हम केयर भी कर लें और भले ही उस पर जो हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया है वो त्वरित फॉर्म में नहीं हो, कुछ समय के बाद हो जाए, लेकिन मनोभावों को बहुत एकाग्रचित होकर अगर सुन लिया जाए तो बच्चों को एक मन में फीलिंग होती है कि हमें बड़ों ने सुना है, क्योंकि वो इस अभिव्यक्ति के पूर्व अपने माता पिता या शिक्षक गणों या अपने बड़ों का मूड भी देखते हैं। कई बार वो देखते हैं कि सुबह से शाम की दिनचर्या में माता पिता थके हुए हैं या ऑफिस के कार्यों में वो बिजी हैं, तो वो तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं और वो सोचते हैं कि जब वो बहुत शांति में हैं और मेरे से कहीं संवाद कर रहे हैं, भले ही वो होमवर्क के विषय में हो, आज की क्लास में जो कुछ भी हुआ उसका फीडबैक को ले रहे हों, तो उसी समय बच्चे बड़ी सहजता से अपने मनोभावों को शेयर करते हैं। और कई बार मैंने देखा कि वो मनोभाव छुपा लेते हैं, और एक परिवार में मेरा जाना हुआ तो वहाँ पर उनके बच्चों के गार्जियन ने बताया कि हमारे बच्चे या मेरा बच्चा है जो है वो डायरेक्ट मेरे से नहीं कहता है, तो वो उन्हीं के ड्राइंग रूम में एक जगह पर अपनी कुछ जो विशेष होती हैं, उनकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, कई बार उनको कुछ स्थूल चीज़ें पढ़ाई लिखाई के संबंध में चाहिए होती हैं, लेटेस्ट गजट हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो अपनी अपेक्षाओं को धीरे से वॉल पर लिख देते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये देखिए मेरे बेटे ने ये लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट नहीं कहता है, या इसको जो भी हमारी परिस्थितियों का अंदाज़ा होगा उसके हिसाब से हम हर्ट नहीं हों, और ये भी लिख देता है कि जब भी समय मिले या परिस्थिति अनुकूल हो तो ये हमें हमारे मनोभावों को पूरा करने का प्रयास कर देना। तो ये मुझे देखने के बाद में, हालांकि मैं काफ़ी भावुक भी हो गया उस समय, लेकिन ये भी मैंने पाया कि ये हो सकता है कि बच्चा दिखने में हमें बाह्य रूप से छोटा दिखाई दे रहा है, उसकी आकृति को हम देख रहे हैं, लेकिन है तो उस शरीर में एक आत्मा, तो एक आत्मा जब एक शरीर के साथ होती है तो वो जीव आत्मा होती है, और जीव आत्मा अपने वेग संवेग मनोभावों को अपनी शैली के साथ में प्रस्तुत करती है और ये ध्यान रखती है कि कोई हर्ट भी नहीं हो और हमारी अभिव्यक्ति सहज रूप से हो जाए और वो स्वीकार्य हो। जी
1: बिल्कुल डॉक्टर अजय जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे हम बच्चों की भावनाओं को समझें, इस विषय पर बातें चल रही हैं, उनकी अभिव्यक्ति को समझने की कोशिश करें, ये आपने बताया। अब सबसे पहली बात आती है कि स्वीकृति और समर्थन का माहौल बनाना, तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आज के समय में ये चीज़ें शायद कम होती जा रही
0: हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
1: जी जी,
0: पहला जो दृष्टिकोण होता है कि वो एक्सेप्टेंस में चली जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो जहाँ आपने बहुत अच्छी लिसनिंग किया है तो वहाँ उन्हें एक ट्रस्ट एंड बिलीव सिचुएशन क्रिएट होती है कि और संभावना लगती है बच्चों को कि आज मेरी बात को बड़ों ने सुना है, तो ये जो एक्सेप्टेंस है यही धीरे धीरे सहमति में बदलेगी, और भले ही इसमें समय लग सकता है लेकिन उनकी भावनाओं पर ध्यान रखा जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जिन भावनाओं को बच्चों ने प्रस्तुत किया है और उसके पहले अगर किसी पारिवारिक स्थितियों में माहौल क्या रहा है, वहाँ भी बच्चे इस बात को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम जो कुछ कहते हैं उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया क्या हो रही है, तो वो भी उनके ऑब्जर्वेशन में रहता है। और बड़े भी देखते हैं कि पिछली इनकी इमोशंस को हमने अगर फुलफिल किया है और कंटिन्यू अगर हम करते जाते हैं तो नई नई इमोशंस हमारे सामने आएंगी। बात यहाँ पर इमोशनल बैकग्राउंड पर जाके किसी वस्तु या किसी सामग्री की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे के द्वारा जो कुछ भी अभिव्यक्ति की गई है वो किन संदर्भों में है। उदाहरण के लिए कई बार बच्चों को अपनी जो आवश्यकता है अर्थात किताबें हैं, पढ़ाई के संबंध में कुछ और रेफरेंसेस हैं, वो अगर चाहिए और उसमें थोड़ा सा उनका जिद या जुनून ये अभिव्यक्त होता है कि ये अगर कम समय में उपलब्ध हो जाता है तो आगे उन्हें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और अपनी स्टडी को वो एक शेप दे पाएंगे। दूसरी स्थिति यह होती है कि जब भी बच्चा अपने स्वाध्याय या अध्ययन में लीन है और उस स्थिति में

0: उसको लगता है कि मेरे पास में सेकंड ऑप्शंस क्या है। सामान्यतः तो से अभी वर्तमान परिवेश में या परिदृश्य में आप देखें तो पढ़ाई पर दबाव है बच्चों को, और बहुत अधिक नंबर लाने का जो एक निरंतर उनको कमेंट किया जाता है, और वो कमेंट में जो फ्लैक्चुएशन है वो कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव और कई बार बहुत स्ट्रेसफुली होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे ये सोचते हैं कि अभी जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो रियल में फुलफिल होगी या नहीं होगी, या जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम इसको पूरा कर देंगे, ये करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे संदेह के वातावरण में भी बच्चे रहते हैं और उनको मन में लगता है कि भविष्य किस स्थिति में है। हालांकि वो अंधकार की फीलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी परिवेश में मुझे सब कुछ मिलना है। तो ऐसी स्थिति में एक सेकंड विकल्प है जिसमें हम बच्चों की भावनाओं की रक्षा कर सकते हैं, और वो विकल्प है कि पढ़ाई के अलावा अगर खेल या अपने मनोरंजन की कोई सामग्री वो डिमांड करते हैं तो उसे हम इसलिए प्रदान करें क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त जो हॉबीज है उनकी, भले वो इंडोर गेम की हो या आउटडोर गेम की हो, उस समय ब्रेन को एक रिलैक्स मिलेगा, इमोशंस को एक सपोर्ट मिलेगा, और उनको खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने के लिए जो आवश्यक सामग्री और वातावरण है वो भी हम प्रदान कर देते हैं। तो पढ़ाई और सेकंड ऑप्शन आपने दे दिया, तो इससे हम अपने बच्चों की रक्षा भी कर सकते हैं कि किसी अदर इमोशंस की तरफ वो टर्न नहीं हो। जी,
1: बहुत अच्छी बात आपने बताया है, और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत, और फिर हम लोग बातें करेंगे इसी विषय को लेकर। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: संसार। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा जैसे कि हम सभी लोग बातें कर रहे थे स्वीकृति और समर्थन का माहौल बच्चों को कैसे बना के दे, तो इसमें आता है कि खुला संवाद की बात, बच्चों के साथ उनकी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो अजय जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, आप क्या समझते हैं, इसको कैसे हम लोग समझें और इसके ऊपर कैसे काम करें?
1: बहुत अच्छी बात है और बाल संसार का ये पूरा आयोजन निश्चित तौर पर एक बड़ी दृष्टि और दृष्टिकोण को निर्मित करने में मददगार साबित होगा। इसी आशा को लेते हुए जब आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा होता हूं तो उस समय बच्चों के जीवन के कई पक्ष मेरी आंखों के सामने एक रील की तरह घूम जाते हैं और कई बार उनकी काउंसलिंग करते समय इस प्रकार की मनस्थितियां क्रिएट होती हैं कि कैसे बच्चों की मदद की जाए। बाह्य तौर पर या आंतरिक तौर पर हम लोगों को लगता है कि कुछ उपलब्ध करा देना उनके लिए एक बहुत बड़ी संतुष्टि की स्थिति होगी, जबकि वास्तविकता ये है कि हम भले ही आज स्वयं की बुद्धिमत्ता की बात करते हैं या सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के मन में जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके बातचीत होती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेके बातचीत होती है, तो उस स्थिति में बच्चों को लगता है कि हम जो कुछ भी व्यक्त कर रहे हैं उस अभिव्यक्ति के प्रति जो हमारा कन्वर्सेशन बड़ों के साथ हो रहा है उसमें हमें क्या बड़े संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा मूल्य है, कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात की गई है, संतोषम परमम सुखम। तो हर बार बच्चों को अपने बड़ों से उनकी सहमति या मदद की अपेक्षाओं के साथ साथ में एक संतुष्टि भरा माहौल अगर प्रदान कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि जिस चीज़ की आप अपेक्षा रख रहे हैं भले ही वो वैचारिक संवाद की हो, भावनात्मक संवाद की हो, हम इन तमाम स्थितियों के बीच में एक साथ कम से कम प्रतिदिन एक अवसर प्रदान जरूर करेंगे, भले ही वो बच्चों के साथ आप कितने भी व्यस्त हों, सुबह अगर आप नाश्ता नहीं कर पा रहे हैं, दिन में भोजन नहीं कर पा रहे हैं, रात को अगर आप भोजन कर रहे हैं, तो तीनों ही स्थितियों में एक समय, भले ही वो रात्रिकालीन बेला हो, उस समय बच्चों के साथ में भोजन अगर आप करते हैं और उनको ये मौका देते हैं कि कोई बात वो अपने बड़ों के बीच में रख सकते हैं, तो वहाँ भी एक भावनात्मक संतुष्टि उत्पन्न होगी और यही भावनात्मक संतुष्टि बच्चों के जो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात हम बाल मनोविज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं उसमें मदद करेगी। क्योंकि जहाँ बच्चा हेजिटेट कर रहा है, संकोच कर रहा है अपने बड़ों से बात करने में, वो ओपननेस क्रिएट होगी और वो संवाद अपने बड़ों से वहाँ कायम भी कर पाएगा और भविष्य में ये जो संवाद डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो एक निडरता क्रिएट हुई, तो ये एक बौद्धिक कौशल भी बच्चे के साथ में विकसित हो सकेगा अगर हम प्रतिदिन उस बच्चे को अपने एक बाल संसार को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी लग रही है, जहाँ पर हम भावनात्मक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं और इसमें हमने दो पहलुओं को समझने की कोशिश की, जहाँ पर खुला संवाद यानी ओपन डायलॉग्स हो और दूसरा हमें बच्चों की हर चीज़ को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी, शुरुआत में हमें स्वीकार करना है और एक बार बच्चा हमारे अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करते हुए हमारे साथ दोस्ती हो जाए तो फिर हम बच्चे को जो है कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ये चीज़ें करने में।
1: जी,
0: तो आइए सहानुभूति को कैसे समझें हम लोग, क्या मैं अपने अंदर सहानुभूति लाऊं या बच्चों के अंदर सहानुभूति को देखना है या कैसे, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, एक्चुअली में उसको ठीक से समझने में भी मुश्किल लगता है, तो आप बच्चों के इस मनोविज्ञान को समझने में सहानुभूति कहाँ किसमें कब देखना है?
1: देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सहानुभूतिपूर्ण बिहेव की बात करते हैं तो आप देखें कि हमारे वातावरण में, अर्थात बड़े जब अपने कार्यालयीन क्षेत्र में या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में जब कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ भी चाइल्ड इमोशंस काम करती है, अर्थात बड़ों के अंदर जो बाल मनोविज्ञान है वो निरंतर कार्य करता है और वो भी चाहते हैं कि जिन अपेक्षाओं के साथ में या जिस अनुकूलता की जो उन्होंने कामना कर रखी है अपने जीवन में, तो दिन भर की गतिविधियों में उन्हें भी जब स्नेह, प्यार, दया, करुणा, सहानुभूति, ये मानवीय मूल्य हैं, चेतना के को चैतन्य बनाने में मददगार होते हैं, और इन मानवीय मूल्यों के साथ जब आपका दिन भर गुजरता है तो आपको भी ये फीलिंग होती है कि यही सारे मानवीय मूल्य हमारे बच्चों की भी उनकी मनस्थिति को लेके अगर हम थोड़ा सा कार्य करने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा पारिवारिक दृष्टि और दृष्टिकोण है वो सकारात्मक बनेगा और हम सार्थकता के परिवेश में गतिशील हो पाएंगे। मैं सार्थकता इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार चीज़ें पॉजिटिव हम कर देते हैं या हो जाती हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है उस परिणाम तक जब हम पहुँचने की बात करते हैं तो उसमें एक साथ पूरी की पूरी स्थिति टीम की हो जाती है, अर्थात टीम वर्क की बात हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम छोटी सी बात रखें कि अगर परिवार ने कुछ तय किया है कि ये सारा का सारा हम एक हफ्ते के अंदर मैनेज कर लेंगे या जो भावनाएं हैं उसको एक साकार रूप दे देंगे, तो उसके लिए अगर हम सप्ताह में एक दिन अर्थात रविवार का दिन चयन कर सकते हैं जहां आपकी भी छुट्टी है और बच्चों को लेके आप किसी पार्क में या किसी मंदिर के प्रांगण में जहां एनर्जी का जो लेवल है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर रहता है, और उस स्थिति में आप देखें तो वहाँ बच्चे अपनी भावनाओं को शेयर भी कर सकते हैं, समय भी आपको मिलेगा और एक नवीन वातावरण के साथ में उनका संवाद हो सकेगा, प्रकृति से जुड़ पाएंगे और वहाँ समाधान की क्रियाएं यथावत रूप से विधिवत रूप से संपन्न हो पाएंगी। जी
0: जी डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें ठीक से समझ में आ रही हैं और बहुत अच्छा आपने सहानुभूति के बारे में बताया। अब सकारात्मक भावनाओं को कैसे हम लोग प्रोत्साहित करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छी बात है, जीवन की प्रक्रिया में सकारात्मकता एक बहुत बड़ा मूल्य है और इसकी ओर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय करने होंगे। कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना होगा। उदाहरण के लिए कई बार आप भी देखते हैं कि बहुत सारी स्थितियों में आप बहुत व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए, हालाँकि सुनते समय बड़ा अजीब लगेगा और कई बार हम बड़ों से संवाद करते हैं और बड़े बोलते हैं कि अभी इतना समय कई घंटे हमने आपके साथ निकाले हैं और सुबह से शाम तक की चर्चा की है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम लोग बड़ों मिलके और बहुत सारी स्थितियों में बच्चों की मदद लें या बच्चों की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करें? तो वो यहाँ पर मैंने उनसे कहता हूँ कि आप अगर एक डायरी मेंटेन करते हैं और उस डेट और उस ईयर की डायरी है और उस तिथि में बैठ के उनसे बातचीत करते हैं कि हम लोगों ने ये जो जीवन जिया है, भले ही वो माता पिता के रूप में हो, तो इसमें बेटा आपके हिसाब से आज के रेफरेंस में क्या चेंजेस करना चाहिए? तो जब पार्टिसिपेटिव मोड में आप बात करते हैं, सहभागिता आप दर्ज कराने की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बच्चे के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का लेवल है, परसेप्शन का लेवल है और वो चीज़ों को फैमिली के माहौल से सकारात्मकता से कैसे समझता है, और जब वो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन के लिए कुछ उपाय वहाँ सजेस्ट करने का प्रयास बच्चे करते हैं और उनको आपने नोट डाउन कर लिया, तो वहाँ पर उनको एक बड़ा मनोबल मिलता है। और ये नहीं है कि आपने उनको जन्म दिया है तो वो छोटे रहें या वो बड़े नहीं बने, हम सब चाहते हैं, जैसे माँ बच्चे को गोद में ले लेती है, पिता कंधे पर बैठा लेते हैं और उद्देश्य क्या रहता है कि मेरे से भी उच्चता ये जीवन में ग्रहण करें। तो ऐसी स्थिति में जब अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप बच्चों की सहभागिता लेते हैं, उनकी कार्यप्रणाली से उनके अनुभवों को भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को विकसित कर रहे हैं तो जो कुछ भी विनियोजन किया गया है, जो भी समय या धन और हम एक लंबा काल उनके साथ गुजार रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है वो भी आपको देखने में लगेगा कि ये जो बच्चे हम आज हमें सजेस्ट कर रहे हैं, ये बातें कई बार हमारे संज्ञान में नहीं होंगी और एक नया चिंतन वहाँ से शुरू होगा कि बच्चों के मन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये एक नई मूल्य के साथ में गतिशीलता पैदा होगी और वहाँ वो बच्चा समझ पाएगा कि जीवन में सकारात्मकता का क्या महत्व है। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे बच्चों को और सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करें, इस पर आपने बताया। अब कई बार चीज़ें जो है हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ कुछ हमारी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में हमें टाइम लगता है, तो इसके लिए हमें किसकी मदद और कैसे लें?
1: कई बार हमें लगेगा भाई जी कि हमारे सामने बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उदाहरण के लिए माता पिता चाहते हैं कि बच्चे केवल स्टडी में कंटिन्यू लगे रहें, वो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करें, या अचानक कहा गया कि स्कूल या कॉलेज में कि नहीं अभी आपको फिल्म देखने जाना है, और वो ग्रुप में आपको लेके जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को हमने एकांगी बना दिया, तो कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चा बड़ी सिटी में पढ़ रहा है या बड़ी सिटी के आसपास है, प्रतिदिन वो जा रहा है, उसको कुछ फिजिकल भी प्रॉब्लम आई है, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को वहाँ मोटिवेट किया है, तैयार किया है, और वो उस वातावरण में जाने के बाद में अचानक वहाँ पर ये बात आती है इंस्टीट्यूट की ओर से कि आज हम कुछ नई जगह विजिट करेंगे, तो वहाँ पर हमें ऐसा लगता है एक संदेह या एक भय हमारे अंदर काम करता है कि मेरा बच्चा उस वातावरण में जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई, आपका बच्चा घर से बाहर 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जा रहा है, आ रहा है, प्रतिदिन आप उसको भौतिक रूप से या भौतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, या मैं उस प्लेइंग मोड में नहीं जाऊंगा, पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा, या सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तो अगर हमने शुरू से उसको डिफाइन कर दिया कि ये पाप है या पुण्य है, तो उसके सामने एक बैरियर क्रिएट होगा। हमें बताना होगा कि जिस व्यवस्था के तहत में, इंस्टीट्यूशन के तहत में आप जा रहे हो, तो सारी पूरा स्टाफ जाएगा, टीचिंग स्टाफ जाएगा, सारे स्टूडेंट जाएंगे, और वो वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, भले ही वो कुछ गेम्स प्ले कर रहे हों, भले ही वो संगीत का कोई माहौल हो, लेकिन उस समय उस वातावरण के माध्यम से आपको कुछ सीखना होगा। और वो वातावरण में ज़रूरी नहीं है कि आप सहभागिता दर्ज करें, ये सारे बच्चे वहाँ सहभागी नहीं होंगे, लेकिन बहुत आनंद का उत्सव है तो आप ताली बजाएंगे। तो क्या ताली बजाना या आपके द्वारा मुस्कुराना या खिलखिला के हंस लेना, क्या ये व्यक्तित्व विकास का हिस्सा नहीं है? अगर आप प्रतिदिन इंस्टीट्यूट से केवल एकांगी होकर और पढ़कर घर पर आ जाते हैं, और इसके बाद अचानक 5 साल के बाद में, 3 साल के बाद में संगठन में काम करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ जो आपके मन में डूज और डोंट डूज है, ये करना है या नहीं करना है, इसका द्वंद्व तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा ना। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो केवल हम जब समूह में या शैक्षणिक गतिविधियों के अलग अलग स्वरूप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर केवल एक पक्ष नहीं बल्कि बहुपक्षीय आयाम से बातें होती हैं, और वहाँ बच्चों को लर्निंग इश्यूज प्रैक्टिकल डायमेंशन से मिलते हैं, क्योंकि वो केवल स्टोरी नहीं है बल्कि वो वहाँ स्टोरी जनरेट हो रही है, और उस स्टोरी के लाइव स्वरूप में वो बच्चा सहभागी बन रहा है, और वहाँ लर्निंग इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो चीज़ों को समझता है या सीखता है, तो उसके मन में नकारात्मकता से लड़ने की ताकत आती है और सकारात्मकता के पद पर चलने की उसको अंदर से हिम्मत मिलती है, और वो हिम्मत बाई इंजेक्शन नहीं बल्कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, सामूहिक गतिविधियों के द्वारा संपन्न होती है। ऐसी स्थिति में माता या परिवार या आसपास का जो माहौल है सामाजिक, उनका दायित्व बनता है कि बच्चे को हम संपूर्ण रूप से विकसित होने के आयाम में सम्मिलित भी करें, उन्हें इनवाइट भी करें और प्रोत्साहित भी करें, जिससे कि सीखने की अलग अलग विधाओं में बच्चा जा सके और अपने आप को वो कहीं ना कहीं परफेक्शन की स्थिति में या पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए स्वयं को तत्पर कर सके, तैयार कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है, बच्चों के भावनात्मक जो स्वरूप को है उसे कैसे हम लोग ठीक से समझे और उसके ऊपर काम करें, और सहज सहमति को कैसे हम लोग अपने अंदर निर्माण करें। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताया है, और मुझे लगता है कि सकारात्मक नकारात्मक शायद बच्चों को इतना बड़ा जो पहलू है वो समझने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो भी लगता है बच्चा जैसा भी है सकारात्मक है या नकारात्मक है उसे करने दीजिए, और फिर बाद में उसको सीखने भी दीजिए। हम लोग तुरंत ही उसको अगर गाइड करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो सीख है खुद की वो शायद रुक सकती है,
1: भावनात्मक स्वतंत्रता वहाँ छीन जाएगी,
0: वहाँ उसकी छीन जाएगी, इसीलिए हमें थोड़ा सा आज़ादी दें, और अगर आप करना चाहें तो उसको ऐसा माहौल क्रिएट करके दे सकते हैं, वो आपके हाथ में।
1: जी बिल्कुल सहमत हूँ।
0: वो चीज़ें अगर आप घर के अंदर, आपका व्यवहार, आप बातें कैसे करते हैं, आपका स्टाइल, बच्चा ज़रूर आपसे सीखेगा, तो इसीलिए आप अगर अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे आप उस माहौल में रहेंगे और बच्चा उसी माहौल से वो सारी चीज़ें सीखेंगे। एक हाथ 1% हो सकता है कि वो आपके हिसाब किताब के लिए आया होगा, तो वहाँ आप कितना भी अच्छा माहौल देगा तो वो उदम ही मचाएगा, तो वो चीज़ें अलग बात है। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए हम ये एपिसोड नहीं कर रहे हैं।

0: जनरल एपिसोड कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसा होता भी है, तो वहाँ पर डॉक्टर अजय शुक्ला जैसे काउंसलर्स जो है आपको हेल्प करेंगे, तो आप डॉक्टर अजय शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं इस विषय को लेकर और उनसे बात भी कर सकते हैं। कभी आपको लग रहा है कि कहीं बार हम लोग सब कुछ करने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी सिचुएशन होता है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत बार इलाज करते हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन वो हम ठीक ही नहीं होते हैं, और हो सकता है कि बाई चांस आप साल भर के बाद जो है वो आपका हिसाब किताब पूरा हो गया और आपका जो दर्द है वो छोटे से किसी एक्सरसाइज से ठीक हो गया, आप योग कर लिया सब कुछ ठीक हो गया, साल भर से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था।
1: जी, जी, जी।
0: तो ये भी क्या है कि साल भर आपका अकाउंट था वो अकाउंट पूरा हुआ और जब आपने योग सीखा तो फिर वो सेटलमेंट हो गया।
1: बहुत
0: तो इस तरह की भी चीज़ें आती हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों को ओवरऑल होलिस्टिक रूप से सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि भाई ये चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ पर अटक नहीं जाना है, अलग अलग पहलुओं को देखना है और ट्रायल एंड एरर जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे स्वीकार करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वो हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी बातें जो है बाल संसार के बारे में बताते रहते हैं। और मैं चाहूँगा डॉक्टर अजय शुक्ला जी आपका नंबर भी दीजिए, अगर हमारे कोई श्रोता आपसे जुड़ना चाहे तो बिल्कुल आपसे जुड़े।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 9131099097
0: एक बार फिर से बोलिए,
1: 9131099097
0: तो ये डॉक्टर अजय शुक्ला जी का नंबर है। आशा करूँगा आप इसे रिपीट करके भी सुन सकते हैं, आराम से लिख लीजिए, और फिर आपको लग रहा है कि डॉक्टर अजय जी से बात करना है तो बिल्कुल बात कीजिएगा, आप मैसेज करिए, मैसेज के बाद फिर आप कॉल करिए। तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही बाल संसार में, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें लेकर आपसे जुड़ेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होने का मौका मिलता है सफ़र इस कार्यक्रम में, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप सभी के साथ करने का सौभाग्य मिलता है। सफ़र कार्यक्रम में हम लोग उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने देश या धर्म या फिर साहित्य जगत में जो काम किया है उन सभी को याद करते हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री की बात हो या फिर खेल की जगत की बात हो, हर जगह पे जो भी आज के दिन जन्मे हैं उन सभी लोगों को याद करते हैं। तो आइए आज इसमत चुगताई, गोपाल कृष्ण देवधर, बी सत्यनारायण रेड्डी, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, प्रेमा खंडू, सुधाकर राव नाइक, अहमद पटेल, नारायण श्रीधर भेंद्रे, कृष्णा कन्हैया, शैलेश नायक, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, काका कालेकर, बिस्मिल्ला खां, सजितानंद उत्राउत राय और हैदर, वीनू मांकड़, वामन राव बलिराम लाखे, बाबूलाल गौर, कल्याण सिंह, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए कुछ खास लोगों के जीवन कहानी से रूबरू होंगे हम, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एक सुंदर विचार के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और विचार अद्भुत होते हैं, आपके जीवन को बदलते हैं, आपके मानसिकता को बदलते हैं और आपको तुरंत खुशी प्रदान करते हैं या उत्साह दे जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ खूबसूरत विचार आपके नाम शेयर कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग भी इन सारी चीज़ों को सुनते हैं और जीवन में इनके बारे में सोचते हैं। विचार को आत्मसात करने के लिए उसका चिंतन बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं, जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वो कभी भी अकेले नहीं हो सकते, है ना, कितनी खूबसूरत बात। जिन व्यक्तियों के जीवन में पढ़ने की आदत होती है वो कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि उनके साथ पूरा संसार होता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। आइए आपके संसार को खूबसूरत बनाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। तो ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमत चुगताई के बारे में। भारतीय साहित्य में एक चर्चित और सशक्त कहानीकार के रूप में विख्यात एक नाम, और उसमें भी महिलाओं ने क्या एक अलग पहचान। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी रचनाओं में बेबाकी से उठाया और पुरुष प्रधान समाज में उन मुद्दों को चूटीले और संजीदा ढंग से पेश करने का जोखिम भी उठाया। आलोचकों ने उनके ऊपर इसमत चुगताई ने शहरी जीवन में महिलाओं के मुद्दे पर सरल, प्रभावी और मुहावरेदार भाषा में ठीक उसी प्रकार से लेखन कार्य किया जिस प्रकार से प्रेमचंद ने देहात के पात्रों को बखूबी से उतारा है। इसमत का अफसानों में औरत अपने अस्तित्व की लड़ाई से जुड़े मुद्दे उठाती रही है। तो आइए इसमें चुगताई के बारे में जानते हैं। अभी आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। जी हाँ, आज ही के दिन 21 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में इसमत चुगताई का जन्म हुआ। इनका बचपन अधिकांश जोधपुर में व्यतीत हुआ, जहां अपने पिता का एक सिविल सेवक थे। उनके पिता की 10 संतानें थीं, 6 पुत्र और 4 पुत्रियां। इनमें इसमत चुगताई उनकी 9वीं संतान थी। जब चुगताई युवा अवस्था को प्राप्त कर रही थी, तभी इनकी बहनों का विवाह हो चुका था। इनके जीवन का वो समय काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ जो उन्होंने अपने भाइयों के साथ व्यतीत किया। इनके भाई मिर्जा अजीज बेग चुगताई पहले से ही एक जाने माने लेखक थे। इस प्रकार इसमत चुगताई को किशोर अवस्था में ही भाई के साथ साथ एक गुरु भी मिल गया था, तो तब से इनका लेखन कार्य जो है मजबूती गढ़ती गई। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के साथ साथ चुगताई लेखन कार्य में विशेष रूप से मजबूती पाई और अपनी कहानियों में स्त्री चरित्रों को बेहद संजीदा से उभारा, और इस कारण उनके जिंदगी के बेहद करीब नजर आते थे उनके लेख, उनके पात्र। इसमत चुगताई ने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे हिंदी उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता है। उनकी भाषा प्रवाह अद्भुत थी, इसने उनकी रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमत चुगताई अपनी लिहाफ कहानी के कारण खासी मशहूर है, और 1941 में लिखी गई इस कहानी में उन्होंने महिलाओं के बीच विशेष मुद्दों को उठाया था। उस दौर में किसी महिला के लिए ये कहना बहुत मुश्किल था, दुस्साहस का काम था। इसमत को इस दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उन पर अवशलीलता का मामला चला। हालांकि ये मामला बाद में वापस ले लिया गया। आलोचकों के अनुसार उनकी कहानियों में समाज के विभिन्न पन्नों का आईना दिखाई गया। इसमत ने महिलाओं को असली जुबान के साथ अदब में पेश किया। उर्दू जगत में इसमत के बाद सिर्फ सादत हसन मंटू ही ऐसे कहानीकार थे जिन्होंने औरतों के मुद्दों पर बेबाकी से लिखा। इसमत का कैनवस काफ़ी व्यापक था, जिसमें अनुभवों के रंग उखेरे गए थे। ऐसा माना जाता है कि टेढ़ी लकीर उपन्यास में इसमत के अपने जीवन में ही मुख्य प्लॉट बनाकर एक महिला के जीवन में आने वाली समस्याओं को पेश किया था, तो इससे उनको प्रसिद्धि मिली और कुछ रचनाएं उनकी जो है पॉपुलर हुई। आगे हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधवन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बेहद लोकप्रिय चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं और इसमें चुगताई एक लोकप्रिय लेकर है, उनके बारे में लेखिका है, उनके बारे में बातें हो रही थी। उपन्यास ठेड़ी लकीर इनका जो है वो पॉपुलर रहा। फायर और मत्रिवन जैसी फिल्मों से किरदार तो पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन इस्मत ने इन्होंने कहीं पहले घड़कर अपने उपन्यासों में पेश किया था और समलैंगिक रिश्तों पर नहीं, उनके कारणों पर उर्दू जगत में पहली बार इस्मत ने ही लिखा। यूं तो उन्होंने जिद्दी, लिफाफा, मासूमा, एक कतरा खून जैसे कितने ही उपन्यास लिखे, किंतु सबसे ज़्यादा मशहूर और इसका विशेष विरोध हुआ वो टेढ़ी लकीर। 1944 का उपन्यास टेढ़ी लकीर ऐसे परिवारों पर व्यंग है जो अपने बच्चों की परवरिश में कोताही बरतते हैं और नतीजे में उनके बच्चे प्यार को तरसते हैं, अकेलेपन को झेलने का एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां जिस्म की ख्वाहिश ही सब कुछ होती है। इसमें चुगताई ने टेढ़ी खीर के जरिए इन रिश्तों को एक रोग साबित करके उसके कारणों पर नज़र डालने पर मजबूर किया, लेकिन तब के लोगों ने उनकी बातों को लेकर उनका विरोध किया, जबकि सच्चाई यही थी कि उन्होंने अपने किरदार के जरिए ये बताया कि एक बच्चे का अकेलापन, प्यार से महरूम और उसको नज़रअंदाज करना किस तरह एक बीमारी का रूप लेती है। उन्होंने इसे बीमारी बताकर नफरत के बदले प्यार, अपनापन निभाने की सीधी सीख दी ठेढ़ी लकीर के माध्यम से। आइए उनके कुछ किताबों की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके नाम आपको सुनाते हैं। जंगली कबूतर, टेढ़ी कीर, जिद्दी, एक कतरा, एक खून, मासूमा, दिल की महद बुनियाद, दिल की दुनिया, बंदी, बहरूप, नागर, सौ धाई, छोटे, छुई मुई, एक बात, कालिया, एक रात। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें उनकी खुद की रचनाएं हैं और टेढ़ी लकीर के लिए उन्हें विशेष गालिब अवार्ड 1974 में मिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, इकबाल सम्मान मिला, नेहरू अवार्ड उन्हें मिला, मखदूम अवार्ड भी उन्हें मिला। और उर्दू साहित्य की जानी मानी लेखिका इसमत चुगताई की 21 अगस्त 2018 को 107वीं जयंती पर, उनके इस जयंती पर गूगल ने भी उनका सम्मान किया और ख़ास डूडल बनाया। गूगल ने इसमत चुगताई का डूडल काफ़ी रंगीन बनाया है। अपने साहित्य के जरिए महिलाओं की दबी कुचली आवाज़ उठाने वाली इसमत चुगताई भारतीय साहित्य में पहली बार लेब्रियन प्रेम कहानियाँ लिखी थी। तो आइए इनके बारे में और भी कभी वक्त मिले तो ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और इसमत चुगताई का निधन 24 अक्टूबर 1991 में मुंबई, महाराष्ट्र में हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ गोपाल कृष्ण देवधर की बातें अब करते हैं। और भारत के एक ऐसे सामाजिक सेवक थे, राजनीतिक गतिविधियों की और उनका ध्यान कम था, लेकिन जहाँ कहीं भी सेवा का कोई अवसर देखते वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष का पद गोपाल कृष्ण जी ने आजीवन संभाला था। सेवा सदन की स्थापना में भी उन्होंने रामा भाई रानाड़े को अपना पूरा सहयोग दिया था। तो आइए ऐसे गोपाल कृष्ण देवधर के बारे में बात करते हैं, जो सामाजिक सेवा की प्राथमिकता के साथ ही अपनी सेवा समझ के करते थे और उसके बाद उसमें देश आता था। तो आइए ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। 21 अगस्त 1871 को महाराष्ट्र के पुणे में एक प्रसिद्ध समाज सेवी गोपाल कृष्ण देवधर का जन्म हुआ चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में। इनकी पढ़ाई फर्गुसन कॉलेज पुणे में 1897 में पूर्ण हुई और उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती थी, परंतु सेवा की भावना के कारण आर्यन एजुकेशन सोसाइटी मुंबई में 22 रुपये हर महीने के वेतन पर अध्यापक बनना इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पर रहकर सामाजिक सेवा हो जाती थी। अगर वो कहीं और निकल जाते, उनको अच्छी नौकरी में चले जाते, तो शायद देश सेवा या सामाजिक सेवा में कहीं कमी आ जाती। तो इस भाव को उन्होंने देखकर ही वहाँ पर नज़दीक में कम पैसे में भी उन्होंने एज ए अध्यापक काम करना स्वीकार किया। गोपाल कृष्ण देवधर 1904 में गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए और 1905 में भारत सेवा सेवक समाज की स्थापना हुई। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ भारत सेवक समाज की स्थापना में गोपाल कृष्ण देवधर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये संस्था देश और समाज की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तियों के सपरिवार भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेती रही है। और सेवा भाव की इतनी जो गतिविधियाँ होती थी, राजनीतिक गतिविधियों के प्रति गोपाल कृष्ण देवधर की रुचि भी बनी नहीं। वे सेवा का अवसर जहाँ भी देखते वहीं पहुँच जाते। और 1906 में जब पुणे में प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया, तब देवधर जी ने अपनी परवाह किए बिना दिन रात रोगियों की सेवा करते रहे और महिलाओं के उत्थान के लिए सेवा सदन की स्थापना की और रमा भाई रानड़े को पूरा सहयोग दिया। 1921 में मोपाल विद्रोह में सताए हुए लोगों की सहायता करने में भी वे बहुत आगे रहे। गोपाल कृष्ण देवधर ने ऑल इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस 1929 के लखनऊ और 1933 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। सरकारी आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करने के उद्देश्य से मुंबई को ऑपरेटिव इंस्टीट्यूट की स्थापना उन्होंने की थी और महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्थापित अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ के जीवन पर्यंत प्रदेशी का अध्यक्ष रहे थे। और उसके बाद भारत की इस महान विभूति का निधन 1935 में, जी हाँ 1935 में हुआ, और किस तारीख में हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। आइए इसके साथ ही मैं आप सभी को जोड़ता हूँ एक और खूबसूरत गीत के साथ। जीवन के इस पड़ाव में गोपाल देवधर की बातें अगर सुनते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं इनकी सामाजिक सेवा के प्रति जो लगन है वो हम सभी को आज के समय में सीखने की ज़रूरत है। उस समय के हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और है। तो आज हमारे पास वैसी मुश्किलें नहीं है, लेकिन आज की मुश्किलें कुछ और है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख कर हमें सामाजिक सेवा में लगे रहना चाहिए। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

बड़ा अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब तक समाज समृद्ध नहीं होगा तो देश समृद्ध कैसे होगा, है ना। जब तक घर मजबूत नहीं तो घर के लोग कैसे मजबूत होंगे, और घर के लोग मजबूत नहीं तो समाज कैसे मजबूत होगा। तो इसीलिए हमारी जो है खुद की एक ऐसी सोच होनी चाहिए, पहले समाज को मजबूत किया जाए तो अपने आप देश मजबूत होगा। तो आइए अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, अन्ना राम। और ये भी एक ऐसे शख्सियत है जिनकी कहानी सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सत्यनारायण रेड्डी। एक आज़ादी के दीवाने, समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। सत्यनारायण रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले के शानदार अन्नारम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। इनकी शुरुआती शिक्षा रंगारेड्डी जिले के एडुलाबाद गांव में एक उसके पाठशाला में हुआ, और नागपल्ली स्कूल और केशव मेमोरियल स्कूल हैदराबाद में ग्रहण की। हाई स्कूल की शिक्षा विवेक वर्धनी स्कूल हैदराबाद में तथा बीए की डिग्री निजाम कॉलेज हैदराबाद से ग्रहण करने के पश्चात विख्यात उस्मानिया विद्यालय हैदराबाद से एलएलबी की डिग्री हासिल की। आज़ादी के दीवाने बने। फिर रेड्डी एक जाने माने आज़ादी के सेनानी थे जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर केवल 14 वर्ष की अल्पावस्था में सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े थे तथा उस समय बंदी बना लिए गए थे जब वह गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोधियों के एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने समाजवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन उपाध्यक्ष अध्यक्ष श्री स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में छात्र नेता के रूप में 1947 के हैदराबाद जन आंदोलन में भाग लिया, और गांधी जी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे महान विभूतियों से प्रेरणा प्राप्त की थी तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रेरणापद नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। उनके निजाम के शासक के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन में भूमिका भी उल्लेखनीय है। सन 1947 में हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय के लिए जो आंदोलन चला उसके फलस्वरूप तत्कालीन निजाम सरकार सन 1948 में ने बंदी बनाकर केंद्रीय जेल चंचलगुड़ा हैदराबाद में डाल दिया गया, जहां ये 6 महीने तक रहे। और जेल में रहते हुए उन्होंने उर्दू साप्ताहिक पयाम-ए-नौ का संपादन किया, जिसे ये अपनी बंदी साथियों में वितरित किया करते थे। उससे पूर्व जब ये 6वीं कक्षा में पढ़ते थे तब हिंदी पाक्षिक मुकुल का संपादन भी किया करते थे। तो है ना कमाल के व्यक्ति। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। जैसे जैसे वो बड़े होते गए और राजनीतिक जो हलचल है, जो कार्य है, वो कैसे उन्होंने किया, इसके बारे में आगे जानते हैं। लेकिन अभी एक गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। सफ़र सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बातें हो रही थी बी सत्य रेड्डी के बारे में। बी सत्यनारायण रेड्डी, देश के राजनीति का गहरा अनुभव था उनके पास। 1 अगस्त 1975 को आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मीसा के तहत 18 महीने तक बंदी बनाए रखा। रेड्डी ने आचार्य विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण के भूदान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी और इससे उनका अनुभव बढ़ा। और 47 और 48 के बीच में हैदराबाद विद्यार्थी संगठन एक्शन कमेटी का अध्यक्ष बने और उसके पश्चात बार काउंसिल सिटी सिविल कोर्ट से उन्होंने काम किया और उसके भी महासचिव वो बने। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। और जैसे जैसे उनकी मजबूती बढ़ती गई और 1978 में उन्होंने मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और 1983 में तेलुगु देशम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर इसी पार्टी के प्रत्याशी रूप में 1984 में पुनः राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। और मलेशिया, सिंगापुर, रोम, लीबिया, नैरोबी, केन्या, लंदन, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड आदि विदेशी यात्राओं का भ्रमण इन्होंने किया। और श्री सत्यनारायण रेड्डी 12 फरवरी 1990 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। उसके बाद इनका कार्यकाल 12 फरवरी 1990 से 25 मई 1993 तक रहा और उसके बाद 85 वर्ष की आयु में हैदराबाद में 6 अक्टूबर 2012 को इनका निधन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए श्री सत्यनारायण रेड्डी के बारे में, एक मनजेवी राजनीति की कहानी। चलिए इसी के साथ मैं आपको चाहूँगा कि एक और गीत के साथ जोड़ता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आखिरी मोड़ पे पहुँचेंगे कार्यक्रम के और आपके कुछ मैसेजेस और यादें हमारे साथ जुड़ी रही हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की बातें करते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिक थे और विज्ञान और अभियंती के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1961 में पद्मश्री और 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सतीश भवन और ब्रह्म प्रकाश उस समय के एक दूसरे को करीब से जानते थे और जब वे 1944 और 45 के दौरान विदेशों में प्रायोजित छात्र थे, सतीश धवन ही थे जिन्होंने ब्रह्म प्रकाश को VSSC का निदेशक बनाने के लिए राजी किया था। तो आइए डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की कहानी आपके लिए, अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश का जन्म आज ही के दिन 1912 को 21 अगस्त आज़ादी के पूर्व भारत में हुआ। अपनी कॉलेज की शिक्षा दीक्षा रसायन विज्ञान में पूरी की और फिर पंजाब विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद अपने काम के लिए वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर के साथ जुड़े रहे और उनके साथ जुड़कर शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड ने उन्हें मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US से उन्नत शैक्षणिक ट्रेनिंग का अवसर दिया। और MIT में प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश ने मिनरल इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजिकल थायराइड मिक्स के विषय में डॉक्टरेट की दूसरी डिग्री भी हासिल की। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक वैज्ञानिक सचिव का पद पाते हुए विभिन्न पदों पर आसीन होते हुए राष्ट्र ने उन्हें ब्रह्म प्रकाश जी को 1961 में पद्मश्री और 1968 में पद्म विभूषण दिया उनके कार्य को देखते हुए। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा अब इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। और जाते जाते आपके लिए एक और खूबसूरत विचार छोड़े जा रहा, खुद पर विश्वास करें, निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम छूमेगी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और दोस्तों हम सब आ गए हैं आपके पास लेकर एक नए विषय और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है मोनिका. और दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज उस विषय के बारे में जो एक जीवन को कुछ इस तरीके से प्रभावित करता है कि समझ लें कि वो एक नया मोड़ ही ले आता है. हम बात कर रहे हैं कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन आ जाती है, एक बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है. कुछ मजबूरी होती है, कुछ चॉइस भी होती है, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस यानी हमें ये महसूसता नहीं होती कि क्या असर पड़ जाएगा. कई बार होती है मगर परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो हम कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशंस में क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी जानेंगे, क्या उपाय हैं वो भी जानेंगे और बात करेंगे इस विषय में. मोनिका आपका स्वागत है.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया.
0: तो मोनिका सबसे पहले तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में.
1: वैसे शिक्षा का महत्व तो आजकल सभी को पता है और शिक्षा के मामले में आजकल सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएँ बनाई है. तो वैसे आजकल सारे लोग शिक्षा लेते हैं पर ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें इस मामले में जागरूकता नहीं है और कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से वो स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में ही. और फिर एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में जब उन्हें लगता है कि हम क्या हम फिर से जा सकते हैं, क्या हम फिर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. तो उनके लिए आज ये हमारा सेशन है. राइट.
0: ओके. तो जैसा आपने कहा कि क्या हम एक शिक्षा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये मन में आता है, पर क्या रीज़न होते हैं, मतलब क्यों आपको लगता है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्या विश प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या लगता है आपको?
1: जी सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि किसी कोई परिवार होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल वित्तीय प्रॉब्लम्स होती हैं. पर आजकल सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्लान अमेंडमेंट किया है, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलेंगे. 2009 में ही हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पास हुई थी जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया जाता है. तो ये प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, मतलब
0: सॉल्व करने का प्रयास तो हो रहा है बिल्कुल. लेकिन हम अगर गांव-गांव में देखते हैं, आज बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जब माता पिता दोनों काम पे जाते हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होता, तो कई बार बड़े भाई बहनों को स्कूल छोड़ना पड़ता है. कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें वो माहौल नहीं मिलता कि घर पे पढ़ाई के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि शायद पढ़ाई करके क्या ही फ़ायदा है. कई बार माता पिता को भी ऐसा लगता है क्योंकि इतनी नौकरियां अब कहाँ से गांव में दिखेंगी, गांव में खेती करनी है या वही काम करना है, तो माता पिता को भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो अभी कमाएं क्योंकि बाद में भी यही काम करना है और अभी भी यही काम करना है. एक भी सिचुएशन होती है. और कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि छोटी सी बात बड़ी बुरी लग जाती है किसी टीचर की, कोई टीचर डांटेगा या फिर उनसे डर लगने लगता है या किसी और बात से डर लगने लगता है और लगता है कि छोड़ो मेरे दोस्त भी तो नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जाता हूँ. और वो एक दिन एक महीना और एक महीना एक साल और एक साल न जाने कितने साल बन जाता है और स्कूल जाना ही बंद हो जाता है. कई बार एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आता उस चक्कर में ऐसा हो जाता है. कई बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि रास्ते में छेड़छाड़ के मामले हो जाते हैं और वो ना घर पे बता पाती हैं ना स्कूल में किसी की मदद ले पाती हैं, और ऐसे में किसी को पता चलता है तो मुश्किल का सामना लड़कियों को ही करना पड़ता है, उनका स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद करा दिया जाता है. ये सब समस्याएँ हैं लेकिन हल नहीं है. स्कूल बंद करा देना हल कभी नहीं हो सकता, सल्यूशन कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पूरे जीवन का जो आधार है वो है शिक्षा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, कर रहे हैं. ये इतना आसान तो नहीं है लेकिन हम सभी के प्रयास से मिलकर हम कुछ सफलता हासिल ज़रूर कर सकते हैं. और मोनिका और क्या लगता है, आपने इस बारे में और पढ़ भी रहे थे आप, क्या पढ़ा आपने?
1: जी कहीं कहीं पे लड़कियों के को शिक्षित करना एक समझा जाता है कि क्या ही करेगी पढ़ के, आगे जाके शादी करनी है और ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर वर मिलना वो वो भी चीज़ें हो जाती है जो माता पिता सोचते हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची, और लड़कों के मामले में रहता है कि आगे जाके इसने हमारा ही बिजनेस संभालना है तो क्या फ़ायदा हो, मतलब पढ़ के
0: ऐसा भी सोच लेते हैं
1: जी, जी। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कोई कोई स्कूल्स में एक ही एक साथ बहुत काफ़ी बच्चों को बिठा देते हैं और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाते हैं, उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट भी चला जाता है, और कहीं पे जो सिखाते हैं स्कूल में वो ऑफ टॉपिक हो जाता है, जो बच्चों को लगता है कि इसका हमारे जीवन में रिलेशन नहीं है कुछ भी, इसका कहीं कहाँ उपयोग हो सकता है, तो हम क्या ही करेंगे पढ़ के
0: क्या फ़ायदा है
1: जी। तो इसके लिए शिक्षा इसका शिक्षा इस तरह से बनाई जानी चाहिए, नॉलेज एजुकेशन इस तरह का हो कि वो बहुत एंगेजिंग हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करे और
0: टीचर्स कुछ नए नए तरीके इस्तेमाल
1: नए तरीके होते हैं
0: जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी बात है
1: जी। और जो लड़कियां होती हैं उन्हें वो क्यों, वो कभी कभी इस कारण से भी स्कूल नहीं जाती है कि स्कूल में शौच घर नहीं होता है, तो उस कारण से भी वो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आजकल काफ़ी स्कूल्स में बनाया भी जाता है
0: जी,
1: अवेलेबल किया जाता है, पर कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो वो भी एक कारण है,
0: बहुत बड़ा कारण है बिल्कुल
1: जी।
0: तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसा लगता है कि अभी उस समय महसूस नहीं होता कि कितना बड़ा ये हमारे जीवन पर असर डालेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं देखते हैं कि और उनके साथ के जो लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं या अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं या कुछ अपना कर रहे हैं, तो महसूसता होती है और फिर गिल्ट भी होता है, बुरा भी लगता है माता पिता को भी और बच्चों को भी। हाँ ये ज़रूर है कि भाई जिनका वो समय निकल गया, वो यूथ हो गए, बड़े हो गए, वो भी पढ़ सकते हैं हालांकि, लेकिन जो बच्चे हैं अगर आप लोगों ने किसी भी कारण से स्कूल छोड़ दिया है ना दोस्तों, तो उस कारण का दूसरा निवारण ढूंढ लीजिए, क्योंकि स्कूल छोड़ना सल्यूशन नहीं है, आपके जीवन के लिए स्कूल जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बारे में और भी बात करेंगे मोनिका, एक छोटा सा गीत हमारे दोस्तों को सुनाते हैं, लौट कर आएंगे। कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं युवा मंच, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, डेप्यूटी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, एविंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन नंबर 0112388684, ईमेल prabhudutt.sharma@nic.in या CISCELL-MOIB@nic.in।

0: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों स्कूल ड्रॉप आउट कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। अब लेकिन कैसे और क्यों, मुझे लगता है सबके कारण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए शो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हमारे साथ मोनिका जुड़ गई है स्टूडियो में। मोनिका, और क्या कारण है, आपको क्या लगता है क्यों होता है स्कूल ड्रॉप आउट?
1: जी कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस में JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इन्हें टाइम इसके लिए तैयारी करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम इसमें देते हैं और उसकी वजह से वो स्कूल के जो क्लासेस होते हैं वो मिस करते हैं और फिर वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर वो छोड़ देते हैं स्कूल। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार फेल होते फिर उनका फिर वो छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करते, हम ऐसे ही कोई बिजनेस कर लेंगे। ये भी कारण है। और कुछ पेरेंट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इधर उधर वो शिफ्ट करती रहती हैं, जो बहुत सिटीज में जो डिफेंस फैमिलीज होती हैं और उसकी वजह से भी
0: होते हैं वो बहुत सारे जो मजदूरी करते हैं भाई बहन बंजारे भी होते हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते तो उनका कहीं पे बच्चों की उनकी पढ़ाई एक जगह नहीं हो पाती है।
1: जी डिस्टर्ब हो जाता है उनका और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो भी उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। और जैसे कि हमने बुलिंग के बारे में भी बात की थी, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। और इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ में बैकग्राउंड ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं होता है और बच्चे जुआ और सट्टा ज़्यादा खेलते हैं,
0: गलत आदतों में पड़ जाते हैं।
1: जी तो वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं होता है तो इस वजह से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं।
0: और कई बार लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है, मैंने कहा ना कि लड़कियों स्कूल छोड़ने की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और कई बार तो शुरुआत भी नहीं हो पाती, उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता। कई बार भेजा जाता है तो उनकी पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता जितना लड़कों की पढ़ाई को समझा जाता है।
1: हाँ जी।
0: और कई बार तो छुड़वा भी दिया जाता है स्कूल।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: हाँ, किसी के पास अगर आर्थिक समस्या है, पैसे वित्तीय समस्याएं हैं तो उनकी शादी करवाई जाती है, तो इसलिए ये भी कारण है, खास करके जो लड़कियाँ होती है।
0: बिल्कुल। और कई बार लड़कियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अगर छोटा भाई बहन है घर में तो भले वो लड़की खुद बहुत छोटी है बट उसे खुद अपने छोटे भाई बहन को देखना संभालना होता है। दोस्तों परिस्थिति को हम समझ सकते हैं और अगर परिस्थिति इतनी बड़ी है ना कि नहीं हैंडल हो रही, तब भी मिलकर पूरा परिवार कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर वो छोटी बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी गई तो उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाएगा और उसके पूरे भविष्य में अगर वो कल को चाहेगी कि एक अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर पाए, या मान लीजिए आज हम देखते हैं घरेलू हिंसा, कितने लोगों को इस घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, कितनी लड़कियों को अत्याचार सहने पड़ते हैं शादी के बाद भी। तो अगर एक लड़की आत्मनिर्भर है, अगर वो पढ़ी लिखी है, फिर उसकी शादी होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने को इतना संभाल सकती है, अपनी केयर कर सकती है, बल्कि दूसरों की भी केयर कर सकती है, सिर्फ अपनी नहीं, उसको मदद मिलती है, उसको हौसला मिलता है। तो पूरे जीवन के लिए पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं चाहिए, पढ़ाई जीवन के लिए चाहिए। तो इसीलिए लड़कियों की पढ़ाई तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छुड़वानी चाहिए। आप अगर मिलके सोचेंगे मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन वो बच्ची अगर स्कूल के अगर रास्ते को भूल गई ना तो कल को हो सकता है उसका भविष्य उतना अच्छा ना हो पाए जितना चाहते हैं या वो खुद चाहती है। तो बहुत दुख होता है कई बार जब बच्चियों को छोटे छोटे देखते हैं और उनको स्कूल जाने को नहीं मिलता है।
1: जी एक बात मैं कहना चाहूँगी, एक्चुअली हमारे हम भी ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे बोलते थे कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं है और शादी करा देते हैं जल्दी, और हमें भी बोला जाता था कि क्या करोगे पढ़ के, और मतलब हमें ऐसे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे थे कि उनकी शादी ही करा देते थे पढ़ाई होने के बाद, फिर ऐसी सोच थी। पर आज हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षित किया है, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा का महत्व खाली वहाँ तक नहीं है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व बहुत बहुत विकसित होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स अच्छा दिख के आता है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन जीने की कला हमें शिक्षा से मिलती है, शिक्षा में बहुत कुछ सिखाती है।
0: बिल्कुल, और कितनी सही बात की। अब देखिए, आपके घर वालों ने इस बात को समझा है ना,
1: जी
0: नहीं तो अगर समाज की, अड़ोसी पड़ोसियों की या कई बार रिश्तेदारों की बातों में भी आ जाते
1: जी
0: तो हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है उन लोगों की बातों में हम आ जाते जिनकी हमारे जीवन से कोई लेना देना भी नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले ना हम उनके किसी काम आने वाले हैं भविष्य में, तो जो होना है वो होना है, लेकिन फिर भी उनकी बातों का असर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लड़की को
1: जी
0: तुमने इतना पढ़ा दिया, लड़की को तुमने इतनी छूट दे दी, अब
1: हाँ
0: है ना। तो इस तरह की बातें भी बहुत होती हैं, लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी कौन है? आपके बच्चे ज़रूरी हैं या लोग ज़रूरी हैं? और लोग तो बातें करते ही रहेंगे, कभी भी वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, जो बातें सही हैं तो समाज को समाज बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी है, हम सब एक समाज में रहते हैं तो हम उनका पालन करें, लेकिन अगर एक बच्चे की पढ़ाई की कुर्बानी देनी पड़ रही है उन बातों को पूरा करने के लिए, अगर किसी का भविष्य खराब करना पड़ रहा है उन बातों को सही ठहराने के लिए, तो आपका निर्णय अपने बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी गलत होगा, क्योंकि हमें समाज भी ऐसा चाहिए, वो बच्चे जो कल का भविष्य है वो पढ़े लिखे चाहिए, है ना, तभी तो बदलाव होगा, तभी तो परिस्थिति बदलेगी।
1: जी
0: जो हम चाहते हैं कि बेटर हो हमारा, कल को पैसे ज़्यादा आए घर में, घर की कंडीशन बेहतर हो, सब कुछ बेहतर चाहते हैं, कोई तो नहीं चाहता और बिगड़ जाए चीज़ें, नहीं, तो वो सुधरने का बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा,
1: जी
0: बहुत ज़रूरी है।
1: जहाँ पे लोग पूछते हैं ऐसी बातें करते कि क्या करोगे, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं आपने क्या पढ़ाई की है,
0: बिल्कुल,
1: तो उन्हें जवाब देने के लिए भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी है।
0: कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें बोलने का,
1: कॉन्फिडेंस, हाँ जी
0: अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो लोग तो बोल रहे हैं इतने अच्छे से, हम डर जाते, कॉन्फिडेंस नहीं आता, उस चक्कर में हम जो टैलेंट है ना, जो हुनर है वो भी दिखा नहीं पाते हैं।
1: हाँ जी
0: तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के महत्व को समझना ही होगा। हाँ, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं पढ़े, जिन्होंने कार्य जल्दी शुरू कर दिया, अपने घर को संभाला, उनकी बहुत बड़ा त्याग है उन्होंने किया, और वो त्याग जाया ना हो इसके लिए आप आने वाली जनरेशन को पढ़ाइए, इस जनरेशन को पढ़ाइए। इनफैक्ट जो घर में लोग हैं, अक्षर ज्ञान तो वो भी ले सकते हैं ना, मम्मी को अपने, अब बच्चे जो स्कूल जाते हैं अपनी मम्मी को आप लिखना सिखाओ, अपनी मम्मी को ABCD क ख ग घ सिखाओ, और आप उनको साइन करना सिखाओ, ताकि वो कल को बैंक में जाते हैं या बस में बस लेने जाते हैं तो वो पढ़ पाए, उन्हें किसी को पूछना नहीं पड़े कि वो क्या लिखा है, कहाँ साइन करना है, कैसे साइन करना है, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाए, उनके साथ कोई गलत नहीं कर पाए। तो आप अपनी माँ को भी पढ़ाइए, आप अपने बहन को भी पढ़ाइए, आपके घर में जो लोग नहीं पढ़े हैं भले उम्र में बड़े हैं, अक्षर ज्ञान ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ना मोनिका।
1: जी बिल्कुल
0: तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस मुहिम को आप सब आगे लेकर जाएंगे हमारे साथ साथ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लौट कर आ गए हम कार्यक्रम युवा मंच में. और दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कूल को ही बीच में छोड़ देने से क्या होता है. वैसे अनुभव जो स्कूल छोड़ते हैं उनको भी है, उनके माता पिता को भी है, उनके अड़ोसी पड़ोसी और परिवार वालों को भी है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत ऐसी बात है कि सब कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. अब भाई किसी के दोस्त सारे अगर स्कूल छोड़ के बैठे हैं खेल रहे हैं तो बच्चे को भी लगता है कि मैं भी खेलूं, मैं क्यों जाऊं, रोज़ मुझे टीचर मारती है डांटती है, ये करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो क्यों मैं, मेरे दोस्त कितना इन्जॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी अपना मस्ती कर रहे हैं, जो कर अपने दिन में खुश हैं, तो मैं भी क्यों ना खुश रहूँ, मेरे साथ ये. लेकिन अब बात ये है दोस्तों, ऐसे में उस

0: समय वो बच्चा तो नादान है, छोटा है, लेकिन माता पिता को उन्हें बहुत बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी ही है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम टॉप ही करो, एकदम परसेंटेज 90 आ जाए, 80 आ जाए, लेकिन पढ़ाई करो, समझो और आगे बढ़ो। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा जीवन इससे अफेक्ट होता है। और मोनिका, क्या लगता है आपको इस बारे में? और
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब मैं छोटी थी, और ऑफकोर्स जो भी बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई से छुटकारा हो जाना चाहिए, बस खेल कूद होनी चाहिए और मज़े होने चाहिए। लेकिन अभी हमें लगता है कि नहीं, पढ़ाई का, शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम देखते हैं हमारी एज के कुछ बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ विदेश में जाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, तो अभी हमें शिक्षा का महत्व पता चलता है। हम छोटे रहते हैं तो नादान रहते हैं, और एज अ पेरेंट हमें तो पता है इम्पोर्टेंस, तो हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर बच्चों का मोटिवेशन, बच्चे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।
0: पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि कुछ आपको अगर डेटा आपके साथ शेयर करना चाहें, तो दोस्तों एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई जो कि डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने कराई, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2023 की। 2023 को 9 अगस्त को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जागरण में, और दोस्तों उसमें बताया गया कि उन्होंने एक स्टडी की थी, और जिसमें उन्हें ये पता चला कि जो रूरल इंडिया है, अगर हम बात करें, गाँव की बात करें, कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के माता पिता हैं 78% और लड़कों के 82 यानी 82%। यानी लड़कों के माता पिता अभी भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों के माता पिता हाँ अवेयर हैं, ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंपेरिजन में कम है। लड़कियों की पढ़ाई को अभी भी महत्व कंपेरेटिवली लड़कों से कंपेयर किया जाए तो कम मिलता है। और ये जो स्टडी हुई यानी जो रिसर्च हुई, ये ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने करवाई, और ये रिसर्च जो 6 से 16 साल तक के बच्चे होते हैं गांव में, रूरल कम्युनिटीज़ में, उनके माता पिता से पूछा गया था, बात की गई थी, और करीब 20 स्टेट में ये रिसर्च कंडक्ट की गई। तो दोस्तों जब ये रिज़ल्ट आता है तो एक ये भी एहसास होता है कि हाँ, पहले से हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन अभी भी एहसास होता है कि अभी भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना लड़कियों की शिक्षा को मिलता है, है ना
1: जी।
0: तो दोस्तों ज़रूरी है कि हम ये बातें जानें, और अगर हम ड्रॉप आउट की इस वक्त बात कर ही रहे हैं, टोटल जो ड्रॉप आउट है, अब उसकी बात करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है कि लड़कियों के जो छोटी बच्चियां होती है उनमें ज़्यादा है, और इसी रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, 35%। आप सोचें 35%। और आप अगर लड़कों की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, ये रेट ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों में हो ही नहीं रहा, लड़कों में नहीं हो रहा, लेकिन लड़कियों में अभी भी ज़्यादा है। यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लड़की सिर्फ शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, बल्कि उसका जीवन भी उतना ही, उम्र वो जीने वाली है उतना ही, वो ज़रूरी है उतना ही, वो समाज का हिस्सा है उतना। और सोचिए, एक लड़की, कहते हैं ना कि भाई एक लड़के को पढ़ाते हैं तो एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, ये कहावत है
1: जी।
0: और आप कुछ कहना चाहोगे, आपने जो पढ़ा, जो इस बारे में विषय में समझा?
1: जी, वैसे आजकल लड़कियां लड़कों से आगे ही है हर क्षेत्र में। हम स्कूल में भी देखते थे कि जो टॉपर्स रहते थे, और आजकल यूनिवर्सिटी टॉपर्स मोस्टली लड़कियां रहती है, और लड़कियां किसी के मामले में कम नहीं है। कहीं कहीं पे लड़कियों ने दिखा दिया कि लड़कों से कम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी ऐसे लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम लड़कों वाले, लड़कियों वाले दोनों काम कर लेते, तो एक अच्छा लगता है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं,
0: अपने माता पिता को भी संभाल सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत पड़े तो हम मदद कर सकते हैं, चाहे ट्रेन का टिकट करना हो, कुछ सामान खरीदना हो, कुछ भी करना हो
1: जी।
0: तो लड़कियां गाड़ियां चलाती हैं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, तो अगर वो शिक्षित नहीं होती तो वो संभल कैसे होती
1: जी।
0: और दोस्तों जब भी बात शिक्षा की आती है तो मुझे लगता है एक प्रश्न सबके मन में आता ही है, और वो ये भी अभी भी हमें ये ज़रूर लगता है कि पढ़ा के क्या होगा, अगर मान लो काम वही करना है जो हमारे माता पिता कर रहे हैं तो पढ़ के क्या फ़र्क पड़ जाएगा।
1: नहीं, पढ़ने से तो बहुत फ़र्क होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं। सिर्फ पढ़ाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कमाई का साधन नहीं है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो पढ़ाई से बहुत फ़ायदे होते हैं।
0: अब पता है मानेगा, एक प्रश्न ये ना, छोटे छोटे बच्चे, गांव में एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पास के ही, और उन बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल, अगर मान लो आपको स्कूल से क्या, स्कूल जाने से क्या होगा। तो उसमें से एक छोटी सी लड़की थी, वो लड़की ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 6-7 साल की थी शायद। तो उस लड़की ने बोला कि अगर मुझे खाना भी बनाना है तो अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगी ना तो मैं कुछ नया नया और बना पाऊँगी, मुझे पता चलेगा और कहाँ कहाँ क्या बनाते हैं, कैसे मैं पढ़ पाऊँगी, कैसे कैसे बनाते हैं। तो सिर्फ जो यहाँ बनता है, जो हम खाते हैं, हम कुछ और भी नया नया आपको बना के खिला पाएंगे। वहाँ एक छोटा बच्चा भी था, उसने कहा कि अगर मुझे खेती करनी है, मान लो मुझे अपने माँ बाप का जो काम है उसको आगे बढ़ाना है, अच्छे से खेती करनी है, एक अच्छा फार्मर भी तो देश की नींव है ना
1: जी।
0: तो उसने बोला कि मैं और तरीके से खेती कर पाऊँगा और स्टाइल अपना पाऊँगा इरिगेशन के, या फिर उसने मतलब इरिगेशन शब्द का उपयोग तो नहीं किया, परंतु उसने ये ज़रूर कहा कि मैं खेती के नए तरीके ढूँढूँगा, बेहतर करूँगा खेती को। तो अब ये कितनी बड़ी बात है, वो छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो जीवन जी रहे हैं उसी को बेहतर कर सकते हैं अगर वो शिक्षा हासिल कर लें तो।
1: जी, आपको एक बात बताऊंगी। एक्चुअली मैंने तो वैसे कॉमर्स किया है, पर अचानक से मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया कि साइंस की बुक होती है जो NCERT जो UPSC की प्रिपरेशन करता है, तो उनकी मैंने साइंस की बुक पढ़ी थोड़ी सी, और मुझे इतना सारा नॉलेज मिला उसमें से कि कौन सी चीज़ों में विटामिन्स मिलते हैं, कौन सी चीज़ में एनर्जी मिलती है, और जो जैसे कि आपने कहा जो खेती करते हैं उन्हें उस क्षेत्र में भी बहुत सारा नॉलेज मिला। मैंने एक ही किताब पढ़ी और इतना नॉलेज अगर मिल रहा है तो पूरी की पूरी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप कितने ज़्यादा शिक्षित हो जाओगे, और वो आपको काम में आएगा। आप कैसे जीना है, अच्छे से अपने आप को कैसे रखना है, आप हम पढ़ाई क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है ना। पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी करेंगे, डिग्री मिल गई उसके लिए, हमें उसमें से सीखने को मिल रहा है। अगर वो प्रथा चलती आ रही कि पढ़ाना है तो उसमें से फ़ायदा हो रहा है, तभी हम पढ़ाई को, शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखो, आपने वो बुक पढ़ी इसलिए कि आपको जानकारी मिले, आपको एग्ज़ाम नहीं देना था वहाँ पे, स्कूल की किताब नहीं थी आपकी, तो नॉलेज जहाँ से मिले आपको काम ही आएगी एक ना एक दिन, आपको वो मदद ही करेगी कभी ना कभी। खाली नहीं जाती कोई भी चीज़ अगर आपने सीखी है तो। ये कहता है, हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते आए हैं, कहते आए हैं इस बात को। और मोनिका, क्योंकि हमारे शो भी ख़त्म होने वाला है थोड़े समय में, आपने कुछ NIOS के बारे में भी पढ़ा है और उपाय सॉल्यूशंस की भी अगर बात करें तो आप क्या सोचते हो?
1: जी, जो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत साल हो गए और हमने स्कूल छोड़ दिया था, हमने 4th to 8th grade पढ़ाई की थी, और हम क्या हम फिर से पढ़ सकते हैं, क्या हम फिर से स्कूल जा सकते हैं और कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए खुशखबर है कि हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हो। और उसका सॉल्यूशन ये है कि एक NIOS, जैसे कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट है, सरकार, भारत सरकार ने जारी किया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपन स्कूलिंग कहा जाता है, एक ये ऑप्शन है। उसके अलावा जिन बच्चों ने हाल ही में स्कूल छोड़ा है और अभी स्कूल जाने की एज में है, वो स्कूल जा भी सकते हैं, तो वो रेगुलर स्कूल्स में जाके भी फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है वो NIOS के थ्रू जा सकते हैं। हर एक स्टेट का ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। मैंने एक्चुअली सर्च किया था, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वो जनरल है, और
0: यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान
1: जी, और एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है,
0: इग्नू जिसे कहते हैं
1: जी। और उसके अलावा काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके अपने अपने NIOS हैं, ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बैंगलोर में भी अपने अपने ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इतनी व्यवस्था आई है मतलब आप कभी भी पढ़ना चाहो, कभी भी वापस शिक्षा प्राप्त करना चाहो तो बहुत इजी है. आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो. एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, उनसे.
0: जैसे आपने इग्नू वगैरह की बात करी या और ऐसे कॉलेजेस की बात की, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं. यूनिवर्सिटी वो होती हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी आप 12वीं कर चुके हैं, आप उसके बाद की पढ़ाई होती है. NIOs की बात कर रहे हैं हम, वो ओपन हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं. तो ड्रॉप आउट जिन्होंने स्कूल में किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो ओपन लर्निंग कर सकते हैं. मतलब आपको रोज़ स्कूल नहीं जाना है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह एडमिशन नहीं, लेकिन हाँ आप वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं और आपके पास वो डिग्री, वो आपको आ जाता है कि एक क्लास आपने पास कर ली है. तो अगर आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो सबसे अच्छा है स्कूल जाना, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र निकल गई है या कुछ और मुश्किलें अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सकते हैं. ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का. आप सोचें कितना बड़ा ये कार्य चल रहा है. और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के अंडर आता है. और आप अगर इस बारे में जानना चाहें तो दोस्तों आप nios.ac.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं. मैं फिर से दोहरा देती हूँ, nios.ac.in.
1: जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी. लोगों को, कुछ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत साल निकल जाएंगे पढ़ने में, लेकिन NIOS का, ओपन स्कूलिंग का एक फ़ायदा होता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. आपकी, आपको किस क्षेत्र में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, वो अपने उसके हिसाब से आपका प्लान बनाते हैं. और आपका पढ़ाई भी आपकी स्पीड आपके ऊपर है, आपको कितनी स्पीड से पढ़ना है. तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए तो वो भी पॉसिबल है. इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है.
0: और दोस्तों अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर भी है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वो नंबर है 1800 1800 9393. नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 1800 1800 9393. तो ये नंबर भी है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं. और आप पढ़ाई अपनी पूरी ज़रूर कीजिए दोस्तों. जाते जाते भी हम यही दरख्वास्त करेंगे आप सभी से, अगर आपके आसपास कोई है जो स्कूली शिक्षा अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए तो उन्हें भी मोटिवेट कीजिए. उनको जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए. वैसे तो हम एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं ना, बर्थडे होता है तोहफा लेकर आते हैं, कुछ और उसको खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा का उपहार दिया है दोस्तों, तो उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता. समझ लीजिए आपने उसे जीवन का नया उपहार दे दिया है. तो शिक्षा पूरी करने में किसी न किसी की मदद ज़रूर कीजिए. अगर हम एक एक की भी मदद करेंगे तो हम समझ लीजिए भारत की मदद कर रहे हैं, पूरे अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. ये कर्तव्य तो हमें निभाना है मिलकर. आप जाते जाते मोनिका कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और कोई उम्र नहीं होती है शिक्षा सीखने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मर्यादा नहीं रहती है. आप किसी भी उम्र में आप चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो फिर से, तो आप कभी भी कर सकते हो, वापस कंटिन्यू कर सकते हो.
0: जी.

जीवन हुआ उजाला। आज शुक्रवार की एक खूबसूरत शाम है और मैं मोना आप दोस्तों के बीच आ चुकी हूँ। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ, कुछ बेहतरीन कहानियाँ और कविता के साथ। मैं आज का ये कार्यक्रम जरूर लेकर आई हूँ, तो चलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। उड़ान के इन छोटे छोटे सेक्शनों के साथ जुड़कर आनंद लीजिएगा और साथ ही साथ हमें कॉल जरूर करिएगा। नंबर है हमारा 9414151415 पर, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए।

0: नेता तुम्ही हो कल के, सचमुच इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। नाई का ये चतुर बेटा क्या करने वाला है, चलिए एक कहानी में सुन लेते हैं।
1: ताकतवर का साया किसी गरीब की झोपड़ी पर पड़ता तो न्याय की आवाज खामोश हो जाती थी, किन उसी गांव के एक गरीब नाई का 12 साल का बेटा रामू अपनी तीखी बुद्धि के लिए मशहूर था। जब हवेली के क्रूर जमींदार ने छल से उसके पिता को बेघर करने की साजिश रची तो क्या इस मासूम बच्चे की चतुराई उस विशाल अहंकार को मात दे पाएगी, या फिर अन्याय का वो कागज उनके परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर देगा।
2: क्यों रे किशन, सूरज अभी पूरी तरह डूबा भी नहीं और तू अपनी दुकान के किवाड़ बंद करने में लगा है, क्या जमींदार के आने का कोई लिहाज नहीं बचा तुझे?
3: अरे नहीं नहीं हुजूर, प्रणाम मालिक, आप इस गरीब की दुकान पर पधारे ये तो मेरा बहुत बड़ा अहोभाग्य है। मैं तो बस साफ सफाई कर रहा था मालिक। ये आज हुजूर ने यहाँ कदम कैसे रखे, क्या दाढ़ी बनवानी है?
2: दाढ़ी बनवाने नहीं आया हूँ किशन, तेरे भले की एक बहुत बड़ी बात करने आया हूँ। तू तो जानता ही है कि इस पूरे गांव की जमीन का हिसाब किताब मेरी हवेली से ही चलता है, और तेरी इस दुकान की जमीन का मामला।
3: ठाकुर साहब के चेहरे की ये चालाक मुस्कान अच्छी नहीं है। जब भी ये इतनी मीठी बातें करते हैं गांव के किसी न किसी गरीब की जमीन छिन जाती है। प्रणाम ठाकुर साहब, क्या बापू पर दुकान का कोई लगान बाकी है? जहां तक मुझे याद है बापू ने तो पिछले ही महीने पूरे साल का लगान पाई पाई चुका दिया था।
2: अरे ओ छोकरे, बड़ों की बात के बीच में अपनी टांग अड़ाना कब से सीख गया तू? किशन, अपने इस लड़के को जबान संभालना सिखा। बाप से बात कर रहा हूं और ये कल का लौंडा मुझे लगान का हिसाब सिखाने चला है।
4: माफ कर दीजिए मालिक, बच्चा है अभी, दुनियादारी के छल कपट नहीं समझता। रामू तू चुपचाप अंदर जा और मालिक के लिए पीने का ठंडा पानी लेकर आ, जा जल्दी।
3: जी बापू, मैं जाता हूँ।
1: रामू अनिच्छा से पीछे के कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन दरवाजे के पुराने पर्दे के पीछे छुपकर ठाकुर और उसके कारिंदे की हर हरकत पर पैनी नजर टिकाए रखता है।
2: देख किशन, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। पिछले साल जब तेरे छोटे भाई की गंभीर बीमारी के समय तूने मुझसे मदद मांगी थी, याद है ना?
4: मालिक, वो एहसान तो मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। आपने 200 रुपए नगद देकर मेरे भाई की जान बचाई थी। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आपका कर्ज चुका तो रहा हूं हुजूर।
2: वही तो, तेरी इसी ईमानदारी को देखकर मेरा दिल पिघल गया है किशन, इसलिए मैं तेरे कर्ज का सारा झंझट एक ही बार में खत्म करने आया हूं। ये देख, ये नया सरकारी कागज है, इस पर बस अपना अंगूठा लगा दे ताकि तेरे कर्ज की किश्तें आधी हो जाए।
4: किश्तें आधी? अरे मालिक, आप तो साक्षात भगवान बनकर आए हैं, मुझ गरीब पर इतनी बड़ी मेहरबानी।
1: रामू पर्दे के पीछे से देखते हुए फुसफुसाकर,
2: अरे अब सोच क्या रहा है किशन, जल्दी कर, मुझे हवेली लौटने में देर हो रही है। यहाँ नीचे अंगूठा लगा और हमेशा के लिए कर्ज के तनाव से आजाद हो जा।
4: जी मालिक, आपकी बहुत कृपा होगी।
1: किशन बिना सोच विचार किए अपनी अनपढ़ता के कारण अंगूठा स्याही में डुबोता है और स्टैम्प पेपर के निचले हिस्से पर कसकर थप्पा लगा देता है। ठाकुर के चेहरे पर एक शैतानी और जहरीली मुस्कान फैल जाती है।
2: बेवकूफ नाई, काम हो गया। अब सुन रे किशन, ये कर्ज की माफी का कागज नहीं था।
3: क्या मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं?
2: इस कागज पर साफ साफ लिखा है कि तूने अपनी दुकान और घर को गिरवी रखकर मुझसे पूरे 5,000 रुपए नगद उधार लिए हैं, और अगर एक हफ्ते के भीतर तूने मेरा पूरा कर्ज ब्याज समेत नहीं लौटाया तो तेरी ये दुकान और तेरा घर हमेशा के लिए मेरी हवेली की संपत्ति बन जाएंगे।
3: नहीं नहीं मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं?
4: 5,000 रुपए? मैंने तो सिर्फ 200 रुपए लिए थे। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है मालिक, मुझे अनाथ मत कीजिए, हम बेघर हो जाएंगे।
2: अंगूठा तेरा है किशन, अब अगर पंच परमेश्वर भी आ जाएं तो इस कागज के लिखे को झुठला नहीं सकते। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन का वक्त है तेरे पास। या तो 5,000 रुपए लेकर हवेली आ, या फिर ये गांव छोड़कर भीख मांगने निकल जा।
1: जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह अपना अट्टहास गुंजाता हुआ हवेली की तरफ लौट गया और पीछे छोड़ गया एक टूट चुके बाप की बिलकती चीखें और अन्याय का गहरा अंधेरा। किशन जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगता है। तभी रामू पर्दे के पीछे से बाहर आता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक जबरदस्त आग और उसकी मुट्ठियां कसकर भीची हुई हैं।
4: बेटा रामू, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। उस पापी जमींदार ने धोखे से हमारा सब कुछ छीन लिया। 5,000 रुपए तो हम 7 जन्मों में भी जमा नहीं कर सकते। अब हम कहां जाएंगे?
3: बापू, आप हिम्मत मत हारिए और अपनी आंखों से ये आंसू पोंछ लीजिए। ठाकुर ने छल से आपका अंगूठा जरूर लिया है, लेकिन वो ये भूल गया कि सच्चाई और चतुर बुद्धि को कोई झूठा कागज नहीं दबा सकता।
4: लेकिन रामू, तू अभी बहुत छोटा है, तू क्या कर पाएगा? वो गांव का सबसे ताकतवर जमींदार है, उसके पास पैसा है, लठैत है, और हम एक मामूली नाई।
3: ताकत पैसे या लाठी में नहीं, इंसान के दिमाग में होती है बापू। ठाकुर ने जो चाल चली है, मैं उसे उसी की चाल में फंसाऊंगा। उसने हमें 7 दिन का समय दिया है ना, आप बस देखते जाइए। 7वें दिन वो जमींदार खुद अपने हाथों से इस कागज के टुकड़े टुकड़े करेगा।
1: लेकिन रामू को अंदाजा भी नहीं था कि ठाकुर दुर्जन सिंह सिर्फ एक जमींदार ही नहीं था, बल्कि गांव के काजी और पूरी पंचायत को अपनी मुट्ठी में रखता था। क्या 12 साल के इस नाई के बेटे की तीखी बुद्धि उस विशाल और क्रूर साजिश के जाल को काट पाएगी, या फिर 7वें दिन उनका आशियाना हमेशा के लिए छिन जाएगा? 7वें दिन की सुबह होते ही गांव की चौपाल पर पूरी पंचायत जम गई। जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी सोने की लाठी टिकाए अहंकार से मुस्कुरा रहा था। काजी और पंच उसके खौफ से खामोश थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ 12 साल का रामूलाल कपड़े से ढके एक विशाल दर्पण के साथ सभा के बीच आ खड़ा हुआ।
2: क्यों रे नाई किशन, 7 दिन की मियाद आज खत्म हो गई। निकाल मेरी 100 सोने की अशर्फियां, वरना चुपचाप अपनी दुकान और जमीन की चाबियां मेरे हवाले कर दे। और ये तेरा नादान लौंडा यहाँ शीशा लेकर क्या तमाशा दिखाने लाया है? क्या इस शीशे से मेरी बुरी भी दूर करेगा?
4: मालिक, हम पर रहम कीजिए, मैं एक मामूली नाई हूँ। 7 पीढ़ियों में भी मेरे पास 100 अशर्फियां नहीं आ सकती। मेरी ये छोटी सी दुकान ही मेरी रोजी रोटी का इकलौता जरिया है हुजूर। हमें बेघर मत कीजिए, हम भूखे मर जाएंगे।
2: दया, ठाकुर दुर्जन सिंह के सीने में दिल नहीं पत्थर है। जब कर्ज लिया था तब पता नहीं था कि चुकाना पड़ेगा। काजी साहब, अब देर मत कीजिए, कागज निकालिए और इस दुकान की जमीन मेरे नाम दर्ज कीजिए। पंचायत का समय बर्बाद मत करो।
3: रुकिए काजी साहब, इंसाफ की तराजू पर फैसला तोलने से पहले जरा इस कागज की असली लिखावट और शर्त पूरी पंचायत को पढ़कर सुना दीजिए।
5: बालक रामू, इस कागज पे साफ साफ लिखा है कि तेरे पिता किशन ने ठाकुर साहब से 100 अशर्फियां ली थी और उस पर तेरे पिता के अंगूठे का निशान भी मौजूद है। इसमें क्या गलत है?
3: काजी साहब, अंगूठा जरूर मेरे बापू का है, लेकिन इस कागज पर लिखे कर्ज की असली शर्त जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि ठाकुर साहब की परछाई ने मेरे बापू को पैसे दिए थे। क्या ये बात सच है ठाकुर साहब?
1: रामो उस बड़े दर्पण को घुमाकर ठीक ठाकुर दुर्जन सिंह के चेहरे के सामने कर देता है। दर्पण की साफ सतह में जमींदार की विशाल परछाई और घमंडी चेहरा साफ दिखने लगता है। चौपाल में मौजूद गांव वाले आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं और पंच एक दूसरे का मुंह ताटने लगते हैं।
3: गांव के पंचों और काजी साहब, अगर ठाकुर साहब की शर्त के मुताबिक ये कर्ज उनकी परछाई ने दिया था, तो इस कर्ज की असली मालिक भी ये सामने दिखने वाली परछाई ही हुई ना? तो फिर मेरे बापू ये असली अशर्फियां इस इंसान ठाकुर दुर्जन सिंह को क्यों चुकाएं?
2: ये क्या बेहुदा बकवास है? परछाई भला कर्ज कैसे दे सकती है और कैसे वसूल सकती है? क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है?
3: ठाकुर साहब, अगर आपकी परछाई कर्ज दे सकती है तो कर्ज वसूलने का हक भी सिर्फ आपकी परछाई को ही है। देखिए, मैं इस दर्पण के सामने 100 सोने की नकली अशर्फियों की थैली रख रहा हूँ। अब दर्पण के अंदर जो आपकी परछाई दिख रही है, वह दर्पण के अंदर दिख रही अशर्फियों की परछाई को अपनी मुट्ठी में उठा ले, हिसाब बराबर हो जाएगा।
5: अरे वाह, बात में तो गहरा तर्क है। अगर कर्ज परछाई का था तो उसका भुगतान भी तो परछाई के जरिए ही होना चाहिए। न्याय का सिद्धांत यही कहता है।
6: हाँ, कानून और इंसाफ की नजर में बालक रामू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठाकुर साहब, आप अपनी इस दर्पण वाली परछाई से कहिए कि वो शीशे में दिख रही अशर्फियों को उठा ले और अपना हिसाब चुकता कर ले।
1: पूरी चौपाल में जोरदार ठहाके गूंज उठते हैं। गांव वाले जमींदार की बेवकूफी पर हंसने लगते हैं। ठाकुर दुर्जन सिंह का चेहरा अपमान से काला पड़ जाता है।
3: ठाकुर साहब, जब दर्पण में दिखने वाली आपकी परछाई अशर्फियां नहीं उठा सकती, तो आपकी वो कागजी परछाई मेरे बापू को असली अशर्फियां कैसे दे सकती थी? आपका ये कागज सिर्फ एक छलावा था, एक नकली और फरेबी साजिश थी, जिससे आप एक गरीब नाई की रोजी रोटी हड़पना चाहते थे।
4: शाबाश मेरे बेटे रामू, तूने आज अपनी बुद्धि से हमारी इज्जत और दुकान दोनों बचा ली। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा।
3: मैंने आपकी तोहीन नहीं की ठाकुर साहब, मैंने तो बस सच का आईना आपके सामने रखा है। अब या तो आप अपनी परछाई से कहें कि वह दर्पण से अपनी अशर्फियां समेट ले, या फिर इस नकली कागज को फाड़ कर अपनी हार स्वीकार करें।
7: हाँ, झूठा कर्जनामा फाड़ो, नाई के बेटे की जय हो। इंसाफ करो काजी साहब, ये सरासर धोखा था।
5: ठाकुर दुर्जन सिंह, पंचायत का फैसला अंतिम है। या तो आप अपनी परछाई से अशर्फियां उठवाइए, वरना इस धोखाधड़ी के कागज को तुरंत खारिज किया जाता है और आपको दंड दिया जाएगा।
2: ठीक है ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा। नाई का ये बच्चा तो शैतान से भी ज्यादा चालाक निकला।
1: बुद्धि की ताकत धन और बाहुबल से कहीं बड़ी होती है।
0: बिल्कुल, बुद्धि की ताकत धन और बाहुबल से बहुत बड़ी होती है। चलिए गीत आप तक पहुंचा देते हैं।

प्रियं भारतं सदा वंदनीयम्। सचमुच ये भारत वंदना योग्य है। चलिए एक और कहानी आपके लिए है।

0: आदाब चचा हजूर।
1: आओ आओ जाफर, क्या बात है, सब खैरियत तो है?
0: वो दरअसल कुछ दिनों से अब्बा हुजूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस उन्हें पास के गांव के एक नामी गिरामी हकीम के पास लेकर गया था।
1: अब कैसी तबीयत है उनकी, दवाएं सही से काम तो कर रही है ना?
0: जी आलमगीर, अब अब्बा हुजूर की तबीयत पहले से बेहतर है।
1: ये तो अच्छी बात है जाफर, बैठो, दरबार शुरू करते हैं।
2: जहाँपनाह, बीरबल जी ने आज सुबह जिन डकैतों को पकड़वाया था उन्होंने लूट का सारा सामान लौटा दिया है। आज अगर बीरबल जी ने उन डकैतों को नहीं पकड़वाया होता तो वो जल्दी हमारे पूरे राज्य का धन लूट कर ले जाते। तफ्तीश से तो ये भी पता चला है कि उन डकैतों की अगली नजर शाही खजाने पर थी।
1: बीरबल, आपकी तीव्र बुद्धि का सच में कोई जवाब नहीं। आज जिस अक्लमंदी से जाल बिछाकर आपने राज्य में घुसे डकैतों को पकड़वाया है और आवाम की इतनी बड़ी परेशानी को सुलझाया है, उससे हम बहुत खुश हैं और पूरी सल्तनत को आप पर गर्व है।
2: जी जापना, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बीरबल जी की समझदारी बेमिसाल है।
3: बेशक हुजूर, उनकी बुद्धि काबिले तारीफ है।
1: शुक्रिया जहांपना, मैंने जो कुछ भी किया वो राज्य के लिए मेरा फर्ज था।
0: हर वक्त बीरबल, सिर्फ बीरबल, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? शाही परिवार का खून मेरी रगों में दौड़ता है, पर इज्जत और तारीफें हमेशा इस बीरबल को मिलती हैं।

0: कहो जाफर, हमारे कमरे में कैसे आना हुआ?
1: आदाब जहाँपनाह, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
0: कहो, ऐसी क्या परेशानी आ गई जो तुम इतने परेशान और नाराज लग रहे हो?
1: जहाँपनाह, मुझे ये बात हमेशा परेशान करती है और तकलीफ भी देती है। आखिर बीरबल में ऐसा क्या है कि आप हर वक्त उन्हीं के गुण गाते रहते हैं? मैं आपका सगा भतीजा हूँ, मेरी रगों में इस शाही परिवार का खून दौड़ता है और इसलिए आपके सबसे करीबी मंत्री की जगह पर मेरा हक बनता है, किसी ऐरे गैरे बीरबल का नहीं। पर फिर भी आप बीरबल को दरबार में इतना खास क्यों समझते हैं?
0: जाफर, तुम हमारे भतीजे हो, इस बात पर हमें हमेशा से गर्व है, पर किसी भी व्यक्ति की काबिलियत उसके खून या रिश्ते से तय नहीं होती, बल्कि उसकी बुद्धि और ज्ञान से होती है। बीरबल ने अपनी जगह अपने दिमाग और अपनी काबिलियत से हासिल की है, इसलिए उनकी हमारे दिल में एक अलग ही जगह है।
1: नहीं बादशाह हिंद, मुझे नहीं लगता कि बीरबल मुझसे ज्यादा बुद्धिमान और काबिल है। ये सिर्फ पक्षपात है आलमगीर, मैं किसी भी मायने में उससे कम नहीं हूँ।
0: ठीक है जाफर, अगर तुम सच में खुद को बीरबल से ज्यादा काबिल मानते हो तो हमारी एक परीक्षा में कामयाब होकर दिखाओ। शहर के उस पार सेठ करोड़ी लाल की दुकान है, वो पूरे शहर का सबसे बड़ा लालची और कंजूस सेठ है, उसके पास से कुछ भी निकलवाना बहुत ही कठिन है। तुम्हें ये आम सा शीशा उस सेठ को ठीक 10,000 अशर्फियों में बेच कराना है। अगर तुमने ये कर दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम बीरबल से ज्यादा काबिल और बुद्धिमान हो, और हम आज से ही बीरबल का पद तुम्हें दे देंगे।

0: कहिए सेठ करोड़ी लाल जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम जाफर है, मैं शहंशाह अकबर का भतीजा हूँ।
1: आइए शहजादे आइए, बस शहंशाह की दुआ से सब ठीक चल रहा है। कहिए इस नाचीज की दुकान पर कैसे आना हुआ?
0: सेठ जी, मैं आपके लिए शाही महल से खास शीशा लाया हूँ, पूरे 10,000 अशर्फियों का है। पर आपके लिए 10,000 अशर्फियाँ कौन सी बड़ी बात है, इसे आप खरीद लीजिए, शाही चीज है, आपकी दुकान की शान बढ़ जाएगी इससे।
1: शहजादे एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, ये शीशा शाही हुआ तो क्या हुआ, है तो ये एक शीशा ही ना, और वो भी इतना साधारण लकड़ी का। मैं एक मामूली शीशे की इतनी कीमत क्यों दूं? मुझे नहीं खरीदना ये शीशा।
0: इसका मोल इसकी लकड़ी में नहीं, इसके रुतबे में है। लोग आपके पास शाही शीशा देखेंगे और आपके बारे में सोचेंगे कि आप शाही महल से ताल्लुक रखते हैं।
1: देखिए शहजादे, मेरा वक्त बर्बाद मत करिए, व्यापार का वक्त है, मुझे और भी खरीदारों का हिसाब करना है। आप शहंशाह के भतीजे हैं और ये शाही शीशा लेकर मेरे पास आए हैं, इस बात की मैं कदर करता हूँ, इसलिए मैं ये शीशा आपसे 2,000 अशर्फियों में खरीद सकता हूँ।
0: अपनी 2,000 अशर्फियाँ अपने पास रखिए, मैं ये शीशा इतने कम मूल्य में नहीं बेच सकता।
2: मैं इस शीशे के लिए इतनी अशर्फियाँ नहीं दे सकता, मुझे माफ करिए।
3: क्या हुआ जाफर, तुम्हारी रगों का खून इस मामूली शीशे को बेच नहीं पाया जो तुम इसे वापस हमारे पास ले आए हो? बीरबल, अब ये चुनौती आपकी है, इसे शहर के उस कंजूस सेठ करोड़ी लाल को 10,000 अशर्फियों में बेच कर दिखाइए, तो जाने जहां पना वो सेठ करोड़ी लाल बहुत कंजूस है, सीधी तरह तो मानने वाला नहीं है, कुछ तो उपाय लगाना ही होगा। आलमगीर, आप मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए बस एक दिन की मोहलत दीजिए। बीरबल, हम आपको मोहलत देते हैं, बस ये शीशा पूरे 10,000 अशर्फियों में उस सेठ करोड़ी लाल को बेच कर दिखाइए। आपके हुक्म की तामील हो।

जहां पना की जय हो। हुजूर, ये उसी आम से शीशे को बेच कर लाए हुए पूरी 10,000 शर्फियां हैं। बीरबल,

0: इसलिए इस शीशे को मैं आपको दिखाने आपके पास ले आया। ये कोई आम शीशा नहीं है, इसकी खासियत ये है कि ये आईना भविष्य दिखाता है और इसमें सिर्फ उसी व्यक्ति को अपना भविष्य दिखेगा जिसका मन एकदम सच्चा हो और जिसने आज तक अपने मुलाजिमों या खरीदारों के साथ कभी कोई दगाबाजी, धोखा या छल कपट ना किया हो।
1: अरे ये तो वही आम सा शीशा लग रहा है जो अभी 2 दिन पहले शहंशाह अकबर के भतीजे जाफर मेरे पास लेकर आए थे। इसमें मुझे तो कोई खास बात नहीं दिखी।
0: आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये शीशा दिखने में बाकी आम शीशों जैसा ही है, इसलिए आपको ये शीशा बाकी साधारण शीशों जैसा ही लगेगा। मगर ये चमत्कारी शीशा है जिसमें आप रोज अपने उस दिन के भविष्य को देख सकते हैं और ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो कि मेरे हाथ में है। सेठ जी, इसे छूने से पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। शर्त ये है कि जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस शीशे में अपना भविष्य देखेगा उसे इस पवित्र शीशे को ठीक 10,000 अशर्फियों में खरीदना ही होगा। और मुझे लगता है सेठ जी, मेरी ये शर्त आपके लिए बिल्कुल मामूली है। अब आपके पास अशर्फियों की क्या कमी है?
2: हाँ सेठ जी, मुझे लगता है आपको इस शीशे में अपना भविष्य देखना ही चाहिए। आखिर आप ही तो कहते हैं आपने कभी झूठ नहीं बोला है।
3: हाँ हाँ, ये तो 16 आने सच्ची बात है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही मैंने आज तक किसी के साथ छल किया है।
0: तो फिर देर किस बात की है सेठ जी, ये लीजिए शीशा और अपने भविष्य का दर्शन कीजिए। ये शीशा आपको बताएगा कि आज पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या होने वाला है और जैसे ही इस शीशे में आपको आपके भविष्य के दर्शन होंगे, यहाँ खड़े बाकी लोगों को भी आप पर भरोसा हो जाएगा कि आप एक सच्चे इंसान हैं।
4: हे भगवान, मुझे तो इस शीशे में अपने सिवा और कुछ नहीं दिख रहा, पर अगर मैंने ये बात बता दी तो मेरे सारे मुलाजिम और खरीदार समझ जाएंगे कि मैं एक धोखेबाज और बेईमान इंसान हूँ। लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने सबको ठगा है, मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी।
3: वाह, धन्य हो व्यापारी जी,
4: मुझे इस शीशे में मेरा आज का भविष्य साफ साफ दिख रहा है। मैं सचमुच में एक नेक और सच्चा इंसान हूँ, ये शीशा सच में भविष्य बताता है।
0: सेठ जी, तो आज से ये शीशा आपका हुआ, अब आप इस शीशे में रोज अपना भविष्य देख सकेंगे। शर्त के मुताबिक अब आपको मुझे पूरी 10,000 अशर्फियां देनी होंगी जो कि आपको इस शीशे ने भविष्य में दिखा ही दिया होगा। तो लाइए मेरी 10,000 अशर्फियां।
4: जी हाँ बिल्कुल, मैंने अभी अभी शीशे में देखा है।
5: अब तुम्हें समझ में आया जाफर, बीरबल हमारे इतने खास इसलिए नहीं है क्योंकि हम उन पर मेहरबान हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उनकी सोच और उनकी बुद्धिमानी का कोई तोड़ नहीं है। खून के रिश्ते से सिर्फ अधिकार मांगे जा सकते हैं, लेकिन काबिलियत और सम्मान अपने दिमाग और समझदारी से ही कमाना पड़ता है।
6: मुझे माफ कर दीजिए जहपना, मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। मैं अब समझ गया कि बादशाह आपकी तारीफ क्यों करते रहते हैं। मेरी ईर्ष्या और जिद के लिए मुझे माफ करें।
5: कोई बात नहीं, गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है शहजादे। बीरबल।
7: वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है, नहीं, सोमवार को मिलने का वादा है, ठीक शाम 6 बजे। लेकिन जाने से पहले कुछ बेहतरीन गीत आपके लिए और है।

यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, इमली की चटपटी गोलियां। चलिए छोटी सी कहानी लेकर आते हैं हम। सनी जिस गली से होकर रोजाना स्कूल से घर लौटता था, उसके एक कोने में बूढ़ी काकी छोटी सी टॉफी की बिस्किट की दुकान थी। काकी काफी बूढ़ी थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दुकान अक्सर खुली होती, पर काकी अंदर चारपाई पर आराम करती। कोई ग्राहक आता तो आवाज लगाता, तब वो उठकर सामान देती। सनी के लिए वह दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उसके बचपन की याद है, खुशी का ठिकाना है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए सनी की नज़र काकी की दुकान पर रखी, कांच की एक बड़ी सी बर्नी पर पड़ी, जिसमें इमली की चटपटी गोलियां भरी थी। मुंह में पानी आता, उसने काकी से 5 गोलियां ली और एक मुंह में डाली, 4 जेब में डाल दी। इमली का ये खट्टा मीठा स्वाद उसकी थकान मिटाने लगा। वो मज़े से गुनगुनाते हुए घर की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही दूसरी गोली के लिए उसने जेब में हाथ डाले, उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराई। बाहर निकला तो हक्का बक्का रह गया। वह 10 रुपए का सिक्का था। सनी के एक कदम वहीं ठिटक गए। उसके चेहरे से डर फीका पड़ गया। उसे एहसास हुआ उसने काकी से टॉफियां तो ली, पर उन्हें पैसा देना भूल गया। उसे लगा जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। उसने दिल जोरों से धड़कने लगा। वो क्या करे, वापस जाए तो काकी डांटेंगी। उसने सोचा क्यों ना कुछ और सामान खरीद कर पैसे दे दूं, पर फिर ख्याल आया ये तो और बड़ी बेईमानी होगी। उधेड़ बुन में सनी ने तय किया कि वो काकी की नज़र से बचकर चुपचाप पैसे काउंटर पर रख के आ जाएगा। वापस दुकान की तरफ लपका। उसने दुकान के 1-2 दिन चक्कर काटे, पर न जाने काकी को क्या हुआ था, वो दुकान से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। गली के चक्कर काटते काटते सनी पसीने से तरबतर हो गया। आखिर जब गली सन्नाटे में डूबी, काकी अपनी जगह पर दिखाई नहीं दी, तो वो बिजली की गति से लपका काउंटर पर सिक्का रखते जैसे वो भागने लगा, पीछे से आवाज आई, बेटा। सनी के तो होश उड़ गए। काकी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। कहाँ भाग रहे हो, वह काउंटर पर क्या रखा है? काकी के सवाल से उसकी घबराहट बढ़ गई। थोड़ी देर वो मौन रहा, फिर कांपती हुई आवाज में उसने सिर झुकाए पूरी सच्चाई बता दी। काकी का चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि ममता से खिल उठा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक नन्हा बच्चा अपनी भूल सुधारने के लिए वापस आएगा। उन्होंने सनी को दिल से लगा लिया। चलिए, दिल की बात है तो दिल की गहराइयां जानिए। ये अगला गीत आपके लिए है।

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कितना खुशी लगता है अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गांव और जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि गांव को स्वर्ग कहते हैं। गांव को लेकर ही हमारा राज्य बनता है और तो राज्य को लेकर हमारा देश विदेश बनता है। इसलिए गांव को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। और जब गांव का जो शुद्धता, जो भोलापन और जो विशेषता, जो हुनर, जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन आज हर दिन की तरफ आज हम भी आए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में उनका अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो भाव है, जो भावना है, जो विशेषता है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज मिलता है। तो आज ये बच्चों को कौन भूल पाएंगे। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, और बच्चे कुछ करने के लिए ठान लेते तो करके दिखाते हैं, और एक को देख कर दूसरे भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कदम पर कदम चढ़ते हैं तो चल जाते आगे तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए संस्था के संस्था प्रधान और सभी स्टाफ को नाम का सा धन्यवाद देते हैं। एक इशारे से हमें सहयोग दिए, कोई सूचना नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे तुरंत अचानक में अचानक एवर रेडी रहते हैं और तुरंत भाग लेने के लिए तैयार होते, क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय पर्व January 26 को अगस्त 15 में भाग लेते हैं, और जो कला है वो कभी भी कहीं पर भी मौका मिलता तो उसको जन जन तक पहुंचाते। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ सभी छात्राएं हैं और दो छात्र भी हैं, सभी मिलकर बारी बारी उनका आवाज सुनने को मिलेगा। जब इस आवाज को जब आकाशवाणी में सुनेंगे, रेडियो पर सुनेंगे, तो उनका मम्मी पापा हो, चाहे परिजन हो, चाहे उनका दोस्त लोग हो तो वहाँ, और उनके टीचर्स लोग सुनेंगे तो बोले अरे ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, हमारे बेटी का आवाज है, तो कितना खुशी होगा। रास्ता में उनको चलने नहीं देंगे, अरे वाह तुम्हारा आवाज क्या सुंदर था, और कितना सुरीली आवाज से स्वर लय और ताल का साथ भाव से आपने प्रस्तुति किए। तो देर किस बात की, सभी को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्तुति लेंगे जो कि प्रार्थना सत्र में हर विद्यालय में गाते हैं। तो शुरुआत कार्यक्रम को प्रार्थना से ही शुरू करेंगे, तत्पश्चात बच्चों का जो हुनर है, ढोलक मंजीर सब रेडी हुए और सभी बच्चे तत्पर हैं और उमंग उत्साह का साथ बढ़ चढ़ कर आज आए हैं। तो सब मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि सुनते रहो और मुस्कुराते रहो, ये तो हमारा टैगलाइन है, कीप लिसनिंग कीप स्माइलिंग। तो स्माइल रहेगा तो मतलब कुछ पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन स्माइल एक बार होना चाहिए, क्योंकि जब हर्षित मुक्ता रखते हैं, हर्षित चेहरा रहता है तो लगता है कुछ प्राप्ति है, और झुका हुआ रहेगा तो कुछ लॉस मैंने कुछ हार दिए मैंने कुछ चला गया ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमारा बच्चा आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक प्रस्तुति जो कि प्रार्थना के रूप में, और सभी अपना अपना नाम और स्कूल का नाम और कौन सा क्लास में बताएंगे।
1: मेरा नाम दिव्या है और मैं बीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 8वीं में हूँ।
2: मेरा नाम दक्षा है, मैं PMC राज्य का उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम दीपिका है, मैं PMC राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ।
0: श्रोता मित्र और ग्रामवासी, खासकर मैंने बोल दिया था राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेकिन सभी जगह में राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय रहता है, लेकिन ये PMC कब से हो चुका है, और बहुत खुशी लगा ये प्रमोशन होकर यहाँ पर क्रमोन्नति हुआ, और बच्चों का जो टैलेंट है और स्टाफ का जो देन है उसको देखकर सरकार उसको PMC में कन्वर्ट किया है, तो खुशी है। तो इस तरह कार्यक्रम में हमें PMC से आज बच्चों का आवाज सुनेंगे, सभी बच्चे अपना अपना परिचय दिए। तो एक प्रस्तुति होगी जो कि प्रार्थना के रूप में, लीजिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति की, और खासकर प्रार्थना सत्र में बच्चे अपना दिल का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो दिव्या नाम कितना सुंदर है, दिव्या दिव्य ज्ञान जिसका, दिव्यता जिसमें भरपूर है ना, दिव्यता मतलब जानते हैं ना पूरा वैल्यू है दिव्यता, आत्मा को दिव्यता कहते हैं, आत्मा में दिव्यता रहेगा तो बहुत चमकेगा सब चीज उसका ओरा जैसे, दिव्यता मतलब ओरा पूरा, कोई भी आएगा उसको वाइब्रेशन मिलेगा अच्छा चीज का। तो दिव्या हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे, उनका अच्छा दोस्त का नाम बताएंगे। दिव्या तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है?
1: दक्षा और दीपिका
0: दोनों। क्यों इतने बच्चे फिर दोनों को क्यों दोस्त बनाया? तो खास होगा राज विशेषता है, कुछ गुण है
1: सर, जो पढ़ाई में अच्छा होता है उनसे ज्यादातर दोस्ती होती है। और वैसे तो दोस्त तो किसी को भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ने वाले को बनाए या फिर कम पढ़ने वाले को बनाए।
0: लेकिन खराब दोस्त को बनाएंगे तो क्या करेगा वो, और खराब में ले लेगा दोस्त, किसको भी बना देंगे ऐसे नहीं होगा दोस्त, वो भी तो दोस्त चोर भी बोला मेरा दोस्त बनो तो बनेंगे
1: नहीं,
0: क्योंकि वो जैसे सांग ऐसे रंग, उनका सांग का रंग लग गया है ना, हाथी का पूछ पकड़ेंगे तो पहाड़ भी उठा देगा, देगा कि नहीं, कि उसके पास ताकत है, बोले उसको जांच करना चाहिए कि नहीं, हाथी का पूछ पकड़ेंगे उठने के लिए पर्वत वो पार करा देगा, करा जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत है। लेकिन जो कुत्ता को पकड़ेंगे तो क्या करेगा वो, आपको दूसरा जगह में गट्टर में गिरा देगा। तो कैसे दोस्ती होना चाहिए, हाथी का साथ दोस्ती करना चाहिए ना सुअर का साथ दोस्त करेंगे, किसका साथ, हाथी का साथ, मतलब जिसके पास शक्ति है जो हमें फायदेमंद होगा उससे हमें संग करना चाहिए, हर चीज में हमें सहयोग मिलना चाहिए, जो चीज हमें आवश्यकता है। जैसे हमें स्कूल में आते हैं, कभी स्कूल में ऑप्शन किस कारण से हम जा नहीं पाते, तो आपका दोस्त बता देगा भाई आज क्या क्या पढ़ा है, मुझे थोड़ा नोट्स दे दो, तो ये हो गया सहयोग, ये एक विशेषता है कि नहीं। इसलिए हम अच्छा दोस्त को, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा नाम सुने होंगे, गरीब अमीर का बात नहीं, लेकिन भाव भावना दोस्ती में है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर ये था PM श्री विद्यालय मुंगथला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए ब्रेक का पहले आप सब सुन पा रहे थे प्रार्थना का रूप में सरस्वती का वंदना और बच्चों का भाव और भावना को लेकर हम पहुंचते हैं और दिव्या इस कार्यक्रम को सजाए, उनका दोस्त कौन है और क्या क्या चीज पढ़ते सब चीज बताए और आगे बढ़ते हुए और छोटे छोटे नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं तो उनको भी स्वागत करते हैं, अपना नाम बताएंगे और ढोलक मंजीरा का साथ स्कूल के जो पीएम श्री स्कूल का आवाज है अभी तक बच्चे रेडी हो रहे हैं तो ढोलक का साथ मंजीरा और खंजन सब चीज आज सुनने को मिलेगा और हमारा तीन बच्चियां तो सुनाएंगे अपना आवाज। पहले अपना अपना नाम बताएंगे प्लीज।
1: मेरा नाम डिंपल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुथला।
2: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुथला है।
3: मेरा नाम अनिता है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुथला।
0: और ढोलक और मंजीरा के साथ जो है उनसे भी ले लेंगे, ये तो गीत गाएंगे तीनों छात्र और तीन गुड्डा है जो भी अपना नाम बताएंगे।
4: मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगफला है।
5: मेरा नाम मणिपाल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगफला।
6: मेरा नाम मणिपाल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगफला।
0: वाह, क्या देखा, बच्चे रेडी है और हमारा मणिपाल मणिपाल दो मणिपाल है और सुनेंगे सुंदर प्रस्तुति और सुर लय का साथ माँ सरस्वती को वंदना जब किए तो उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू

0: क्या बात, क्या बात, सुंदर प्रस्तुति के लिए और ढोलक मंजीरा का साथ। और इस कार्यक्रम को तो चार चांद लगा दिए, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, सेवेंथ क्लास, एट क्लास का बच्चे, लेकिन उनका अंदर में जो संगीत प्रति रुचि है सही में देखने को मिल रहा। और ऐसे संगठन में जब होते हैं तो संगठन में बल मिलता है ना, एकता का बल मिलता है, इसलिए सभी ने अपना अपना आवाज को सुना पा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी को खुशी लग रहा है इस तरह रेडियो मधुबन में अपना आवाज को सुनाने के लिए। सभी बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर क्या बनेगा तू?
1: डॉक्टर।
0: हाँ देखो, ऐसे होना चाहिए ना, ऊंचा इच्छा रखना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आईएएस ऑफिसर, जब ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो हमारा लक्षण भी ऊंचा दिखाई देगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। बढ़ पाएंगे कि नहीं? तो इसलिए सबको लक्ष्य रखना चाहिए, जैसे लक्ष्य रखेंगे उस तरह लक्षण दिखाई देगा और आपका परिवार वाले और आपका सहयोगी जो भी आपका दोस्त लोग भी सहयोग देंगे और भामाशाह लोग भी है सहयोग देंगे। जो अच्छा पढ़ाई करेगा सहयोग मिलता, सरकार तो सहयोग देता ही है, लैपटॉप देता है, साइकिल, स्कूटी, क्या क्या नहीं देता, और खाना पीना तो मिलता ही है सभी बच्चों को, चाहे पीएम श्री हो चाहे राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। तो तुम क्या बनेगा रे? तुम तो ढोलक अच्छा बजा रहा था, तो ढोलक ढोलिया बजेगा, क्या बनेगा?
1: इंजीनियर।
0: ढोलक बजाते बजाते इंजीनियर तक पहुंच जाएगा हमारा महिपाल जी, है ना। और तुम्हारे स्कूल में, विद्यालय में कितना महिपाल है? एक तो महिपाल तुम्हारा साथ दे रहा है, कितना महिपाल? कितना?
1: तीन महिपाल है।
0: महिपाल है, वाह। महि माने पृथ्वी का जो देखरेख करते हैं, जो तुम्हारा नाम रखा ना, कौन नाम रखा?
1: भगवान ने।
0: भगवान ने रखा? अरे वाह, बहुत अच्छा। भगवान आकर नाम रखा ना, तुम्हारा चाचा हो चाहे दादा हो चाहे पापा, कौन नाम रखा है पूछना? आज पूछेंगे मेरा नाम कौन रखा है? मम्मी रखा है ना, चाचा जी रखा है, कोई तो रखा होगा ना?
1: दादी ने रखा है।
0: उसका दादा, उसको याद है? तुमको याद नहीं, लेकिन याद करना, क्योंकि फिर तुमको जब अभी महिपाल नाम सुना है, महिमान पृथ्वी, पृथ्वी का पूरा रक्षा करने के लिए महिपाल भगवान का नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सिंगल एक बहन है वो अपना आवाज को देंगे, वो भी श्री कृष्ण का भजन सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके कई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और पुनः पुनः मिलते मिलते आज तृतीय लिंक में पहुंच चुके हैं और इसका पहले ढोलक मंजीरा का साथ हम अच्छा से एक भजन सुने, तत्पश्चात और एक भजन के लिए हम बढ़े तो अगला कड़ी में और एक छात्रा उपस्थित है तो अपना परिचय देंगे और कहां से और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उनका भाव और भावना, पढ़ाई में कितना रुचि है और कितना घंटा मेहनत करती है, स्कूल में 5 घंटा तो पढ़ाई 6 घंटा पढ़ाई होती है और जब घर जाते तो कितना घंटा और मेहनत करती है वो भी बताएगी। पहले अपना परिचय देंगे।
1: मेरा नाम भावना है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ, पीएमसी स्कूल में पढ़ती हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी भावना, मान लीजिए तुमको कलेक्टर बनने के लिए मौका मिलेगा तो बनेगी? हाँ बोलो, बोले हो कि नहीं? हाँ तो बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे?
1: हाँ
0: हाँ करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना भावना? और घर में कौन कौन है?
1: मम्मी में, पापा में, दादी में, भाई में, बहन।
0: भाई को ज्यादा प्यार करते ना, बहन को प्यार घर में, बेटी को ना बेटा को ज्यादा प्यार? हाँ
1: दोनों
0: को ज्यादा प्यार करते हैं। कोई भी सीजन में कोई फल आएगा, जैसे आम का सीजन में आम आता है, अंगूर का समय में अंगूर आएगा, कोई दिवाली होली में कोई नया ड्रेस आएगा तो किसके लिए आता है?
1: दोनों के लिए।
0: अरे वाह, तो बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। कभी आपको अफसोस नहीं होता है जे भाई को देता है और मुझे काम मिलता है, ऐसे कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? भाई हमारा आगे, भाई सोचेगा बहन हमारा आगे रहे और बहन सोचेगी मेरा भाई आगे बढ़े, ऐसे सोचते कि नहीं? मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मेरा भाई को मिलना चाहिए। और भाई भी क्या सोचेगा, मुझे मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मेरा बहन को मिलना सोचते ना तुम लोग भाई लोग? बोले सोचते थे लेकिन हाँ तो बोल दिया, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद, लेते उनसे एक गीत शुरू करिए।
1: अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण।

0: राम नारा जानकी वल्लभ।
1: बहुत सुंदर प्रश्न। कहाँ से सीखती भावना, गीत कहाँ से सीखती?
0: प्रार्थना बोलते।
1: प्रार्थना में। और कैसे सीखती तुम, कौन सिखाता है ना तुम? खुद ऐसे प्रैक्टिस करते करते सीखती? खुद। मोबाइल से कभी, मोबाइल से कभी प्रैक्टिस किया?
0: हाँ।
1: मोबाइल में भी आता है गीत?
0: हाँ।
1: और मोबाइल देखते हैं, यूज करते हैं मोबाइल?
0: काम होता है तो भी।
1: काम होता है,
0: स्कूल का,
1: स्कूल का काम, होमवर्क, मोबाइल से होमवर्क हो जाता है। और क्या होता है मोबाइल से? देखिए मोबाइल से क्या सहयोग मिलता है तुम बता। देखिए मोबाइल हमारे पास रहने से क्या, जैसे ये बोलता हम मोबाइल से सीख जाते गीत, और होमवर्क भी होता है, पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी हो सकते हैं, और बहुत कुछ फायदा मोबाइल तब तो लेते हैं। इतना रुपया खर्च कर मोबाइल लेते हैं तो उसका तो फायदा तो लेना चाहिए ना,
2: कॉल करने में और पढ़ने में।
1: पढ़ने में किससे बातचीत, संवाद करने के लिए, कोई अर्जेंट आया मैं कोई मुसीबत में पड़ा तो भाई हमारा घर में खबर पहुंचा दो। अब तो लेटर तो नहीं, कोई जाएगा नहीं तो मोबाइल में क्या करेगा, तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। और व्हाट्सएप में आजकल तो पूरा कितना प्लेटफॉर्म है मोबाइल के अंदर, यूट्यूब है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम और ईमेल है, बहुत सारा है प्लेटफॉर्म डिजिटल। आजकल तो पैसा भी तुरंत मोबाइल में, पैसा लेकर जाना नहीं पड़ता है, मोबाइल में पैसा नहीं रहता लेकिन उसका ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है कि नहीं? कुछ खरीदना होगा तो पैसा जेब में नहीं रहेगा तभी मोबाइल में, मोबाइल से पेटीएम कर सकते हैं, और
2: दुकान में काम आता है तो पेमेंट और वगैरह कर सकते हैं।
1: हाँ, राशन लेना होगा तो जाकर वहाँ पर पेटीएम में पैसा तुरंत एक सेकंड में जाता है, गिनना नहीं पड़ता है। ये भी अच्छा है मोबाइल का सदउपयोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे जो कि सामूहिक रूप में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगतला का ये नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए प्रस्तुति को और आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति सामूहिक रूप में बोलेंगे, तो पुनः स्वागत करते हैं दिव्या एंड पार्टी।

0: अनेक है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव से अमृत काल तक पहुंच रहे और भारत विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं रह गया, और बच्चे इस तरह सच्चे मन से अपना देशभक्ति गीत गाते हैं। तो दिव्या और उनका दोस्त दक्षा, बड़े होकर क्या बनेगी तुम?
0: आईएएस।
1: हाँ, ये हुई ना बात, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी जीवन में, और 5-6 साल मेहनत करेंगे ना, कड़ी मेहनत, 20 नाखून लगाकर समय को बचत करके पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई ध्यान से पढ़ेंगे, अटेंशन होकर पढ़ेंगे, तो और 5-6 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आईएएस ऑफिसर बनते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ 5 साल, बस मात्र 5 साल तुम मेहनत करेगी तो अगला 50 साल आपके पास पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतना पैसा भरमार होगा। और अभी 5 साल मेहनत नहीं करेंगे, 5 साल पूरा मजा मस्ती पूरा करके दोस्त यारी पिकनिक घूमना फिरना में समय बर्बाद करेंगे, तो अगला 90 साल पूरा लेबर काम करना पड़ेगा, नरेगा में जाना पड़ेगा, 300 रुपया 200 रुपया।

0: अगला प्रस्तुति लेकर आए हैं हमारा और एक परी और क्या नाम है?
1: दीपिका कुमारी।
0: दीपिका, तुम्हारा नाम कौन रखा है? दीपिका
1: मेरी मम्मी ने।
0: मम्मी, क्या नाम है मम्मी का?
1: मैना देवी।
0: अच्छा, क्या करती मम्मी घर में?
1: काम करती है,
0: हाउस वाइफ। और पापा?
1: पापा काम करते हैं, फार्मर।
0: फार्मर, किसान। वाह, सलाम, किसान को तो अन्नदाता कहते हैं, है ना, सबको पेट भरते है। कौन हमारा किसान भाई है ना, किसान है, शिक्षक है और सैनिक, ये तीनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए एक प्रस्तुत सुनेंगे। ओके, शुरू करो।
1: तुम सच्चे मन से याद करो भगवान, मिलेंगे कहीं ना

0: पे मिले डाली पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, तुम सच्चे मन से याद भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, आकाश में मिले पाताल में मिले धरती पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, तुम सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, सूरज पे मिले चंदा पे मिले तारों पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, प्रभु तन में मिले प्रभु मन में प्रभु दिल में मिलेंगे कहीं ना, तुम सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं।
1: भगवान तो मिलेंगे, इसलिए तो सभी बच्चे बड़े भगवान को याद करते हैं। कहीं ना कहीं मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे पता नहीं, लेकिन मिलना जरूरी है। और भगवान तो सबके लिए बाप समान है, गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते हैं, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को। इसलिए कहीं ना कहीं मिले, लेकिन उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार से, दिल से, दिल से। जैसे मीरा दिल से याद किए ना, हम जब दिल से याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे, कहीं ना कहीं हमें किसी भी रूप में मिल जाएंगे, और कहीं पर भी मिल सकते हैं। लॉटरी भगवान को मिलने का एक भाग्य, भाग्य मिलेगा तो कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेंगे, भाग्य तो भगवान देते हैं। भाग्य का कलम आप हाथ में दिया जाएगा तो आप जितना लिखना हो लिखो, अपना भाग्य आपका ऊपर में, किसका ऊपर में, खुद का ऊपर में। उसके लिए भगवान का बात मानना चाहिए, दिल से प्यार करना चाहिए, दिल से बुलाना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा, सुदामा कैसे प्यार से दोस्त को याद किया, चाहे कोई भी दोस्ती का नाम से, दोस्त हिसाब से प्यार किया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसे हमें प्रार्थना सत्र में हो, चाहे घर में हो, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वार में जाते हैं, क्यों ना कहीं हमें हमारा बात को भगवान तक पहुंच जाए, हमारा ईश्वर तक, मालिक तक पहुंच जाए, तो इसलिए हम याद करते हैं ना। दीपिका, दीपिका ऐसे भाव सोचते हैं ना, भावना तुम्हारा, भावना तो आप इसका पहले गाए थी, है ना, भावना और दीपिका दोनों दोस्ती है, दोस्ती करते नहीं, करना चाहिए सबका साथ। अच्छा, वही दोस्ती है, कोई बात नहीं, जिसको भी दोस्त बना, जो अच्छा सहयोग देगा उसको दोस्ती मनाना चाहिए। और दीपिका, तुम्हारा अच्छा भोजन क्या पसंद करते हैं, खाने में खाते ना अच्छा चीज, आज मिलेगा तो भरपूर, दो दिन तक नहीं मिलेगा चलेगा, ऐसे कोई भोजन आपको फेवरेट डिश क्या पसंद करते हैं? राजस्थान में तो कौन सा फेमस है, दाल बाटी,
0: दाल बाटी
1: चूरमा, और तुम्हारा वही पसंद है? कभी घर में बनाते हैं? तुमको चांस मिलेगा स्कूल में सभी बच्चों के लिए पार्टी देना पड़ेगा, सर का चाहे मैडम का जो फेयरवेल पार्टी होता है ना, तो आपको बनाने के लिए मौका मिलेगा, तो आप दाल बाटी बना सकते हैं?
0: बना नहीं सकते,
1: खा सकते खा सकते लेकिन बना नहीं सकते, लेकिन कोई बन रहा होगा उसमें सीखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक समूह गीत में ढोलक और मंजीरा का साथ इशारा आ रहा है, सभी बोल भाई ढोलक मंजीरा बहुत समय से रुका हुआ है, और बलिहारी है ना, बलिहारी में प्यार में बलिहारी जाना चाहिए, जैसे बच्चे अभी सुनाएंगे एक प्रस्तुति, बारी जाऊ रे, ओके।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बहुत खुशी और हर्ष का साथ ढोलक मंजीरा और पूरा सब चीज लेकर बच्चे रेडी है और सभी साथ देंगे महिपाल को। ऐसे वो टीम लीडर है और ऐसे संगीत में तो टीम चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। कोई बोलने वाला है, कोई गीत गाने वाला है, कोई ताली बजाने वाला, कोई ढोलक बजाने वाला, सब कुछ रेडी है। हमारा सभी बच्चों को होबनहार बच्चे, क्योंकि पीएम श्री नाम ऐसे नहीं होता है भाई, पीएम श्री राजकीय विद्यालय। सभी विद्यालय तो आदर्श विद्यालय होता है, लेकिन ये पीएम श्री बच्चे तो कुछ तो श्री तो करेंगे, श्रेष्ठ काम तो करेंगे। तो श्रेष्ठ के लिए सभी बच्चों को पुनः स्वागत करते महिपाल एंड टीम को। एक प्रस्तुति ढोलक और मंजीरा का साथ लीजिए।

0: बोलो अपने माता पिता गुरुदेव की
1: जय। आज तो बच्चों का भी जय हो, सबका सतगुरु का जय हो और सत पिता का जय हो और सत शिक्षक का भी जय हो। सत शिक्षक, सत पिता, सत गुरु और सत बच्चे, बच्चे भी कम नहीं है, बच्चे है तो शिक्षक है। तो सतगुरु का जय, सत शिक्षक का जय और सत पिता की जय और सत बच्चों का जय। जय जय गान का साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन हमारा साथ बड़ों का भी आशीर्वाद होना चाहिए। तो हमारा दोनों मैम को भी कौन भूल पाएंगे जो कि सांस्कृतिक प्रभारी का साथ साथ ये कार्यक्रम को सजाए। तो सभी को भी नाम का साथ धन्यवाद देते हुए हमारा मैम इस कार्यक्रम को सजाए, सबको नाम दिए, सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में अपना भाव और भावना को पूरा चार चांद लगा दिए। उनका इतना जो छुपी हुई प्रतिभा था, आज जो आवश्यकता था, आज वो मंच उनको मिला। उनका पास जितना था, ना ज्यादा ना कम, अचानक में प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ हिस्सा लिए। तो मैम को स्वागत करते, मैडम आप अपना परिचय दीजिए।
2: मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में लगाई गई है सरकार के द्वारा। मैं बच्चों को हुनर के बारे में ज्ञान देती हूँ और ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में सिखाती हूँ ताकि बच्चे आगे चलकर अपना रोजगार स्वयं का खोल सके। धन्यवाद।
1: तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहीं से स्कूल से बच्चे यहाँ पर मैंने देख रहा, बहुत इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि आवश्यकता बच्चों को। पीएमसी स्कूल में इस तरह इक्विपमेंट मिलता है, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर, सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं जरूर इस स्कूल में एडमिशन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है ना मैम, कोई शुल्क इसमें नहीं, गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और सब फ्री है। चाहे ब्यूटी पार्लर बहन करते हैं और जो मोबाइल का भी कोर्स यहाँ पर होता है। तो जो भी सुन रहे, जो भी अभिभावक सुन रहे, तो बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोजगार सीखना है, बच्चे से ही शुरुआत होता है। और बच्चे जब सीख जाएंगे घर में भी, कोई भी नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अपना स्व एम्प्लॉयमेंट, खुद का रोजगार क्षम बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा मैम को भी धन्यवाद देते। सुनिए मैम क्या कहेंगे, बच्चे का अंदर में इतना जो टैलेंट, बच्चे पूरा चुन चुन कर हीरा को लेकर आए, एक एक मोती को लेकर आए, एक एक रतन आपका विद्यालय के, क्योंकि कितने बच्चे है, कितने बच्चे मैम टोटल, लगभग कितने बच्चे नामांकन है?
3: 450।
1: 450, फिर भी 450 में इतने बच्चे, जो 10-12 बच्चे आए हैं, ये कम नहीं है। तो खुद के लिए ताली बजा बच्चे तुम्हारे लिए, अरे वाह, क्योंकि तुम सब होनहार, तुम्हारे पास विशेषता है। तो मैम कुछ कहेंगे, हमारा सुनीता मैम जो कि पूरा कार्यक्रम को हैंडल करते हैं और सर आपका नाम लिए हैं।
3: सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार
1: जी,
3: और सभी प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे पवित्र भाई जी जो विद्यालय के अंदर इस प्रकार की सेवाएं देने के लिए समय समय पर जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और इस प्रकार से जमीन से जुड़ने की गीतों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से जो एक अवसर देते हैं, बहुत अच्छा अवसर। और आज हमारे विद्यालय में पधारे, इसके लिए आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद है इस प्रकार से बालकों के हुनर को तलाशने के लिए आप समय समय पर आते रहेंगे। और साथ ही मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं जो आप रेडियो मधुबन पर सुनते हैं। हाँ, अगर आप बता सके तो बताए, चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये है कंचन की आवाज और जिसे आप सुनते हैं आपनो गाँव राजस्थान, उसके अंदर आप सुनते हैं। तो चलिए आज आप हमारे विद्यालय में पधारे, इसके लिए आपका पुनः तहे दिल से शुक्रिया और सभी श्रोताओं को भी दिल से शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आरजे जो रेडियो जोकी होते हैं, तो उसी स्टाइल में अपना मैडम सुनीता मैम बताए, और एक जैसे कांचन का जो रोल करते हैं, और हमारा मैम तो ऑलराउंडर है ये, और रेडियो में पार्ट टाइम भी जब भी समय मिलता है अपना भाव और भावना को, अपना जो हुनर को, जो विशेषता को जन जन तक पहुंचाते हैं। ये रेडियो मधुबन के लिए खुशी का बात है, क्योंकि कम्युनिटी से उभर करके जब आते हैं, कम्युनिटी आवाज में, वो भी एक आवाज है, वो तो अपना बुलंद आवाज से सबको सुनाते हैं। और जैसे कंचन शब्द सुना है, कंचन रोल करते हैं, वो कौन सा प्रोग्राम कंचन रोल
3: आपनों राजस्थान रेडियो साबरमती में है और यहाँ पर
1: भी अहमदाबाद से प्रसारित होता है एफएम चैनल और रेडियो मधुबन जो कि 107.8 एफएम आबू रोड माउंट आबू से प्रसारित होता है, उसका आवाज आप सुने होंगे और इस आवाज आज गुलदस्ता बन गया बच्चों का आवाज का साथ मैम का आवाज कंचन का आवाज और पवित्र का आवाज और हमारा मैम का भी आवाज, तो सभी एक गुलदस्ता का आवाज अब तक सुन रहे, तो जरूर उनका माता पिता अभिभावक सुनेंगे तो बहुत खुशी लगेगा। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। कहीं भी आपके अंदर में भी कोई विशेषता होगा, कोई कला होगा, जो आपका गांव का संस्कृति हो, तो लोकगीत हो, जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो भी आप बता सकते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारा जो नंबर है 8302352272 यानी 9414151415, इसमें भी आप अपना बात को बता सकते हैं। तो लेते हैं सभी से इजाजत।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कभी हम

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सो

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस

पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: मधुबनी
1: हम
2: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: हमारे मदरत मंजिला 7.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव फॉर जिंदगी। वैसे बहुत से गाने हमें पसंद आते हैं, लेकिन जब किसी से पूछते हैं आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, तो मुझे बहुत बार वो दर्द भरे नगमे, वो ऐसे गाने सुनाई देते हैं जो लोगों को लगता है हमारे डार्केस्ट डीपेस्ट जो ऐसे मोमेंट्स होते हैं, हम वो महसूस कर पाते हैं उन गानों के माध्यम से। तो क्या है वो और टेक्निक्स जो हमें हेल्प कर सकती है हील करने के लिए, इमोशनली अवेयर कर सकती है, बेनिफिट कर सकती है, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट जी। हमारे साथ हैं ग्लोबल अस्पताल से कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी है, साथ साथ एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी है, और हमारे लिए गाइड और फ्रेंड भी है। दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि, इट वॉज ऑलवेज वंडरफुल श्रोताओं से मिलना, उनसे बातें करना
0: जी।
1: ये हमेशा से ही बहुत एनकरेजिंग हो। थैंक यू
0: जी। जी बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता घर है, आई थिंक वो हमारे साथ एक जर्नी पर चल रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम खुद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जिंदगी से प्यार करना सीख रहे हैं। दीदी, हमने बात की थी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में, और पिछले एपिसोड में ये भी जाना था कैसे नींद बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने कहा था कि प्रॉपर नींद हो तो बहुत सारे चीजें तो वहीं रिजॉल्व हो जाती हैं। इसके साथ साथ क्या और कुछ टेक्निक्स है जो हमें मदद करती है हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, या हमें उससे गो थ्रू करने के लिए?
1: बिल्कुल, हम फिजिकल एस्पेक्ट को पहले देखते हैं। इमोशनल रेगुलेशन के लिए जैसे हमने नींद की बात की, ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है जो कि हमें प्रॉपरली उसके साथ रहना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो पूरी नींद इमोशनल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। नींद के बारे में मैं एक बात और कहूंगी, अगर आपको दिन भर चिड़चिड़ हो रही है, आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हो या आपको बिना वजह रोना आ रहा है, तो नींद की कमी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। अब दूसरा फिजिकल जो कारण है वो हमारा डाइट, जो हमारे इमोशंस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जिस तरह का भोजन हम लेते हैं, उस तरह से हमारे थॉट्स और इमोशन ऑटोमेटिकली लीड होते हैं। तो भोजन में मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए, परंतु हेल्दी फूड होना चाहिए जिसमें ऑयल्स की कमी हो, जिसमें ऐसे पदार्थ नहीं हो जो कि हमारे पेट में गैस और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करे, क्योंकि गैस और कॉन्स्टिपेशन से हमारे इमोशंस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।
0: Okay.
1: इसलिए सारे दिन में हम चेक करें कि हमारा फूड जो भी हम ले रहे हैं वो ज्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं हो, और जिसको कहा जाता है ना वाइट पॉइजन, जो तीन चीजें हैं जो धीमा जहर है, एक है मैदा और मैदे से बनी हुई चीज, दूसरा है एक्सेसिव शुगर, शुगर इनटेक भी हमारा ज्यादा होगा तो भी हमारे इमोशंस को अफेक्ट करेगा, और तीसरा है बहुत ज्यादा नमक।
0: ओके,
1: हाँ, तो ये चीजें अगर हम बैलेंस्ड में करते हैं, ऑयल तो है ही मेन कल्प्रिट जिसको हमें कंट्रोल करना है
0: जी।
1: तो जब हम घर का भोजन करते हैं, घर का बनाया हुआ, तो ये सारी चीजों का ध्यान हम अपने आप रख सकते हैं। परंतु आजकल जो फैंसी फूड का जमाना है
0: जी,
1: हम सोशल मीडिया की साइट से फूड ऑर्डर करते हैं और ये रेगुलर हैबिट में आता है। मेरे संपर्क में मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलरली फूड ऑर्डर करते हैं और उसी के ऊपर उनका सारा समय निकलता है। तो ये देखा गया है कि उनमें मूड डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर का बना हुआ, बाहर से जो फूड ऑर्डर कर रहे हैं वो किस समय बनाया हुआ है, कैसे बनाया है, तेल मसाले कौन से यूज किए गए हैं, उसको फैंसी बनाने के लिए क्या क्या केमिकल्स यूज किए हैं, ये हमें पता नहीं है। और रेगुलर बेसिस पर इस फूड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी इमोशंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। मैं एक कहानी सुनाऊंगी। एक 20 साल का लड़का था, उसकी माँ ने आके शिकायत की कि मेरा बेटा कमरे में बंद रहता है, सारा दिन कंप्यूटर पर क्या करता है मुझे नहीं पता, परंतु दिन में 3 बार उसके ऑर्डर्स आते हैं, जो ऑर्डर्स मैं पिकअप करती हूँ और उसके रूम तक पहुंचाती हूँ, और वो सारे जंक फूड वो खाता है, मैं जो फूड बनाती हूँ प्यार से उसके लिए, वो उसको पसंद नहीं है, वो नहीं खाना चाहता है, मेरे साथ वो बात नहीं करना चाहता है, उसको बोर होता है जब मेरे साथ बात करता है और मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ। वो गुस्सा भी बहुत करता है, कभी कभी तोड़ फोड़ भी करता है अगर उसको बाहर से ऑर्डर करके फूड ना दूं। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन
2: जी, मतलब फास्ट फूड का भी एडिक्शन होता है बहुत सारा। मतलब मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें उन्होंने बताया था एडवर्टाइजमेंट्स में किस तरह से जो दिखाते हैं वो चीज निकलता हुआ और ये सब, कई बार उसमें ग्लू का इस्तेमाल, कई बार ऐसे, मतलब वो आपको दिखाने के लिए वो अलग चीज होती है, आपको लगता है वो रियल फूड है मगर प्रेजेंटेशन है जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने बोला तो मुझे वो वीडियो याद आ गया कि किस प्रकार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया।
1: ये तो उनकी पॉलिसी है ना कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए
2: जी।
1: हमें जो अट्रैक्ट करता है ना जो एडवर्टाइजमेंट में वो है आंखों से जो हम देखते हैं ना कलर्स,
2: जी जी,
1: डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स जो एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कलर्स दिखाई देते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, खासकर बच्चों को
2: जी।
1: छोटे बच्चों को आजकल आप पूछेंगे आपको क्या पसंद है, वो कहेंगे हमें पास्ता पसंद है, हमें पिज्जा पसंद है, हमें बर्गर पसंद है। अब ये नाम पहले हमारे जमाने में थे भी नहीं
2: जी,
1: ये कहाँ से आए, तो फॉरेन मार्केट से इनको यहाँ प्रमोट किया गया। और जब बच्चे पास्ता बर्गर और पिज्जा खाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि हम मॉडर्न हैं।
2: ये बात तो है, वो हमें ये मॉडर्न वाला फील आता है ये खाने के बाद। तो जी मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि आपने बोला फूड इफेक्ट करता है, तो क्या हर एज में इफेक्ट करता है? क्योंकि हम देखते हैं यंग हम होते हैं तो बहुत ज्यादा उससे गैस या ये वाले इश्यूज नहीं होते, बट एज बढ़ती जाती है तो ज्यादा प्रॉब्लम होती जाती है। तो आपने बोला मेंटली इफेक्ट करता है फूड भी, तो हर एज में सेम इफेक्ट करता है या फिर बचपन में इतना नहीं मायने रखता?
1: एब्सोल्युटली, बचपन से ही फूड का इफेक्ट हमारे माइंड पर और हमारे मूड्स पर होता जाता है।
2: ओके,
1: अगर गर्भवती माँ ने भी जंक फूड खाया और उसको कॉन्स्टिपेशन या गैस हुआ तो उसका इफेक्ट भी बच्चे पर होता है। उसके इमोशंस पर होता है। सो घर में बच्चा जैसे ही आ जाता है उसको किस तरह का फूड मिल रहा है
2: जी,
1: किस थॉट से बनाया गया फूड है, वो सारा बच्चे के इमोशंस पर रेगुलरली इफेक्ट करता है। तो चाहे जिस भी उम्र का व्यक्ति हो, फूड इमोशंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है।
2: ओके, तो हम इसको यंग एज में ऐसे इजीली नहीं ले सकते कि असर नहीं हो रहा बॉडी पे तो मन पे भी नहीं हो रहा, बट मेंटली तो वो इफेक्ट कर रहा है आपने कहा, और बॉडी पे भी धीरे धीरे करता है। जैसे आपने कहा फूड का बैलेंस रखें, और क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो हम ध्यान में रख सकते हैं ताकि हमारे इमोशंस पहले से ही हमारे कंट्रोल में रहे, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो हमारे लिए?
1: बिल्कुल, नींद हमने देखा, फूड हमने देखा, तीसरा है फिजिकल फैक्टर, वो है एक्टिविटी लेवल।
2: ओके,
1: आजकल लोग कंप्यूटर पर बैठकर सारा दिन काम करते हैं, जो लाइफ सेडेंटरी हो गई है उस लाइफ की वजह से मूड डिस्टर्बेंस होता है। कंप्यूटर का स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन जो हमारे ब्रेन पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है और बैठकर हम काम करते हैं सारा दिन, तो उसकी स्ट्रेस की शुरुआत जो है ना सेडेंटरी लाइफ की हमारे नेक से शुरू होती है। गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस होती है, पैरों में जकड़न महसूस होती है, बैक में जकड़न महसूस होती है, और इस जकड़न की वजह से, दर्द की वजह से डेफिनेटली हमारा मूड अफेक्ट होता है। इसीलिए आधे घंटे में एक बार उठकर वॉक करना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लंबा समय बैठने का अगर किसी का काम है तो हर आधे घंटे बाद उठकर एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारे मूड पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कहती हूँ, हमें अक्सर माउस चलाने की आदत है जो कंप्यूटर पर काम करते हैं
2: जी।
1: तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मेरा राइट हैंड है ना वो काम करना बंद किया है।
2: अच्छा,
1: मैं कंपन हो रही है। ये 45 ईयर्स का व्यक्ति था।
2: ओके,
1: मेरे हाथ में कंपन हो रहा है, मेरा राइट हैंड जैसे पैरालिटिक हो गया ऐसे मुझे लग रहा है। तो डॉक्टर ने उसके हाथ को आराम देने के लिए पूरा 15 दिन का हाथ को रेस्ट दिया, तो उसके बाद वो ठीक हुआ। जब वो व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपका हाथ को ऐसा इफेक्ट क्यों हो रहा है, तो वो उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फिर मैंने जब उनको और ज्यादा इंक्वायरी की तो मैंने कहा आप क्या काम करते हैं, तो कहा मैं सारा दिन कंप्यूटर पर काम करता और राइट हैंड से माउस चलाता हूँ।
2: ओके,
1: सो वो माउस चलाने की वजह से राइट हैंड की जो नसें है वो वीक हो गई। उनकी एक्सरसाइज ना होने के वजह से पूरा कंधे से लेकर उंगलियों तक वो पैरालिटिक फील कर रहा था। और डेफिनेटली अगर फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है तो इमोशनली आप अफेक्टेड होते ही हैं,
2: है ना? कनेक्शन है।
1: सो ये जो फिर मैंने उनको युक्ति बताई कि हम हर एक को एक्टिविटी लेवल में एक हाथ से जो हम काम करते हैं हमें अपने ब्रेन को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, वही काम हमें दूसरे हाथ से करने की भी आदत डालनी, बीच बीच में अपने ब्रेन को चैलेंज करना है। जैसे अगर हम राइट हैंड से लिखते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे ब्रेन को मैसेज मिले कि ये भी एक्टिव है, है ना?
2: ओके,
1: सो इसको बहुत सुंदर ये एक्टिविटी है जिसको हम कर सकते हैं। जैसे ब्रश आप करते हैं राइट हैंड से,
2: ओके,
1: लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं। माउस आप चलाते हैं लेफ्ट हैंड से चला सकते हैं।
2: स्विच करना चाहिए बीच बीच में, कि आई थिंक हम ये बिल्कुल भी नहीं करते और कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि ऐसा करना चाहिए। हमें लगता है कि एक हाथ से वो काम हो रहा है बट इसका इफेक्ट ऐसा हो सकता है, तो कभी सोचा ही नहीं। तो जरूर छोटी छोटी एक्सरसाइज जैसा आपने कहा बीच बीच में करें, और बहुत सारे लोग ऑफिस में ही बैठ के काम करते हैं। तो ये चीज आपने जैसे बताई कि फिजिकल का कनेक्शन मेंटल से है ही, तो जब हम एक्टिविटी करते हैं तो ऐसा क्या होता है, मतलब क्या हमारे उस वक्त कुछ, मतलब क्या होता है कनेक्शन, क्या तुरंत ही वो असर पड़ता है या टाइम लगता है? मतलब मान लीजिए मैं आज एक्सरसाइज करना शुरू करूं तो क्या मुझे चेंज कब तक पता चलेगा?
1: देखिए अगर बहुत लंबे समय से फाइल्स पेंडिंग है तो आपको रिकवर करने में उतना लंबा टाइम लगेगा, लेकिन रोज का रोज अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एवरी डे जो पेन्स है और इमोशनल रिलीज होना चाहिए वो एवरी डे का एवरी डे क्लियर हो जाएगा। अगर आपने फाइल्स लंबे समय से पेंडिंग रखी है, दैट मींस लंबे समय से आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया। अच्छा, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा कि फिजिकल हम दूसरे भी काम करते हैं घर के सारे, उससे हमें थकावट होती है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें भी एक्टिविटी होती है
2: जी।
1: उससे हमारे मसल्स का जो डैमेज हुआ है, जो खर्च हुआ है, वो रीगेन होता है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक एक्टिविटीज होती है जो शरीर के पर्टिकुलर पार्ट को सिस्टमैटिक स्ट्रेच या एक्सरसाइज देती है।
2: ओके,
1: सो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चाहे गृहिणियां हैं या बच्चे हैं जो पढ़ाई बहुत करते हैं, सारा दिन बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी आधे या एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद लेते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक, एक घंटे के बाद लेते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक में कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचेस करते रहना चाहिए।
2: मतलब मूवमेंट बहुत जरूरी है, और जैसा आपने कहा सिस्टमैटिक मूवमेंट
1: जी,
2: जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमने ये समझा कि टाइम लग सकता है, कई बार होता है हम शुरू कर देते हैं हमें लगता है अरे असर नहीं हो रहा, फिर हम छोड़ देते हैं, मगर आपने कहा ना कि फाइल्स लंबी पेंडिंग है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो करते रहें, कंटिन्यूटी बरकरार रखें। दीदी क्या हम सभी जाते जाते कुछ ऐसा मेडिटेशन 2 मिनट का कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे आपको लगता है अफर्मेशंस हैं जो हमें मोटिवेटेड रखें कि हम ये डेली करें, क्योंकि हम कई बार शुरू तो कर देते हैं पर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो क्या मोटिवेट करेगा हमें करने के लिए?
1: बिल्कुल, आज मैं अफर्मेशंस की जगह कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप सभी को बताना चाहूंगी जिसको अगर आप लिख कर रखें और रिपीट करें तो वो आपको याद दिलाएंगे कि मेरे इमोशनल रेगुलेशन के लिए, मैच्योरिटी के लिए ये चीजें मुझे ध्यान पर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ सेंटेंस ऐसे है जो संबंधों में परिपक्वता ले आते हैं, इमोशनल मेच्योरिटी ले आते हैं
2: जी।
1: तो उसमें कोई चीज ऐसी है, जैसे पहली बात है कि इमोशनल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए पहले सुने सामने वाले की बात पूरी और फिर बोले, तुरंत प्रतिक्रिया ना दे।
2: ओके,
1: कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं रिलेशन पे तो किसी व्यक्ति को टारगेट ना करे लेकिन समस्या को टारगेट करे।
2: ओके, इंटरेस्टिंग, हम व्यक्ति को टारगेट करते हैं, हमें लगता है उसने गलती की है पर उसको नहीं, गलती को, समस्या को टारगेट करें,
1: उसको ठीक करने की। फिर दूसरी, तीसरी बात है कि किसी की आलोचना नहीं करें। आपके बोल चाल में, व्यक्तित्व में, किसी के साथ बात करते समय अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं हम थर्ड पर्सन को, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति है वो आपके पास ओपन अप नहीं होना चाहता है, वो आपके साथ खुलकर नहीं मिलना चाहता। तो किसी की भी आलोचना नहीं करें, लेकिन आप अपना सुझाव दे सकते, आप अपना विचार रख सकते हैं। चौथी बात, हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस होती है। एक्सपेक्टेशंस की जगह, अपेक्षाओं की जगह लोगों को एक्सेप्ट करना सीखे।
2: okay.
1: वो जो है जैसे है एक्सेप्टेड है ना। फ्रेंड्स है, माता पिता और बच्चे है, हर रिलेशन में हमारी एक्सपेक्टेशन की जगह हम एक्सेप्ट करें।
2: okay.
1: चौथी बात, अगर हम कोई गलती करते हैं तो दिल बड़ा करके सॉरी कहने की आदत डालें।
2: अगर हम शब्द लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कई बार जी।
1: फिर दूसरों की फीलिंग्स का, भावनाओं का हमेशा सम्मान करें कि जैसे मेरी भावनाएं इम्पोर्टेंट है, उनकी भी फीलिंग्स, चाहे हो सकता है मेरे से डिफरेंट हो, अलग हो, परंतु उसको हम रिस्पेक्ट करें कि ठीक है, ये आपकी फीलिंग है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर इमोशनल रेगुलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गॉसिप करने से दूर रहे।
2: ओके।
1: गॉसिपिंग में हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट जाती है और इस वजह से हम इमोशनली टायर्ड हो जाते हैं। फिर जहां इमोशनल मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है वहां हम एग्जॉस्टेड होते हैं और सही इमोशन एग्जिबिट नहीं कर पाते।
2: ओके।
1: फिर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो उस समय दबाव महसूस करते हैं, हम बड़ों के साथ काम करते हुए दबाव और सप्रेशन को फील करते हैं, बट इसकी जगह पर संतुलन को महसूस करें, बैलेंस। ठीक है, रिस्पेक्ट है, बट प्रेशराइज फील ना करें खुद को, ताकि आपके इमोशंस, आपके बातचीत में वो कॉन्फिडेंस आपका दिखाई दे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इमोशनल रेगुलेशन सीखना है तो टीम में काम जब हम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, तो टीम की एक सफलता होती है जब टीम मिलकर काम करती है, तो टीम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दे ताकि टीम सक्सेसफुल हो। हम देखते हैं ना कि अपने क्रिकेट है, अभी अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, सो सबके कोऑपरेशन से सक्सेस मिलती है।
2: कहते हैं देयर इज नो आई इन टीम, वो मैंने सुना था कहीं पे कि सब मिलके करें, बिल्कुल एक से नहीं होता, ग्रुप से होता है। जी दीदी।
1: ओके, लास्ट में मैं एक दो सेंटेंस आपको कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीख लिया, उसके जीवन की सबसे बड़ी कला उसने सीख ली। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा से हमारे नियंत्रण में है, ये हमारा चुनाव है। इसलिए जब भी कोई प्रतिक्रिया दे तो शांत और स्थिर मनोस्थिति के साथ प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें।
2: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका ये मतलब नहीं है प्रतिक्रिया देनी नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा, शांत मन के साथ बैलेंस्ड वे में उसे देने और लेने की कोशिश करें। वंडरफुल दीदी, मुझे लगता है ये हम इमोशनल बैगेज से डील कर लेते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी बचती है, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर लगता है थक गए हैं, अब नहीं करेंगे, कल से करूंगा, फिर वो कल कभी नहीं आता। तो अपनी एनर्जी को बचाएं और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें जैसा दीदी ने कहा, ताकि आपको वो हेल्दी इमोशंस आप उसको फील कर पाए। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत थी आज। हमें स्लीप के बारे में बात की, फूड के बारे में बात की, एक्सरसाइज के बारे में बात की। आई थिंक शुरुआत करनी है तो आज से ही करेंगे, कल से नहीं। और फिलहाल लेकिन इजाजत लेते हैं रेडियो मधुबन के इस एपिसोड से, मुलाकात होगी लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। तब तक गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को कहिए लव यू जिंदगी।

0: ओए रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओए एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ वड्डा किया जाए?
4: कोई सुझाव हो तो बताओ।
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गई। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सके।
4: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहाँ से कलकत्ता पहुँचेंगे।
4: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
4: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे। गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वार्याम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
5: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभल कर विद्रोह का निर्णय लेना है।
6: आपने क्या सोचा है?
5: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
6: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
7: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
8: What is their plan? Tell me.
7: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
8: Don't test my patience. Just tell their plan.
7: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
8: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की

0: कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार हरनाम सिंह तुंदिलात और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
2: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
2: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
0: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे, उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी, जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
3: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी, जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
0: करतार सिंह की अपनी दलील थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
3: आप अपनी करो, मैं अपनी, सारा दोष मेरा है।
4: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
0: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
3: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
0: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
3: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
5: कौन करेगा हमारी मदद?
3: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
5: ठीक है, देखता हूँ।
0: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया, जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए, लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
6: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
7: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
6: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे 2 कोड़े लगा देना।
7: ओह यू फूलिश, चलो देखता हूं।
0: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुंचता है और ताला खोलने को कहता है।
7: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
8: जी जनाब।
9: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
8: सर जी, ये देखिए, इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
7: औजार, चप कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
0: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार

0: फिर से सभी जज के सामने थे।
1: खातार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
2: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
1: Then I must announce the judgment. खातार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
0: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी, लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
3: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
4: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
3: देश को तो उन पर नाज है, उनके परिवार वालों को भी बेटे पर फक्र होगा।
4: तुम जानना चाहोगी कि करतार सिंह ने भावी क्रांतिकारियों के सामने कितनी बड़ी मिसाल पेश की? यहां तक कि शहीद भगत सिंह भी उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पास से करतार सिंह सरबा की तस्वीर बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे।
0: ये थी एक महान युवा क्रांतिकारी के शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में उन्हें बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया। हालांकि उनके वहां अध्ययन के भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उल्लेख है कि जब वो दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। जो भी हो, वंदे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

आप सुनने जा रहे हो प्रभा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओ, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का विचार इस प्रकार है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि मनुष्य के कदम डगमगाने लगते हैं, परंतु समय भी यही होता है संभलने का। आज के विचार को मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। संघर्ष का नाम ही जीवन है। कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि मनुष्य के कदम डगमगाने लगते हैं, परंतु समय भी यही होता है संभलने का। आइए डिटेल में चलते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई करते रहे और परीक्षा नहीं आए तो कैसे पता चलेगा कि कौन होशियार है और कौन कमजोर? फिर कोई कोई अपने कमजोर रिजल्ट यानी कि परिणाम को देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने जीवन से हार मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन एक रस चलता रहे तो कैसे पता चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं? अर्थात हम विपरीत परिस्थितियों में भी एक रस रह सकते हैं या नहीं। परिस्थितियां आती हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कितने ही बंदे विपरीत परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाते और अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि रात के बाद दिन और अंधकार के बाद उजाला आता ही है। ठीक इसी प्रकार दुख के बाद सुख आता ही है। अतः कभी भी विपरीत परिस्थितियां देखकर जीवन से घबराना नहीं है, डगमगाना नहीं है। हर परिस्थिति में संभल कर चलना ही समझदार व्यक्ति का काम होता है। और अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी उषा का नमस्कार। आइए अब मैं आपको घरेलू नुस्खे देती हूँ, और आज जो घरेलू नुस्खे देने जा रही हूँ वो आयुर्वेदिक पर है। आयुर्वेदिक में आप कहते हैं कि आयुर्वेदिक ऐसा इलाज है जिसमें नो साइड इफेक्ट और असरकारक भी होता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस तरह का चूर्ण बनाना सिखाऊंगी जिस चूर्ण से आपकी अनेक बीमारियां खत्म हो सकती है। तो सबसे पहले सिखा रही हूँ आपको पेचिश नाशक चूर्ण, ठीक है। अब पेचिश नाशक चूर्ण कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप सोंठ, नागर मोथा, सिकी हुई हींग, चित्ता की जड़, अतीस तथा कुंडा की छाल सबको कूट पीस करके कपड़े में छान करके इसका चूर्ण बना लीजिए, ठीक है। चूर्ण बन गया ना, सभी का अच्छी तरह बारीक पीस कर कपड़े से छान लिया तो ये चूर्ण तैयार हो गया। पुनः दोहरा रही हूँ, पेचिश नाशक चूर्ण बनाने की विधि को आप ध्यान से सुनेंगे। सोंठ, नागर मोथा, सिकी हुई हींग, चित्ता की जड़, अतीस तथा कुंडा की छाल सबको कूट पीस करके कपड़ छान करके चूर्ण बना लीजिए। अब आप आधा आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ रोज सुबह और शाम को लीजिए। ये चूर्ण आव, पेचिश, दस्त इन सभी रोगों को शांत करता है। जितनी भी शरीर की तकलीफें हो रही होती है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है पेचिश, आव, दस्त, इन सभी रोगों को शांत करता है। आधा आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ रोज सुबह नन्हे कोटे और शाम को सोते वक्त लेना है तो आपको इन बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। अब चित्रकादी भट्टी का चूर्ण कैसे बनाया जाता है और इससे कौन सी बीमारी खत्म होती है वो जानेंगे। पीपरा मूल, जवाखार, सज्जीखार, चित्र का मूल, नमक, त्रिकुट, सिकी हुई हींग, अजमोद तथा चक, इन सभी का चूर्ण 20-20 ग्राम लेकर के अनार के रस में घोट करके मटर के दाने के बरोबर गोलियां बना लीजिए। चित्रकादी भट्टी चूर्ण का मैं पुनः विधि दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पीपरा मूल, जवाखार, सज्जीखार, चित्र का मूल, नमक, त्रिकुट, सिकी हुई हींग, अजमोद तथा चक, सभी का आप चूर्ण 20-20 ग्राम लेकर के अनार के रस में घोट करके मटर के दाने के बरोबर गोलियां बना लीजिए, और फिर 2-4 गोली प्रतिदिन आपको सुबह शाम खाने के बाद पानी से सेवन करना है। ये भट्टी आव को खत्म करती है, गैस को शांत करती है तथा पेट हल्का करती है। है ना उपयोगी, बहुत ही अच्छी है। उन्हें दोहरा रही हूँ, इसकी मात्रा आप 2-4 गोली प्रतिदिन सुबह और शाम को खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए। यह वटी आव को खत्म करती है, गैस को शांत करती है तथा पेट को हल्का रखती है। अब मैं आपको सेंधवादी चूर्ण सिखा रही हूँ। सेंधवादी चूर्ण के लिए सेंधा नमक, काली मिर्च एवं फिटकरी फूली हुई 10-10 ग्राम तथा कपूर व अफीम 2-2 ग्राम सबको कूट पीस करके चूर्ण बना लीजिए। पुनः दोहरा रही हूँ, सेंधवादी चूर्ण के विधि को सेंधा नमक, काली मिर्च एवं फिटकरी फूली हुई 10-10 ग्राम तथा कपूर व अफीम 2-2 ग्राम, इन सबको कूट पीस करके चूर्ण बना लीजिए। फिर यह चूर्ण दाढ़ एवं दांत के रोगों में लाभकारी है, अतः सुबह शाम जरा सा चूर्ण धीरे धीरे मसूड़ों पर मलिए। इस चूर्ण को मसूड़ों पर मलने से दांतों से खून आना, दांतों का टिसना तथा दांतों में दर्द होना बंद हो जाएगा। तो बहुत ही लाभदायक है सेंधवादी चूर्ण। यह चूर्ण दाढ़ एवं दांत के रोगों में लाभकारी है, अतः सुबह शाम जरा सा चूर्ण धीरे धीरे मसूड़ों पर मलिए। इस चूर्ण को मसूड़ों पर मलने से दांतों से खून आना, दांतों का टिसना तथा दांतों में दर्द होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह आप आयुर्वेदिक नुस्खा को अपना करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम, बने रहेंगे आप आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: तो बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय। रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सबकी तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं कि अगर चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो कुछ अच्छी आदतों को जीवन में जरूर अपनाएं। तो किन आदतों को अपनाएंगे जिससे हम जीवन में सदैव खुश रहेंगे, चलिए दो पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। राह के पत्थरों से कुछ सीख ले ले, राह के पत्थरों से कुछ सीख ले ले, जिंदगी में काम आएंगे अनुभव के मेले। राह के पत्थरों से कुछ सीख ले ले, जिंदगी में काम आएंगे अनुभव के मेले। ठोकर खाकर भी खामोश दृढ़ है ये, ठोकर खाकर भी खामोश दृढ़ है ये, हसरत है इनकी दल दल से सभी को निकाले, हसरत है इनकी दल दल से सभी को निकाले। अच्छी आदतें जीवन में जरूर डालें, अच्छी आदतें जीवन में जरूर डालें। चरित्र निर्माण के लिए पांच घटक जरूरी है, आदत, शिष्टाचार, सद्गुण, जीवन मूल्य और संस्कार। चरित्र निर्माण तभी संभव है जब इन सभी घटकों को हम भली भांति पहचानेंगे और उनके समुचित विकास का प्रयत्न करेंगे। अतः चरित्र निर्माण के सभी घटकों पर मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। पहली है आदत। आदत चरित्र निर्माण का प्रथम घटक है मेरे प्यारे श्रोताओं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अच्छी आदतें जहाँ श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण में सहायक है, वही बुरी आदतें व्यक्ति को दुष्चरित्र भी बना सकती है। ऐसी स्थिति में हमें अच्छी आदतों को अपनाने तथा बुरी आदतों को त्यागने की आवश्यकता होती है। जो आदतें अच्छी है और जिन्हें हमें अपने आचरण का अंग बनाना चाहिए, उन आदतों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि समय पर जागना, शौच और हाथ मुंह धोना, स्नान और प्रार्थना, नाखून समय पर काटना, व्यायाम करना, समय सारिणी बनाना और उस पर अमल करना, स्वाध्याय अपना सामान निर्धारित समय पर व्यवस्थित ढंग से रखना, कचरा कूड़ेदान में डालना, प्रवेश द्वार से भीतर जाने और बाहर आने पर द्वार बंद करना, यातायात के नियमों का पालन करना, किए गए खर्च का विधिवत हिसाब रखना, खेल कूद में भाग लेना, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना, स्काउटिंग एनसीसी एनएसएस जैसी गतिविधियों में भाग लेना, कोई एक ललित कला सीखना, पुष्पोद्यान लगाना, डायरी लिखना, प्रतिदिन के कार्यों की समीक्षा करना, वस्तु संग्रह, स्टैंप टिकट संग्रह, मुद्रा संग्रह वगैरह वगैरह, इस तरह 20 हस्तकला और 21 अभिनय कला वगैरह वगैरह। इन सभी आदतों की ये सूची सुझावात्मक है, संपूर्ण नहीं। ऐसे नहीं कि यही आदतें हैं, बहुत सारी आदतें हैं जिनको हम अपने जीवन में समावेश कर सकते हैं, लेकिन इन आदतों को जो मुझे याद आई वो मैंने आपको बता दिया कि इन आदतों को जीवन में डालना बहुत जरूरी है अगर हमें संपूर्ण स्वस्थ और संपूर्ण खुश रहना हो तो। अब समय पर जागना, हमें सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। भारत में ब्रह्म मुहूर्त में जागना उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2.5 घंटे पूर्व के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जागने के उत्तम समय के लिए कहा जाता है कि प्रातः 3 बजे के पहले नहीं और 4 बजे के बाद नहीं। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत पवित्र और शांत होता है। वायु शुद्ध रहती है, अच्छे विचार मन में आते हैं, पाठ जल्दी भी याद होता है और भूलता नहीं। तात्पर्य यही है कुल मिलाकर के कि यदि सुबह जल्दी उठने की आदत डल गई तो बस पूरे दिन का हमारी जीवनचर्या अच्छी जाएगी, पूरे दिन हम खुश रहेंगे और जो भी पढ़ाई करेंगे वो अच्छी तरह याद भी रहेगी और सुबह सुबह श्रेष्ठ विचार भी चलते हैं। सुबह सुबह अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अच्छे विचार डालेंगे तो वो विचार पूरे दिन काम आएंगे, एनर्जी बनी रहेगी और हमारा मन उमंग उत्साह से बीतेगा। तो इस तरह समय पर अगर हम जागेंगे तब तो ठीक है। बाकी कहते हैं ना, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। जागने वाला, मेहनत करने वाला हमेशा ही प्राप्त करता रहता है अपनी मंजिल को, और सोने वाला सब कुछ खो देता है। तो अब किस तरह क्या करना है, सोने वाला बनना है या जागने वाला, ये आपके ऊपर छोड़ा। अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। अल्प विराम के बाद और भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की आदतें अगर हमारे जीवन में अच्छी बनी रहेगी तो जीवन में खुशियाँ आएगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप अभी सभी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हो और आशियाना में खुशनुमा

वाह बनकर निकलती है, हर श्वास वाह वाह बनकर निकलती है। आदतों की बातें हो रही थी कि अच्छी आदतें अगर हम जीवन में डालेंगे तो जीवन में खुशियां बनी रहेगी। अच्छी आदतों की बातें चल रही थी तो एक मैं आपको छोटे से उदाहरण देना चाहूंगी कि एक बार किसान को तो आप सभी जानते हो कि सुबह सुबह भले वो सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो या पतझड़ हो, कोई भी मौसम हो, किसान कभी नहीं रुकता, हमेशा कर्म करता रहता है, मेहनत करता रहता है। तो इसी तरह एक किसान भाई से बातचीत हुई एक सेठ जी की। तो सेठ जी ने कहा, जब इतने ठंड के दिन, बहुत ठंड पड़ रही थी और किसान का तो वही डेली की आदत, वो जल्दी से उठ करके खेत पे जाने लगा और इधर सेठ जी टहल के, मॉर्निंग वॉक जिसको टहलना कहते हैं, टहल करके आ रहे थे। तो दोनों का आमना सामना हो गया। सेठ जी वैसे किसान को रोज आते जाते देखते थे तो सेठ जी सोचते थे कि ये किसान हमेशा इतने सुबह सुबह जल्दी जा करके पता नहीं खेत पर क्या करता होगा, इतनी ठंड में भी ये ऐसे नहीं कि घर पे आराम करे। तो उससे रहा नहीं गया सेठ जी से और सेठ जी ने कहा, अरे किसान भाई कहाँ जा रहे हो? किसान ने कहा कि अरे सेठ जी मैं तो अपने खेत में जा रहा हूँ, और मैं कहाँ जाऊँगा। तो सेठ जी बोले कि किसान भाई तुम्हें ठंड नहीं लगती? इतनी सुबह सुबह अभी तो झाड़े का मौसम चल रहा है, इतनी सर्दी, सब तरफ ठंडी ठंडी हवा, और ऐसे मौसम में तुम खेत में जाते हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ऐसे नहीं कि थोड़ा आराम करके आराम से 11-12 बजे दोपहर को जाओ। तो किसान भाई क्या बोले पता है? किसान भाई बोले, ठंड ठंड ठंड क्या करते, ठंड क्या तुमको खाती, लकड़ बनकर पड़े रहो तो ऊपर होकर जाती। तो किसान ने एक अच्छा सा कॉमेंट सुबह सुबह मार दिया और बोले कि सेठ जी मैं तो अगर सो जाऊंगा तो दुनिया भूखी मरेगी, क्योंकि किसान का कर्म ही है निरंतर मेहनत करना। अपने खेत खलिहानों का ध्यान नहीं रखेगा, समय पर बीज नहीं बोएंगे तो दुनिया वाले क्या खाएंगे। तो सेठ जी, फिर किसान ने कहा कि सेठ जी आप कहाँ गए सुबह सुबह, आप मुझे तो बोल रहे हो लेकिन ऐसी ठंड में आप कहाँ गए? तो सेठ जी ने बोला कि देखो किसान भाई, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, थोड़ा शरीर फूल रहा है, मेरी बॉडी बन रही है, मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ, तो सोचा कि थोड़ा सा मैं मॉर्निंग वॉक करूँ तो ठीक हो जाऊंगा, यानी कि मैं थोड़ा सा टहल के आऊंगा, रोज टहलने की आदत डालूंगा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो किसान भाई ने कहा कि सेठ जी, चाहे अपने बारे में सोचो या देश के बारे में सोचो, सोच तो आप भी रहे हो ना, आप भी तो ठंड की परवाह नहीं करके कर्म कर रहे हो, भले अपने लिए सही लेकिन अपने लिए भी जागरूक तो होना कि मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आप अपने बारे में सोचते हो लेकिन मुझे तो पूरे देश के बारे में सोचना है, तो भला मैं कैसे सो सकता हूँ, मुझे नींद कैसे आ सकती है? तो प्यारे श्रोताओं, बिल्कुल सही कहा किसान ने कि अगर किसान सो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश की क्या हालत हो सकती है। इसलिए किसान कभी नहीं सोता, निरंतर मेहनत करता रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी आदत हुई ना, अगर ये आदत नहीं होती तो आप कल्पना कीजिए। इसलिए ज्यादा नकारात्मक नहीं सोचते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि अच्छी आदतों का जीवन में समावेश जरूर करें। कहता तो हर कोई है कि आप ये आदत डालिए, वो आदत डालिए, लेकिन करता कोई में से कोई ही है। कहते कोटों में से कोई और कोई में से कोई, बाकी कहने में क्या है, कहना और करना एक हो जाए तो फिर जीवन सार्थक हो जाए। और फिर समय पर हमको सोच, हाथ मुंह ये सभी धोना चाहिए ना, सुबह जागने के बाद सोच और हाथ मुंह धोने की आदत डालनी चाहिए। मुंह धोते समय दांत, आंख, नाक की सफाई भी की जानी चाहिए। यदि जागने के बाद ऐसा नहीं किया जाए तो आलस्य और सुस्ती बनी रहेगी, कोई काम प्रसन्न मन से नहीं हो पाएगा, शरीर में फुर्ती नहीं आएगी, किसी महत्वपूर्ण कार्य का विस्मरण भी हो सकता है। और फिर अब आप सोच रहे होंगे कि उषा दीदी को क्या हो गया, बच्चों को समझाते ऐसे हमको समझा रहे हैं, क्या हम नहीं करते हैं? अरे प्यारे श्रोताओं, नाराज मत होइएगा, मैं जानती हूँ कि आप सभी बहुत एक्टिव है और सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि जितने जितने हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो कुछ आलसी होते जाते हैं। फिर हम अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते हैं कि बेटी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सोच वोच से निवृत्त होकर के स्नान आदि करना चाहिए। हम अपने बच्चों से कहते हैं लेकिन बच्चे किनसे सीखेंगे? वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को देखेंगे ना, कि हमारे माता पिता

0: जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो अमल कर रहे हैं या नहीं। इसलिए प्यारे श्रोताओं, मैं आपसे इसी वजह से कह रही हूँ कि पहले आप अपने आप में परिवर्तन। अगर आप सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, इन सभी बातों को अमल करते हो, तब तो बच्चों को इजी वे में शिक्षा दे सकते हो और बच्चे भी आपको ही फॉलो करेंगे। लेकिन हम सिर्फ अपने बच्चों को कह रहे हैं और अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ही सोचिए कि बच्चे कैसे फॉलो करेंगे। और फिर हम अपने बच्चों को डांटते कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। अरे वो बात कैसे सुनेगा जब वो घर में देख ही नहीं रहा है वो वातावरण। सिर्फ कहने से थोड़े ना वातावरण चेंज हो जाता है। वातावरण को चेंज करने के लिए माता पिता को, जो घर में मुखिया है, उनको चेंज होना पड़ता है। एक अच्छी सी बात मुझे याद आ रही है कि मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि एक दादी के साथ छोटा सा पोता आता है, और वो जैसे दादी दंडवत करती है ना भगवान को, ऐसे वो बच्चा हूबहू प्रैक्टिकल उनको अमल करके बिल्कुल पूरे लेट जाना और पैर के ऊपर पैर चढ़ाना, दोनों हाथ लंबे करके, हाथ को जोड़ के, सिर को नीचे करके बिल्कुल दंडवत करता है। राम स्नेहियों में आप सभी को पता होगा कि इस तरह दंडवत किया जाता है भगवान को, गुरु जी को। तो इस तरह दादी दंडवत करती थी, तो छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 4 साल की है, बस दादी को देख करके वो भी रोज, उसकी भी आदत हो गई, भले दादी करे नहीं करे, फिर वो बच्चा करने लग गया। तो मैं सोचती थी कि अरे पहले तो ये दादी को देख देख के करता था, अब तो दादी से पहले ही वो दंडवत करना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा, अरे बेटे आपको ये दंडवत करना किसने सिखाया? तो बोले कि दादी जी से सीखा, दादी जी रोज दंडवत करते है तो मैंने भी सीख लिया। तो प्यारे श्रोताओ, उस छोटे से बच्चे से मुझे ये शिक्षा मिली कि बच्चे बड़ों से ही शिक्षा धारण करते हैं। भले आप बाद में अपनी थोड़ी दिनचर्या को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बच्चों ने जब आपको देख लिया है कि जो शिक्षा आप दे रहे हो उस पर आप अमल कर रहे हो, तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। और जब बच्चों की डेली की आदत हो जाएगी, फिर अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए तो भी बच्चों की आदतें अच्छी ही बनी रहेगी। इसलिए प्यारे श्रोताओं, आदतों को हमेशा अच्छी बनानी है, जीवन में हमेशा खुश रहना है। अच्छी आदतों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा ही हमारा जीवन चरित्रवान बन सकता है और परिवार में खुशियाँ बनी रह सकती है। तो अब लेंगे यहाँ पर एक अल्प विराम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।
1: इतनी सी खुश।

0: आशिया।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आइए, अब समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज आशियाना के किचन में बनने जा रही है खट्टी मीठी चूरन घोली। चूरन घोली तो बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और चूरन घोली खाने से पेट अच्छा साफ रहता है, कोई गड़बड़ नहीं होती। तो आइए, खट्टी मीठी चूरन घोली के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। पेन और डायरी तो आप अपने हाथ में ले ही लीजिएगा और जो मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ लिखिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। बाहर से हम खरीदते हैं लेकिन घर पे बना करके खाने का मजा ही अलग है। तो सामग्री लीजिएगा, अनारदाना आधा कप, ठीक है। फिर अजवाइन 2 छोटा चम्मच लेना है, 2 छोटा चम्मच जीरा भी ले लीजिएगा, काली मिर्च भी लेनी है 2 छोटे चम्मच, फिर आपको 1 छोटा टुकड़ा लेना है सौंठ का, ठीक है। फिर आमचूर 2 बड़े चम्मच लीजिएगा, काला नमक 1 छोटा चम्मच लेना है और 2 तार की चाशनी 2-3 बड़े चम्मच, ठीक है। फिर चुटकी भर हींग लीजिएगा और पीसा हुआ जायफल 1/4 छोटा चम्मच। तो ये हो गई चूरन घोली की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और अगर आपका कहीं बाकी रह गया हो तो एक नजर डाल दीजिएगा। अनारदाना आधा कप, अजवाइन 2 छोटे चम्मच, 2 छोटे चम्मच जीरा लीजिएगा, फिर आप मिर्च भी, काली मिर्च भी लीजिएगा आप 2 छोटे चम्मच, सौंठ लेनी है 1 छोटा टुकड़ा, आमचूर 2 बड़े चम्मच लीजिएगा, काला नमक 1 छोटा चम्मच लीजिएगा, फिर 2 तार की चाशनी लेनी है 2-3 बड़े चम्मच, चुटकी भर लेना है आपको पीसी हुई हींग और जायफल 1/4 छोटा चम्मच पीसा हुआ। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहेंगे आप आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप होवरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM होवरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: आज श्यामा के किचन में आप सभी का पुनः स्वागत है। अल्प विराम के पहले मैं आपको खट्टी मीठी चूरन गोली की सामग्री लिखवा रही थी, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। एक नजर डाल दीजिएगा, फिर खट्टी मीठी चूरन गोली कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। अनारदाना, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, सौंठ, आमचूर, काला नमक, चाशनी, हींग, जायफल, ये सारी सामग्री तो है खट्टी मीठी चूरन गोली के लिए। और आइए अब ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले अनारदाना, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, सौंठ, इन सबको आप हल्का सा सेक लीजिए और बारीक फिर इसको पीस लेना है, ठीक है। फिर अब आप कढ़ाई में तैयार चाशनी, पिसा हुआ अनारदाने वाला मिश्रण और आमचूर, काला नमक, हींग और पिसा हुआ जायफल डालिए और सभी को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। फिर इसे धीमी आंच पर लगातार आप हिलाते हुए पकाइए। लगातार आपको धीमी आंच पर हिलाना है, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो चिपक जाएगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा, इसलिए लगातार आप हिलाते रहिए। फिर जब मिश्रण एक जगह इकट्ठा होने लगे ना, तो बस गैस बंद कर दीजिए और तैयार मिश्रण से छोटी छोटी गोली बना करके इसे सूखे आमचूर में लपेटिए। फिर तैयार खट्टी मीठी चूरन गोली को स्टोर करें। तो ये बन गई हमारे खट्टी मीठी चूरन की गोली। पुनः मैं इसकी विधि को दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अनारदाना, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, सौंठ को इन सभी को हल्का सा सेक लीजिए और सेक करके बारीक पीस लेना है। अब आप कढ़ाई में तैयार चाशनी, पिसा हुआ अनारदाने वाला मिश्रण जो हमने अभी तैयार किया है ना, इन सभी को अंदर आमचूर, काला नमक, हींग, पिसा हुआ जायफल डाल दीजिए और इसे धीमी आंच पर लगाते हुए पकाइए, ठीक है। जब मिश्रण एक जगह इकट्ठा होने लगे ना, तो बस गैस बंद कर दीजिए। तैयार मिश्रण से छोटी छोटी गोली बनाकर इसे सूखे आमचूर में लपेटिए। तैयार खट्टी मीठी चूरन गोली को स्टोर करें। इस तरह आप अच्छी तरह गोलियां बना करके फिर इस तरह गोलियां तैयार हो जाए तो आप कांच की बोतल में भर दीजिएगा। तो इस तरह खट्टी मीठी चूरन गोली बनाई जाती है। घर पर बना करके आप अपने बच्चों को खिला सकते हो, लेकिन रुकिए, खिलाएंगे तो जरूर लेकिन भोग तो लगाएंगे ही, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें बनाते हैं उनका भोग एक बार इष्ट देव को लगाना, परमात्मा को लगाना बहुत जरूरी है। तो निकालेगा आप एक छोटी सी डिश में ये चूरन गोली और तुलसी पत्र रखिएगा अंदर, ऊपर से स्वच्छ कपड़ा ढक के आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप बच्चों को खिलाइएगा खट्टी मीठी चूरन गोली। साथ ही साथ लेंगे एक छोटा सा विराम, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।
2: समय रिसागे उदय सिंगी मोटियार होवण दागे, वारी रजपूती मरोड़ और सांगारी शक्ति उदय रे बाजुओं में देखण दागे, उठीने मेवाड़ री प्रजा सामंत और जागीरदार बनवीर रे आतंक सु घनी धापियोड़ी ही दुखी हुई। छेवट मेवाड़ और मारवाड़ रा कई मानिता सरदार भेड़ा होयर गुप्त मंत्रणा करता हा। उन समय उना ने ठा पड़ी कि मेवाड़ी सूरज उदय सिंह जिंदा है। पन्ना रे बलिदान री बाता घर घर होवण लागी। जद मेवाड़ रा सरदार ने पतो लागो कि उदय सिंह आशा शाहरे घरे है, तद सरदार चूंडावत, सरदार महीदास, केलवारा सामंत जग सिंह, बागोर सरदार सांगा, सोनगढ़रा अखय सिंह,

अर सांचो रा सरदार पृथ्वीराज भेड़ा होइर कुंभल मेर गया। सगड़ा मिलुर उदय सिंह रो राज तिलक करियो। एण अवसर माथे सोनगढ़ रा शासक अखय सिंह आपरी बेटी रो ब्याह उदय सिंह जी साथे करियो।

गौरवशाली गुजरी उदय सिंह रखवाल माँ ममतारी मूर्ति तू शक्ति प्रण पाल तू शक्ति प्रण पाल बलिदानी मायड़ थारो जीवन गीता सार पन्ना धाय पड़के है सूरज रे उणियार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में आज जानेंगे कि डेंगू के मरीज को खाने को क्या क्या देना चाहिए। आज इस बारे में जानकारी देंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। आपके घर में कोई डेंगू का मरीज है, या फिर आप डेंगू से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। डेंगू में तेज बुखार, जोड़ों और सिर में दर्द, त्वचा पर लाल चकते जैसी समस्याएं हो जाती है। खान पान की कुछ चीजों से इस बीमारी से उबरने में काफी मदद मिल सकती है, इसलिए मैं आपको खाने पीने की चीजें बता रही हूँ कि किस तरह की चीजें आप डेंगू के मरीज को देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको संतरा के बारे में बता रही हूँ कि संतरे में भरपूर मात्रा में जरूरी पोषक तत्व और विटामिन होते हैं। संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। संतरे में मौजूद फाइबर इस बीमारी की वजह से हुई अपच से लड़ने में मदद करता है। इसका जूस या फिर फाके मरीज को खाने को दीजिएगा। पपीते में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। बहुत सारे शोध ये साबित कर चुके हैं कि पपीते का बीज एडिस मच्छर के लिए जहर का काम करता है। डेंगू के मरीजों में पपीते के सेवन से प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। मरीज को पपीते की ताजी पत्तियां पीसकर उसका रस दिन में दो बार देना चाहिए। दलिया पूरी दुनिया में नाश्ते के तौर पर खाया जाता है। इसमें फाइबर और पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और इस बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। दलिया आसानी से निगला जा सकता है और पच भी अच्छी तरह जाता है, इसलिए डेंगू के मरीज को दलिया खाने को दीजिएगा। नारियल पानी। डेंगू से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी में भरपूर मात्रा में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसे लेने से शरीर में तरल पदार्थ का स्तर बना रहता है, इसलिए नारियल पानी को मरीज के डाइट में जरूर शामिल करिएगा। फलों का रस। विटामिन सी काफी असरकारी एंटीऑक्सीडेंट है। यह कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। संतरा, अनानास, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और कीवी खून में लिम्फोसाइट्स के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जो कि वायरल संक्रमण से लड़ते हैं। हर्बल टी। हर्बल चाय से भी डेंगू बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। इलायची, पुदीना या अदरक वाली हर्बल चाय पीजिए। अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स लिए होती है। हर्बल चाय को यूफोरिया हिरता या अस्थमा प्लांट के साथ बनाकर पिलाइएगा। सब्जियों का रस। डेंगू के मरीज को सब्जियों का ताजा रस निकालकर दीजिए, जैसे कि गाजर, खीरा और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां डेंगू के लक्षणों से लड़ने में सहायक होती है। इन सब्जियों में जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां औषधीय गुण के लिए जानी जाती है। ये डेंगू वायरस टाइप 2 को बढ़ने और फैलने से रोकती है, इसलिए यह डेंगू की बहुत ही अच्छी प्राकृतिक दवा है। इसलिए नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर रोगी को दीजिएगा। घर में नीम की पत्तियां जलाए ताकि मच्छर न हो पाए। तो प्यारे श्रोताओं, ये हुई डेंगू के मरीज को अगर डेंगू के शिकार हो चुके हैं तो उनको क्या क्या खाने को देंगे, ये सारी जानकारी मिली है। अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं हूँ माया कालसी और आप सुन रही हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए।
1: प्यारे श्रोताओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो आज के महावाक्य इस प्रकार है, बुरे के साथ बुरा मत बनिए, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है क्षमा मुक्ति का द्वार। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा गणी सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। क्षमा मुक्ति का द्वार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है, यही रास्ता है शांति का, यही मंत्र है क्रांति का। क्षमा किनारा है बदला मझधार, क्षमा किनारा है बदला मझधार, क्षमा मुक्ति का द्वार है। अभिमान से ऊंचा है जिसका सर, अभिमान से ऊंचा है जिसका सर, उसे भी दोस्त क्षमा कर। अभिमान से ऊंचा है जिसका सर, उसे भी दोस्त क्षमा कर। तेरा क्षमा से ही सरोकार, तेरा क्षमा से ही सरोकार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। मन की बातें कह दो भगवान को, मन की बातें कह दो भगवान को, उसी क्षण वो बदल देगा तेरे जहान को। यह अमृत की धार है, यह अमृत की धार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। न दोष देना किसी को कभी, न दोष देना किसी को कभी, अपने हालात तुम बदलो अभी। न दोष देना किसी को कभी, अपने हालात तुम बदलो अभी, यह परिवर्तन का आधार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। अपने दर्द को जानो, कार्य करो, अपने दर्द को जानो, कार्य करो, स्वयं में परिवर्तन कर आर्य बनो, स्वयं में परिवर्तन कर आर्य बनो। इसमें जहर का उतार है, इसमें जहर का उतार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। क्षमा करते ही अच्छा महसूस करो, इसी से अपना जीवन महफूज करो। क्षमा करते ही अच्छा महसूस करो, इसी से अपना जीवन महफूज करो। ये सुखों का संसार है, ये सुखों का संसार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है। ये बड़े फायदे का सौदा है, क्षमा बड़ा ऊंचा ओहदा है, ये बड़े फायदे का सौदा है, क्षमा बड़ा ऊंचा ओहदा है, ये बड़ा सुंदर श्रृंगार है, ये बड़ा सुंदर श्रृंगार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है, क्षमा मुक्ति का द्वार है।
2: एक बैरबानी आपका गरगदड़ी ने कहवा लगी, बोला जी आजकल डिगीपति महाराज को मेलो भर रो छे, बोले मन मेला में ले चलो। तो बोला के चल, तो काई में बैठ चला, बोला जीप में चला, बस में चला, काई में चला। बैरबानी बोली के मैं तो जीप में कौन बैठू साहब, आजकल भीड़ बहुत चल रही है। तो काई में बैठे, तो मैं तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल पे बैठू। तो देखो काई करीजे, आ गया तैयार जावा भी डिग्गी के,

मुंडा को तेल बीत को गेला में देखो कहीं बात बने बेरबानी कहबा लगी कहबला तेल तो गला ले होंडा में तो क्या गलावे देखो अरे नतड़ी बेची मारी पायल बेच दे अरे डोला तेल

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या है ऐसी बातें जिसे हम कहें जीना इसी का नाम है। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोड आते हैं और उसको हम कैसे सामना करते हैं उसे हम आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं और उनका जीवन एक आदर्श बन जाता है। चलिए कुछ ऐसे ही अनुभवों से और उदाहरणों से आज हमारे बीच में है आदरणीय गंगाधर बाई जी। आप पिछले 5 दशकों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 4 दशकों से अधिक समय से अब अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में गंगाधर बाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन का भी बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत।
1: शुक्रिया भाई जी। हम सबसे पहले आपकी वो जर्नी जानना चाहेंगे जो आपका बचपन है, कहाँ पे बीता, आपकी मात पिता क्या कर रहे थे, आपकी जो लौकिक जीवन है और फिर वहाँ से अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे आई।
2: मेरा जन्म एक छोटे से गांव गुजरात में भुज कच्छ में नखत्राणा में हुआ और बचपन में हमारे जो घर में एक स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे हम सभी। हम गीता पाठी थे और हमारे घर में हमारे पिताजी और हम सभी कुटुंब में बहुत अच्छा एक नियम था कि गीता का पाठ पठन करना है और पाठ पठन करने के बाद ही भोजन मिलता था। तो हमें भी वो नेचुरली वो संस्कार, हमें वर्षे के रूप में भगवान को याद करना और उसके बाद ये भोजन करना, ये बचपन से ही संस्कार। और फिर हमारी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के बाद मैं एसएससी तक, एसएससी मैंने टॉपर किया गुजरात में ही। गुजरात से फिर मैं वहाँ से जाना हुआ, हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में फिर अहमदाबाद के पास में एक धनसुरा करके गांव है आज मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट के बाद में, तो वहाँ हम रहे और वहाँ टॉपर करके फिर अचानक हम व्यवसाय हमारा नागपुर में था, परिणाम स्वरूप मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और पहले मेरा कॉमर्स साइंस था, फिर मैंने कॉमर्स किया क्योंकि व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय का भी काम संभालते थे और पढ़ाई भी पढ़ते थे। ऐसे में भक्ति मार्ग का जो संस्कार था कि हम वहाँ पर एक केंद्र चलता था स्वाध्याय परिवार का, जो पांडुरंग आठवाले जो बॉम्बे में उसका मेन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर जब हमारे घर में कोई ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन हमारे गांव में ही पूरे ऐसी शिक्षा नहीं थी, जो अपने जो भी खेती बाड़ी का वो सारा व्यवसाय करते थे, लेकिन मैं ही एक ऐसे, मेरे को बहुत रुचि थी पढ़ाई में तो मैं फिर वहाँ जाके पढ़ाई भी किया और साथ साथ धंधा भी।
1: उस दौरान घर में आप अकेले थे या आपके और भाई बहने भी थे?
2: हाँ, घर में हम 4 भाई और 3 बहन है हमारे पिता के संतान थे और मैं सबसे छोटा था। और हाल ही में हमारे कोरोना काल के दरमियान हमारे 2 साल में 3 भाइयों ने शरीर छोड़ा। माता पिताजी ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया और व्यवसाय भी चल रहा था तो, और मैं तो यहाँ आ गया था और सभी अच्छे व्यवसायी घराने के, अभी एक उसके बच्चे हैं, सभी व्यवसाय करते हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई व्यवसाय किसी का नागपुर में और कोई एक में फार्म हाउस है जहाँ गुजरात में,
1: मतलब सभी बिजनेस करते।
2: हाँ, सभी बिजनेस करते हैं। और हम गीता पाठी होने के कारण हम वहाँ फैक्ट्रियों में जहाँ हमारा व्यवसाय था तो बुधवार की छुट्टी रहती थी और वो छुट्टी रहने के कारण हम लोग गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक घर में जाते। हमारे एक उसको भाई कहते, जो हमारा बड़ा लीडर था तो वो भाई कहते थे उसको, स्वाध्याय परिवार में भाई कहते, तो बहुत अच्छा था। और हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हर बुधवार को वहाँ जाके गीता के बारे में प्रसार प्रसार करना, बताना, ये सब करते थे। लेकिन ऐसे में भक्ति भाव तो थी और हमें समाज में हमारा बहुत नामाचार भी था, क्योंकि हम पढ़ाई भी पढ़ते थे और भगवान का नाम लेते थे, तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि ये तो बहुत अच्छे लड़के हैं, देखो भगवान का नाम लेते हैं, गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे में फिर एक समय ये हुआ, अच्छा लगता था, लेकिन जब एक दिन में शाम को करीब 6-7 के बजाय होगा, मैं एक ऐसे जा रहा था तो वहाँ एक छोटा सा एक जिसको ब्रह्मा कुमारी इसकी पाठशाला कहते हैं, पाठशाला के रूप में वहाँ था, जहाँ हम रहते थे उससे दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। तो वहाँ लिखा था कि अभी दुनिया का परिवर्तन होगा और सत्युग आएगा, और ऐसे स्वस्तिक का चित्र बना हुआ बाहर में ऐसे बड़ा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ ज्योतिषी वगैरह होंगे, तो मैं 7 बजा था तो जा रहा था, अंदर कुछ लोग बैठे थे, लाल लाइट लगी हुई थी और अंदर 30-40 भाई बहने होंगे और वो योग कर रहे लाल लाइट में, और बड़ा अच्छा। पहले ही जैसे मैं प्रवेश कर, और बहुत पुराना घर था, जैसे जर्जरी भूत के अवस्था में, लेकिन अंदर क्लास अच्छा चल रहा था, तो मैं भी पीछे बैठ गया। बैठ जाने के बाद थोड़ा टाइम हुआ, 2-3 मिनट ही हुआ होगा, और लाल लाइट में से वाइट लाइट हो गई, और सामने एक भाई था जो बैठा था संदली पर, तो उन्होंने उठा तो सब जाने लगे, तो मैं भी जाने लगा। तो संदली पर जो भाई था, जिसका नाम गजानन भाई थे, अभी भी है वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे आप कहाँ से आए हो, जैसे नए कोई आते हैं तो पूछते हैं ना, तो मुझे भी पूछा कि आप क्या करते हो, किस लिए आए हो, क्या है, जो भी है। और मेरे को बोले आपको 5 मिनट थोड़ा हमें टाइम दीजिए, मैं ये हमारा ये चित्र लगा है वो, मैं क्योंकि दीवारों में चित्र लगे थे जिसको ब्रह्मा कुमारी का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम में वो चित्र है वो सारा लगे हुए थे, तो बड़े व्यवस्थित लगा हुआ था, एक आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, फिर सर्व आत्माओं का पिता, उसके बाद जाड़, उसके बाद सीढ़ी, और इस तरह से लगा हुआ। तो मुझे वो समझाने लगे, तो पहला तो आत्मा, चलो आत्मा ठीक है, फिर परमात्मा का परिचय दिया, वो भी ठीक है, क्योंकि चित्र में स्पष्ट दिखता भी था और हम भी गीता पाठी होने के कारण वो सारी हमें समझ में आती थी बात। फिर आगे जाके ऐसे चलते चलते जाड़ का, ये सृष्टि का उत्थान पतन की कहानी, सीढ़ी में जो भारत कैसे ऊंचा था, बनता है, नीचा होता है, ये सारी बातें आई। फिर एक बहुत सुंदर चित्र हमारे मेरे मन पसंद का आया, जिसमें एक गीता के बारे में लिखा था, उसमें लिखा था गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। तो जब ये बात आई तो हम गीता पाठी होने का मेरा ध्यान वहां गया, और उसमें बहुत सुंदर चित्र बताया हुआ कि एक परमात्मा की किरणें आ रही है, नीचे एक शक्ति दल खड़ा है और प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ है, और ऐसे सामने में राक्षस जा रहे हैं इस तरह से। तो वो बड़े चाव से बताने लगा कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कोई युद्ध नहीं है, ये तो हिंसक है। भगवान अगर हिंसक का ज्ञान देता है या समझ देता है तो फिर हिंसा करने वाले को तो कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बात मुझे अपील की, भाई अहिंसक युद्ध। फिर उन्होंने सारी बातें कही कि जो हम मन से जो सोचते हैं, देखते हैं और जो करते हैं, जो विकृत मानसिकता को लिए हुए चलते हैं, इसको भी हिंसा कहते हैं। ये बात मुझे ज्यादा अपील करी, और मुझे तुरंत याद आया कि हम तो गीता पाठी है, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हम एक घर चॉइस करते थे और वहाँ गीता ज्ञान करने जाते थे। तो एक तरह से हंसी की बात तो ये हुई कि समझ में आई कि मुख मेरा बगल में छुरी वाला काम हम करते थे, कि मन में हमारी कुछ विकृत भावना, क्योंकि हम यंग

0: कोर्स की समझानी है उसमें, तो वो मुझे दिया, तो मैं फिर लेके गया घर कि पढ़ाई तो करते थे, तो रात को जैसे ही उस किताब को मैंने लेके पढ़ने लगा तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बात तो सही है। अब भूल कहाँ हो रही है, ये बात मन में गूंजती रही, अरे यार ये तो मेरा मन में अंदर एक है बाहर एक है, ये बात बहुत खटकती रही, भगवान के नाम से मेरा पाप हो, भगवान के नाम से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे श्रापित करेंगे, तो ये बात रात को
1: क्यों लगा आपको?
0: मुझे इसलिए लगा क्योंकि भक्ति मार्ग में अच्छा है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में हम स्थूल रूप में सब करते हैं, और स्थूल रूप में जैसे तिलक लगाया, थोड़ा सा अच्छे मीठा बोल बोला, तो लोगों को लगता है कि भक्ति भाव वाला आदमी है, तो लोगों की श्रद्धा होती है तो हमें आदर सत्कार से देखते हैं। लेकिन ये जैसे ही फिर मैंने ये बात आई कि भाई ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, तो फिर मैंने 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया, लेकिन ये सारा अच्छे से फिर से पढ़ा, ऐसे 2-3 दिन पढ़ा, और पढ़ने में ये बात समझ निष्कर्ष तक पहुंचा कि नहीं आज के बाद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए,
1: मतलब इनसाइड आउट होना चाहिए, हाँ, जो अंदर है वही बाहर,
0: अभी
1: एक मुखौटा पहन करके नहीं,
0: मुखौटा पहन कर देने से तो खुद को भी धोखा है और समाज को भी धोखा है, और एक अच्छा कर्तव्य नहीं मानेंगे ना। तो ये जो बातें आई सामने, उसके बाद मैंने स्टडी करके कोर्स तो करने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारा व्यवसाय था, तो सुबह सुबह फैक्ट्री खोलनी है और फिर शाम को लेट होते थे, तो इस तरह से, और दिन में कॉलेज जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ये करना चाहिए, ये ठीक नहीं, ये मन में अंदर ही से विचार आया और अंदर दृढ़ किया नहीं अभी मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये जीना चाहिए, संस्कार थे भक्ति भाव के, तो फिर ये ज्ञान मिला और ज्ञान को फिर उसको श्रवण करने लगे और समझ में आया तो अब बड़ा एक ये ज्ञान ऐसा रियल में जीना जीवन तो बड़ा चमत्कारिक है, जैसे जीवन एक मृदुभाषी जैसा हो जाता है, बहुत साइलेंटली चलना, अनावश्यक चीजों को अपने आप ही दरकिनार हो जाती है।
1: सो जिस तरीके से आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से वही गीता पाठी भक्ति मार्ग में करते हुए भी आपको दोनों में अंतर समझ में आया, और प्रैक्टिकली लाइफ क्या है, प्रैक्टिकली गीता क्या है वो आपको समझ में, तो गए तो आप अकेले, वो स्वस्तिक ने आपको अट्रैक्ट किया और ज्योतिष समझ करके गए, फिर जब आपके घर में ये पता चला कि आप आश्रम में जाते हैं, तो फिर आपके भाई बहने आपके परिवार वाले इसको स्वीकृति दी या फिर?
0: ये बड़ी कहानी है, बहुत मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं कहा न कि जैसे उसमें चलते थे तो समाज में हमारा बड़ा नाम और आदर थे और लोग हमें बड़े चाव से बड़े प्यार भी करते थे, सम्मान भी मिलता था, कहते हैं ना जब दुनिया की जिस हवा चलती है उस तरफ चलते हो तो जमाना आपको साथ देता है, लेकिन जब खुद को जानने के खुद से चलने लगे तो जमाना सारा विरोध हो जाता है, बस वैसा ही मेरे जीवन के साथ घटा, तो हम चलते थे लेकिन अब उस समय काल में ब्रह्मा कुमारी के सेवाएं इतनी ना होने के कारण मिस भ्रांतियां बहुत थी, तो और हम ये चलने लगे रेगुलर मुरली सुनने लग गए, तो बाबा की जो मुरलियों बड़ी जादुई है, जादुई इन द सेंस बड़ी स्पष्ट है जैसे कि दर्पण है, तो वो बहुत खिंचाव होता था बाबा का क्लास और योग ना करे, वो जैसे कि अंदर से जैसे बेचैनी होती थी, मतलब
1: परमात्मा को याद करना और महावाक्य
0: सुने बिना मना बेचैनी, और मजे की बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें या तो शाम को क्लास होता है या तो सवेरे अर्ली अर्ली होता है, योग भी अर्ली अर्ली होता है, और हमारा भी समय था वो भी कारखाना खोलना जो भी है व्यवसाय का, लेकिन बाबा की खींच ऐसी होती थी कि हम मुरली सुने बिना तो रह नहीं सकते थे, तो अब क्या करें, तो और ये जीवन में जब ऐसा धारणा हुई और चलते रह गए और पढ़ाई करते थे, तो मेरे जो दोस्त साथी थे तो उसके साथ भी बैठना उठना होता था, लेकिन वो लोग होटल में खाना फिर वो करना, मैं बोला मुझे भूख नहीं, मेरे पेट में ऐसे ऐसे मैं अवॉइड करता था, मन में ये था कि नहीं मुझे नहीं, क्योंकि परमात्मा मुरली में ये बताते थे कि अन्न वैसा मन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये बहुत स्पष्ट आता था।

0: और कभी कभी इसी टॉपिक पर 10-10, 15-15 दिन वही मुरली की धारा चलती। इसलिए आप भगवान की सुने, निश्चय हो गया तो फिर
1: जी। तो अभी भी वो लोग आपको विरोध करते हैं या फिर वो सहयोगी है आपकी?
0: विरोध तो बहुत हुआ, ये बात थोड़ी मैं अगर
1: जी
0: तो मैं बता दूं, तो ये जब प्रत्यक्ष हुआ तो अभी ये ज्ञान में चलने से ये सारी नकारात्मक जो प्रवृत्ति है जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो कहीं कहीं घर वालों को ऐसा लगा, अरे ये तो पढ़ा लिखा बच्चा हमारा, किसी ने कुछ जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया ऐसे करके। तो हमारा बड़ा भाई के साथ, हाँ हमारे एक पिताजी तो गुजरात में रहते थे, फिर कभी आते थे कभी जाते, तो बड़े भाई ने हमारे पीछे CID लगाई थी।
1: अच्छा।
0: तो CID ये लगा दी कि उनको थोड़ा लगा कि थोड़ा ये हमारे अनुसार तो इनका जीवन नहीं दिख रहा है, बड़ा साइलेंट रहता है और अपने में मस्त रहता है। तो कहते हैं ना कि इसका स्क्रू ढीला हो गया। तो उसी तरह से एक मान्यता होने के कारण उसका भी अच्छा स्नेह था। स्नेह इसीलिए कि कोई भी बड़ा है जो जहाँ हम गार्डियन है, वो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे का इस तरह से कुछ हो जाना। तो उसने तहकीकात करने के लिए ऐसे लगा दिया 4-6 लोगों को और फिर ये सब चीजें। लेकिन वो सुबह सुबह मैं जाता था तो पता तो चल जाता था सुबह कहीं जा रहा है, तो पीछे पीछे पता है, वो तो सोए रहते थे, मैं निकल जाता था। 6:30 से 7:30 मुरली चलती, तो 6:30 के पहले 6 बजे योग में जाना होता, आधा घंटा बैठना है। तो मना मैं 4:30-5 बजे स्नान पानी आदि करके, तो ये लोगों को अलग लगता था, वो लोग सोए और मैं तैयार होकर चला जाता, तो वो बदलाव उसको पता चला। तो बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया कि उनको पता चल गया कि ये तो ब्रह्मा कुमारी। तो ये कहते कि ब्रह्मा कुमारी ये कौन सा धर्म है, ये तुम, हम तो लक्ष्मीनारायण के वंशज है, हम लक्ष्मीनारायण की पूजा करते हैं। हमारे घर में अगर आप यहाँ से कच्छ के साइड में जाओगे तो वहाँ हर गांव में लक्ष्मीनारायण के बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, तो लक्ष्मीनारायण का ही हम वंशज है, तो लक्ष्मीनारायण की पूजा करना चाहिए देवी देवताओं। तो उस तरह से चलता था। तो फिर ये तो बदलाव आ गया, तो उन्होंने फिर मेरे को बाधित करने की कोशिश की। लेकिन बाबा की ये बात मैंने, वो जो हमें मुरली सुनाते थे, उस भाई को बताई कि हमें ऐसा विरोध करते हैं और इस तरह से बात है, और यहाँ तक भी नहीं रुके, मारपीट भी करते, छोटा थे और वो उसका हाथ, तो हमें जब वो मारते थे हमें बाबा की महावाक्य याद आता कि किसी का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पिताजी आपको बंधन है, तो उनका चश्मा जिस परंपरा से जिए उससे थोड़ा अलग दिखते, तो उनको वो भाव से कि भाई इनका कल्याण ना हो, बड़ा हो के भाई इनका जीवन खराब ना हो, तो उस भाव से करते। तो हमारे मन में मारते थे थोड़ा बहुत, तो हमें बुरा नहीं लगता था, कुछ बोल दिया, थोड़ा अपशब्द कह दिया, वो कर दिया, तो मतलब वो तकलीफ नहीं होती थी। तो हमें वो बाबा कहते वो राम की भावना रखो, इनको पता नहीं हमें कौन मिला है, वो ज्ञान ऐसा जैसे कि हमें तो भगवान मिला है, और हम भगवान को जान गए, ये तो अभी तक ये भक्ति मार, इस तरह से मन में आ जाता था और गुस्सा रिएक्ट नहीं करते। परिणाम स्वरूप ये बढ़ता गया। फिर हम जो हमारी समाज है जो पटेल कास्ट, तो वहाँ क्या हुआ कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो घर में उठ के तो विघन बढ़ते गए, बहुत मारपीट तक आ गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे सारे समाज में हमारी वॉच रखने की कि भाई ये तीनों को मिलने नहीं देना। तीन भाई थे, तो आपको मेरे पूर्व में आपको आप जानते होंगे कि हम वसंत भाई करके थे जो संगम भवन में, वो भी नागपुर से थे, और ऐसे एक रामजी भाई करके थे, हम तीन कुमार निकले, और बड़ा नशा था बाबा के ज्ञान के लिए। तो अब क्या करें, तो हमारे बीच में सबको एक अनाउंसमेंट कर दिया कि ये तीनों अगर मिलते हैं पढ़ाई के नाम से, हम घर में नहीं सोने के बदले हम बाहर सोने लगे, मना फैक्ट्रियों में एक रूम होता था तो हम वहाँ सोते थे, क्योंकि हमने बहाना बनाया कि हमें पढ़ाई करना है तो हम रात को पढ़ाई करते हैं, तो हम वहाँ सोएंगे फिर सुबह आएंगे नाश्ता पानी। लेकिन हुआ क्या, बहुत वंडरफुल बात ये हुई कि हम पढ़ाई के नाम से जो भाई ने हमें गाइडेंस दिया था, तो कि जो अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो आपको 2 से 5 योग कर, तो तुम्हारा विघ्न सारे भगवान खत्म कर देंगे। ये भाई हमने गीता पाठशाला जो चलाते थे उन्होंने बताया। अब 2 से 5 योग करना है तो हमने ये बहाना बनाया कि हम घर में नहीं रहेंगे पढ़ाई के अर्थ, वो उनकी फैक्ट्री में रहता था, वो उनकी फैक्ट्री में ना, मैं मेरी फैक्ट्री, ऐसे करके सुबह 2 से 5 योग स्टार्ट किया। और कहाँ करते थे, गीता पाठशाला, हम करीब 25 कुमार थे, तो ऐसा उन्होंने 25 हाँ इसका विघन है तो योग करें, तो हम करते थे। हमने लगातार 3 साल विदाउट फेल 2 से 5 योग। उस दौरान की बहुत अच्छी एक घटना घटी प्रत्यक्षता की, कि तो फैक्ट्री में जहाँ हमारा माल आता है, जो वुड प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्री थी, तो रात को गाड़ियाँ आती थी, तो उसका कागज लेना होता है और सारा, और वहाँ चौकीदार भी होते हैं, तो मैं 2 बजे गाड़ी आई होंगी, 2-3 बजे हम तो चले गए योग करने, तो पीछे से जो गाड़ी आई तो मैंने कागज लिए नहीं, तो सुबह जब हमारा बड़ा भाई जब ऑफिस में पहुंचे फैक्ट्री में, तो कह के भी वो कहाँ थे, जो मेरा छोटा भाई यहाँ रहता है, तो वो तो रातों पढ़ाई करने जाता है, हम जाते थे योग करने, तो तीनों भाई अपने फैक्ट्री में वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे। तो ऐसे करके फिर ये प्रत्यक्षता हुई, और फिर जो हमारी सारे विरोधाभास और खलबली मच गई सारे, और ये ऐसा है वैसा है, तो फिर भी बाबा की जो आकर्षण थी कि मुरली मिस नहीं करना, मुरली के बिना खाना नहीं खाना, योग करना, इसी से तो मूछ बनेंगे और भगवान तुम्हें प्यार करेगा, ये सारी बातें मन में गूंजती रहती थी, तो उसके कारण हम जाते थे। फिर एक दिन सुबह क्लास कर रहे, तो मेरा पिता भाई आया, बड़े भाई, और बड़ी लकड़ी एक लेके आया, और मैं पीछे थोड़ा लेट गया था, मैं हमेशा फर्स्ट जाता था, लेकिन उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था, तो पीछे बैठा था, और 35-40 भाई बहन और मुरली चल रही थी, उन्होंने आते आते ही फेल, मैं बस बैठा था पीछे से, थोड़ी सी लकड़ी लगाई और सामने भाई मुरली चला रहा था, वो चौकन्ना हो गया, तो सभी शांत हो गए, मुरली चलाना बंद हो गया, मेरे को मार रहा है, और फिर घसीटते लेके जा रहा है, घसीट के खून निकल रहा है हाथ में से, मैंने थोड़ा सा उनको कि भाई ये चंगुल में फंस गया है, उनका ये प्यार, उनको तो ये पता नहीं ना, तो फिर भी मतलब ठीक है, फिर हम
1: उन्होंने कभी आपसे ज्ञान सुनने समझने की कोशिश
0: उस टाइम नहीं की, क्योंकि उनको तो वो ही परंपरा से जिए थे, तो वो उसे, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद फिर मैं चला गया, लेकिन फिर से हमें नहीं योग मिस नहीं करना, ये विघन अभी जाएगा, क्योंकि भगवान ने बोला 2 से 5 योग करते तो विघन चला। तो वो जो क्लास में जो भाई बहने थे वो कुछ नहीं बोले, योग में बैठ गए सब, वो मार रहे कर रहे छुड़ा रहे, कोई छुड़ा नहीं, और जैसे कि मुझे ठीक है नहीं आओ, तो इस तरह से मेरा आना हुआ, और फिर बाबा से योग लगा के हम ऊंच पद पाएंगे ये मन में नशा रहता था। तो 3 साल हमने योग किया, उसका परिणाम ये हुआ, करीब हम 81 से 83-84 तक हमने ये योग किया, फिर ये सब प्रत्यक्षता होने लगी समाज में, फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, बाबा के बिना तो हम रह नहीं सकते, बाबा की पड़ी खींच, शाम को 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे तो कशिश होती थी कि नहीं सेंटर पे जाना चाहिए, सेंटर एक ही था नागपुर में, और हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर हम एक सीट पूर्व में रहते थे, सेंटर पश्चिम में था, तो पूरी सिटी क्रॉस करके जाना होता था, तो गुरुवार को जाते थे एनी हाउ। तो हम कहते हैं ना यहाँ ब्रह्मा कुमारी की भाषा में ये कहते हैं कि बंधेले कुमार मना है, इसको विघन है, तो माँ बाप से छुट्टी नहीं है।
1: दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कहानी बीच में क्यों रुक गई है, आगे क्या हुआ है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे सवाल है मन में जानने को लिए लेकिन समय की सीमा है कि यहीं पर हम रुकना होगा, और आगे की कड़ी में हम सुनेंगे कि ऐसा क्या जिद था और क्यों उन्होंने इसी जीवन को जीने का ठान लिया है। जो जीवन आमतौर पर सोचते हैं कि बहुत ही कठिन रास्ता है, सांसारिक जीवन को त्यागना, सुख सुविधाओं को त्यागना और सिर्फ एक परमात्मा के प्यार में लीन होना, देश के लिए जीना या मानवता के लिए जीना कितना कठिन काम है, लेकिन इनके लिए बहुत ही आसान लग रहा था और उसके लिए किसी भी हद तक किसी भी चीज को सहन करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। जो अभी तक आपने सुना है गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन की कहानी को, कहाँ से उनको वो प्रेरणा मिली समर्पित होने का, और जब उन्होंने वो संकल्प लिया और वो ज्ञान मार्ग में चलने लगे, किस प्रकार की बाधाएं उनको सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, अभी हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे नहीं जाना 15 अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी लगता है क्योंकि कार्यक्रम का नाम जैसे मेरा गांव मेरा अंचल, जिस गांव और अंचल में हम रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे, वो गांव और अंचल को हमें कभी नहीं भूल पाते हैं क्योंकि अपना गांव स्वर्ग जैसे लगता है। तो सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो प्रतिभा है, जो कार्यक्रम चलता है वो जन जन तक पहुँचे, इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब जाते हैं तो सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आज हमें खुशी है, आज हम आबरोड ब्लॉक से सुदूर रेबदर ब्लॉक में पहुँचे। कोई उल्हा न दे जे रेडियो मधुबन हमारा पास आए नहीं और हमारा प्रतिभा को जन जन तक पहुँचाने के लिए कोशिश नहीं किए, इस उद्देश्य को लेकर आज हम रेबदर ब्लॉक जवाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुँचे। तो बहुत खुशी लगता है क्योंकि सभी को रेडियो मधुबन का साथ लगाव है, जुड़ाव है, और जब अपना आवाज़ को सुनते हैं कार्यक्रम का माध्यम से कहीं पर भी तो वो खुशी जाहिर करते हैं और उनका आवाज़ ही उनका पहचान होता है। तो हमें बहुत खुशी। तो बच्चों का बारी बारी आपको प्रस्तुतियाँ सुनने को मिलेगा, एक का बाद एक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत होकर आए हैं बच्चे। तो देर किस बात की, उनका आवाज़ सुनिए।

0: कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव का नाम है जावल।
1: मेरा नाम है भगवती कुमारी। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय।

0: मेरे गांव का नाम है जावल।
1: मेरा नाम है विष्णा कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव का नाम है जावल।
2: मेरा नाम है काजल कुमार, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरा गांव का नाम जावल है।
3: दया।

मरना वतन पर जाफिदा होना, प्रभु हम को शिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।

0: कहानी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खास कर इस तरह कार्यक्रम में दूर से जवाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का बच्चों को आप सुन पा रहे थे, उनको धन्यवाद देते हैं। सभी को नाम का साथ, जैसे अपना अपना नाम, कौन सा क्लास और कहाँ पढ़ते और किस तरह आगे बढ़कर नाम रोशन करेंगे, बढ़ाकर क्या लक्ष्य रखे वो सब बताए। तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अगला कार्यक्रम के लिए बच्चे हमारे रेडियो गीत का पहला सुने हैं और एक गीत। और बच्चे तो सच्चे होते हैं, महात्मा होते हैं और अपना बात को रखते हैं, और छोटे छोटे बच्चे कम नहीं है, मासूम होते हैं। परियां इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, इतना दूरस्थ जगह से आए तो बच्चे अपना टैलेंट को, प्रतिभा को भी पूरा जी जान लगा कर देते हैं। कोई सूचना नहीं था, कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं, लेकिन अचानक में जब पहुँचे तो अचानक का पार्ट भी एवर रेडी का पार्ट देखने को मिल रहा है। तो पुनः उन सभी बच्चों को स्वागत करते हैं, नाम का साथ अपना अपना परिचय देंगे और विद्यालय का नाम भी बताएंगे। तो लीजिए उन सभी से पुनः और एक प्रस्तुति।
3: मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
4: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
5: मेरा नाम भगवती कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।
6: मेरा नाम है विष्णा कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।

रहे। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाए, ये मेरा पहला पहला प्यार है, ये मेरा पहला पहला प्यार है।

हर मौसम में कैसे भी हालातों में हमारे देश की पुलिस हमारी रक्षा करती है उन जैसा बलिदान हम कभी दे नहीं सकते पर हमारे संविधान लॉ एंड ऑर्डर और हमारी पुलिस का सम्मान करके उनकी मदद तो कर ही सकते हैं ना इतना

एक का बाद एक प्रस्तुति आपको सुनने को मिल रहा है और आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। खासकर विद्यार्थी विकास और बच्चों का टैलेंट जब प्रतिभा खोज है उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और शिक्षकगण भी बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। सभी अपना अपना आवाज़ को बुलंद से जितना हो सके, ना ज़्यादा ना कम, अपना आवाज़ को दे रहे हैं। तो और एक प्रस्तुति के लिए रेडी सही बच्चे? ओके, शुरू करिए बच्चे, रेडी। आपका नाम का साथ सभी अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास में, तब तक पता चलेगा हमारा बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं और क्या बोलने जा रहे हैं। तो वो सबको भी पता होना चाहिए और जो लिसनर हमारा सुन रहे इस कार्यक्रम को वो भी ध्यान से सुन रहे हैं अपना वॉल्यूम को तेज करते हुए। तो लीजिए अगला प्रस्तुति।

जवाब जब मैं कबूतर निकली असली कलो रे ली असली कलो रे, मांगया सिंपल वाटर है लाया अनपट टमाटर है, मांगया सिंपल वाटर है लाया अनपट टमाटर है, लव यू के तू दबकावे लव यू के तू दबकावे, जर खम्मा आली कर से उमर गोल्या मर जाना डड्डी।

रे उमर को लिया मर जान डाडी में काली कर से मांगया सिंपल वाटर है लाया पर टमाटर है लव यू के तू दबगावे लव यू के तू दबगावे जड़ी खम्मा याली कर से उमर को या मर जाना डी में काली कर से।

मारी गाडी को डिलेवर, गाडी को डिलेवर हरदम लेवे मातू पीवर, गाडी को डिलेवर हरदम लेवे मातू पीवर। चक्कर को वारो मर से टर कालो, मारी गाडी को डिलेवर, गाड़ी को डिलेवर हरदम लेवे मातू पीवर, गाड़ी को डिलेवर हरदम।

0: गुड डिलीवर।
1: क्या बात क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति दिए। और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर नाम रोशन करते हैं, तो धन्यवाद देते हुए और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

0: तो ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं। और बच्चे तो पहले मैंने बताया सच्चे होते हैं, महात्मा होते हैं, और इस तरह कार्यक्रम कोई मोबाइल से सीखते हैं, कोई बड़ों को देखकर सीखते हैं, कभी कोई कोई स्कूल में आकर, विद्यालय में आकर भी अपना आवाज़ को रोक नहीं पाते हैं। बड़ों को देखकर छोटे बच्चे सीख जाते हैं, छोटों को देखकर भी बड़े बच्चे सीख जाते हैं, ये उनका जादूगरी है। तो लीजिए और एक प्रस्तुति।
1: बोरनो लगा के चुनर ओडे चुनर जी, बल्लम लायो मेरो, लायो मेरो भोर चुनर जी, बल्लम लायो मेरो, यो मेरो भोर चुनर जी, अरे मेरी चट्टिया लेगी, अरे मेरी चट्टिया लेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी नुए चलेगी, अरे मेरी चट्टिया लेगी, मेरी चट्टिया लेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी नुए चलेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी दुए चलेगी।

0: दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लयम।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। और सही में बच्चे तो है ही शरारत परियां हैं, और कम उम्र में ही इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी में जब आते हैं, रेडियो पे उनका आवाज़ जब सुनते हैं, तब तो तुतला आवाज़ में हमें खुशी लगता है। और हमारे श्रोता मित्र भी उसके ऊपर लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414151415। ये रेडियो मधुबन का नंबर है, मेरा गांव मेरा अंचल का नंबर है। इसमें आपका भाव को, भावना को भी, आपका विद्यालय में हो चाहे आपका गांव हो, अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही है उसको जानकारियां देना चाहते तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे

0: को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तो ये होगी अंतिम प्रस्तुति और सभी बच्चों को तो अंतिम में ही बहुत सुंदर प्रस्तुति देने के लिए तैयार है, क्योंकि अंतिम तो उनके लिए नहीं है, कि हमारा जो समय को देखते हुए अंतिम प्रस्तुति की और हम चल रहे हैं। सभी को पुनः स्वागत करते हैं। नाम और क्लास का साथ साथ कौन सा फले, कौन सा ढाने में, कौन सा गाँव से आते वो भी बताएंगे, तो लीजिए उनसे सुनिए।
3: मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
4: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
5: मेरा नाम भगवती कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।
6: मेरा नाम है विष्णा कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव

0: रे गड़ा, ओ बंसा बारे गड़ा, चार चार झूलला रे, पड़िया बनी सर अट जीन, बनी सर अट जीन।
1: वाह वाह वाह वाह, तालियों का साथ सभी बच्चों को उमंग उत्साह दे रहे हो, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा का योग्य है। इस कार्यक्रम का माध्यम से बच्चे बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं और इस सब का श्रेय विद्यालय को जाता है, स्वयं को जाता है और माता पिता परिवार को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह भराते हैं और जिसका चलते बच्चे भी भाग ले पाते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खासकर आज दूरस्थ जगह रेबदर ब्लॉक में पहुंचे, जो कि जवाल गांव में पहुंचे और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये आवाज़ है। तो सभी को नाम का सा धन्यवाद देते हैं, पुनः आभार व्यक्त करते हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। कार्यक्रम का वक्त है जीवन रोशनी का, और हर बार की तरह आज हमारे मध्य एक एक्सपर्ट है जो सीनियर राजू का टीचर है। प्रीति दीदी जी, आप हो से हैं, आप एक शिक्षक रह चुके हैं, बचपन से आप आध्यात्म से जुड़े हैं। 2007 से आप सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनेक कन्याओं के जीवन आपने परिवर्तन किया है, बहुत सारे यूथ को आपने मोटिवेट किया है, और अनेक परिवारों की जिंदगी आपने बेहतर किया है अपनी आध्यात्म के माध्यम से। तो आज बहुत ही भाग्य की बात है, दीदी हमारे साथ है, प्रीति दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे गाने के बारे में। इस प्रोग्राम में हम गानों के बारे में चर्चा करते हैं, जो गाने हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली से समझने की कोशिश करेंगे। कवि प्रदीप जी की एक रचना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इस गाने के बारे में जानेंगे। जैसे पंक्तियों में लिखा हुआ है कि सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हम देखते हैं कि सूरज चांद भी बदल चुके हैं, तो प्रदूषण की मात्राएं भी बढ़ गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इंसान के साथ साथ ये प्रकृति में बदलाव क्यों?
1: एक्चुअल में जब ये गीत बना था, मे बी 1958 में, ये प्रदीप कुमार जी का गाया हुआ और रचा हुआ गीत है। उन्होंने 1947 के बाद, 1947 के बाद जो भारत की हालत थी, उसी को देखते हुए ये गीत बनाया था
0: जी।
1: लेकिन आज धीरे धीरे उससे भी बदतर हालत हो गई है।
0: हाँ जी।
1: क्योंकि गीत के बोल तो है, ना बदला सूर्य ना बदला चंदा, है ना, चांद भी नहीं बदला, आसमान भी नहीं बदला, सिर्फ इंसान बदला है।

0: लेकिन वास्तव में आज तो वायुमंडल भी बदल गया
1: जी।
0: अनचाही बरसात, अनचाहा जो है कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा, फ्लड, ये सब चल रहा है। ये कहीं ना कहीं इसका दोष जो है ना वो मनुष्यों पर है। बढ़ती हुई संख्या और उसके साथ लोभ
1: जी,
0: लोभ वृत्ति के कारण, कारखानों की बढ़ती संख्या या जंगलों की कटाई, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे पोल्यूशन तो बढ़ा, जिसका प्रभाव पड़ा प्रकृति पर। और इंसान भी प्रकृति का ही बना हुआ है, एक मनुष्य का शरीर भी पांच तत्वों से बना है, तो उसी पांच तत्वों का प्रभाव जो है उसके मन पर भी प्रभावित कर रहा है
1: जी।
0: आज मन जो है ना वो सब का ही नेगेटिव दूषित हो गया है, क्योंकि इंसान में अगर बदली है तो उसकी सोच बदली है, और वो सोच बदलने के कारण ही ये सब चल रहा है।
1: तो हमारे सोच का असर ये प्रकृति पर पड़ता ही है।
0: जी जी जी, पड़ता ही है। जैसे एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं
1: जी।
0: कहते एक बार कहीं गेहूं का ट्रक जा रहा था, तो ड्राइवर को पता नहीं चला, तो उसमें से गेहूं का एक बोरा नीचे गिर गया, सड़क पे गिरा, तो वो तो चला गया, ट्रक वाला तो चला गया। तो कहते वो बोरा नीचे गिरा, उसका मुंह खुल गया, उसमें से गेहूं बाहर बिखर गई। बिखरी गेहूं को देखकर एक गाय आई, थोड़ी देर तक उसने उस जो है गेहूं को खाया, जब उसका पेट भर गया वो चली गई
1: जी।
0: फिर थोड़ी देर में कबूतरों का झुंड आया, उन्होंने भी थोड़ी देर अपना दाना चुगा, जब उनका भी पेट भरा वो भी चले गए। लेकिन तीसरी बार एक इंसान आया
1: जी,
0: और इंसान ने आते ही क्या किया होगा, आप सोच सकते हो,
1: कि
0: उन्होंने उसी बोरे को अपने कंधे पे डाला और अपने घर में ले गया
1: जी।
0: आज जीव जंतु, पशु पक्षी, उनको चिंता नहीं है कल क्या होगा, क्या खाएंगे, लेकिन आज इंसान की वृत्ति ऐसी हो गई है, जो लोभ है, लालच है, उसका प्रभाव जो है वो सब जगह दिखाई दे रहा है
1: जी। बिल्कुल, तो इसका असर प्रकृति पर भी पड़ रहा है। और इसके बाद कुछ लाइन्स इस प्रकार से है कि समय जो है वो बड़ा बेढंगा सा है
0: जी।
1: और आदमी जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसको कवि जी ने कहा है लफंगा, और कहीं पे हम झगड़ा देख रहे हैं, और कहीं पे हम पोस्टर्स पर भी देख रहे हैं कि हम अश्लील तस्वीरें देख रहे हैं
0: जी, जी।
1: और कहते हैं कि तस्वीर अश्लील है उस बिना कपड़े के, और उस पोस्टर के नीचे जो आदमी सो रहा होता है वो भी बिना कपड़े के भी आजकल हम देख रहे हैं
0: जी, जी, जी।
1: तो ये जो दौर है, और कहते हैं कवि जी यहाँ पर कि छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान है
0: जी, जी, जी।
1: कितना बदल गया इंसान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या कहना है?
0: वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी दिख रहा है। वास्तव में हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार ये बोला गया कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया
1: जी।
0: ये हमारा एक बहुत बड़ा स्लोगन है, लेकिन आज इसके ऑपोजिट हो गया
1: जी।
0: आज बोलते हैं कि धन गया तो सब कुछ गया, हेल्थ गई तो थोड़ा ही कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया
1: जी।
0: आज चरित्र का पतन हो गया, क्योंकि मोरालिटी चाहे यूथ है आज, वो शायद वो फिल्मी दुनिया का असर है, या शायद वो ये कलयुग का प्रभाव है
1: जी।
0: कि उनकी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि उनको लगता ही नहीं कि वो रॉन्ग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं
1: जी।
0: तो ऐसी वृत्ति का कारण ये है, कुछ तो मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, या जो खुलापन आ गया ना, उस करके आज इंसान जो है वो अपनी कथनी करनी को भी बराबर नहीं कर रहा, और उसकी सोच भी, उसके कर्म भी, उसका व्यवहार भी सब चेंज हो गया है। इस करके कवि ने शायद उस टाइम लिखा था कि इंसान लफंगे की तरह हो गया है, लेकिन मोस्टली मेरे को तो ये लगता है कि आज हर इंसान जो है वो वैल्यूलेस होकर, बाहरी रूप से तो वो सुंदर दिखता है, पर्सनैलिटी का ध्यान रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुणों की कमी, कहीं ना कहीं मोरालिटी की कमी, कहीं ना कहीं उसके अंदर ना मानवता खो गई है, स्वार्थी हो गया है, जिस करके दुनिया की ऐसी हालत होती जा रही है
1: जी। तो वास्तविक में खुलेपन का अर्थ क्या है?
0: खुलेपन का अर्थ है कि आज जो शिक्षा भी दी जा रही है उसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज तो है ही, पहले बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जिसको पर्दे में रखा जाता था, जिसको कहा जाता था कि ये बातें तो अंदर करने वाली है
1: जी।
0: लेकिन आज उसी को ही जो है आज का यूथ है, आज के बड़े हैं, उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर का प्रभाव आ रहा है
1: जी।
0: उस चीज का प्रभाव, कहां हम सोचते थे कि जब बच्चा 14-15 साल का होता था तब उसको अपनी फिजिकल चेंज के बारे में नॉलेज होती थी, लेकिन आज एक छोटे बच्चे को भी, 5 साल 6 साल के बच्चे को भी फिजिकल की नॉलेज, अपनी बॉडी की नॉलेज और हर बात को वो समझता है। कहीं ना कहीं कारण उसकी मानसिकता को बदलने का या तो टीवी रहा है, या फिल्में रही हैं, या मोबाइल का रोल रहा है, या जो आज रोल मॉडल है वो हमारे सामने कोई नहीं है, जो रोल मॉडल दिख रहे हैं उसी को ही वो फॉलो कर रहे हैं।
1: जी, जो बच्चों को हम अगर सेक्स एजुकेशन की भी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये होना जरूरी है, आपको क्या लगता है आज के मंजर को देखते हुए छोटे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को?
0: जो गर्ल्स हैं उनको जानकारी के लिए बताना जरूरी है, वो भी बैड टच और गुड टच के बारे में।
1: जी,
0: बाकी उनको इतना विस्तार में जाने की या पहले से एडवांस नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो यही लगता है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक वे से देखें तो 12 साल के बाद ही हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं।
1: जी,
0: उसका इफेक्ट बॉडी पे दिखाई देता है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो हमारे बालक है, दोनों पे दिखाई देता है। लेकिन उसकी नॉलेज देना एक पेरेंट्स का, एक टीचर का, वो तो उसकी ड्यूटी है।
1: जी,
0: लेकिन उसको डीप नॉलेज देना, उससे उसके माइंड को डाइवर्ट करना, उसके मन को दूषित करना, ये रॉन्ग हो जाता है। कहीं ना कहीं खुली सोच ने भारत को बहुत ज्यादा पतन की ओर ले जाना शुरू कर दिया है।
1: जी बिल्कुल, तो दीदी ने जैसे कहा गुड टच और बैड टच के बारे में ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना देना जरूरी है उतना ही देना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम छल कपट वाले इंसानों को देखते हैं हमारे इर्द गिर्द भी, जिनकी जीत होती हुई हम देखते हैं, तो हम खुद घबरा जाते हैं या फिर हम खुद लो फील करते हैं, तो उस समय हम

0: बैड किए, बहुत बुरे हुए, वो लास्ट में कहते हैं नहीं नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे आगे भुगतना पड़े, वो नाना करते आता है
1: जी।
0: इसलिए यहाँ वो हमें सीधा साधा सरल दिखता है, लेकिन पास्ट में वो अपने बहुत बुरे कर्म करके आया है, नाना करके आया, तोबा करके आया है
1: जी।
0: जिस करके आज वो हमें बिल्कुल सरल साधारण दिख रहा है, लेकिन पीछे जो अच्छे करके आया है वो निश्चिंत होके आया है, इसीलिए वो आज छल कपट कर रहा है, क्योंकि उन्हीं कर्मों के आधार पर। जैसे सपोज करो किसी का बैंक बैलेंस जो है बहुत ज्यादा है, तो वो सोचता है मेरे बैंक बैलेंस में तो बहुत पैसा है, चाहे मैं कहीं भी खर्च करूं
1: जी।
0: लेकिन किसी के कम होते हैं तो वो सोच विचार के करता है, तो कहीं ना कहीं ये कर्म गति का भी कारण है। बाकी ये नहीं है कि जो छल वाला है वो बढ़ रहा है और जो सत्य वाला है वो डूब रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो है पास्ट गति का कहीं ना कहीं प्रभाव जो हमें फलीभूत होते हुए दिखाई देता है
1: जी। बिल्कुल, तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि जो अभी बुरे कर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें पास्ट में उन्होंने अच्छा कर्म किया है,
0: वो बुरे कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जीवन एक चेन है, पिछला बोया खा रहे हैं
1: जी,
0: अब का बोया हुआ आगे मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, उसका जो है प्रमाण मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि जैसे धरती बीज नहीं खाती, ऐसे हमारे कर्मों का जो है वो भी खाता कभी वेस्ट नहीं जाता, छोटे से छोटे कर्म का भी खाता जरूर बनता है
1: जी। तो अपने कर्म के ऊपर गौर करें जो भी हम कर्म कर रहे हैं। और कवि ने इस गाने में बहुत बार कहा है कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, तो इंसानों के बदलने का कारण आपको क्या लगता है, गहराई क्या है इसमें?
0: इंसानों के बदलने का अगर हम मोटे रूप में देखें तो इंसान तो वही है जिसकी दो आंखें थी, दो कान थे
1: जी,
0: वही नाक थी, सब कुछ वही है
1: जी।
0: लेकिन आज वो बदली है तो उसकी सोच बदली है, जो शुरू में बोलती थी कि तेरे बहाने सर्वत का भला, कि सबका भला हो, आज वो सबका भला में सिर्फ मेरा अच्छा हो जाए, मुझे किसी से नहीं लेना देना, ये भावना जो है ना वो फलीभूत ज्यादा हो गई है। इंसान में बदली है उसकी सोच, क्योंकि सोच जो है ना वो एक बीज है
1: जी।
0: सोच से ही बनता है हमारा व्यवहार और व्यवहार से बनते हैं हमारे कर्म,
1: राइट।
0: तो सबसे ज्यादा जो बेस बदला ना उसकी सोच बदली, और उसमें भी ज्यादा स्वार्थपन आ गया, लालच आ गया, कहीं ना कहीं अपनी लालसा पूरी करने के लिए ना बाय हुक बाय क्रूक कुछ भी करने की जो वृत्ति है ना उसने इंसान को बदल दिया है। बाकी इंसान तो वही है, पहले भी गेहूं की ज्वार की रोटी खाता था, पहले भी वही वस्त्र पहनता था, पहले भी घरों में रहते थे, आप भी हम वही कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोच में विचारों में अंतर आ गया है, पहले के मुकाबले अब के विचार जो है ना उसमें ज्यादा जो है पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी या वेस्ट ज्यादा आ गया है, जिस करके इंसान जो है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है
1: जी। दीदी, कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को फिर से चेंज करें, अपने वृत्तियों को बदले, विचारों को बदले, लेकिन नहीं हो पाता। हम जब आध्यात्मिक संस्थाओं में आते हैं, हम भाषण भी सुनते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते?
0: पहली बात तो ये होती है कि दृढ़ता की कहीं ना कहीं कमी होती है
1: जी।
0: हमारे अंदर जब तक किसी काम को करने की दृढ़ता नहीं आएगी तब तक हम उस कार्य को कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये होती है, कई बार हम टारगेट बड़ा रख लेते हैं लेकिन उस टारगेट को 2-4-10 दिनों में रेगुलर नहीं कर पाते, और फिर धीरे धीरे वो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाता है
1: जी।
0: क्योंकि आज जो समझ है ना वो सबको फुली नॉलेज है
1: जी,
0: ज्ञान की कोई कमी नहीं है किसी के पास। इसीलिए आध्यात्मिकता में यही बताते हैं कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर का प्रतीक यही है कि आज के इंसान के पास एक दिमाग है
1: जी।
0: तो उसके पास 10 गुना दिमाग था, लेकिन वो किस तरफ जा रहा था? बुराई की तरफ जा रहा था। तो इसी तरह आज इंसान के पास दिमाग फुल है, नॉलेज फुल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो दृढ़ता नहीं है, वो फिसल जाता है, जो कर्म इंद्रियां वो कहीं ना कहीं उसको धोखा देती है, जिस करके वो दृढ़ता की कमी के कारण अपने जो असूलों को, अपनी जो मान्यताओं को, अपनी जो उसने धारणा बनाई है ना उस पे खरा नहीं उतर पाता और अपने आप का परिवर्तन नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें अभ्यास की, खुद को एक लक्ष्य देने की जरूरत है। जब हम बार बार उस चीज का अभ्यास करते हैं या मन में एक लक्ष्य देते हैं तो जल्दी उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। आज एक बच्चा कमजोर होता है तो भी उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं नहीं नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, अगर उसको फोर्स किया जाता है
1: जी
0: और वो ट्यूशन भी लेता है, लगन से पढ़ता

0: है तो एक दिन वो डॉक्टर जरूर बनता है।
1: राइट।
0: इसका उदाहरण है हमारे वैज्ञानिकों में ही, उसका उदाहरण है
1: जी
0: कि वो बिल्कुल ही जो जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन की है
1: जी,
0: तो उनका दिमाग बिल्कुल ही मेंटली वो क्या थे, डिसऑर्डर थे। जब टीचर ने लिख के दिया कि आपके स्कूल में जो हमारे स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाने का जो है कोई सोर्स ही नहीं है क्योंकि इसका दिमाग बहुत ही वीक है, आप किसी और स्कूल में इंतजाम करो, तो उसकी मदर ने उसको एक चैलेंज रूप में स्वीकार किया
1: जी
0: कि मेरे को ये बोला है कि स्कूल में नहीं है लेकिन मैं घर में तो करा सकती हूँ, लेकिन बच्चे को शो नहीं होने दिया, उसको सिर्फ यही कहा कि वो वहाँ तेरे को पढ़ाने के लायक टीचर नहीं है, तेरे को मैं घर में पढ़ाऊंगी
1: जी,
0: तेरे को मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। तो माना एक विल पावर जब होती है या जब हम एक लगन में लग जाते हैं, एक लक्ष्य रखते हैं ना, तो वहाँ जरूर उसकी प्राप्ति होती है, वहाँ उस ध्येय को हम प्राप्त करके ही रहते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अलबेलापन या कहीं ना कहीं बात में हम ही दृढ़ता की कमी के कारण उस बात को चेंज नहीं कर पाते, इसलिए दृढ़ता चाहिए
1: जी। आजकल की मोबाइल युग में हम चाहते हैं कि हम दृढ़ता पूर्वक, जैसे हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, आज हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही हम बेड पर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं वो बात, फिर हम मोबाइल देखने लगते हैं, वो एडिक्शंस इतने दिनों के इतने सालों से है हमारे में
0: जी।
1: तो कैसे फिर करें उसको?
0: उसके लिए तो वही है, बस वो प्लानिंग है, माना मन को हमको साधना पड़ेगा, मन को पक्का करना पड़ेगा। जैसे मैंने संकल्प किया कि मुझे रात को फोन नहीं देखना, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय भी करना पड़ेगा कि नहीं देखना तो फिर कहाँ रखना है। अगर उसको अपने सिराने पे ही रखा, अगर उनको पास ही रखा, तो फिर तो नेचुरली, क्योंकि हमें जो हैबिट पड़ी हुई है वो हैबिट जल्दी नहीं जाती, वो हैबिट्स को छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम इस बात को पक्का कर ले कि पहले उसका इंतजाम भी तो करें, कोई आदत छोड़नी है तो उसमें मन में एक दृढ़ता लेके आए और प्लस अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, जिससे मेरी विल पावर जो है वो पूरी मजबूत होगी, पावरफुल होगी, फिर मैं उस कोई भी अपनी कमी कमजोरी को निकाल सकूंगा। अदरवाइज वो कमी जो है वो हमारे ऊपर ही हैवी हो जाती है। तो उसके लिए मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, उसके लिए सुबह उठते ही हमने क्या अपने आप को संकल्प दिया बार बार रिमाइंड करना चाहिए। अभी आप ये मान के चलो हमने 10-12 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक लेक्चर दिया था, तो वहाँ बड़े भाई साहब गए हुए थे, मैं उनके साथ ही गई थी
1: जी।
0: तो उन्होंने वहाँ एक बच्चे ने कहा कि मैं हर बार मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है मैं फर्स्ट नंबर पे आऊँ
1: जी।
0: तो वो एमए कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा मेरा लास्ट ईयर है तो मेरी इच्छा है कि मैं जो है फर्स्ट आऊँ और गोल्ड मेडल मुझे मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा
1: जी।
0: तो तब बड़े भाई साहब जो थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनको बताया कि आप अपने रूम में ना, वही बात की भूल जाते हैं, थॉट भी देना होता है तो भूल जाते हैं, उन्होंने अपने रूम में एक लाइन लिख के लगा दी, मैं फर्स्ट जो है आऊंगा ही आऊंगा और मुझे जो है रिवार्ड मिल रहा है, इनाम मिल रहा है, डिग्री मिल रही है, गोल्ड मेडल मिल रहा है
1: जी।
0: उसने अपने रूम में पूरे पेज पे पेपर पे लगा के रख दिया। मॉर्निंग में उठते ही उन्होंने जब देखा, रोज उसको देखा, पक्का कराया कि नहीं 1-2 मार्क्स के लिए मुझे सेकंड नंबर पे नहीं रहना, मुझे तो फर्स्ट पे ही आना है
1: जी।
0: तो 4 मंथ आफ्टर जब उसका ईमेल आया तो उसने बताया कि सच में वो फर्स्ट नंबर पर आया है। वो उसका रिजल्ट क्या था कि जो उसने बार बार देखा, जो बार बार सोचा, जो बार बार किया, उसका उसको रिजल्ट मिला ना। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कमी कमजोरी संस्कार को त्यागने के लिए। आज हम सब रेडीमेड चाहते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए
1: जी।
0: लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, दृढ़ता लेके आए, तो परिवर्तन हो सकता है
1: जी
0: ना, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम अ पॉसिबल
1: जी।
0: अगर उसको भी अलग करेंगे ना, इम्पॉसिबल को भी, वो भी कहता है आई एम अ पॉसिबल है ना, तो इसलिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं ना। लेकिन उसके लिए अपने को एक विजन देने की, एक लक्ष्य देने की, वो अवश्य
1: हर दिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है।
0: हाँ, हर दिन थोड़ी थोड़ी जो है कोशिश करनी चाहिए
1: जी। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट प्रीति दीदी जी हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम जीवन रोशनी में। आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट सीनियर राजयोगा टीचर प्रीति दीदी जी है सिरसा से, और आप शिक्षक भी रह चुके हैं। 2007 से समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए दीदी का फिर से स्वागत करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी। ओम शांति।
0: ओम शांति। दीदी जैसे ब्रेक से पहले भी बहुत सारी बातों के बारे में आपने हमें गाइड किया कि हम क्यों बदल गए हैं, और अगर अपने आदतों को हमें फिर से चेंज करना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, तो कैसे हम दृढ़तापूर्वक आदतों को बदल सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। कर्मों की गुह्य गति के बारे में भी आपने बताया।
1: जी।
0: अभी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ लाइन्स इस प्रकार से हैं कि राम के भक्त और रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दुनिया में हर धर्म के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ चल रही है।
1: जी।
0: तो आप क्या सोचते हैं कि धर्म क्या है?
1: धर्म का मूल अर्थ है धारणा।
0: जी।
1: धर्म जो है वो कोई देह से नहीं जुड़ा।
0: जी।
1: आज फसाद की जड़ जो बन गया ना, वो दैहिक धर्मों से बन गया कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, फलाना हूँ। ये जो धर्म है ना, ये आपस में मतभेद पैदा करता है। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ है कि हमारे अंदर प्रेम की, सद्गुणों की, शांति की, सद्भावना की धारणा होना। इसीलिए जो हमारा एक प्रसिद्ध गीत भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना।
0: जी।
1: कोई भी मजहब कभी भी वैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर द्वेष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो धर्म के नाम पे हो रहा है।
0: जी।
1: क्योंकि वास्तव में सबने दैहिक धर्म को ही मूल मान लिया है, पर वास्तव में हमारा जो धर्म है, मूल धर्म है, हमारी आत्मा का जो धर्म है, वो है शांति, प्रेम, आनंद, सुख। ये उसका धर्म है। और अगर सब यही चाहें कि मुझे प्रेम से, शांति से, प्यार से, पवित्रता से एक दूसरे के साथ चलना है, बात करनी है, रहना है, व्यवहार करना है, तो कोई झगड़े की बात ही नहीं।
0: राइट।
1: विभाजन से पहले हम सब ने देखा, सब एक होकर रहते थे, कोई पता ही नहीं चलता था कौन बच्चा मुसलमान का है, कौन बच्चा हिंदू का है, कौन बच्चा किस जो है समुदाय से बिलोंग करता है, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन ये बाद में ही ये सारे जैसे ही अलग अलग टाइटल मिलते गए, दैहिक धर्म बनते गए, ये सारा विवाद फसाद तब पड़ा।
0: जी।
1: इसलिए हमारी मूल धारणा जो है प्रेम की, शांति की, आनंद की, उस धारणा पर अगर हम चलते हैं तो फसाद हो ही नहीं सकता।
0: जी।
1: क्योंकि हम भगवान के घर से आए, हम सब मानते हैं जब वहां से आए तो वहां से कोई स्पेशल थोड़ी था कि ये हिंदू धर्म क्या है, ये मुसलमान धर्म का है। वो तो जिस कुल में, जिस घर में, जिस बिरादरी में जन्म लिया, वहां का टैग लग गया।
0: जी।
1: पर वास्तव में तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, एक पिता की संतान है, हम सब रूहें आपस में भाई भाई हैं। तभी हम सब बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई।
0: जी।
1: तो धर्म यही सिखाता है कि प्यार से रहना, धर्म सिखाता है मिलजुल के, बांट के खाना, एक दूसरे को सद्भावना देना, सहयोग देना, ये मूल धारणा है धर्म की।
0: ये हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। और एक साथी कहते हैं कि इतना बदलाव इंसान में क्यों आया, पुराने जमाने से अब तक सब नीचे क्यों आते जा रहे हैं? इसकी जवाब आपने दिया है। इतने एनजीओज हैं अभी, इतने टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी हम नीचे क्यों गिरते आ रहे हैं?
1: क्योंकि बाहरी जो है ना, बाहरी उठाव तो हुआ, बाहरी जो है वहां से तो हमने खूब तरक्की कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो अंदरूनी ताकत थी, शक्तियां थी, वो गुम होती चली गई।
0: जी।
1: जिस करके भारत पतन की ओर जा रहा है, जिस भारत के लिए हम कहते थे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, आज उस गीत का ओपोजिट हो गया कि देख तेरे संसार की हालत।
0: जी।
1: ओपोजिट हो गया ना उसका, माना कहने का भाव कि जहाँ सशक्त भारत था, जिनकी मानसिकता, जिनके अंदर सशक्त मन था, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति सहयोग था, आज वहां धीरे धीरे धीरे धीरे कटुता ने रूप धारण ले लिया, क्योंकि बाहरी शोशेबाजी, बाहरी शो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक गतिविधियों की ओर कहीं ध्यान नहीं है। आज एक माँ अगर बच्चे को हॉस्टल में भेज दिया, उसको समझा के भेजेगी कि जो नशा करते हैं उनके साथ नहीं रहना, फलाने के साथ नहीं बोलना, ये वेस्ट खाना नहीं खाना, बासी नहीं खाना। लेकिन किसी माँ ने आज तक किसी को बताया कि तूने ऐसा गंदा भी नहीं सोचना?
0: जी नहीं।
1: तूने कभी ऐसा जो है मन में विचार भी नहीं लाना? मन के लिए तो कभी किसी ने गाइडेंस दी ही नहीं।
0: जी।
1: तो जब मन के लिए दी नहीं, दी ही बाहरी चीजों के लिए, तो बाहरी चीजों में ही तो तरक्की होनी थी।
0: जी।
1: तो जिसकी ओर ध्यान नहीं रखा वही पिछड़ गया, वही पीछे रह गया, है ना। तो जरूरत है मन को सशक्त करने की, इम्पावरमेंट देने की मन को।
0: जी।
1: उसकी जरूरत है।
0: तो मन को सशक्त करने के लिए टेक्निक्स भी है, वो आगे जानेंगे। वो साथी पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार कैसा बदलाव अभी आना चाहिए मनुष्य में?
1: मनुष्य में बदलाव जो आज स्वार्थपना है ना, अगर वो समाप्त हो जाए, आपस में प्यार की, आपस में जो लेन देन है वो निस्वार्थ भाव से हो, जो धन को प्रेफरेंस दे रहे ना वो धन की बजाय अगर उसके गुणों को प्रेफरेंस दी जाए, अगर मानवता को प्रेफरेंस दी जाए, तो बहुत बड़ा सुधार जो है वो आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं गिरावट का कारण है कि हम बाहरी रूप को देख कर ही उसको प्रेफरेंस देते हैं। आज जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसके साथ उतनी अच्छी ही उसको VIP सब चीजें मिलती हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसके अंदर गुण है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि हम बाहरी रूप से ही प्रभावित होते हैं, अंदर की मानसिकता कोई देख नहीं सकता। इसीलिए उस व्यक्ति को भी हम ऐसे समझते हैं कि ये तो छोटा है, बाहरी ड्रेस का। जैसे लुकमान का उदाहरण आता है ना, कि एक बार किसी जगह वो गए तो उनको किसी ने बोला कि वो कपड़े ऐसे डालते थे साधारण, तो बोला वहाँ राजा के यहाँ भोग है तो आप अच्छे कपड़े डाल के जाओ ना। तो उसने सेठ ने अपने कपड़े दे दिए।
0: जी।
1: तो जब वो कपड़े डाल के उस भोज में पहुंचे तो वहाँ सारे खा रहे थे, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे थे, वो उठा उठा के अपने कपड़ों को खिला रहे थे। ले ले ले आइसक्रीम खा ले, ले ले ले ये दाल खा ले, ले ले ये खा ले। सारे कहते भी इतना हकीम है, इतना समझदार है, आज ये ऐसे काम क्यों कर रहा।
0: जी।
1: तो उनको जब जाके पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा आपने मेरे आउटर रूप को देख के तो मुझे एंट्री दी है।
0: जी।
1: मेरी इनर ब्यूटी को तो आपने देखा ही नहीं, इसलिए आउटर को ही खिला रहा हूँ, क्योंकि इनवाइटेड तो ये है, मैं थोड़ी इनवाइटेड हूँ। है ना। तो बाहरी जो रूप है ना वो आज ज्यादा प्रत्यक्ष है, लेकिन इनर ब्यूटी की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं है।
0: जी। क्योंकि जैसे पहले भी आपने कहा था कि आजकल जो बाहरी रूप देखकर ही लोग आपको पसंद कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यूथ भी यही चाह रहा है कि ठीक है यही सही हम यही कर लेते हैं, इनर ब्यूटी को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आउटर ब्यूटी से ही लोगों को एक्सेप्टेंस मिल रहा है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आज का यूथ का रोल मॉडल भी यही है, या तो हीरो हीरोइन है या क्रिकेटर है, किसी का रोल मॉडल नहीं है कि हमारे श्री लक्ष्मी नारायण, हमारे श्री कृष्ण, श्री राधा जी, श्री राम, श्री सीता। रामायण पढ़ना पसंद करते हैं, भागवत सुनना पसंद करते हैं, लेकिन राम जी बनना पसंद नहीं करते, श्री कृष्ण जैसा बनना पसंद नहीं करते। हम तो ऐसे भारत में रह रहे हैं कि यहाँ अगर हमें कोई दो मूर्तियां दिखाए राम जी की, बोले कि एक मूर्ति जो है वो पत्थर की है, एक मूर्ति सोने की है, जो राम जी की मूर्ति है वो पत्थर की है और रावण की जो मूर्ति है वो सोने की है, तो कौन सी लेना चाहोगे?
0: जी।
1: तो आप सोच सकते हो कि लोग किसको प्रेफर करेंगे।
0: जी।
1: वो खाली उसके स्वरूप को नहीं देखेंगे, उनके वो सिर्फ जाएगी, उनकी वृत्ति कहाँ जाएगी, सिर्फ आउटर पर। वो मिट्टी की मूर्ति श्री राम की वो नहीं उनको प्रभावित करेगी, लेकिन वो सोने की मूर्ति रावण की है वो अपनी तरफ जरूर खींचेगी। कहीं ना कहीं अभी तक जो हमारी दोहरी मानसिकता है वही इस गिरावट का मूल कारण बन गई।
0: जी। जैसे मानसिकता के बारे में आप कह रहे हैं, और आप कह रहे थे कि जो माताएं हैं वो गाइड नहीं करते कि हमारे मन में विचार कैसे आना चाहिए, तो शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम कसरत करते हैं, तो मन की सुंदरता के लिए क्या कसरत करना चाहिए?
1: मन की सुंदरता के लिए सबसे जरूरी कसरत है कि हम अपने मन को कम से कम 10-15 मिनट तक देखें, वो कहाँ जाता है रोज सारे दिन में।
0: जी।
1: कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, विचार शक्ति है। आज हम उस पे एनालिसिस नहीं करते, बाहरी रूप में करेंगे, इतना आज खर्चा हो गया, इतना टाइम वहां लग गया, लेकिन माइंड मेरा कहाँ कहाँ लगा वो कभी नहीं देखा, क्योंकि जिस चीज को हमने देखा नहीं वो चीज ही हमसे दूर हो गई। एक बच्चा बाहर खेलने गया, शाम हो गई, वापिस नहीं आया, मदर देखने जाएगी कहाँ गया, लेकिन मेरा मन सुबह से लेके शाम तक भटक रहा है
0: जी।
1: हमने कभी नहीं देखा वो कहाँ जा रहा है।
0: राइट।
1: इसलिए मन को थोड़ी सी देर के लिए अपने पास बिठाने की, बात करने की जरूरत है, जिससे मानसिकता बदलेगी। क्योंकि जब हम सेल्फ को देखते हैं, माइंड को देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे भागते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे के पीछे हम भागेंगे
0: राइट,
1: तो वो रुक जाता है। लेकिन हम बैठे होते हैं तो वो हमें हाथ लगा के कहते हैं मुझे पकड़ो। तो कहीं ना कहीं मन की भी यही दशा है। हम पीछे भागते हैं तो वो रुका हुआ है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो बैठी हूँ, मन ही भाग रहा है, तो वो फिर वो भागेगा, वो हमें भी भगाएगा। तो इसलिए मन को थोड़े से टाइम के लिए टाइम देने की जरूरत है। अपने आप से ही पूछें, अपने आप को ही ये एक जो है जरूरी इन्फॉर्मेशन दे कि मेरे साथ क्या जाने वाला है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म कर रही हूँ, क्या ये मेरे जो कर्म है, ये पूंजी जो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ या वेस्ट इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए इस जीवन में आया, मेरा लक्ष्य क्या है। जब आप मन से 2-4-5 बार क्वेरी करते हैं, जैसे काउंसलर काउंसलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, अंदर की बातें ही तो निकलवाते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे मन से अगर हम अंदर की बातें निकलवाएंगे तो मन हमारा अपने आप ही बस में आएगा, क्योंकि हम मन की पीठ नहीं करते। मन को तो बोल दिया, मन तो घोड़ा है, मन तो फलाना है, मन तो किसी के काबू में आया ही नहीं। तो मानसिकता तब बदलेगी जब हमारे मन में सुधार होगा, जब मन में अच्छे विचार आएंगे, और जब अच्छे विचारों के लिए हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक संस्था से जुड़ना पड़ेगा। और वो आध्यात्मिक संस्थाएं हमारे यहाँ बहुत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था भी ऐसा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो मन के बदलाव की ओर सबसे ज्यादा तीव्र गति की ओर उसका अटेंशन है, जिसके बहुत सारे कोर्सेज हैं माइंड को मैनेज करने के, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। अगर हम वो काउंसलिंग भी लेते हैं उनसे या वो टॉपिक भी सुनते हैं, तो भी हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। तो आप रेडियो मधुबन पर भी समय प्रति समय ब्रह्मा कुमारीज के जो फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रहे हैं दादियाँ, उनकी बातें भी सुनते हैं और मन के बारे में भी चीज़ें सुनते हैं। तो इसे प्रैक्टिस करें आप, जैसे दीदी ने भी कहा। तो ये इस हफ्ते के लिए आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप प्रैक्टिस करें, अपने मन के साथ समय बिताएं, फिर हमें आप फीडबैक देंगे। और इन सारे गानों को देखते हुए, इन पंक्तियों को देखते हुए, लाइंस को देखते हुए, एक सवाल उठ रहा है मन में कि क्या फिर से ये जग सुधरेगा। हम कहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, तो आपको क्या लग रहा है?
1: ज़रूर सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो सर्कल में है
0: जी।
1: जो सर्कल है उसका ना स्टार्टिंग होता है ना एंड होता है, वो साइकिलिंग ही करता है, पूरा चक्र ही चलता है। तो इसी दुनिया में सत्युग था, और वो सत्युग जो है बीत के अभी कलयुग एंड तक पहुंच गए, तो फिर दोबारा सत्युग जरूर आएगा। जैसे सुबह दोपहर शाम रात, जैसे मानव जीवन की अवस्था, बच्चा है, फिर किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, फिर मृत्यु, फिर बच्चा, तो ये सारी चीजें एक साइकिल में बंधी हुई है
0: जी।
1: ऐसे इस विश्व को भी जरूर परिवर्तन होना है, तो वो होगा भी जरूर। वो परिवर्तन जो है हम सबके प्रयास से होगा, और अगर हम अपनी गारंटी ले लें हम सब कि हम ही उसको परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे, तो ये भारत जो है शीघ्र ही विश्व गुरु, शीघ्र ही स्वर्ग बन जाएगा, ऐसी हमारी शुभ भावना भी है और ऐसा हमारा पक्का विश्वास भी है कि भारत जो है फिर से विश्व गुरु बनेगा और फिर से भरपूर बनेगा
0: जी। तो इसमें अध्यात्म का क्या रोल है?
1: अध्यात्म का रोल ये है कि अध्यात्म माना अपनी आत्मा का अध्ययन, इसमें हम सेल्फ पे ध्यान देते हैं। क्योंकि आज अगर हमें कोई कहे कि फलाने की 2 कमजोरी बताओ, तो हम 2 की बजाय 4 बताएंगे
0: जी।
1: लेकिन कोई कहे अपनी 2 कमजोरी बताओ, तो वो 2 कमजोरी हमें ढूंढनी पड़ती है
0: राइट।
1: क्योंकि हम उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं नहीं मेरा भाव नहीं होता, मेरे मन में कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे सीधी सीधी बोल देती हूँ, मैं तो ऊंचा बोल लेती हूँ, उसके लिए हम एक्सक्यूज देते हैं
0: जी।
1: क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, लेकिन आध्यात्मिकता दिखाती है आत्मा का अध्ययन, खुद को बदलते हैं, खुद को देखते हैं, तो वहीं से ही परिवर्तन शुरू होता है। और आध्यात्मिकता के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है स्वयं को परिवर्तन करने का, क्योंकि आध्यात्मिकता एक मार्गदर्शना है सबके लिए। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, यूथ सब जुड़ सकते हैं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी टफ नहीं होता, सिर्फ अपने आप को चेंज करने की बात है, अपने आप को परिवर्तन करने की बात है। और इस बात को हम स्वीकारते भी हैं। आज पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बुजुर्ग कहते हैं हमारे कुलीग हमारे साथ का साथ नहीं देते
0: जी।
1: तो जब एक दूसरे का हम साथ नहीं देते तो खुद का तो कर ही सकते हैं ना, सेल्फ को चेंज करना तो इजी है ना। तो इसलिए आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा रोल है इस जग को सुधारने में और स्वयं को सुधारने में
0: जी। तो आध्यात्मिकता को अपनाएं और जैसे दीदी ने कहा, अपने आप के बारे में जानना, अपने आत्मा के ज्ञान के बारे में जानना, इसे ही हम आध्यात्म कहते हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश आप करें। अगर आपको मुश्किलें आए तो आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं सवाल 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हम, दीदी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी समय परिवर्तन हो रहा है, तो समय परिवर्तन से पहले पहले हमें सुजाग होना है, जागृत होना है, अवेयरनेस चाहिए। बाहरी अवेयरनेस बहुत है, बाहरी चीजों का बदलाव हम चाहते हैं। घर पुराना हो गया, हम उसको कहेंगे इसको नया करें, थोड़ा रेनोवेट करें, थोड़ा अगर हमारा कपड़ा पुराना हो गया तब भी हम उसको नया बनाना चाहते हैं। हर चीज में हमें नवीनता चाहिए, लेकिन अभी संस्कारों में भी नवीनता चाहिए, अभी सोच में भी नवीनता चाहिए। इसीलिए अपने ऊपर थोड़ा सा समय सब जरूर दें, अपने संस्कारों के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर। अगर ये हम बदलाव करेंगे, नवीनता लेके आएंगे, तो ये हमारा परिवर्तन ही हमें जीवन जीने की कला और एक सुखद परिवार की रचना में और सुखद भारत की रचना में, एक सुखद समाज की रचना के रूप में दिखाई देगा
0: जी। बहुत खूब एंड थैंक यू सो मच हमारे मध्य आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप शांतिवन परिसर में आए तो आप रेडियो के श्रोताओं के साथ जरूर बातचीत करें।
1: जी जी जी, जरूर जरूर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। आज का कार्यक्रम कैसा रहा आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, मैसेज या फिर व्हाट्सएप करके। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: चटपटी मजेदार गर्मा गर्म पानी पूरी. आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ.
2: क्या बात है भाई, तुमने तो तरक्की कर ली, बढ़िया ठेला ले लिया.
3: जी जी, उसके नाम से ही जीवन धन्य है.
2: लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चटपटी तो ठीक है, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या होता है? गर्मा गर्म पानी पूरी मैंने तो पहले कभी नहीं सुना.
3: भाई साहब, पहले मैं सिर्फ पानी पूरी बेचता था, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. फिर मैंने सोचा कुछ अलग करके देखूं.
2: और वैसे भी पानी पूरी के अंदर का रगड़ा जो भरते हो वह तो गर्म ही होता है ना. बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है.
3: जी जी, वो तो है.
2: भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
3: जी पूछिए ना.
2: कुछ दिन पहले तुम्हारा जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तब मैं कुछ काम कर रहा था.
3: कुछ दिन? हाँ हाँ हाँ, याद आया. उस दिन दो लड़के मेरे से पानी पूरी लिए और बिना पैसे देकर भाग गए, और मैं गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा.
2: लेकिन मैं जब खिड़की से झांक करके देखा तो कोई एक सफेद साड़ी वाली बहन थी और तुम्हारी उनके साथ कुछ बहस हो रही थी.
3: भाई साहब, बात कुछ और थी. उस दिन जो मैं उन लड़कों पर चिल्ला रहा था, उसी वक्त वो ओम शांति वाली दीदी यहाँ से जा रहे थे. उन्होंने रुक कर मुझे समझाया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा. पहले तो मुझे उनकी बातें अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया.
2: ओम शांति वाली दीदी, अब ये कौन है भाई? मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल की नर्स होंगी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने?
3: भाई वो पास में ही ओम शांति सेंटर है ना, वहीं से आई थी. मैं उनके वहाँ एक दो बार कुछ कार्यक्रम में गया था.
2: भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लोग उधार लेके चले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं लौटाते. इससे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता क्या करें.
3: भाई एक बात पूछें?
2: हाँ हाँ बोलो ना.
3: आपके पास अगर समय है तो कल वो दीदी के सेंटर पर चलें, पास में ही है, बस एक दो गली छोड़कर. क्या पता आपके समस्या का भी कुछ हल मिल जाए.
2: ठीक है, देखते हैं.
3: ओम शांति दीदी.
4: अरे आप, ओम शांति, आइए ना आइए.
3: ये भाई साहब, मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ ना, उसी के सामने ही रहते हैं. उस दिन आपसे बात करते हुए उन्होंने देखा तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें भी यहाँ पर ले आया.
4: अच्छा, आइए आइए बैठिए. वैसे क्या करते हैं आप?
2: मेरा बिजनेस है छोटा सा.
4: अच्छा.
2: लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं.
4: क्या बात है, बोलिए ना.
2: उसमें कई लोग उधार में कई चीज मेरे से ले जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर समय पर पैसे ही नहीं लौटाते.
4: वैसे उधार देते हैं तो पैसे लौटाने की याद दिलाना गलत नहीं है,
2: लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद से बिना पूछे पैसे लौटा देना चाहिए ना. बार बार मांगने में भी शर्म आती है. कभी कभी तो लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तंग आ गया हूँ.
4: ये आपकी अच्छाई है कि आप मदद करते हैं, लेकिन बिजनेस में भावना से ज्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए.
2: हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता. लगता है किसी के जरूरत पर मदद की तो अपना भी अच्छा कर्म बनेगा.
4: आपकी भावना तो बहुत ऊंची थी, मदद करो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि आज के समय में कई लोग आपका फायदा उठा सकते हैं. ऐसे समय में परखने की शक्ति बहुत जरूरी है.
2: परखने की शक्ति?
4: जी, परखने की शक्ति. किसे उधार देना है या किसे नहीं, पहले उन्हें देखो, समझ लो और आगे से एक नियम बनाओ. उधार देने से पहले तय कर लो कि कब तक पैसा वापस आना चाहिए, और प्रेम से याद दिलाओ.
2: लेकिन हम कैसे किसी को जाने, हमें पहले से थोड़ी पता होता है कि ये धोखा देगा.
4: कई बार आपने देखा होगा किसी को उधार देते वक्त आपके मन में अंदर से आवाज आती होगी, ये शायद समय पर पैसे नहीं देगा, और वो सच में वैसे ही होता।
3: जी जी दीदी बिल्कुल, मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि वो लड़के भाग जाएंगे, और वैसे ही हुआ।
4: जी बिल्कुल, ये आपके अंदर की आवाज आपको बता रही होती है, ये हमारी परख शक्ति है।
2: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, हमें अपने अंतरात्मा कुछ चीज करने से रोक रही होती है,
4: लेकिन हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं।
2: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ तो है,
4: लेकिन फिर भी हम निर्णय गलत लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर निर्णय शक्ति की भी कमी है, और आने वाले परिणाम देख दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति की भी कमी है।
2: लेकिन दीदी, अब तक के अनुभव के हिसाब से अब ना परखने की शक्ति की जरूरत है, ना निर्णय शक्ति की। मैंने तो ठान लिया, अब किसी को उधार देना ही नहीं जो बाद में सहन करना पड़े।
4: इसका मतलब अगर कोई सच में मजबूर है और हम उसे सहयोग करें, ये भावना भी अब कमजोर हो गई, अर्थात सहयोग की शक्ति की भी कमी हो गई।
2: आपकी बातों में गहराई तो है, लेकिन दीदी करें तो करें क्या, रातों में भी नींद नहीं आती, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं।
4: क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी कमी है, ये भी एक शक्ति है जो हम बातों को लगाम नहीं लगा पाते।
2: आपसे बातों में जीतना मुश्किल है दीदी, लेकिन उसका क्या जिनको पहले से उधार दे रखा है, और वह है भी अपने ही मित्र संबंधी, उनसे ना तो झगड़ सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
4: जिन्हें पहले से उधार दे रखा है, हो सकता है उनके जीवन में सच में ऐसी कोई समस्या है जो पैसे लौटा नहीं रहे, और वो उनके पास आने पर दे भी देंगे, बस उनके प्रति शुभ भावना रखे।
2: हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए बोला तो बोलते हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे।
4: ऐसे समय पर सामना करने की शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत को सहन नहीं कर सकते, उन्हें गुस्से से नहीं लेकिन धैर्यवत गंभीरता पूर्वक कड़े शब्दों में याद भी दिलाना चाहिए।
2: और अगर फिर भी ना दे तो?
4: हमारा उनके साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था जो हमने इस जन्म में चुका दिया, ऐसे सोचकर आगे बढ़ो। अच्छे बुरे को समंदर जैसा बड़ा दिल रख सब कुछ अंदर संभालो, समाने की शक्ति धारण करो।
2: ये बहुत बड़ी बातें हैं, समा तो लेते लेकिन दिल में और बातें फिर भी रह जाती हैं।
4: हाँ, क्योंकि समेटने की शक्ति की कमी है, व्यर्थ बातों को छोड़कर सिर्फ अच्छी बातों को समेट करके आगे बढ़ो तो मन पर बोझ नहीं रहेगा।
2: दीदी आखिर ये कितनी शक्तियाँ हैं, लोगों को तो अच्छे से समझना हो,
4: सिर्फ इसे जान ही होगा है, से बढ़ शक्ति
2: ऐसे हैं। क्या आप हमें सिखा सकते हैं? मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है।
4: आपको इन मन की शक्तियों को जानने के लिए सेंटर पर रोज आना होगा। यहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है जिसमें आपको इन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा।
2: ओ, दीदी इसकी कोई फीस?
4: नहीं भाई बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है।
3: जी दीदी हम जरूर आएंगे, पूरा 7 दिन का कोर्स करेंगे।
4: ये भगवान का घर है, माना आपका अपना घर है।
2: जी दीदी सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांति देने वाला है, हम जरूर आएंगे।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति।

ओम शांति। मैं हूं गायक कलाकार राम शंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक, पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।